आदाब समाइन, यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। मीडियम वेव 268 आर्थिक मीटर यानी 1116 किलोहर्ट्ज के अलावा FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। इसके अलावा आप हमें DTH और आकाशवाणी की मोबाइल ऐप पर सुन रहे हैं। समय आज बुधवार है, शक संवत 1948 के अषद महीने की 24 तारीख मुताबिक 15 जुलाई 2024 ईस्वी सुबह के 6:34 हुए हैं। आज की निश्चयात लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं।

منسا غمگین کوچک غلام حسن بنسا

0: तो इस सुबह का ही बोझान यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आकाशवाणी दिल्ली से संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी खबरों के बुलेटिन नाश होंगे।
1: ईएम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका निधि झा। अथ वार्ताः। भारत ब्रिटेन देशयोः मध्ये व्यापक आर्थिक व्यापार सन्धिः अद्य प्रवर्तते। तेन सह सामाजिक सुरक्षा सन्धिरपि या डीसीसी इति द्विगुण अंशदान सन्धिः नाम्ना प्रसिद्धः क्रियान्वितो जातः। अनेन ब्रिटेन देशे कार्यरतेभ्यः भारतीय व्यावसायिकेभ्यः कार्यावसराः प्रतिस्पर्धा सामर्थ्यं च वर्धिष्यन्ते। एषः सन्धिः तावत् ब्रिटेन देशस्य विपण्यां 99% यावत् शुल्कश्रेणीषु भारतीय वस्तूनां शून्य सीमा शुल्कं सुनिश्चीकरोति, येन भारतीय निर्यातस्य संवर्धनं भविष्यति। नवदिल्ल्यां ह्यः वार्ताहरान् सम्बोधयन् वाणिज्य सचिवः राजेश अग्रवालः इतं सन्धिं भारतस्य व्यापार विकासे महत्वपूर्णं सोपानम् इति अवर्णयत्। प्रशासनेन निगदितं यत् तैः पश्चिमेशिया क्षेत्रस्य घटनाक्रमस्य

0: सूक्ष्मावलोकनं विधीयते। भारतेन होमोर्जलसन्धि मध्यस्थात् सुरक्षित अबाधित नौवहनस्य अथ वाणिज्य प्रवाहस्य आह्वानं पुनः विहितम्। नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् विदेशमन्त्रालयस्य प्रवक्ता रणधीर जयसवालः प्रावोचत् यद्वैश्विकस्तरे जनानाम् आर्थिक ऊर्जा सुरक्षां सुनिश्चेतुम् एतत् परमावश्यकं वर्तते। मन्त्रालयेन ईरान देशस्य उपाभियान प्रमुखं समाहूय एकं वक्तव्यं प्रकाशितम्। श्री जयसवालः प्रोक्तवान् यत् प्रशासनेन तेहरान प्रशासनाय स्वकीया गभीरा चिन्ता प्रकटय्य तत्र दुरापन्नानां घटनाक्रमाणां तीव्रा निन्दा विहिता। अस्मिन् आक्रमणे एकस्य भारतीयस्य अमूल्यं जीवनं विनष्टम्, बहवः भारतीय नागरिकाः च व्रणिताः सञ्जाताः, येषु केचन गंभीराः सन्ति। प्रवक्ता अवोचत् यत् भारतेन ईरानं विरुध्य स्वकीयः दृढविरोधः प्रकटितः, सहैव एतादृशानां आक्रमणानां सद्यः रोधनाय बलं च प्रदत्तम्। अनेनैव सः तेनोदीरितं यत् क्लेशशमनाय उभयपक्षाभ्यां वार्तामञ्चे समागत्य संवादराजनययोः मार्गम् अनुसरणीयम्, येन पश्चिमेशियाक्षेत्रे पुनः शान्तिः स्थिरता च सम्भवेत्। वित्तीयापराधनिरोधकेन प्रवर्तननिदेशालयेन महादेव आभासीयद्युततन्त्रांशसम्बद्धे कथितधनशोधनप्रकरणे एकस्याः प्रशासनेतरतन्त्रांशवित्तीयप्रौद्योगिकीसंस्थायाः अध्यक्षः निगृहीतः। केन्द्रीयाभिकरणेन अचिरमेव तस्य अध्यक्षस्य, तस्य कुटुम्बीनाम् अथ तेन स्वयं सञ्चालितानां नियन्त्रितानां च विभिन्नानां व्यावसायिकप्रतिष्ठानां 44,900,000,000,000,000 रूप्यकाणां स्थावरजङ्गमसम्पत्तिः विधिवत् कुण्ठिता। असमराज्ये विनाशकारिणः जलाप्लावनस्य स्थितिः अद्यापि नितरां सङ्कटमयी वर्तते, येन राज्यस्य 600 अपि जनपदेषु 37,000+ जनाः अत्यन्तं दुष्प्रभाविताः। शोकाकुले अस्मिन् सङ्कटावधौ शोणितपुर जनपदस्य चारिद्वार मण्डले जले निमज्जनात् एकः जनः पञ्चत्वं गतः। भारतीय ऋतुविज्ञान विभागेन अद्य बिहार ओडिशा राज्ययोः अतिवृष्टिपरा रक्तवर्णीया सञ्चेतना प्रकटिता। ऋतुवैज्ञानिकैः इदमपि संसूचितं यत् ईदृशी एव संकट स्थितिः उत्तरपूर्व भारते, छत्तीसगढ़ झारखण्ड पश्चिम बंगाल राज्येषु च श्वः यावत् अश्रान्तं प्रवर्तयिष्यते। पुरुषोनाम एकदिवसीय अन्ताराष्ट्रिय क्रिकेट प्रतिस्पर्धायां ह्यः रात्रौ त्रिस्पर्धानां श्रृंखलायाः प्रथमे द्वन्द्वे बर्मिंघम नगरस्य एस्बेस्टन क्रीडांगणे भारतेन इंग्लैंड दलं 6-2 पराजितम्। अक्षर पटेलः स्वस्य उत्तम प्रदर्शनाय स्पर्धायाः श्रेष्ठ क्रीडकः इति सम्मानम् अलभत। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज लागू हो गया है। इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा समझौता, इसे दोहरा अंशदान समझौता भी कहा जाता है, भी प्रभावी हो गया है। इससे ब्रिटेन में भारतीय व्यवसायियों की गतिशीलता और प्रतिस्पर्धा को बल मिलेगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में 99% शुल्क लाइनों पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। नई दिल्ली में कल वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि समझौता भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों में एक नई शुरुआत करेगा।
2: यह भारत के सबसे महत्वाकांक्षी मुक्त व्यापार समझौतों में से एक है। इस समझौते में परंपरागत टैरिफ उदारीकरण से कहीं आगे बढ़कर सरकारी खरीद, लघु तथा मध्यम उद्यम, नवाचार, श्रम रोजगार और लैंगिक समानता जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है।
1: ये समझौता वैश्विक स्तर पर एकीकृत, सुगम और प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में भारत की यात्रा में एक महत्वपूर्ण

0: कदम है। भारत मालदीव मुक्त व्यापार समझौते के लिए वार्ता का पहला दौर सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। ये द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को विस्तार देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत मालदीव का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार पिछले वर्ष $771 मिलियन से अधिक का था। प्रस्तावित समझौते से दोनों देशों में सतत आर्थिक विकास में योगदान देकर आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करने की संभावना है। भारत आज से हैदराबाद में 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। 2 दिन की इस बैठक में ब्रिक्स देशों के श्रम और रोजगार मंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। बैठक में सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने, श्रम क्षेत्र को अधिक व्यवस्थित बनाने और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। इस दौरान रोजगार कार्य समूह द्वारा तैयार मसौदा घोषणा पत्र पर भी विचार किया जाएगा। बैठक का उद्देश्य ब्रिक्स देशों के बीच श्रम नीतियों, कौशल विकास, श्रमिक कल्याण और समावेशी रोजगार के क्षेत्र में सहयोग मजबूत करना है। भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी से नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कल होर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई। श्री जायसवाल ने बताया कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए तनाव कम करना और बातचीत के माध्यम से समाधान निकालना जरूरी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर भी श्री जायसवाल ने कहा कि ये पाकिस्तान की लंबे समय से चली आ रही नीतियों और लोगों के अधिकारों के उल्लंघन का परिणाम है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराने की अपील की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल स्पेन यात्रा के बाद कल बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स पहुंचे। यूरोप के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी मजबूत करने के लिए केंद्रीय मंत्री के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी गया है। श्री गोयल ने बेल्जियम के उप प्रधानमंत्री और रोजगार, आर्थिक तथा कृषि मंत्री डेविड क्लारिनवाल से मुलाकात कर भारत बेल्जियम के बीच व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, तार्किक और कार्यबल गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। भारत वर्तमान में 7 स्थानों पर 8.78 गीगावाट क्षमता वाले 24 परमाणु रिएक्टरों का संचालन कर रहा है। इसके अलावा 8000 मेगावाट की संयुक्त क्षमता वाली 10 और इकाइयां निर्माणाधीन हैं। इनमें दबाव वाले भारी पानी के रिएक्टर, उबलते पानी वाले रिएक्टर और हल्के पानी वाले रिएक्टर शामिल हैं। देश मुख्य रूप से दबाव वाले भारी पानी का रिएक्टरों को संचालन करने और परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए प्राकृतिक यूरेनियम ईंधन का उपयोग कर रहा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने कल रात फ्रांस को 2-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली। स्पेन के लिए मिकेल ओयार जाबल ने 22वीं मिनट में पेनल्टी पर पहला गोल किया। इसके बाद 58वीं मिनट में पेड्रो पोरो ने दूसरा गोल दागा। फाइनल में स्पेन का मुकाबला अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच आज होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। भारत ने इंग्लैंड को पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 6 विकेट से हरा दिया है। बर्मिंघम में खेले गए मुकाबले में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 258 रन बनाए। जवाब में भारत ने 45वें ओवर में 4 विकेट पर 262 रन बनाकर विजयी लक्ष्य हासिल कर लिया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA, has come into force. Simultaneously, the Agreement on Social Security, also referred to as a Double Contribution Convention, DCC, also comes into effect today, reinforcing the mobility and competitiveness of Indian professionals in the United Kingdom. The landmark deal grants India's exports zero-duty access to 99% of tariff lines in the UK market. Briefing Media New Delhi, Commerce Secretary Rajesh Agarwal described the CETA as a defining milestone in India's trade journey.
2: This is one of first FTA of its kind, which establishes future-oriented economic architecture between the two major economies of the world. This is also one of the most ambitious and aspirational FTAs of India, which we are operationalizing till date. Because of its wide sectoral coverage and deep reduction in both tariff and non-tariff barriers, while it also safeguards the India's sensitive sectors and areas like dairy, cereals, pulses, vegetables.

0: अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, लाइव शो पयाम सुबह के साथ हम हाजिर हैं। मैं हूं आपकी मेज़बान सकीना और मेरे साथ हैं
1: जी मैं ज़हूर अहमद। हमारा भी सलाम कबूल फरमाइए जी। सकीना जी, अपने साथियों को बताते हैं कि कंट्रोल रूम में हमारे साथ हैं इरशाद नायको और नसीर अहमद, और इस प्रोग्राम में हमारी मावनत कर रहे हैं अब्दुल कयूम
0: जी। चलिए सभी का वेलकम करते हैं और एक पॉजिटिव वाइब के साथ करते हैं आज के इस लाइव शो की शुरुआत।
1: जी बिल्कुल बजा फरमाया आपने, क्योंकि मजबूत सोच एक अच्छा अमल भी आसपास के लोगों पर गहरा असर डालता है।
0: और दोस्तों से कहना चाहेंगे

0: की बड़ी तब्दीलियां हमेशा छोटे कदमों से ही शुरू होती है, और जिस कदम की हम बात करते हैं, पहले कदम की, छोटे कदम की, वो इंसान का अपना ही कदम होना चाहिए पहले।
1: वाह वाह, क्या बात कही आपने। लेकिन सकीना जी, कई लोगों का जो है कहना है कि पहला कदम उठाने से पहले ही वो अपने एक मुश्किलात का की शिकायतें कर रहे हैं। ऐसे दोस्तों को कहना चाहेंगे कि मुश्किलात से बड़ा एक वो कोई उस्ताद नहीं होता, और इसे सीखकर अपना रास्ता मत बदलो, बल्कि इसे सीखकर मजबूत हो जाओ।
0: बिल्कुल एकदम सही, क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जो तूफान में भी अपना रास्ता बना के चलते हैं।
1: सकीना जी, आगाज में एक ऐसा नंबर प्ले करते हैं अपने दोस्तों के लिए जो जिंदगी की मैसेज से भरा हो, और कहना चाहेंगे कि जिस बात में दम हो उस बात को अपनाएं तो इंसान के लिए कारगर साबित होता है।
0: देखिए, जो गीत हमने क्यों करके रखा है जहूर अपने दोस्तों के लिए, इस गीत को कई दोस्तों ने मोटो बना के वो जिंदगी में बहुत आगे निकल चुके हैं, क्योंकि जिंदगी के इस मुश्किल रास्ते में थकना मना है।

0: जी, जिन दोस्तों ने अभी अभी अपने रेडियो सेट्स ऑन किए उनको हम बता दें कि बिल्कुल आपने ट्यून किया है आकाशवाणी श्रीनगर, लाइव शो पयाम सुबह जारी है। आपके साथ है आपकी मेजबान सकीना और मेरे साथ हैं
1: जी मैं ज़हूर अहमद।
0: वेडनेसडे बुध का दिन और आज के दिन का थीम होता है स्पोर्ट्स के हवाले से हम ज्यादा बात करते हैं। अब चूंकि 10:30 से 11:30 बजे तक एक मेहमान भी हमारे स्टूडियो में होंगी, एक खेल से ताल्लुक रखती हैं, उनके साथ तो बात दिलचस्प रहेगी, बहुत सारी बातें उनके साथ करनी है। और एक्टिविटीज खेल की अगर हम बात करें मुल्क भर और दीगर कंट्रीज के हवाले से, तो कह सकते हैं कि कश्मीर समेत दुनिया भर में आज होने वाली खेलों की सरगर्मियां बहुत ज्यादा होंगी और मुख्तलिफ गेम्स में बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो पहले अपने दोस्तों को ये बता दें कि स्पोर्ट्स स्टेडियम राजबाग श्रीनगर में इंडियन सॉफ्ट एंड टीम का माह तवील कौमी तरबियती कैंप जारी है, जो एशियन गेम्स के लिए खिलाड़ियों की तैयारियों पर मरकूज है। बहुत अच्छी खुशहाल बात है,
1: सही बात है। और सेंट्रल टेरिफ फुटबॉल टीआरसी श्रीनगर में भी जो है जूनियर गर्ल्स नेशनल एफएफ फुटबॉल चैंपियनशिप के लिए हतमी डिविजनल सिलेक्शन ट्रायल्स मनाकद हो रहे हैं।
0: यानी कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं, बढ़ते बच्चे हैं, वो मुख्तलिफ गेम्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और अगर हम मुल्की सतह पे या इंटरनेशनल लेवल की बात करें तो फीफा वर्ल्ड कप सबकी नजरें इस पे मरकूज है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 अपने इख्तितामी मराहिल के करीब हैं। अमेरिका में टूर्नामेंट के सेमीफाइनल्स मुकाबले जारी हैं और इस हवाले से हम दीगर बातें करेंगे। देखिए, जब हम सुर्खियां अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं तो एक खेल की खबरें भी शामिल होते हैं, उसमें भी हम इसका जिक्र करते रहेंगे डिटेल के साथ।
1: यहाँ इंग्लैंड और भारत के दरमियान जो है वनडे इंटरनेशनल सीरीज भी जारी है,
0: बिल्कुल, जिसमें एस्बस्टन में दोनों टीमें आमने सामने मध्य मुकाबल हैं। अब किसका पलड़ा भारी रहेगा वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और ये भी है कि हंगरी के शहर बुडापेस्ट में वर्ल्ड एक्वेटिक्स चैंपियनशिप का बाकायदा आगाज हो रहा है।
1: बर्तानिया के इलाके साउथ पोर्न में द ओपन चैंपियनशिप के लिए जो है
0: प्रैक्टिस सेशन जारी, यही कह सकते हैं कि मुख्तलिफ खेलों में सरगर्मियां जारी हैं और कुछ खिलाड़ियों ने तो नाम कमाया है। अगर हम बात करते हैं फीफा वर्ल्ड कप की दिग्गज खिलाड़ी है जो अपना इस वक्त जलवा दिखा रहे हैं, ओडीआई की बात करें तो हिंदुस्तान की जो क्रिकेट टीम है उसमें भी माया नाज खिलाड़ी हैं। अगर हम कश्मीर की बात करें, यहाँ से भी कुछ खिलाड़ी बहुत आगे जा चुके हैं, बहुत आगे जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन जब हम खेलों की बात करते हैं, कश्मीर में भी अब बहुत सारे खेल बच्चे अपना रहे हैं। लड़कियों की बात करें वो भी मुख्तलिफ गेम्स में जा रही हैं, मार्शल आर्ट्स में जा रही हैं। लेकिन अभी भी ज़हूर किसी भी सड़क से आप जाइए, बच्चे खेल रहे होते हैं क्रिकेट।
1: ये खासकर दी इलाकों में देखने को मिलता है,
0: बिल्कुल,
1: बच्चे
0: बिल्कुल
1: जो हैं रोड्स पर खेलते हैं,
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि अभी दी इलाकों में जो है ये स्पोर्ट्स का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर उतना डेवलप नहीं हुआ है,
0: ये पार्क्स या पार्क्स अवेलेबल नहीं है बच्चों के लिए या मैदान उनके लिए नहीं है। लेकिन ये जो सड़कों पे क्रिकेट खेली जाती है ना, बचपन में जो आखासा ये अक्षो या गरि पन्नस आंगनस मे गिंदान या सड़क पे ना अत पन्न अलग मजे, मगर ये बच बूढ़ कोशिश गि रोजन की जब हम बात करते हैं नशा मुक्त भारत की, वो तभी हो सकता है जब ये सोन बचे पढ़ाई सत्य बाकी गेमन सवर रोज दिमाग।

0: चिनार की छांव तले किताबों का एक खूबसूरत जहां आपका इंतजार कर रहा है। आइए तीसरे चिनार बुक फेस्टिवल में, जहां मिलेंगी इंग्लिश, हिंदी, उर्दू और अन्य भारतीय भाषाओं के 200 से अधिक बुक स्टॉल्स, साथ ही क्रिएटिव वर्कशॉप्स बच्चों के लिए, लिटरेरी सेशंस, डिजिटल रीडिंग कॉर्नर और कल्चरल परफॉर्मेंसेस का लुत्फ उठाइए। 18 से 26 जुलाई SKICC श्रीनगर। चिनार बुक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया इन कोलैबोरेशन विद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर। टुगेदर वी रीड, टुगेदर वी लीड।
1: आकाशवाणी श्रीनगर आप तक पहुंच रहा है एक नए रंग, नए आहंग और नई लय के साथ।
2: पल पल जाऊं मैं तोरे रंग रजमा।
3: जिंदगी से जुड़े हर एक शोबे की मुफीद जानकारी।
4: सब्र रोशित सुलुम।
3: सुनते रहिए हमारी नशरियात
1: दुनिया के किसी भी कोने में, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और वेव्स OTT के जरिए।
5: जी जहां जाइएगा हमें पाइएगा। लाइव शो प्याम सुब जारी है, आपके साथ है आपकी मेजबान सकीना और मेरे साथ हैं
6: जोहर अहमद।
5: जोहर, हम बात कर रहे थे कि आज वेडनेसडे है, बुध का दिन है, खेलों के हवाले से बात होती है। हर दिन वक्त मुकर्रर होता है कि थीम होता है किस दिन क्या बात करनी है मैक्सिमम। तो अपने दोस्तों को बता दें कि फीफा वर्ल्ड कप जा रही है। सबकी नजरें इस पे मरकूज है। तो सुनने वालों को बता दें कि कल स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हरा कर अब फाइनल में जगह बना ली है। और
6: अभी जो है दूसरा सेमीफाइनल चलेगा इंग्लैंड और
5: अर्जेंटीना के बीच, और डिसाइड होगा कि फाइनल स्पेन के साथ कौन खेलेगा। और ये खबर भी शेयर करेंगे, अगर हम क्रिकेट के हवाले से बात करें तो भारत ने 3 मैचों की वनडे सीरीज के पहले मैच में इंग्लैंड को 6 विकेट से हरा दिया। तो ये खेल खबर, हम खेलों की बात कर रहे थे, बच्चों की बात कर रहे थे, पढ़ाई के साथ साथ एक्टिविटीज होनी चाहिए।
6: आज जो है वर्ल्ड यूथ साइकिल्स डे मनाया जा रहा है।
5: ये देखिए, ये आपने अच्छी बात इसको कनेक्ट किया इसके साथ, खेलों के साथ। ये दोस्तों को बता दें कि आज के तरक्की याफ्ता मुआशरे में सिर्फ नसाबी तालीम को कामयाबी का मयार नहीं समझा जाना चाहिए, जो यूजुअली होता है हमारे घर में। तो चाहिए डॉक्टर बनुन, तो चाहिए इंजीनियर बनुन, बच तो मन से फ्रस्ट्रेट गसान तेमस मन चु आसान स्किल या ड्राइंग मन या पेंटिंग बदल का चीज या
6: डेवलप ही गसान
5: डेवलप ही गसान तेम सुन चाह सिंगिंग है के
6: सिम साथ ने स्टोकन तेमस तात सित रंगदेशक दीवान का
5: करने तो वो
6: सुशील बद्र या सही गसान तब निश्चित दूरान से।
5: देखिए तकलीकी फनून जो होते हैं बच्चों में, ये हो सकता है कि इमसा से ये शख्सियत में एतमाद पैदा करते थे। 9 उम्र के अंदर कोई ना कोई तख्लीकी सलाहियत होती है। किसी को मुसवरी पसंद है, किसी को खताती पसंद है, किसी को खाका साजी पसंद है, किसी को दस्तकारी पसंद हो सकती है, किसी को सजावट का शौक भी हो सकता है। देखिए लड़कियां अगर है उस चुना की कूर आस गर बस इमस डून शहरुन या एमशी, ये भी आज के दौर में एक काम माना जाना चाहिए।
6: लड़कियां
5: जब हम कहते हैं कि
6: आगे आगे
5: होम साइंस या इसी करान या सच्चे कुनी होटल मैनेजमेंट इसमें क्या है डिग्री कराने के, ये भी एक काम के तौर पर हम ले सकते हैं।
6: जी,
5: और देखिए सिलाई कढ़ाई फैशन डिजाइनिंग टेक्सटाइल आर्ट

0: आज जो अभी जो है डिजिटल जमाना है, अब एआई की स्किल्स सीखें, कंप्यूटर वाली स्किल्स सीखें, बच्चों को सिखा दें, क्योंकि ये स्किल्स अभी जो है बहुत ज्यादा काम आती है बच्चों को।
1: देखिए जोर बात ये है कि हाथ से काम करने की महारत कभी पुरानी नहीं
0: कभी
1: है। हमने बच्चों को देखा है कि पढ़ाई करके देखने की बहुत ज्यादा जरूरत। देखिए सिलाई कढ़ाई क्रोशिया बुनाई पेच वर्क फैशन डिजाइनिंग ब्लॉक प्रिंटिंग ये फैब्रिक प्रिंटिंग ये ऐसे हुनर हैं ये मिस बच्चे से ताकि सुखद गए लाइफ में सारी खुद बर्ड छ इंडिपेंडेंट रोजन चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो आज दशवे बराबर शाना बशा नाम कहते हैं कि चलने की जरूरत
0: है सिकल आसी सो है कि पनन रोजगार पनन पोस कुन ते साथ जीन ते बीच सो शौक सन कराने काम ते मिस सो जन थकान मिस कि ही ये सम सिकल छ आसा इस महाराज आत्म शासन आई मिस छ नी थकान कि ही
1: बिल्कुल
0: ये छ मिस सो शौक सन कराने ओन दिमाग दिमाग छ आत सित आवर रो
1: इसको बने कि जो हमने रवायत ऐसे अख छ बनमस डॉक्टर इंजीनियर मतलब मुझे मैं पर्सनली फील करती हूँ कि इस हेको न डॉक्टर बनित क्या ना इंजीनियर इस खुदायन आसान कंसी ओरे त्रम इस वनों न कि डॉक्टर शु तो पत पत छु यो यो कामयाब शख्स
0: सही बात है
1: कि हर का पेश छु मुअत्तबर
0: सही सही
1: आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट है तथमस असल पर्दन पन्ने काम में वो भी एक महत्व
0: बड़ी बात है।
1: देखिए आपने खाना पकाने की हमने बात की खाना पकाना सिर्फ रोजमर्रा की जरूरत नहीं है बल्कि एक फन भी है इसको भी देखिए नॉर्मल लड़कियों को मुख्तलिफ सेहत बख्श खाने देखिए बेकिंग केक सजावट चॉकलेट साजी अचार जैम जूस सलाद ये भी एक प्रेजेंटेशन की जब हम बात करते हैं होटल मैनेजमेंट की बात करते हैं इसलिए पेशे के तौर पर जब हम इसको अपनाएंगे तो है कहो वनित की अगर कहां बच्चे फ्रस्ट्रेट छु गसान डॉक्टरी मस गसे ते मिछु नी समझ जवान
0: सही बात है।
1: हर एक बच्चे की सलाहियत नहीं हो सकती कि वो पास करे या इंजीनियरिंग पास करे ये ब्याह का फील्ड करे प्रेजेंटेशन मुख्तलिफ चीजों में या काम फोटोग्राफी है ऑनलाइन बिजनेस आजकल करते हैं वो भी एक मतलब हुनर के साथ बच्चा आगे बढ़ सकता है। इतने कन्वोनस मूसीकी छे खताती छे फोटोग्राफी छे दीगर फनों ने लतीफा है तो कोशिश कीजिए स्किल्स की जब हम बात करते हैं आपने कहा कि आज इसका दिन है ये बच्चों में आप जो ये ठोसते हैं कि ये मैनकोर पेरेंट्स ने जो नहीं किया आप चाहते हैं कि आपका बच्चा करे
0: या जिसमें अभी लोग मतलब जो ज्यादा चल रहा है वही करो डॉक्टर बनना है
1: आप फिर सारे उसी की तरफ
0: सारे लोग डॉक्टर बन रहे हैं आप भी बन जाओ।
1: देखिए हाल ही में नीट के
0: चाहे वो बन पाए या ना बन पाए
1: देखिए नीट के एग्जाम्स थे हमने देखा कि बच्चों को आठ मिनट से पेरेंट ने भी खुदकुशी की बच्ची ने भी खुदकुशी क्यों हमें क्यों लगता है तेमिस बच्ची क्या इस बात की मेन जिंदगी बस उतनी तान गेट को बांध
0: बस सही बात है
1: क्योंकि ये प्रेशर है वालदेन का पेरेंट्स तो सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे न्यूज आई उससे पहले भी एक लड़की ने खुदकुशी की क्यों
0: क्योंकि उन्हें लगता है कि इस
1: प्रेशर है समाज का प्रेशर है पेरेंट्स का प्रेशर है बहुत सारे एवेन्यूज है बहुत सारे जॉब्स है इंडिपेंडेंट जब आप रहेंगे को ये वनित कि पानस सीते को बाकी दहान इस रोजगार
0: सही बात है
1: कि जब आप ये काम अपनाएंगे उस पूछो कशीर में मुमकिन जब हम टेलरिंग की बात करते हैं सारी नेबरिम लग रहा है सारी नेबरिम ये तो चुन कहा अडोप्टे करान ये क्यों बिजनेस इसमें जब आप अमेंडमेंट करेंगे ये पत के पलो यो सुन कपड़े वहां पे रख सकते हैं दीगर फैशन डिजाइनिंग के तौर पे आप उस वेंचर को बढ़ा सकते हैं इथे कंच बाकी काम ये मने इस करनी चाहिए
0: आसान
1: तो पेरेंट्स से गुजारिश है
0: पनन बचन दिवा करना ही
1: उसमें ये बड़ी वजह यही है कि हमने कुछ शोबे कुछ फील्ड्स मुंतखब करके रखे हैं जहन में बचपन पान पढ़े बच्चा सोचे के बन सोचे डॉक्टर बन सोचे इंजीनियर बन तो बच्चा से सो प्रेशर यहां ये पत सु पत फरार वो चाहता है या तो पत कर सो ड्रग्स इस्तेमाल या पत कुछ जाए साइड पठा सामभेद सुचन पत सु दिलचस्पी सन पढ़ाई
0: करित के सही बात है।

0: जी कहीं करती होगी वो मेरा इंतजार। मुकेश की आवाज में गीत था, सुबह सुबह ये गीत चला तो जोहर मुझे कह रहे थे कि बहुत ही प्यारा गीत है। देखिए ये कुछ लेजेंडरी सिंगर्स है और ऐसे मकबूल तरीन गीत बहुत सारे हैं, हम कोशिश करते हैं कि खोज खोज करके आपके सामने वो पेश करें। आपके लिए हम कहते हैं कि जो आपकी मॉर्निंग है वो बेहतर रहे और काम करने में आपको मजा आए। और
1: जी सकीना जी, एक बहुत बड़ी बात जो है, बहुत बड़ा इशू है कि लोग अपने बच्चों को प्रेजेंट नहीं कर रहे, वो इंटरेक्ट नहीं करवा देते,
0: इंटरेक्शन में शामिल नहीं करवा,
1: सामने नहीं लाते।
0: अच्छा, आपके कहने का मतलब है कि मैंने भी अक्सर ये देखा है कि जब घर में कोई मेहमान आता है, यूजुअली हमारे समाज में या कश्मीरी घरों में ऐसा होता है कि जब तक हम सर्व ना करें कुछ या देखिए, ये सबसे बड़ी बात उस वक्त आपको याद रखनी है कि पहली दफा जब आप बच्चे को रोकते हैं उसको जिंदगी में आगे बढ़ने का या बात करने का मौका कब मिल सकता है?
1: मिल सकता है।
0: अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा तरक्की करे, बाहर जाए, ये बने वो बने, ये नियम इंटरेक्टिव को सिद्ध कर तो ये क्या करे? उस वना यूजुअली कि मैं शुभ बच्चे ये जिम्मा मायने दत की
1: नहीं डरना चाहिए। बोलेगा भी, अगर बोलेगा भी ये बच्चा है, जब ये बड़ा हो जाएगा तब गलतियों की गुंजाइश ज्यादा नहीं रहती, तब लोगों को इनकी गलतियां वो नोटिस करेंगे।
0: बेश अक्सर हम जब कोई मेहमान आता है बचस मन छसा क्या खूबी जरा वो गाओ जरा ऐसे करो, नहीं करना चाहिए। बच्चे को खुद खुलने दीजिए, बच्चे तिम्स बनवा सो कशिर पर बजर बटू पापेट कि ऐसा बोलो इसने इसके वना आप, उससे बच्चे की नफ्सियात पे असर पड़ सकता है। बच्चे को खुद खुलने दीजिए, कोई मेहमान आता है उसको इंट्रोड्यूस करवाइए, ये मेरा फ्रेंड है, ये हमारा रिश्तेदार
1: ले जा रहे हैं, उन्हें सिखा दो, उन्हें बताओ ये है, ये ऐसा काम कर रहा है, ये काम कर रहा है,
0: बिल्कुल
1: ये चीज ऐसी है, ये चीज वैसी, उन्हें सिखा दो चीजें, दिखा दो उन्हें दुनिया, वो खुद सीख जाएंगे,
0: खुद सीख जाएगा। पहली गलती से वो आगे वो दूसरी गलती मुझे लगता है कि नहीं दोहराएगा।
1: जी, जी जी,
0: जब वो बंद रहेगा, मेहमान आएगा आप उसको साइड में रखेंगे, युद्धकाल चाय सर्व करो, युद्धकाल कहेंगे तो तत्म अच्छी बी यूजली आमुद की बच गसान चाय छ पची मोज मांगे बिस्कुट, अरे ये एक बचपन है,
1: जीने दो इसे,
0: जीने दो इसे, बच्चा मांगे

0: करिएगा, बेक्या करिए, बच्चे की एक्टिविटी उसी से सुधर जाएगी। और सबसे बड़ी बात, हम बच्चों की जब बात करते हैं, अब चूंकि बच्चों की छुट्टियां भी चल रही है, अब कुछ लोग कह रहे हैं कि मौसम अच्छा था, छुट्टी नहीं होनी चाहिए थी, अब जो हो गया छुट्टियां हो गई, अब माशाल्लाह वो खेल भी रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं। अब दूसरी बात है कि सिलेबस इतना घरों में पहुंचा कि छुट्टी क्षण तीसरा किया, ये सब अर्जन सिलेबस, उसकी तरफ भी ध्यान देने की बहुत ज्यादा लोड़ है, ध्यान देने की जरूरत है। और पेरेंट्स से गुजारिश हम कर रहे हैं, देखिए सब पेरेंट्स अफजल है, हम नहीं कहेंगे कि हम कुछ उनको सिखा रहे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि माँ जाने अनजाने में, पेरेंट्स जाने अनजाने में वो कुछ कह देते हैं जो बच्चे की नफ्सियात पे असर डालते हैं। हमेशा अपने बच्चों को हर चीज से बढ़कर सबसे आगे रखो
1: जी,
0: उन्हें प्यार करो, उनकी ख्वाहिशात पूरी करो, क्योंकि उनका बचपन ही उनकी पूरी जिंदगी की बुनियाद बनता है। क्या करे पतशेर में क्यों बचपन, तो सबसे बड़ी बात है वो हमेशा ये आपकी एक्टिविटीज याद रखेगा। और ये है कि आपने उनके साथ जो वक्त गुजारा, उनके साथ जो शेयर किया, उनको जो दिया, ये साल सबसे ज्यादा एक बच्चे के लिए अहम होते हैं। उन्हें ये एहसास दिलाओ कि आप ये जो बच्चे हैं पेरेंट्स की सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। और पर बड़े होके फिर जताना हमने ये किया हमने वो किया, देखिए ये सब अपना अपना बच्चा अपनी किस्मत लेके आता है, अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, आते रहते हैं, मुश्किलात आते रहते, लेकिन वहां पे भी संभालने का काम पेरेंट्स का ही होना चाहिए।

मुदसिर मकबूल और साथी छकुत्रो पेश करेंगे सुबह 11:30 बजे, दोपहर 2:30 बजे और सपहर 4:30 बजे। बजमिल स्वारस्तों की 12:40 पर मेहमान है डॉक्टर शहजादा सलीम। मौजू है वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे। एनसीईआरटी का स्पॉन्सर प्रोग्राम पेश होगा 1:10 पर। पहाड़ी प्रोग्राम सुपहर 4 बजे और गोजरी प्रोग्राम रोज की तरह नष्ट होगा 5:00 बजे। देहाती भाई अपना प्रोग्राम समाप्त करेंगे 6:10 पर। इसमें मामूल की नशरियात के अलावा बच्चों की महफिल होगी फॉलोइंग टूर। हालात हाजरा की जानकारी प्रोग्राम शहरबीन में मिलेगी 7:00 बजे। रात 8 बजे प्रोग्राम वादी की आवाज नशर होगा। रात 8:30 पर जिला नामा नशर होगा। शब 10 बजे गजलों का फरमाइशी फोन प्रोग्राम पेश होगा हेलो महफिल गजल, मेजबा फरजाना। समय यह है तफसील हमारे आज नष्ट होने वाले प्रोग्रामों की।

0: एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता लागू, लगभग 99% भारतीय निर्यात पर शुल्क नहीं। केंद्र ने पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विकास के लिए 8,500 करोड़ रुपए से अधिक के पैकेज की घोषणा की। महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंडों की नीलामी का 8वां चरण आज से। होर्मुज में जहाजों पर ईरानी हमलों के जवाब में अमरीका ने ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी फिर शुरू की। फ्रांस को हराकर स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में, दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड और अर्जेंटीना का मुकाबला आज, और भारत ने पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज लागू हो गया है। इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा समझौता भी प्रभावी हो गया है। नई दिल्ली में कल वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि यह समझौता भारत और ब्रिटेन के बीच

0: द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों में एक नई शुरुआत करेगा।
1: यह भारत के सबसे महत्वाकांक्षी मुक्त व्यापार समझौतों में से एक है। इस समझौते में परंपरागत टैरिफ उदारीकरण से कहीं आगे बढ़कर सरकारी खरीद, लघु तथा मध्यम उद्यम, नवाचार, श्रम, रोजगार और लैंगिक समानता जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि समझौते से ब्रिटेन में भारत के निर्यात के लिए नए अवसर खुलेंगे।
2: ये समझौता लोगों के हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिससे समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन के एक साथ लागू होने से भारत के निर्यात के लिए नए अवसर खुलेंगे। इस समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यातकों को ब्रिटेन में कई प्रमुख क्षेत्रों में शुल्क पूरी तरह समाप्त होने का लाभ मिलेगा। प्रोसेस्ड फूड उत्पादों पर 70% तक, समुद्री उत्पादों पर 21% से अधिक, इंजीनियरिंग के सामान और ऑटो कॉम्पोनेंट पर लगभग 18%, चमड़े और फुटबियर उत्पादों पर 16% तक तथा वस्त्र और परिधान पर लगभग 12% तक लगने वाला शुल्क घटकर अब 0 हो जाएगा। इससे ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा विनिर्माण क्षेत्र को नए अवसर मिलेंगे। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विग्नयनी पांडे।
0: भारत मालदीव मुक्त व्यापार समझौता वार्ता का पहला दौर सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। ये द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को विस्तार देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भारत मालदीव का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार पिछले वर्ष $771 मिलियन से अधिक का था। प्रस्तावित समझौते से दोनों देशों में सतत आर्थिक विकास में योगदान देकर आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करने की संभावना है। भारत आज से हैदराबाद में ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। 2 दिन की इस बैठक में ब्रिक्स देशों के श्रम और रोजगार मंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। बैठक में सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने, श्रम क्षेत्र को अधिक व्यवस्थित बनाने और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। इस दौरान रोजगार कार्य समूह द्वारा तैयार मसौदा घोषणा पत्र पर भी विचार किया जाएगा। बैठक का उद्देश्य ब्रिक्स देशों के बीच श्रम नीतियों, कौशल विकास, श्रमिक कल्याण और समावेशी रोजगार के क्षेत्र में सहयोग मजबूत करना है। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विकास के लिए 8,500 करोड़ रुपए से अधिक के पैकेज की घोषणा की है। कोलकाता में कल कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। एक रिपोर्ट।
3: बैठक के बाद केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विकास के लिए 8,500 करोड़ रुपए से अधिक की मंजूरी दी है। राज्य सरकार के अंशदान के साथ अगले वर्ष मार्च तक पंचायत के माध्यम से 12,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किया जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार के लक्ष्य ग्रामीण रोजगार की अवधि को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करना है। साथ ही VVG रामजी अधिनियम 2025 के तहत नए ग्रामीण रोजगार ढांचे को लागू किया जाएगा, जिसमें ग्रामीण परिसंपत्तियों के निर्माण पर विशेष बल दिया जाएगा। बैठक में सड़क, रेलवे, मेट्रो, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, कोयला तथा श्रम क्षेत्रों के 82,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 19 प्रमुख परियोजनाओं को भी समीक्षा की गई। संदीप दास गुप्ता, आकाशवाणी, कलकत्ता।
0: कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी आज नई दिल्ली में महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंडों की नीलामी के 8वें चरण की शुरुआत करेंगे। इनमें 9 राज्यों की 20 महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंड शामिल हैं। इन खनिजों में मॉलिब्लेडेनम, ग्रेफाइट, ग्लूकोनाइट, दुर्लभ पृथ्वी तत्व, टाइटेनियम, टंगस्टन, पोटाश, लिथियम, सीजियम और रुबिडियम शामिल हैं। नीलामी के 7 चरण पूरे होने के साथ मंत्रालय ने 88 महत्वपूर्ण खनिज खंडों में से 56 की सफलतापूर्वक नीलामी की है। मंत्रालय ने कहा है कि खनिज क्षेत्र ने पिछले वित्त वर्ष में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है, जिसमें 212 खनिज खंडों की सफलतापूर्वक नीलामी हुई है। ये नीलामी प्रणाली की शुरुआत के बाद से किसी भी वित्तीय वर्ष में सबसे अधिक है। इसमें 22 महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंड शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
4: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों पर ईरान के हालिया हमलों के जवाब में अमरीका ने ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी फिर शुरू कर दी है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अन्य देशों के लिए होर्मुज का रास्ता खुला है, लेकिन ईरान के लिए रास्ता बंद रहेगा। श्री ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अमरीका आज रात ईरान पर हमला करने वाला है। उन्होंने कहा कि जब तक ईरान बातचीत के लिए तैयार नहीं होता, तब तक अमरीका उसके सभी बिजली संयंत्रों और पुलों को निशाना बनाएगा। इस बीच ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने बड़े पैमाने पर हमले करते हुए बहरीन में हथियारों और भंडारण केंद्रों को निशाना बनाया है। भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कल होर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई।
2: पश्चिम एशिया में हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
1: होर्मुज जलडमरू मध्य में दो व्यापारिक जहाजों पर हुए हमलों के बाद पश्चिम एशिया में समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने प्रभावित क्षेत्र में काम कर रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए व्यापक पहल शुरू की है।
3: पश्चिम एशिया में समुद्री सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए नई दिल्ली में उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालय बैठक की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने क्षेत्र में संचालित प्रत्येक भारतीय नाविक की जहाजवार वास्तविक समय में निगरानी और प्रभावित प्रत्येक भारतीय नाविक के लिए समर्पित संपर्क अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय को विदेश मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारतीय नौसेना, डीजी शिपिंग तथा ईरान और ओमान स्थित भारतीय मिशनों के साथ 24 घंटे समन्वय बनाए रखने का भी निर्देश दिया। श्री सोनोवाल ने डीजी शिपिंग को फारस की खाड़ी, होर्मुज जलडमरू मध्य और ओमान की खाड़ी में संचालित सभी जहाजों पर तैनात भारतीय नाविकों की निगरानी के लिए एक परिचालन डैशबोर्ड स्थापित करने के निर्देश दिए। उन्होंने नौवहन सुरक्षा, चिकित्सीय निकासी और स्वदेश वापसी से संबंधित जानकारी के लिए निरंतर समन्वय बनाए रखने को भी कहा। केंद्रीय मंत्री ने जहाज मालिकों, पोत प्रबंधकों और भर्ती एजेंसियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि किसी भी भारतीय नाविक को पर्याप्त जानकारी, सुरक्षा और सहायता के बिना यात्रा के लिए बाध्य न किया जाए। रोहन के साथ सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की सुप्रसिद्ध रथ यात्रा शुरू होने जा रही है।
4: पवित्र शहर में जय जगन्नाथ के मंत्र गूंज रहे हैं और पूरी कल भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन की भव्य रथ यात्रा देखने के लिए तैयार है। ये दुनिया के सबसे बड़े और सबसे सम्मानित धार्मिक त्योहार में से एक है। ये सालाना यात्रा भाई बहन देवताओं की श्री जगन्नाथ मंदिर से श्री गुंडीचा मंदिर तक की दिव्य यात्रा का प्रतीक है। भक्त श्री गुंडीचा मंदिर को मौसी माँ यानी भगवान की मौसी का घर मानते हैं। इस पवित्र रथ उत्सव में शामिल होने के लिए देश विदेश से लाखों श्रद्धालु पूरी पहुंचे हैं। तीन भव्य रथ, नंदीघोष, तालध्वज और दर्प दलन को खूबसूरती से सजाया गया है और वे मंदिर के सिंह द्वार के सामने खड़े होने के लिए तैयार है। पूरी के गजपति महाराजा दिव्य सिंह देव सोने की झाड़ू से रथ के मंच की सफाई करेंगे, जिसके बाद भक्त रथ को ग्रैंड रोड पर खींचेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। अमेरिका के डेलस में कल पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हरा दिया। फाइनल में स्पेन का मुकाबला अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच आज अटलांटा में होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। भारत ने इंग्लैंड को पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 6 विकेट से हरा दिया है। बर्मिंघम में कल इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते

0: हुए 258 रन बनाए। जवाब में भारत ने 45वें ओवर में 4 विकेट पर 262 रन बनाकर विजयी लक्ष्य हासिल कर लिया। कप्तान शुभमन गिल ने सर्वाधिक 80 रन बनाए। अक्षर पटेल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच कल कार्डिफ में खेला जाएगा। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
1: धन्यवाद मुकेश। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध तेज होने की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, होर्मुज पर हक की जंग तेज, अमेरिका ने परमाणु संयंत्र वाले शहर बुशहर पर बम बरसाए, ईरान का बहरीन और जॉर्डन पर हमला, नाकेबंदी पर बड़े देशों ने जताई नाराजगी, चीन ने की सुरक्षित आवाजाही की अपील, कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल। वहीं नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, ईरान के हमले में एक की मौत, भारत ने किया विरोध, होर्मुज में 2 तेल टैंकरों पर अटैक, ईरान के दूत को किया तलब। पत्र के अनुसार होर्मुज में 20% शुल्क से पीछे हटे ट्रंप, कहा अब ट्रेड डील होगी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, गुलाम जम्मू कश्मीर में 9 प्रदर्शनकारियों की मौत, भारत ने जोर देकर कहा नागरिकों पर दमन और बुनियादी अधिकारों के उल्लंघन के लिए पाकिस्तान जवाबदेह है। पत्र के अनुसार पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी। अमर उजाला ने पहली बार पहली जीत शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, लॉर्ड्स के 142 साल के इतिहास में यहां खेले गए पहले महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत की जीत का महत्व, इससे समझा जा सकता है कि जहां भारतीय पुरुष टीम को यहां पहली टेस्ट जीतने के लिए 54 साल का इंतजार करना पड़ा था, वहीं महिला टीम ने पहले ही प्रयास में ये करिश्मा कर दिखाया। राजस्थान पत्रिका का शीर्षक है, पहली बार तिमाही में 4,000 करोड़ रुपए का कारोबार पार, इंडिया पोस्ट ने रचा इतिहास। पंजाब केसरी की सुर्खी है, नासा की अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन की अंतरिक्ष यात्रा शुरू।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता लागू, लगभग 99% भारतीय निर्यात पर शुल्क नहीं। केंद्र ने पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विकास के लिए 8,500 करोड़ रुपए से अधिक के पैकेज की घोषणा की। महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंडों की नीलामी का 8वां चरण आज से। होर्मुज में जहाजों पर ईरानी हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी फिर शुरू की। फ्रांस को हराकर स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में, दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड और अर्जेंटीना का मुकाबला आज। और भारत ने पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी का ये श्रीनगर स्टेशन है, मीडियावेव के अलावा FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर, और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम पयाम सुबह।
3: हमारी जिंदगी के लिए जरूरी मालूमात,
4: माहिरीन की आरा, तजुर्बात और रहनुमाई,
5: उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्सक्लूसिव फंडिंग रखी है और स्टेट गवर्नमेंट ने न कि इसको एक्नॉलेज किया, इसको चैनलाइज किया, अपनी तरफ से अच्छा खासा पैसा डाला हुआ है।
3: सेहत के मशवरे,
6: ऑर्थोपेडिक कुन तकलीफस मंज ब्रॉडली करन क्लासिफाई इनटू सम ग्रुप्स,
3: साइंसी मालूमात और रोजमर्रा के मुफीद नुकात
4: जो आप तक पहुंचेंगे एक मौसर और बावकार अंदाज में।
3: आकाशवाणी श्रीनगर का मॉर्निंग लाइव शो पयाम में सुबह।
4: इल्म और आगही का संगम हर रोज सुबह 7:10 से 11:30 तक पयामे सुबह।
3: मीडियम वेव 268.81 और FM 103.5 MHz पर पयामे सुबह।
7: पयामे सुब लाइव शो बचस्तु हूँ मेजबान सकीना तुम्हें सच्चे।
2: ظہور احمد
3: ظہور ٲسۍ انتظار کران کہ بٕے ہیٚمہٕ ناو مگر بہٕ ٲسٕس انتظار کران کہ ظہور وۄنۍ پانے ناو ییٚتٮ۪تھ وَنو بوزن والٮ۪ن یہِ کہِ وق چھُ کٲشِر موسیقی بوزناوو تۄہہِ کیازِ کہِ صُبحنس چھِ

0: समय पैम सुबह जारी है। पहले सुनते हैं आकाशवाणी दिल्ली से खबरनामा।
1: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। भारत बरतानिया जामे इक्तसादी व तिजारती मुआहदे पर अमल दरामद शुरू हो गया है। इसके तहत भारतीय बरामदात की तकरीबन 99% अशिया महसूल से आजाद रहेंगी। मरकज ने मगरबी बंगाल में देही तरक्की के लिए 8,500 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया है। हुकूमत आज अहम और दिफाई नौइयत की मादनियात के ब्लॉकों की नीलामी के 8वें मरहले का आगाज करेगी। अमरीका ने आबनाए हुरमुज में कमर्शियल जहाजों पर ईरानी हमलों के जवाब में ईरानी बंदरगाहों की एक बार फिर नाकाबंदी कर दी है। फुटबॉल में स्पेन फीफा आलमी कप के फाइनल में दाखिल हो गया है। उसने फ्रांस पर 2-0 से जीत हासिल की। दूसरे सेमीफाइनल में आज रात अर्जेंटीना का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। और क्रिकेट में एडबेस्टन में 3 मैचों की सीरीज के पहले ओडीआई में भारत ने इंग्लैंड को 6 विकेट से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। भारत और बरतानिया के दरमियान जामे इक्तसादी व तिजारती मुआहदा आज से अमल में आ गया है। इसके साथ साथ गुजर बसर से मुतालिक समझौता दोहरे ताउन का कन्वेंशन DCC भी नाफिज हो गया है, जिसके तहत बरतानिया में भारतीय पेशावर अफराद की आमद रफ्त और मुसाबकत को इस्तेहकाम हासिल होगा। इस अहम समझौते के तहत भारत के बरामदकारों को बरतानिया की मार्केट में 99% अशिया पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा।

0: से भारत और बरतानिया की दिफाई शराकत दारी को गहरा करने और दोनों मुल्कों के आवाम में मजीद खुशहाली लाने के मुश्तरका अज़्म का इजहार होता है। नई दिल्ली में नामानिगारों से बात करते हुए तिजारत के सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल ने भारत बरतानिया जामे इक्तसादी व तिजारती माहदे को भारत के तिजारत के सफर में एक अहम संग मील करार दिया। उन्होंने कहा कि इस समझौते से दो बड़ी मईशतों के दरमियान मुस्तकबिल के लिए ताबनाक इक्तसादी शराकत दारी को इस्तेहकाम हासिल हुआ है। दोहरे तआवुन के कन्वेंशन DCC का जिक्र करते हुए जनाब अग्रवाल ने कहा कि इस बंदोबस्त से बरतानिया में भारत के पेशावर अफराद और उनके आजिरों को फायदा हासिल होगा। ज़िराअत और देही तरक्की के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कल कोलकाता में एक आला सतह की मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में मगरबी बंगाल के वजीर आला स्वयंदु अधिकारी, रियासती काबीना के अरकान और मरकजी व रियासती सरकार के सीनियर अफसरान ने भी शिरकत की। जनाब चौहान ने ऐलान किया कि मरकज ने मगरबी बंगाल में देही तरक्की के लिए 8,500 करोड़ रुपए से ज्यादा रुपए की मंजूरी दी है। तफसील हमारे नामानिगार से।
1: मीटिंग में सड़कों, रेलवे, मेट्रो, पेट्रोलियम, कुदरती गैस, कोयले और मेहनत के शोबों में 82,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के बुनियादी ढांचे से मुतालिक 19 बड़े प्रोजेक्टों का जायजा लिया गया। जमीन को कब्जे में लेने, बाजाबादकारी, जंगलात से मुतालिक मंजूरियों और बैन महकमा जाति तालमेल से मुतालिक मामलात को हल करने की हिदायत दी गई ताकि प्रोजेक्टों को बरवक्त मुकम्मल किया जा सके। मरकजी वजीर ने अमल दरामद में तेजी लाने के लिए प्रोजेक्टों पर नजर रखने के रियासती सतह के ग्रुप कायम करने की भी तजवीज रखी। वजीर मौसूफ ने फसलों में तनवो लाकर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को तोसी देकर किसान क्रेडिट कार्ड की तादाद में इजाफा करके कुदरती ज़राअत, डिजिटल एग्रीटेक और गज़ाइयत में इजाफे के प्रोग्रामों को फ़रोग देकर ज़राअत को मुस्तहकम बनाने के इकदाम का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मगरबी बंगाल की तरक्की को रफ्तार देने के लिए मरकजी और रियासती मिलकर काम करेगी। कोलकाता से संदीप दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फैसल खान।
0: कोयले और कानों के मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी आज नई दिल्ली में अहम और स्ट्रेटेजिक मादनियाती ब्लॉक्स की नीलामी के 8वें मरहले का आगाज करेंगे। कानों की वजारत ने कहा है कि ये नीलामी 9 रियासतों में वाकई 20 अहम और स्ट्रेटेजिक मादनियाती ब्लॉक्स के लिए होगी, जिनमें 13 नए निशानजद ब्लॉक्स और दूसरी मरतबा पेश किए जाने वाले 7 ब्लॉक्स शामिल हैं। ये मादनियात साफ सुथरी तवानाई, जदीद मैन्युफैक्चरिंग, खाद, दिफा और दीगर स्ट्रेटेजिक शोबों के लिए अहमियत के हामिल हैं। वजारत ने नीलामी के 7 मरहलों की तकमील समेत 88 अहम और स्ट्रेटेजिक मादनियाती ब्लॉक्स में से 56 की नीलामी कामयाबी से मुकम्मल कर ली है। इस तरह 63% से ज्यादा कामयाबी हासिल कर ली है। भारत आज से हैदराबाद में मेहनत और रोजगार के ब्रिक्स वुजरा की 12वीं मीटिंग की मेजबानी करेगा। इस 2 रोजा मीटिंग में ब्रिक्स रुकन ममालिक के मेहनत और रोजगार के वुजरा और सीनियर अफसरान यकजा होंगे। भारत की ब्रिक्स सदारत, जिसका उन्वान है लचक, जिद्दत तराजी, इश्तराक और पायदारी की तामीर के लिए, के तहत ये इज्तिमा होगा। मेहनत और रोजगार के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया मीटिंग की सदारत करेंगे। इस दौरान वुजरा समाजी तहफ्फुज़ को फरोग देने, मेहनत की मंडियों को बाज़ाब्ता शक्ल देने, ख़वातीन की शमूलियत को बढ़ाने और अफरादी क़ुव्वत में उन्हें शामिल करने समेत 4 तरजीही मौजूआत पर तबादला ख्याल करेंगे। मीटिंग के दौरान रोजगार वर्किंग ग्रुप के जरिए तैयार करदा ड्राफ्ट एलामियों को गौर खौस के बाद अपनाया जाएगा। इस एलामिया का मकसद ब्रिक्स ममालिक में मेहनत के बाजार की पॉलिसियों, मेहनत कशों की बहबूद, हुनरमंदी के फरोग और शमूलियत रोजगार पर तआवुन को तकवीत देना है। पवित्र शहर पुरी कल से शुरू होने वाली आलमी शोहरत याफ्ता भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए तैयार है। गुज़श्ता रोज पवित्र नाबा जोबन दर्शन के बाद सालाना रथ यात्रा के लिए वसी तर इंतजामी और सिक्योरिटी इकदाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। ये सालाना मुख्तसर पड़ाव देवी देवता बहन भाइयों की श्री जगन्नाथ मंदिर से श्री गुंडीचा मंदिर तक पवित्र सफर की अलामत है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अजीमुशान रियासती सतह के प्रोग्राम में नौजवानों की हुनरमंदी का आलमी दिन मनाया जाएगा। इस तकरीब में वजीर आला योगी आदित्यनाथ मुख्तलिफ इकदाम का आगाज करेंगे, जिनका मकसद रियासत में हुनरमंदी, रोजगार और एंटरप्रेन्योरशिप को मुस्तहकम करना है। वजीर आला हुनरमंदी की तरक्की से मुतालिक नुमाइश का भी इफ्तिताह करेंगे, जहां इख्तिराई टेक्नोलॉजी हुनरमंदी पर

0: में फाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हरा दिया। स्पेन की जानिब से माइकल ओयारज़बल ने 22वें मिनट में पहला गोल किया। इसके बाद पेद्रो पोरो ने दूसरा गोल करते हुए स्पेन की जीत यकीनी बना दी। अब इतवार की रात न्यू जर्सी के मीट लाइफ स्टेडियम में फाइनल में स्पेन का मुकाबला अर्जेंटीना या इंग्लैंड से होगा। स्पेन ने 16 साल पहले अपना पहला फुटबॉल कप जीता था। मर्दों के क्रिकेट में कल रात बर्मिंघम के एडबिस्टन में खेले गए 3 एक रोजा बैन अलावामी मैचों की सीरीज के पहले मैच में भारत ने मेजबान इंग्लैंड को 9 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही भारत ने सीरीज में 1-0 की सबकत हासिल कर ली है। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं फैसल खान।
1: शुक्रिया असलम। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के तकरीबन सभी उर्दू अखबारात ने वजारत खारजा के बयान को अवलियत के साथ शाये किया है। रोजनामा प्रताप ने सुर्खी लगाई है, हुरमुज में भारतीय शहरी की हलाकत पर भारत खफा। वजारत खारजा ने ईरानी मिशन के डिप्टी चीफ ऑफ मिशन और दीगर सिफारतकारों को तलब किया, समुद्र में जहाजों की हिफाजत को यकीनी बनाने की सलाह दी। रोजनामा इनकलाब ने अपने सफ़े अव्वल पर एक अहम खबर शाये करते हुए सुर्खी लगाई, भारत ने सलामती कौंसिल के गैर मुस्तकिल रुकन की उम्मीदवारी पेश की। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने अक़वामे मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर में भारत की दावेदारी को मजबूत तरीके से पेश किया। रोजनामा प्रताप ने एक अहम खबर को नुमाया तौर पर शाये किया है, रेलवे के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने माल बर्दारी के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए 8 नई इस्लाहात का ऐलान किया। इसी अखबार ने मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बयान को सुर्खी बनाया है, NESAC खलाई टेक्नोलॉजी को आवाम की जिंदगी से जोड़ने का अहम जरिया बन चुका है। अखबारात की कुछ अहम बैन अलाक़वामी खबरें इस तरह हैं, अब नए हुरमुज जंग या अमरीकी दबाव से नहीं खुलेगी, ईरान का बयान, अब नए हुरमुज से आमदोरफ्त पर कोई फीस या टोल कबूल नहीं, यूरोपियन यूनियन का बयान।
0: और आखिर में खास खास खबरों का खुलासा एक बार फिर, बरतानिया, भारत बरतानिया जामे इकतसादी व तजारती माहदे पर अमल दरामद शुरू हो गया है। इसके तहत भारतीय बरामदात की तकरीबन 99% अशिया महसूल से आज़ाद रहेंगी। मरकज ने मगरबी बंगाल में देही तरक्की के लिए 8,500 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया है। हुकूमत आज अहम और दिफाई नौयत की मादनियात के ब्लॉकों की नीलामी के 8वें मरहले का आगाज करेगी। अमेरिका ने आबनाए हुरमुज में कमर्शियल जहाज़ों पर ईरानी हमलों के जवाब में ईरानी बंदरगाहों की एक बार फिर नाकाबंदी कर दी है। फुटबॉल में स्पेन फीफा आलमी कप के फाइनल में दाखिल हो गया है, उसने फ्रांस पर 2-0 से जीत हासिल की। दूसरे सेमीफाइनल में आज रात अर्जेंटीना का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। और क्रिकेट में एडबेस्टन में 3 मैचों की सीरीज के पहले ODI में भारत ने इंग्लैंड को 6 विकेट से हरा दिया। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।

इसे आकाशवाणी श्रीनगर मीडियम वेव अलावा एफएम 71.5 मेगाहर्ट्ज पर समय पेशकदमत छु 65 प्रोग्राम जो और जहां और।

0: आकाशवाणी का ये श्रीनगर स्टेशन है। मीडियम वेव के अलावा एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर सुबह के 9 बजे हैं।
1: आज की सुर्खियां।
2: आज की सुर्खियां आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं होंडा, प्याजो, एक्साइड, ईशर, निसान और टीवीएस कंपनियों के बा इख्तियार डीलर कश्मीर मोटर्स, मौलाना आजाद रोड, श्रीनगर।
0: आदाब समीन, आज बुधवार है, मुहर्रम अल हराम 1448 हिजरी की 29 तारीख मुताबिक 15 जुलाई 2026 ईस्वी। श्रीनगर से शाया होने वाले आज के अंग्रेजी और उर्दू रोजनामों की सुर्खियां लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूं जहूर अहमद और मेरे साथ है सकीना राठौर।
3: जी, पहली सुर्खी अपने दोस्तों तक पहुंचाना चाहते हैं। ये उर्दू रोजनामे की शह सुर्खी है कि शौर्य विजय यात्रा नई दिल्ली से द्रास के लिए रवाना, 1900 किलोमीटर तवील मुहिम का आगाज, करगिल विक्ट्री दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के कौमी अजम की अलामत, ऑपरेशन विजय के 27 बरस मुकम्मल होने पर शहदा को खराज अकीदत, नौजवानों में हुब्बुल वतनी का पैगाम, वजीर दिफा राजनाथ सिंह।
0: मेरे हाथ में एक उर्दू अखबार है, शह सुर्खी है इसकी, नशा की आदि अफराद की समाजी और इक्तिसादी बहाली का जायजा, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सिक्किम की तैयारी में टास्क फोर्स के जामा और इश्तराई की तर्ज अमल को सराहा।
3: सीनियर नेशनल कॉन्फ्रेंस रहनुमा और साबिक वजीर डॉक्टर शेख मुस्तफा कमाल इंतकाल कर गए, सियासी और समाजी अंजुमनों की जानिब से इजहार रंज, अल्लाह ताला चचा को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, वजीर आला उमर अब्दुल्ला।
0: और इसी हवाले से एक और खबर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का इजहार रंज और लवाकिन से ताज़ियत।
3: पाकिस्तानी जेरे कब्जा जम्मू

0: कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तेहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
1: जय बाबा बसवानी के पवित्र जयकारों के साथ श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 में शामिल होने आए सभी श्रद्धालुओं का जम्मू कश्मीर प्रशासन हार्दिक स्वागत करता है।
2: ये सफर सिर्फ पहाड़ों की चढ़ाई नहीं बल्कि श्रद्धा, संयम और भक्ति का एक अद्भुत अनुभव है।
1: यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखें। यात्रा पर निकलते समय अपना RFID कार्ड अवश्य साथ रखें, क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन अनुमति संभव नहीं है। सफर के दौरान भीड़ से अलग न हो और अधिकृत रूट का ही उपयोग करें। मौसम को देखते हुए गर्म और आरामदायक कपड़े पहनें। पर्यावरण की पवित्रता बनाए भी हम सबकी जिम्मेदारी है, इसीलिए कचरा इधर उधर ना फेंकें, अपनी सेहत का खास ध्यान रखें और जरूरत पड़ने पर तुरंत मेडिकल सहायता लें।
2: जम्मू कश्मीर सरकार आपकी हर कदम पर सेवा और सुरक्षा के लिए तत्पर है। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।

0: श्री पनीर जेके स्टेशनर्स मौलाना आजाद रोड श्रीनगर।
1: चिनार की छांव तले किताबों का एक खूबसूरत जहां आपका इंतजार कर रहा है, आइए तीसरे चिनार बुक फेस्टिवल में, जहां मिलेंगी इंग्लिश, हिंदी, उर्दू और अन्य भारतीय भाषाओं के 200 से अधिक बुक स्टॉल्स, साथ ही क्रिएटिव वर्कशॉप्स बच्चों के लिए, लिटरेरी सेशंस, डिजिटल रीडिंग कॉर्नर और कल्चरल परफॉर्मेंसेस का लुत्फ उठाइए। 18 से 26 जुलाई SKICC श्रीनगर। चिनार बुक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया इन कोलैबोरेशन विद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर। टुगेदर वी रीड, टुगेदर वी लीड।
2: सुर्खियों में एक बार फिर से आपका खैर मकदम। अब कुछ बैन अवी और खेल सफात से खबरें।
3: खेल खबर अपने दोस्तों से पहुंचाना चाहेंगे। जब हम कश्मीरी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, यहाँ की स्पोर्ट्स की बात करते हैं, तो ये खबर पहुंचाना लाजमी है। जो सुबह सुबह हम बात कर रहे थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, मैदानों की कमी है, तो ये शुर्खी एक और दो रोजनामे की 650 करोड़ रुपये से जायद लागत के 570 से ज्यादा स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों पर काम जारी है। कमिश्नर सेक्रेटरी ने महकमे यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के तौसी प्रोग्राम की पहली सहमाई पेशरफ्त का लिया जायजा।
2: एक बैन अवी सुर्खी है, क्योंकि जंग के बादल जो है फिर से मंडरा रहे हैं हरमूज में। ईरान ने अपनाए हरमूज में मुतहदा अरब अमारात के टैंकरों को निशाना बनाया। एक हिंदुस्तानी की मौत, 8 मजीद अफराद जख्मी। भारत बरहम, ईरानी सफारतकारों की तलबी।
3: खेल सफे से एक और खबर, एशियाई अंडर 19 बॉक्सिंग चैंपियनशिप, 9 भारतीय बॉक्सर फाइनल में, 6 कांसी के तमगे भी पक्के।
2: ट्रंप का ईरान पर मजीद शदीद हमलों का ऐलान।
3: दुनिया के बुलंदतरीन अल्ट्रा मैराथन में भारतीय फौज के मेजर ने पहली पोजीशन हासिल कर ली।
2: और आबनाई हरमूज से ही एक और सुर्खी है। आबनाई हरमूज में 2 जहाजों के दरमियान शदीद टक्कर, ईरान ने अमले के 23 अहलकारों को बचाया।
3: अब ये खबर कि सब जूनियर और जूनियर स्विमिंग चैंपियनशिप के लिए सिलेक्शन ट्रायल्स 18 और 19 जुलाई को होंगे।
2: जी, एक और सुर्खी है, रूस ने यूक्रेन पर गिराया 3 टन का बम। यूक्रेन फौजी अड्डों को पहुंचा शदीद नुकसान।
3: आज की आखिरी सुर्खी अपने सुनने वालों तक पहुंचाना चाहेंगे, वो ये कि खेल खबर है ये, AIFF सब जूनियर गर्ल्स नेशनल चैंपियनशिप के लिए जम्मू कश्मीर अंडर 14 गर्ल्स फुटबॉल टीम की सिलेक्शन का ट्रायल्स का आगाज हो चुका है।
2: जी जी, ये थी आज की सुर्खियां।
4: की सुर्खियां आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे थे होंडा, प्याजो, एक्साइड, ईशर, निसान और TVS कंपनियों के बाइख्तियार डीलर, कश्मीर मोटर्स, मौलाना आजाद रोड, श्रीनगर।
5: हमारी जिंदगी के लिए जरूरी मालूमात,
6: माहिरीन की आरा, तजुर्बात और रहनुमाई,
7: उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्सक्लूसिव फंडिंग रखी है और स्टेट गवर्नमेंट ने न कि इसको एक्नॉलेज किया, इसको चैनलाइज किया, अपनी तरफ से अच्छा खासा पैसा डाला हुआ है।
5: सेहत के मशवरे,
8: ऑर्थोपेडिक कुछ तकलीफ मज ब्रॉडली कर क्लासिफाई इनटू सम ग्रुप्स,
5: साइंसी

0: आकाशवाणी श्रीनगर आप तक पहुंच रहा है एक नए रंग, नए आहंग और नई लय के साथ।
1: पल पल जाऊं मैं तोरे रंग में जिवा।
2: जिंदगी से जुड़े हर एक शोबे की मुफीद जानकारी।
3: सब्र रोशित सुलुन।
2: सुनते रहिए हमारी नशरियात
0: दुनिया के किसी भी कोने में, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और वेव्स OTT के जरिए।
4: लाइव प्रोग्राम पैम सुबह मुशीस तहसीद कथ करान बुश तुन मेजबान जहूर अहमद तो मे सकीना जी। सकीना जी युजन ये प्रोग्राम आसान पैम सुबह तो युजन सोन साढ़े नौ जंक आसान यह चंक ये प्रारान लुख कि बोजो कौशिर
5: मौसीकी
4: क्या मौसीकी सैन
5: प्रजनत
4: ये प्रजनान
5: सैन टठ हेको वन माइक्रोफोन हम साइड बिहित मौसीकी सठा टठ बोजन यहाँ तो अत वन जरूरी ये पान सिंगरन या गलोकार आवाज मज बच पेश कर तत् वज कोशिश कर नई सिंगर या नव कह रिकॉर्डिंग ये सपदे तम बत पेश नई सिंगर तम त
4: हौसला
5: कि आइडियल कसन हर कुन फील्डस मे आइडियल चाहे अगर सिंगरन कथ करो सिंगरस पृथ्व कमिस बूझ आव योकन या अथ लन कह नाव
4: जरूर
5: तो वे अगर नये सिंगरन कथ बत हन अस क्यू थोमुत कर सोंग दुर्जे लद्दाख सत्य तौलुक थ मगर

0: मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियाँ बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पायेदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग।
1: घर का AC हो या गीजर, वोल्टेज का हीरो सिर्फ एक BS वॉल स्टेबलाइजर्स। पावर फ्लक्चुएशन सॉर्टेड, लॉन्ग लाइफ फॉर योर अप्लायंसेस गारंटीड। BS वॉइस, दैट्स बेस्ट सर्विस। कॉल नाउ 9419001960।
2: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर, हर गली, हर कूचे तक पहुँचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तेहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
3: सूफी सदा ये प्रोग्राम जो प्रत दोह आकाशवाणी श्रीनगर पेठ सुबह 10 बजे पेठ साढ़े 10 बजे तक नश्र शब्दान वाली बोजो प्रोग्राम।

יאיור יתם דתם דידר יאיור יתם דתם דידר

0: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर हर गली हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
1: सभी प्रोग्राम बोझा सूफी सदा ये प्रोग्राम छुप्रह दो आकाशवाणी

0: वैसे ही स्कोरिंग होती है, फिर दो बंदों के बीच में फाइट होती है, एक रेड कॉर्नर होता है, एक ब्लू कॉर्नर होता है।
1: जी
0: वुशु के दो स्टाइल है, एक को हम ताउलू नाम से बोलते हैं, दूसरे को हम सनशू बोलते हैं। सनशू होता है जिसमें हम फाइट खेलते हैं, और
1: जी
0: ताउलू होता है जो स्टाइल ऐसे ही लाइक वो उसमें लाइक मेक ओवर होता है, बाकी सारे लाइक ट्रेडिशनल कपड़े होते हैं, फिर उसमें वो स्टाइल अपना दिखाते हैं अलग अलग, जैसे चान कुआन है, ताइजी कुआन है, ताइची, ऐसे ऐसे अलग अलग चीजें हैं।
1: शुरुआत कब की थी आपने? अब एज आपकी इस वक्त कितनी है जब आपने वुशो खेलना स्टार्ट किया था? आप इधर भी यंग दिख रही हैं, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ वो क्या आज थी जब आपने वुशो खेलना स्टार्ट किया?
0: अभी मैं 18 साल की हूँ, 18 ईयर्स की हूँ, एंड जब मैंने वुशो ज्वाइन किया था इट वाज बैक इन लाइक 2016-17 या उससे भी पहले, क्योंकि मैं मेरा शौक था, लाइक अच्छा लगता था खेलना, देखती थी टीवी पे ऐसे ऐसे करके तो बहुत अच्छा लगता था। फिर पापा हमें रनिंग पे ले जाते थे, मुझे भाई बहन को, फिर एक्सरसाइज करवाते थे क्योंकि उनको आदत है, वो कंटिन्यू एक्सरसाइज करते, जिम जाते थे ऐसे करके, तो उसके बाद से मुझे शौक था। लेकिन वहां पे तब मुझे नहीं पता था वुशु का कुछ भी कॉन्सेप्ट, मुझे सिर्फ इतना पता था मार्शल आर्ट्स। तो फिर मैंने कराटे ज्वाइन किया, कराटे में क्या था टच एंड बैक था, वहां पे मैंने बहुत सारा खेला, मेडल्स लिए, गोल्ड मेडल्स बहुत सारे लिए, अभी मेरे पास ऑन टोटल 120 मेडल्स है।
1: जी।
0: तो फिर जब मैंने कराटे खेला उसके बाद से थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ती गई, खेलती गई, फिर मुझे समझ आया कि मुझे कोई ऐसा स्पोर्ट चूज करना चाहिए जिसमें मेरा करियर भी सिक्योर हो जाए।
1: मुतवातिर उसी खेल में रहे आप।
0: एग्जैक्टली। तो फिर मैंने कराटे को छोड़ के वुशु ज्वाइन किया 2022 में।
1: जी
0: हाँ, तो 4 साल हो गए मुझे वुशु
1: तो
0: में।
1: स्टेट को अपने कश्मीर को कब आपने रिप्रेजेंट किया, और जो गोल्ड मेडल्स की आपने बात की वो कौन सा दिन था जब आपने पहला मेडल लाया?
0: जब मैंने पहला मेडल लाया वो था 2021 में 2RR किलो फोर्स में, चिनार प्रीमियर लीग हुई थी।
1: अच्छा।
0: जी हाँ, तो मेरा जो पहला मेडल था वो ब्रॉन्ज मेडल था, लेकिन उसकी खुशी इतनी थी कि गोल्ड से बढ़कर भी कोई खुशी, क्योंकि वो मेरा पहला मेडल था। उससे पहले मैं खेलती थी, बट मैं फाइट्स वगैरह में नहीं जाती क्योंकि घर वाले भी बोलते, मम्मा बोलती तुम छोटी हो लग जाएगी ऐसे ऐसे। बट फिर एक दिन सोचा मैं, नहीं आज तो मुझे जाना ही जाना है। फिर मैं गई वहां पे, मैंने पहली ही फाइट में नॉकआउट कर दिया लड़की को, लाइक पूरा नॉकआउट 10 सेकंड में, उसका पूरा हो रहा था, अंदर से तो बुरा लग रहा था बट पता नहीं मुझे अच्छा भी लग रहा था कि मैंने पहली पहली फाइट तोड़फोड़ से शुरू कर दी। फिर वो मेडल जीता, फिर मेरा और शौक बढ़ गया, नहीं अब और खेलना है। फिर दूसरी बार गई खेलने के लिए श्रीनगर ओपन कश्मीर में, वहां पे मैं सिल्वर जीता। उसके बाद से और गई खेलने जम्मू के लिए, वहां पे मैंने गोल्ड जीता। फिर मैं महाराष्ट्र भी गई खेलने के लिए, वहां पे मैंने गोल्ड जीता। फिर मैं उत्तराखंड गई, वहाँ गोल्ड जीता। फिर मैं पटियाला गई, वहाँ पे ब्रॉन्ज जीता। मतलब बहुत सारा ऐसे ही चलता रहा, फिर मेडल्स आते रहे, मैं खेलती गई और मेहनत करती गई, क्योंकि पहले लगता था कि इजी है, लेकिन फिर जब आगे आगे कॉम्पीट करती गई तो समझ आया कि कितना टफ है आगे कॉम्पिटिशन। ऊपर से कुपवाड़ा में वहाँ तो बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर जीरो है, क्योंकि वहाँ पे ना तो फैसिलिटीज है खेलने की ना कुछ, वहाँ पे हमें सीधे ग्राउंड में ले जाते थे, और जैसे मैं अभी काला शर्ट पहना है ऐसा मेरा चेहरा हुआ करता था सच में। किस वजह से? क्योंकि धूप में कंटिन्यूअस खेलते थे वहाँ पे। जी हाँ, सनबर्न हो जाता था और मुझे हीट स्ट्रोक्स हो जाते थे, बहुत सारी मतलब प्रॉब्लम्स होती थी। बट फिर भी लाइक मैं एक लड़की थी, सिंगल लड़की, वहाँ पे 60+ बॉयज थे प्रैक्टिस कर रहे और मैं अकेली लड़की थी। एंड फिर सोचती थी कि चलो कोई बात नहीं, क्या पता इससे किसी और को भी मोटिवेशन मिल जाए किसी दिन ऐसे ही लाइक। और लोगों का लोग जब मैं खेलती थी ना तो ये होता था कि लोग बोलते थे कि शायद ये ऐसे ही कही जा रही, इसको क्या फायदा है, लड़कियों का काम नहीं है खेलना।
1: जज करना वो मेन एक
0: बट मैंने सोचा कि नहीं, मुझे इनकी नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि मेरे घर वालों ने मुझे, पापा मम्मा ने बोला कि जस्ट गो फॉर इट, इफ यू वांट टू अचीव समथिंग जस्ट गो फॉर इट, भूल जाओ कि दुनिया एग्जिस्ट करती है। फिर जब मैं आगे बढ़ती गई तो लोगों का मतलब कभी कभी किसी पॉइंट में तो मैं इतना डिमोटिवेट हो जाती, मैं सोचती थी कि मैं छोड़ ही दूं, बट फिर हाँ एग्जैक्टली, फिर सोचती थी कि चलो कोई बात नहीं, दुनिया का आप अच्छा करो बुरा करो, आप लड़की हो आपको फिर भी जज करेंगे।
1: बिल्कुल। तो ये जो आपने बात की लड़की को जज करते हैं,
0: एग्जैक्टली
1: ऑफ द माइक हम बात कर रहे थे कि आपने कई किताबें लिखी
0: जी
1: हैं, वो खासकर ख्वातीन को मोटिवेट करने
0: जी
1: के लिए, उस बारे में हम बात करेंगे। ये म्यूजिकल जर्नी है
0: जी जी।
1: तो म्यूजिक तो साथ साथ चलेगा तो फिलहाल हम आगे बढ़ेंगे इस ट्रैक के साथ, बहुत सारी बातें सालिका के साथ
0: जी
1: करेंगे
0: जी।
2: Authentic, original, and better than our

0: जी जिन दोस्तों ने अभी अभी अपने रेडियो सेट्स ऑन किए उनको हम बता दें, बिल्कुल आप लाइव शो एंजॉय कर रहे हैं पयाम ए सुबह। आपके साथ है आपकी मेजबान सकीना और मेरे साथ आज के गेस्ट है वुशु प्लेयर सालिका तारिक। ये 18 साल के, ये कह सकते हैं कि जवानी में अभी अभी इन्होंने कदम रखा है, लेकिन इनकी शख्सियत के अभी छोटी एज है, कई पहलू है, उनसे पर्दा हटाना बहुत ज़रूरी है। पहले ही मैंने कहा कि वुशु प्लेयर की हैसियत से मैं इनको यहाँ पे बुला के लाई थी गेस्ट के तौर पे, बड़ा अच्छा लगा फ़ोन पे इनसे बात करके। लेकिन अब मैं सामने इनको देख रही हूँ, मुझे एक इंस्पिरेशन मिल रही है। जो माइक्रोफोन के उस पार लेडीज़ हैं, लड़कियाँ हैं, मैं उनसे गुजारिश करती हूँ कि सालिका को बराबर आप 11:30 बजे तक सुनिए, क्योंकि इनकी शख्सियत के इस यंग एज में जितने पहलू हैं उन पर मैं बात करूँगी। पहले सालिका, आप वुशु प्लेयर हैं, नेशनल लेवल पे आपने कब कदम रखा, क्या क्या अचीव किया, और उसके बाद आपने ख्वातिन की बात की कि मुझे काफ़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। ये होते हैं ना कि लड़की को जज किया जाता है, वहाँ क्या कर
1: जी
0: वहाँ क्या
1: बिल्कुल।
0: जख्म लागनस वहाँ गचित कहें पाद गचित कहें वहाँ क्या करिए त्यूत, मतलब हम लड़की को मानते हैं एक किचन क्वीन
1: एग्जैक्टली
0: बेका काम अगर करे टीचर वीचर बन तो
1: हाँ
0: एम्पैथिक नहीं किहन कर। लेकिन आपसे बात करके मुझे पर्सनली इतनी खुशी हो रही है, मैं चाहती हूँ कि आप बहुत एक्सेल करो अपने अपने काम में, आप
1: इंशाल्लाह।
0: राइटर भी हो, उस बारे में बात करेंगे, पहले नेशनल लेवल की बात करेंगे।
1: ओके तो जब मैं पहले पहले खेलती थी, पहले जब हमारा लाइक ऑफिशियल जो हमारे रूल्स होते हैं उसके हिसाब से वी हैव टू गो थ्रू जोनल लेवल, पहले हमें जोनल लेवल खेलना पड़ता है,
0: जी
1: फिर वहाँ पे गोल्ड लिया, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गई वहाँ पे गोल्ड लिया, फिर इंटर डिस्ट्रिक्ट में गई वहाँ पे गोल्ड लिया, फिर स्टेट पे गई वहाँ पे गोल्ड लिया, फिर नेशनल पे गई वहाँ पे गोल्ड लिया।
0: अरे क्या बात है।
1: पहला नेशनल महाराष्ट्र में खेला था सिलाद का, वहाँ पे गोल्ड लिया, उसके बाद से घर आई, फिर कंटिन्यूसली खेलती गई। घर आई 2-3 दिन बाद ही खेलो इंडिया लीग हुई 10 का दम, तो वहाँ पर मैंने पहले डिस्ट्रिक्ट में गोल्ड लिया, उसके बाद ऐसे इंटर डिस्ट्रिक्ट में गोल्ड लिया, फिर स्टेट खेला वहाँ पर भी गोल्ड लिया, फिर नेशनल खेला वहाँ पर भी गोल्ड लिया, फिर आई घर फिर प्रैक्टिस करती गई ऐसे ही। वो वाला नेशनल खेलने का उत्तराखंड में हुआ था
0: जी।
1: उसके

0: बाद से ऐसे ही कंटिन्यूस प्रोसेस के साथ डिस्ट्रिक्ट स्टेट जोनल लेवल ऐसे ही गोल्ड लेके फिर मैंने दूसरा नेशनल खेल तीसरा नेशनल खेला पटियाला में, वहाँ पे भी गोल्ड लिया। फिर वहाँ से आई मतलब ऐसे ही कंटिन्यूसली खेलती गई, फिर ब्रॉन्ज मेडल्स भी जीते नेशनल लेवल पे। उसके बाद से मैंने फेडरेशन कप में, मेरा पहला फेडरेशन कप था, वहाँ पे पार्टिसिपेट किया, वहाँ पे मैं टॉप फोर में आई। उसके बाद से मैंने ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स भी खेली, वहाँ पर भी मैं टॉप फोर में आई। उसके बाद से लाइक ऐसे ही कंटिन्यूस प्रोसेस है, अभी आई एम प्रैक्टिसिंग फॉर द इंटरनेशनल एंड इंशाल्लाह इसी साल कुछ ही महीनों में आप मुझे इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट के नाम से देखेंगे इंशाल्लाह।
1: आपकी पर्सनैलिटी वो दर्शाती है, मुझे आपका फिजिक देख के आपकी पर्सनैलिटी देख के पूरा ये लग रहा है कि सालिका का फ्यूचर बहुत ब्राइट है।
0: शुक्रिया।
1: अब करते हैं आपकी राइटर की बात।
0: जी जी बिल्कुल।
1: किसने मोटिवेट किया? आपने कहा कि खवातीन पे वो
0: हाँ
1: किताब,
0: बिल्कुल।
1: मुझे वो शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, क्या
0: देखिए जब मैं पहले पहले जाती थी तो जैसे मैंने आपको बोला लोग जज करते थे, जज ही क्या वो इतना मेंटल ब्रेकडाउन इंसान को लाइक ऐसे वो मेंटल ब्लैकमेलिंग करते थे, ये सब ताने देखिए ना। तो जब मैंने कंटिन्यूस फिर खेला, कभी मैंने आपको बोला मैं डिमोटिवेट हो जाती, छोड़ने पर मजबूर हो जाती थी, बट फिर घर वालों के सपोर्ट की वजह से मैंने सोचा कि नो लेट्स कंटिन्यू इट, क्या फ़र्क पड़ता है दुनिया से, आप अच्छा करोगे बुरा करोगे तब भी 10 लोग अच्छी बातें बोलेंगे 10 बुरी बातें बोलेंगे,
1: सही बात है।
0: तो क्यों ना हम उन 10 पे पॉजिटिव जो लोग हैं उन पे फोकस करें। एग्जैक्टली। तो फिर मैं खेलती गई, फिर जब मैंने पहला नेशनल मेडल लाया गोल्ड मेडल, जब मैं घर आई हम पहुंचे थे उस दिन 1st of January था
1: जी,
0: उस दिन डेट था 1st of January, तो मैं घर पहुंची लाइक हंदवाड़ा में पहुंची, पहले मैं देख रहा हंदवाड़ा में ही मेरा पूरा खानदान जमा हुआ था, लाइक पूरा डिस्ट्रिक्ट जमा हुआ था, पूरे मीडिया पर्सनैलिटीज थे वहां से आके ही।
1: मैं सुनने वालों को बता दूं कि सालिका तारिक कुपवारा से ताल्लुक
0: जी
1: रखती
0: हाँ
1: है।
0: बिल्कुल।
1: जी
0: तो जब मैं वहाँ पे देख रही हूँ सारे जमा हुए, अब मीडिया पर्सनैलिटीज़ मेरा इंटरव्यू कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे। अब जब मैं उसी टाइम घर पहुँची लाइक 10:30 थे रात के, मैं देख रही हूँ मेरा आंगन, मुझे जगह ही नहीं थी चलने की, पूरे लोगों से भरा हुआ था, वो केक कटिंग हो रही थी, लाइक बहुत सारे लोग थे, सब खुश
1: आपको
0: थे।
1: वेलकम करने के
0: एग्जैक्टली।
1: लिए जी।
0: एंड दूसरे दिन से लाइक पूरे महीनों भर तक मेरे लोग मुबारकबादी के लिए आते थे, एंड फिर वही लोग जो कल को ताने दे
1: उंगली
0: रहे थे,
1: उठा रहे
0: एग्जैक्टली, वो आके उस टाइम क्या बोल रहे थे आपको, ये नहीं कोई बोल रहा था कि तारिक साहब की बेटी ने हमारा नाम रोशन, सब ये बोल रहे थे एग्जैक्टली, हमारी लड़की ने हमारा नाम रोशन किया। तब जाके मुझे स्ट्रैटेजी समझ आई कि अगर आप गिरोगे आपको लोग और धक्के देंगे गिराने के लिए, बट जब आप खुद का स्टैंड लेके उठोगे तो लोग आपके पीछे चलेंगे, जैसे कि आप चल रहे हैं अल्लाह ताला की मदद से मेरे पीछे अभी।
1: और उस किताब का जिक्र कीजिए आप।
0: जी हाँ। तो फिर मेरे दिल में ख्याल आया कि क्या पता कहीं बातें लोग सुनी सुनाई ऐसी अनसुनी कर देते हैं, तो लोगों को पढ़ना तो ऑब्वियसली आज तो पढ़ाई का जमाना इंटरनेट का जमाना है, तो मैंने सोचा कि लाइक वैसे भी मतलब जैसे आपको पता ही वो लोग ज़्यादा किताबों पे ध्यान नहीं देते, बट फिर भी मुझे लिखने का शौक था, मैंने सोचा क्यों ना अपनी स्ट्रगल को किताब की शक्ल दी जाए। तो फिर मैंने उसमें सारी स्ट्रगल्स मेंशन की, स्टोरी तो मेरी है बट लिखी ऐसी है कि जो पढ़ेगा उसको लगेगा मेरी स्टोरी है,
1: लड़कियों को खास
0: जी हाँ
1: रिलेट करेगा,
0: उनको लगेगा कि मेरी स्टोरी है, क्योंकि लड़कियों को सोसाइटी दबाती है, तो मैंने उन्हीं लड़की को उभरने के लिए वो किताब लिखी, उसमें सारी स्ट्रगल्स लिखी है कि कैसे मैंने इस पड़ाव को पार किया वैसे ही सारी लड़कियां कर सकती, क्योंकि जब मैंने किया कि ऐसी सोसाइटी में रह के जहां पे 100 में से 99% लोग मेरे खिलाफ थे जब मैंने शुरू किया, बट फिर भी मैं आज उस मुकाम पे हूं कि वही लोग मेरे घर आके अपने बच्चों के लिए मेरे से सीख लेते कि इनको हमें क्या करना चाहिए, चाहे पढ़ाई की बात हो चाहे स्पोर्ट्स की बात हो, मुझसे वो पूछते कि हमें क्या करना चाहिए, इवन मुझसे बड़े बच्चे मुझसे पूछते, तो वो मेरे अंदर मेरे लिए एक फख्र की बात होती है कि कोई बड़ा मुझसे पूछता है कि मुझे क्या करना चाहिए लाइफ में।
1: क्या बात है।
0: वो मुझे एक्सपोजर इसी चीज से मिला है जब मैंने इन सोशल क्राइसिस को पार किया है, मुझे ऐसा फील होता है कभी कभी कि शायद मेरे अंदर 10 साल की उम्र में वो 40 साल के इंसान की मेचोरिटी आ गई थी इन्हीं स्ट्रगल्स की वजह से, इन्हीं स्ट्रगल्स की वजह से। फिर मैंने वही उस किताब में लिखा है ताकि पढ़ने वाले को लाइक हम कहते हैं ना पुटिंग योर सेल्फ इन समवन एल्सेस शूज, उसका मतलब ये होता है कि जब हम खुद को किसी और की जगह रख के देखते हैं, तो मैंने वो लिखा जब वो लड़कियां खुद को मेरी जगह रख के देखेंगे उनके अंदर खुद मोटिवेशन आएगी कि वो दे आर नॉट मेंट फॉर द किचन, दे आर मेंट टू चूज द स्काई, दे आर मेंट टू टच द स्काई, क्योंकि लड़कियां लड़कों से बेहतर कर सकती है, लड़की लड़कियों में कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, बोथ आर इक्वल, बट उन्हें क्या चाहिए होता है अपॉर्चुनिटी जो कि उनको सोसाइटी नहीं देती है, तो मे बी 100 में से out of 100 में से 10 लोगों को ही, 10 लड़कियों को ही अगर उस किताब से फायदा पहुंचेगा तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी होगी।
1: अब कितनी किताबें आपने सालिका लिखी हैं?
0: 3।
1: उन किताबों के नाम बताएं।
0: पहली किताब है द विंग्स ऑफ द साइलेंट स्टॉर्म जो मैंने आपको बोला स्ट्रगल्स के रिलेटेड, दूसरी बुक है द फायर नो वन सॉ, उसमें वो भी मोटिवेशनल है लेकिन वो बहुत बहुत लड़की लड़की लड़कियां दोनों के लिए है।
1: तीसरी किताब
0: है द अनवील्ड थ्रू द अनवील्ड ट्रुथ, यस वो

0: अभी अंडर पब्लिकेशन है, वो अभी पब्लिश नहीं हुई है।
1: और आपसे बातें करके
0: जी
1: मैंने पहले कहा कि आप पब्लिक स्पीकर भी हैं,
0: जी हाँ
1: जिसकी वजह से आपको नेशनली भी
0: जी
1: रिकॉग्निशन
0: हाँ,
1: मिली है,
0: एग्जैक्टली
1: अवार्ड्स मिले हैं,
0: इंटरनेशनली
1: तुर्की
0: भी
1: भी आपको इंटरनेशनली
0: जी,
1: आपको MUM कॉन्फ्रेंस में
0: हाँ,
1: जाने का
0: बिल्कुल
1: मौका मिला। आपकी बातों से मैं यहाँ इंस्पिरेशन मुझे मिल रही है कि नहीं, मेरे मध्य मुकाबल जो बैठी है उसमें भी दम है बोलने का, ये भी मतलब कंपीट कर सकती है। अब वो जो नेशनल स्पीकर या आप कह सकते हैं कि वाणी स्पीचेस आपने दी है,
0: जी जी
1: उस बारे में थोड़ा सा बताइए, कितने मेडल्स उसमें ले लिए आपने?
0: मेरे उसमें 20+ मेडल्स है, 20+ क्या शायद अभी तक, अगर आज की बात करें 20+ मेरे लाइक पहले थे, अभी की अगर बात करें वो शायद 30-40 मेडल्स आ चुके सिर्फ स्पीच
1: का
0: में।
1: शौक है मतलब क्या
0: Actually,
1: मतलब आपको किसने इंस्पायर किया कि मुझे
0: पापा
1: स्पीकर
0: ने
1: बने?
0: स्पीकर बनने के लिए इंस्पायर नहीं किया, ही वॉज ऑलवेज लाइक यू नीड टू स्पीक फ्लैंटली, चाहे तुम कोई भी लैंग्वेज बोलो यू हैव टू बी फ्लैंट एट इट। एंड वो हमें हमेशा क्या करते थे, मैंने अपने दादू को नहीं देखा है बट पापा कहते थे कि दादू जो मेरे दादू थे वो हमेशा न्यूज़पेपर पढ़ा करते थे, लाइक वो हम डेली जाते न्यूज़पेपर, वही आदत पापा में भी थी, वो कंटिन्यू न्यूज़पेपर लाते थे, 2-4 पढ़ते थे सुबह शाम। फिर मुझे भी लगता है तो कुछ ना कुछ तो होगा ही इसमें छोटी, तो मैं बचपन से ही पढ़ लेती थी न्यूज़पेपर, कोई भी पापा की पुरानी किताबें होंगी ऊपर वॉर की रिलेटेड थी, बहुत सारी रिपेंजल स्टोरीज थी तो मैं पढ़ती थी। उस वजह से क्या हुआ कि मेरी लैंग्वेज थोड़ी स्ट्रांग, एग्जैक्टली, तो मतलब बचपन से ही मैं इंग्लिश बोलती थी, मुझे घर में बोलते बोलो मैं इंग्लिश, मेरी कश्मीरी उतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी मेरी इंग्लिश स्ट्रांग है, आई स्वेयर। तो इलीट में मैं पढ़ती थी बचपन में, इलीट हायर सेकेंडरी में, वहाँ पे भी मतलब मुझे कंटिन्यूअसली, जब मुझे पहली, मुझे याद है जब मुझे पहली बार उठाया था स्टेज पे नर्सरी में, मैं रोई थी स्टेज पे
1: जी।
0: लेकिन उस दिन के बाद से जब से मुझे स्टेज पे उठाया तब से वहाँ पे तालियों की गूंज ही हुई है,
1: यानी कि वो तालियों की गूंज जो है
0: हाँ,
1: वो अब तक बरकरार
0: exactly,
1: है इंशाल्लाह।
0: मैंने जो
1: ऐसा
0: भी
1: होगा।
0: जी हाँ, कुफारा में जितने भी सारे इवेंट्स होते हैं बड़े बड़े वो सारे मैं ही होस्ट करती हूँ, जो 1-to-1 विमेन अचीवर्स अवार्ड हुआ था यूटी लेवल का वो भी मैंने होस्ट किया, एग्जैक्टली कश्मीर क्रिएटर समिट हुआ था वो भी मैंने होस्ट किया था, लाइक बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोग्राम्स जो मैंने खुद होस्ट किए। स्पीच में मुझे जाने का बहुत शौक था बचपन से ही, मैं अभी भी जाती हूँ, लाइक अभी मैं कॉलेज में हूँ लेकिन फिर भी जाती हूँ। इवन मेरे कॉलेज वालों ने भी मुझे GDC कुफारा, उन्होंने मुझे बोल के रखा सलीका तुम्हें जहां जाना है जस्ट गो फॉर इट, विल सपोर्ट यू। हमारे न्यू प्रिंसिपल है वहां पे कमल किशोर सर, वो जम्मू से, ही टोल्ड मी जस्ट गो एंड अचीव योर ड्रीम्स, वी आर हियर टू सपोर्ट यू। एंड
1: देखिए आपसे बातें करके, आप जब बात करती हो ना सलीका, आपको आप में ये खासियत है कि आप किसी को भी बांध के रख सकती हो, ये मेरा मानना है, हम पर्सनली मैं फील कर रही हूँ। लेकिन बाकी भी आपकी अचीवमेंट्स से उन पे भी बात होगी, मैंने पहले ही कहा कि ये म्यूजिकल जर्नी है पयाम सुब की, लाइव शो पयाम सुब जारी है दोस्तों, हमारे संग बने रहिए। सालिका से भी हमें बहुत सारी बातें करनी है क्योंकि इनकी अचीवमेंट्स खेल की, राइटिंग की, स्पीचेस की या बाकी जो इनकी एक्टिविटीज़ है उस बारे में भी बात करेंगे। फिलहाल ये ट्रैक आपके लिए है।

जी दोस्तों, वेलकम बैक। आज की गेस्ट है लाइव शो पयाम है सुबह की सालिका तारिक, वो शो प्लेयर। इनकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलू है और खेल की तो हम बात तो करेंगे, एक नाम तो इन्होंने कमाया है, लेकिन जो बाकी पहलू है इनके करियर के, इनके सालिका तारिक के, उन पे भी बात करना बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए जो लड़कियां हमें सुन रही हैं उनको एक इंस्पिरेशन मिलनी चाहिए।

0: के मुख्तलिफ पहलू है। और खेल की तो हम बात तो करेंगे, एक नाम तो इन्होंने कमाया है, लेकिन जो बाकी पहलू है इनके करियर के, इनके सालिका तारिक के, उन पे भी बात करना बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए जो लड़कियां हमें सुन रही हैं उनको एक इंस्पिरेशन मिलनी चाहिए कि एक लड़की पढ़ाई करके सिर्फ किचन ही नहीं संभाल सकती, एक काम ही नहीं कर सकती, वो मुख्तलिफ काम कर सकती है। सालिका, कुपवारा से आप ताल्लुक रखती है, वुशु प्लेयर आप बनी, किताबें आपने लिखी, तुर्की का दौरा किया, नेशनल लेवल आपने कई स्टेट्स में खेला, क्या इस वक्त आप फील कर रही है कुपवारा में रह के, जो पेरेंट्स कल तक आप पे हाथ उठा रहे थे, है मैं क्या गिंदे लड़कन से पद कुछ तौर करिए
1: जी जी बिल्कुल
0: तो, आज क्या उनका रुझान है, क्या अपनी बच्चियों को वो गेम्स में पार्टिसिपेट करने देते हैं, या आप अपने इलाके का बताइए।
1: जी हाँ, जब मैं पहले जाती, जैसे मैंने आपको बोला कि टॉन्ट्स मिलते थे ऐसे, बट जैसे ही मैंने मेडल लाया, अब जाके तब से अभी तक कंटिन्यूअसली पेरेंट्स रोज मेरे घर पे आते हैं कि हम अपनी लड़कियों को तो भेजेंगे ही भेजेंगे एकेडमी, बट इनको आप घर पे भी सिखा, इनको आप लाइक मॉरल एजुकेशन भी दो खुद से।
0: जी,
1: एक लड़की, अकेली लड़की होकर आपने लड़कों के बीच में प्रैक्टिस करके खेला, मेडल लाया, एंड अभी आप लड़कों से भी आगे निकल चुकी हो, तो हमारे बच्चों को भी ऐसी ही आप मॉरल एजुकेशन दो उनको। एग्जैक्टली, तो लाइक प्राउड फील करते आज सब, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला जब आप गिरोगे आपको और गिराएंगे, लेकिन एक बार आप खुद खुद से उठे तो दुनिया आपके कदम चूमती है। ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ, अभी तो वहाँ पे माशाल्लाह बहुत सारी लड़कियाँ खेलती है, इवन मुझे बहुत खुशी होती है उनको देख के जब वो कहती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मुझे तब खुशी होती है जब मुझे कोई कहता है मुझे बड़े होकर आपके जैसा बनना है, वो मेरे लिए एक सबसे प्राउड मोमेंट होता है, क्योंकि अभी तो मैंने मतलब अल्हम्दुलिल्लाह इतना अचीव किया, बट इससे भी आगे और जाना है। जी हाँ बिल्कुल, तो तब मुझे ऐसा एहसास होता है कि शायद, अब तब मुझे लगता है कि शायद मैंने कुछ ना कुछ किया है, कि कोई मुझे कह रहा है कि मुझे आपके जैसा बनना है, वो सबसे बड़ी इंस्पिरेशन होती है मेरे लिए कि मैंने ऐसा कदम उठाया ऐसी सोसाइटी में रह के, उससे ज्यादा क्या है। आप खुद देखिए आज के जमाने में वहां पे
0: जी
1: हंड्रेड्स ऑफ गर्ल्स प्रैक्टिस करती, इवन लड़कों को भी पीछे, लड़कों से ज्यादा लड़कियां प्रैक्टिस करती है वहां पे, तो बहुत अच्छा लगता है उनको देख के, और पेरेंट्स भी अब उनको समझ आ चुका
0: बिल्कुल,
1: है कि
0: बिल्कुल,
1: जी हाँ बिल्कुल
0: एग्जैक्टली
1: तो आज तो जेन जी जमाना है, तो पेरेंट्स समझ ही चुके हैं कि नहीं, मतलब आई एम द लाइव एग्जाम्पल ऑफ अ वुमेन डोमिनेटिंग इन अ मैन डोमिनेंट फील्ड, तो मुझे देख के ओब्वियसली बहुत सारी लड़कियां आगे जा रही है।
0: सालिका तारिक एक बेबाक लड़की है। देखिए, हमने कहा पहले ही कि आपने पब्लिक स्पीकर हैं,
1: जी हाँ,
0: आपने कई जगहों पे पार्टिसिपेट
1: जी
0: किया
1: जी
0: है,
1: बिल्कुल।
0: टर्की का मुझे बताइए, एमयूएम कॉन्फ्रेंस
1: हाँ,
0: में जाने का, डिबेट करने
1: जी
0: का
1: हाँ,
0: कैसे मौका मिला, वहाँ आपको बेस्ट डेलीगेट अवार्डी भी आपको करार दिया गया, और वो भी 4 times।
1: जी हाँ बिल्कुल, जो
0: तो
1: जब,
0: ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ?
1: ये ऐसे शुरू हुआ कि मैं पहले लाइक लोग फोन यूज करते हैं इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल करने के लिए, मैं नहीं बोलूंगी मैं नहीं करती, मैं भी करती हूँ, मेरे पास भी है इंस्टाग्राम स्नैपचैट,
0: पॉजिटिव
1: एग्जैक्टली, लेकिन मैं इसमें कुछ पॉजिटिव भी देखती हूँ। तो फिर मैं क्या करती थी, इसमें बहुत सारे ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस होते थे, मैं वो अटेंड करती थी, फिर मैंने ऐसे ही बहुत सारे एमयूएन कॉन्फ्रेंसेस अटेंड किए, फिर मेरे पास लेटर आई तुर्की से, इस्तांबुल से, ऐसे एमयूएन कॉन्फ्रेंस में, फिर मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया 2 times, फिर लाइक उसमें मेरा पहले में भी मेरा बेस्ट डेलीगेट अवार्ड ही था, क्योंकि मैंने वहाँ पे बेस्ट डिबेट किया था, उसके बाद जो सेकंड टाइम हुआ था उसमें भी मेरा लाइक कंटिन्यूसली 4 times मैंने पार्टिसिपेट किया, 4 times मुझे बेस्ट डेलीगेट अवार्ड मिला। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट पावरफुल थिंग इसमें ये थी कि मैं इंडिया से सिर्फ एक थी,
0: ये तो हमारे कश्मीर के लिए
1: exactly.
0: बहुत खुशी की बात है, इसीलिए मैंने कहा कि आपकी शख्सियत के पहलू, आपके जितने काम है उनसे पर्दा हटाना बहुत जरूरी है।
1: जी हाँ
0: जी,
1: तो अभी मुझे बहुत सारे, अगर मैं आपको अभी फोन में जीमेल दिखाऊंगी आप खुद देखना मेरे, मतलब कितने सारे जीमेल्स आते रहते हैं पार्टिसिपेशन के लिए, बट अभी मैं थोड़ा बिजी हो गई क्योंकि मैं अभी कॉलेज में हूँ, तो मैं प्रिपेयर कर रही हूँ यूपीएससी के लिए भी साथ
0: जी,
1: साथ
0: जी.
1: तो उस वजह से मैं थोड़ा लाइक बाहर आ गई हूँ इस चीज से, बट छोड़ नहीं दिया है, बट कंटिन्यू करूंगी, बट कम कम, क्योंकि पहले जब मतलब मैं बिलो 18 थी तो जोश अंदर ज्यादा होता है ये सब करने का, बट अभी भी मैं करूंगी इंशाल्लाह आगे जाके, बट अब मैं चाहती हूँ कि जो मैंने किया वो अब मेरे से छोटे जो बहने भाई है वो लोग करें।
0: अच्छा, इस वक्त मेन फोकस आपका वुशु गेम पे है
1: जी,
0: आपने वो स्पीकिंग जो
1: हाँ,
0: है या आपको डिबेट का ये
1: जी हाँ,
0: हिस्सा लेना कम कर दिया है?
1: मैंने लाइक वुशु मैंने 2 साल छोड़ दिया था क्योंकि बोर्ड्स थे, फिर मैं नहीं चाहती थी कल को ये बोला जाए कि एथलीट्स पढ़ते नहीं है
0: जी,
1: क्योंकि लोगों को कोई ना कोई तो बात मिलनी चाहिए ना पिच करने के लिए, तो मैं नहीं चाहती थी। मैंने 2 साल में भी खेला, मैंने कॉम्पीट किया, पार्टिसिपेशन ली, मैंने जीते मेडल्स भी, बट मैं

0: प्रैक्टिस नहीं जाती थी। अब मुझे 2 दिन हो गए, मैं खेलो इंडिया सेंटर हंदवाड़ा में एजाज हसन सर के पास प्रैक्टिस करती हूँ, मुझे 2-3 दिन हो गए वहाँ जाते हुए। अदरवाइज मैंने छोड़ दिया था क्योंकि मेरे बोर्ड्स वगैरह एग्जाम्स के साथ लग गई थी। डिबेट्स भी मैंने कुछ दिन पहले ही डिबेट कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया, स्पीच कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया, इवेंट 2-3 एक साथ मैंने होस्ट किए। वो चीज़ नहीं है छोड़ने की, बट ये होता है कि अभी मैं थोड़ा सा ज्यादा टाइम दे रही हूँ
1: पढ़ाई को।
0: एग्जैक्टली, क्योंकि यूपीएससी के लिए यू नो आई हैव टू प्रिपेयर अ लॉट फॉर दैट।
1: अच्छा मुझे ये सालिका ये बताइए, आपको देख के
0: जी
1: ये मुझे लगता है कि जरूरी पूछना है, आप में ये एंथुजियाज्म, ये जो एनर्जी है, ये कहाँ से आती है?
0: जेनेटिक्स।
1: क्योंकि कुछ लोग मतलब एक काम करके हार्डली वो दूसरा काम करेगा, आपने बहुत सारा फैलाया हुआ है, आप चाहते ये भी करूं ये भी करूं ये भी करूं, आप में मैं जोश देख रही, एनर्जी देख रही, वो कहाँ से आती है?
0: वो जब आप किसी चीज़ को हासिल करते हो तो आप और प्यासे बन जाते हो उसमें डीपली जाने के लिए और हासिल करने के लिए। तो मैं ये कहूँगी कि मुझे बहुत शौक था जब घर पे पहले देखती थी पापा के अवार्ड्स, तो मैं सोचती थी मेरे पास भी होने चाहिए। अब मैं यहाँ से बोलती हूँ कि अवार्ड सेरेमनी अगर कहीं पे हो रही है मेरे अवार्ड्स लिए।
1: यानी कि आपने पापा से ही कंपटीशन
0: एग्जैक्टली, मेरा कंपटीशन घर में ही स्टार्ट हुआ है। एंड अभी लाइक मैं कंटिन्यू कर रही हूँ क्योंकि मेरा दिल करता है करने का, मुझे अच्छा लगता है पढ़ना लिखना, मुझे अच्छा लगता है लिखना किताबें लिखना, मुझे अच्छा लगता है खेल कूद में पार्टिसिपेट करना, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मुझे अच्छा लगता है लोगों के सामने साबित करना कि एक लड़की क्या क्या कर सकती है। क्योंकि लोग कहते हैं कि ये कुछ नहीं कर सकती, बट मैं उनके सामने अभी एक एग्जाम्पल बन के खड़ी हूँ, ऐसा कुछ नहीं है जो मैंने नहीं किया है लाइफ में।
1: अक्सर टाइम का हम कहते हैं कि उज्र पेश करते हैं कि वक्त ही नहीं है, आपके पास भी उतने ही घंटे
0: क्यों नहीं
1: जितने बाकी लड़कियों के पास है, आप कैसे मैनेज कर?
0: लोग एक एक बजे तक फोन देख के सोते हैं 4 घंटे, मैं 10 घंटे सोती हूँ फिर भी इतना कुछ करती हूँ। ये खुद पे डिपेंड होता है कि आप कैसे टाइम को मैनेज करते हो। आपके पास 24 घंटे है, अगर आप 10 घंटे सोओगे, मैं एग्जाम्पल बोल रही हूँ आपने, क्योंकि मैं सोती हूँ 10 घंटे क्योंकि नींद अच्छी होनी चाहिए। अगर आप मतलब वैसे तो एवरेज 8 घंटे सोना चाहिए, बट मैं कभी कभी 9-10 घंटे सोती हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। वहां पे भी फिर भी बचे कितने 24 घंटे, तो 14 घंटे तो 14 घंटे में आप बहुत कुछ कर सकते हो। उसमें से क्या, अगर आप 3-4 घंटे पढ़ोगे फॉर एग्जाम्पल, वैसे तो कोई नहीं पढ़ता इतना, देखिए अगर कोई कितना भी बोलेगा ना मैं दिन के 24 घंटे पढ़ता हूँ, कोई नहीं पढ़ता,
1: कोई नहीं पढ़ता,
0: क्योंकि पढ़ा ही नहीं जाता, कौन कंटिन्यूअसली किताबों पे कमर तोड़ेगा। 3-4 घंटे इनफ होते हैं जब आप अच्छे से पढ़ते हो। तो अगर आप 3-4 घंटे पढ़ोगे, वहाँ पे फिर भी 10 घंटे बचे, 10 घंटे में आप 15-15 मिनट का ब्रेक रख लो, 1 घंटा लाइक दिन के सारे मील्स के लिए, उसके बाद से 1 घंटा आप घूमो, फिर भी आपके पास 8 घंटे 9 घंटे बचते। 9 घंटे में आप अगर 2 ही घंटे प्रैक्टिस होती है, अगर आप खेल की बात करें 2 ही घंटे 2 घंटे प्रैक्टिस करो, फिर आपको कुछ खेलना ये लिखना है वो लिख सकते हो, मतलब फिर भी कितना टाइम बचता है। मुझे समझ नहीं आता है लोगों का टाइम जाता कहाँ है रील्स देखते देखते।
1: कम पढ़ता, हम शिकायत करते हैं कि
0: मैं अपनी बात करूं, अगर मैं रील्स देखने बैठूंगी ना इंस्टाग्राम पे, क्योंकि एक एडिक्शन है, अगर आप रील्स स्क्रॉल करते जाओ आपका मन नहीं करेगा फोन नीचे छोड़ने के लिए। तो बेहतर है कि आप थोड़ा थोड़ा देखे, हम कह सकते एक आदत को छोड़ने के लिए 21 डेज लगते हैं, जैसे साइंटिफिकली मैं बोल रही हूँ, जैसे जब COVID-19 हुआ था तो मोदी ने कहा था 21 डेज। जी हाँ, तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने कहा था 21 डेज तक आप घर के अंदर रहिए। तो ये चीज उन लोगों को लगा 21 डेज की, लेकिन इसके पीछे क्या एक साइंटिफिक लॉजिक था कि 21 डेज के अंदर इंसान की आदत बन सकती है और छूट सकती है। जब 21 डेज कंप्लीट हुए तो फिर प्रॉपर लॉकडाउन हुआ, या आपने भी देखा होगा लॉकडाउन हुआ। तो इसी वजह से ऐसे ही अगर आप फोन एडिक्ट हो तो धीरे धीरे करके कम करो। एग्जैक्टली, तो ऐसे ही अपना टाइम मैनेज करो और आगे बढ़ते रहो।
1: बहुत अच्छा, फिलहाल हम अपने दोस्तों तक ये बात पहुंचाना चाहेंगे कि सालिका से बात जारी रहेगी इस शो में, ये लाइव शो पयाम सुबह है। फिलहाल एक इतला अपने दोस्तों के लिए अपने प्रोग्रामों के हवाले से, वो ये कि प्रोग्राम हेलो रेडियो क्लिनिक के ताज़ा शुमारे की रिकॉर्डिंग आज 3 बजे से 4 बजे तक होगी। इस बार प्रोग्राम में जो टॉपिक हमने इंतखाब किया है वो कैंसर से लड़ रहे बीमारों का ख्याल कैसे रखा जाए, और इस टॉपिक पर तफसीली मालूमात आपको मिलेगी। और आज के जो मेहमान डॉक्टर हैं वो है नामवर मुअल्लिज डॉक्टर अबरार रसूल, इनसे आप बात कर सकते हैं फ़ोन पे, टेलीफोन नंबर है 01942480364। जी हाँ, 01942480364। आप 3 से 4 बजे तक सुबह कॉल कीजिएगा, जो भी कैंसर रिलेटेड आप सवाल पूछना चाहते आपको तफसीलन वो जानकारी मिलेगी। फिलहाल आपको बता दें कि लाइव शो पर आम सुबह जारी है, सालिका से बात भी जारी है, वुशो गेम के बारे में, इनकी शख्सियत के कई पहलू है,

0: अब चूंकि 18 साल की है, क्या मैं कहूँ, इनकी शख्सियत के कई पहलू है, अभी अभी जवानी में कदम रखा है, इनको बहुत बहुत मुबारक,
1: थैंक यू सो
0: बेस्ट
1: मच,
0: फ्यूचर के लिए, अपने करियर के लिए। फिलहाल एक गीत
1: बहुत
0: सभी
1: बहुत
0: के लिए,
1: शुक्रिया।
0: सालिका भी सुनेगी और फिर बात हम जारी रखेंगे।

0: जी दोस्तों, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी श्रीनगर। लाइव शो पयाम सुबह जारी है। आपके साथ है आपकी मेजबान सकीना। कंट्रोल रूम में हमारे साथ हैं अल्ताफ अहमद, मोहम्मद शफी मीर और आईपी सिंह, और मॉविन है हमारे अब्दुल कयूम, बिल्कुल हमारे साथ बराबर बने हुए हैं। देखिए, पहले भी हम कह चुके हैं कि ये टीम वर्क होता है हर खेल में, हर काम में टीम वर्क होना बहुत ज़रूरी है। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में है सालिक तारिक, वुशु प्लेयर, राइटर, कह सकते हैं कि मोटिवेशनल स्पीकर भी है, एंकर भी है, यानी कि बहुत सारा पोटेंशियल है सालिका में। सालिका, आपने स्टेट लेवल पे मुख्तलिफ स्टेट्स का दौरा किया, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ स्टेट्स में। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर और उन स्टेट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर हम वुशु गेम की बात करें, वहाँ का और यहाँ का कंपेरिजन करोगी कि सेम सेम बताओगे?
1: कंपैरिजन ओबियसली, क्योंकि अगर आप यहाँ की बात करें तो यहाँ पे लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पे मेन फोकस जो रहता है वो मेन सिटीज पे रहता है, बट जो बाकी इलाके उनका क्या। लाइक मैं मेरी बात करूँगी, अगर मैं कुफारा में रह के इतना आगे जा सकती हूँ,

0: तो सोचिए और कितनी सारी लड़कियां लड़के होंगे। कुपवाड़ा की बात करें, वहां पे बिल्कुल जीरो इंफ्रास्ट्रक्चर है। अभी बस हंदवाड़ा में KIC हंदवाड़ा बना है, जहां पे प्रैक्टिस अच्छे से होती, स्टेडियम बना है। बट आप खुद सोचिए कि एक गरीब बच्चा जिसके पास बाहर जाने के लिए 10 रुपए नहीं होंगे, बट उसको शौक होगा खेलने, वो कैसे कुपवाड़ा से हंदवाड़ा ट्रेवल करेगा?
1: ये भी बात है।
0: कुपवाड़ा से हंदवाड़ा तक 60 रुपीज की राय लगते हैं, और फिर अगर मैं त्रहगाम से हूँ, त्रहगाम से पहले कुपवाड़ा तक मुझे 30 रुपीज लगते, फिर वहां से लाइक ऑलमोस्ट 200 रुपीज खर्चा लगते हैं एक दिन का, लाइक किराया ही सिर्फ। जी हाँ, तो कैसे हो सकता है? अब मैं चाहती हूँ कि गवर्नमेंट एक अच्छा स्टेप ले, वहाँ पे कुछ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर दे कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट को, जहाँ से बहुत सारे बच्चे एक्सेल करके और आगे जाए,
1: सहूलत मिले बच्चों को।
0: एग्जैक्टली, अगर आप बाहर की बात करेंगे, बाहर को छोड़िए, हम यही की बात करते हैं, अब श्रीनगर में देखो कितने सारे स्टेडियम्स बने, और वो भी वेल रिनोड, अच्छे से, बहुत बेस्ट से बेस्ट। क्योंकि आजकल पूरे इंडिया के कैंप्स, परसों एशियन गेम्स हमारे चल रहे थे, लाइक ट्रायल्स एशियन गेम्स का, पूरा इंडिया का कैंप यहाँ लगा हुआ था, फिर आप खुद सोचिए कितना अच्छा है यहाँ पे।
1: बिल्कुल, लेकिन बच्चे के लिए वो सहूलत है, कंपनसेशन जो मिलना चाहिए था वो कम।
0: बिल्कुल, जब श्रीनगर में, तो ऐसे बाकी जगहों पे भी होना चाहिए, कुपवाड़ा में होना चाहिए, बांडीपुरा, अलग अलग बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर और होने चाहिए, ताकि बच्चा एक्सेल करके और आगे जाए। अगर बाहर की बात करें, तो वहाँ पे बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स को लेके एक हाइप क्रिएट हुआ है, बट यहाँ पे कश्मीर की आप बात करेंगे, यहाँ पे सिर्फ नीट जेडबली, मतलब कॉन्सेप्ट ही नहीं है इंसान को, लोगों को,
1: इसके अलावा भी कुछ
0: एग्जैक्टली जरूरी नहीं है। मतलब मैं तो पढ़ती हूँ ना, मैं स्पोर्ट्स खेली हूँ, तो मैं नहीं पढ़ती। स्पोर्ट्स से इंसान मेंटली और फिजिकली बहुत फिट रहता है
1: जी।
0: आप बचते हो उन सारे मेंटल ट्रॉमास से जो आपको एक जगह बैठकर किताबों को पढ़ पढ़ के, कभी कभी इंसान के अंदर इतना प्रेशर आ जाता है ना पढ़ाई का, क्योंकि लोग की मेंटेलिटी ऐसी है कि उनको लगता है नीट और JEE के बगैर कुछ नहीं, इसलिए इतने सारे सुसाइड केसेस हमारे सामने आते हैं नीट और JEE
1: पे। बात हमने की कि ये इसलिए टारगेट बनाया है लोगों ने, बस जिंदगी यही तक महदूद है।
0: तो मैं चाहती हूँ पेरेंट्स बच्चों को समझे, उन्हें क्या करना है लाइफ में। अगर कोई बच्चा इसमें इंटरेस्टेड नहीं है नीट में, तो उस पर क्यों जबरदस्ती थोपना है? ऐसे ही करके अगर कोई चाहता है कि मैं स्पोर्ट्स में भी जाऊं, पढ़ाई भी साथ साथ करूं,
1: अरे मुझे
0: तो मैनेजेबल।
1: ये बताइए, आपने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर अभी उतना नहीं है, कंपनसेट बच्चों को किया जाना चाहिए, कुछ राहत मिलनी चाहिए ट्रांसपोर्ट की।
0: जी,
1: आप जो प्रैक्टिस करती थी वुशु की, श्रीनगर आया करती थी या वहीं पे आपने ये सारा मामला?
0: मैंने आपको पहले ही बोला, मैं ग्राउंड में करती थी अकेले प्रैक्टिस धूप में।
1: जी,
0: मतलब आप खुद सोचिए कितने सारे प्रॉब्लम्स आजकल, कैंसर, स्किन कैंसर तक हो सकता है धूप से। जैसे हमारे डॉक्टर्स कहते हैं कि सन एक्सपोजर से आप बचो, फिर आप सोचिए हम धूप में दिन के 3-4 घंटे प्रैक्टिस करते थे, तपती हुई धूप में खेलते थे, हमारा क्या हाल होता होगा। मैं चाहती हूँ अगर वहाँ पे, अब आप सोचिए अगर वहाँ पे कोई स्टेडियम होता, फिर वहाँ पे अगर प्रैक्टिस दिन भर भी करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती बच्चों को। इससे बहुत सारे ये मतलब हेल्थ इश्यूज भी हो गए बच्चों के।
1: मैं अपनी
0: बात करूंगी, मुझे हीट स्ट्रोक्स होते थे इसकी वजह से, धूप की वजह से मेरा प्रोटीन लेवल सारा लो हो जाता था मेरा, मतलब मुझे कंटिन्यूअसली ये कभी BP लो हो जाता, वो भी इसी की वजह से, धूप की वजह से। और स्किन डैमेज वो तो छोड़ी आप, अब हम अगर बाकी जगहों की बात करेंगे, वहाँ पे स्पोर्ट्स को लेके इतना अच्छा है कि अगर कोई बच्चा स्पोर्ट्स में जाना चाहता है, उसके पेरेंट्स, उसके ये गवर्नमेंट उसको पूरा सपोर्ट करती है 100% कि आप जाओ इसी फील्ड में, अपना करियर बना। आप देखिए इसमें कितने सारे जॉब, गेजेटेड, नॉन गेजेटेड, बहुत सारे पोस्ट मिलते हैं। यहाँ के पेरेंट्स का मुझे कुछ समझ ही नहीं आता।
1: यहाँ आप इंडोर स्टेडियम में प्रैक्टिस?
0: जी हाँ, जब हमारे कैंप होते थे नेशनल कैंप, परसों जब हम AIU था, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी के, तब भी पहले यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर जो इंडोर स्टेडियम बन रहा है वहां पे था, फिर इंडोर स्टेडियम शेर कश्मीर इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वहां पे था, लाइक बहुत बार प्रैक्टिस किया मैंने यहाँ पे, तो बहुत अच्छा लगता था यहाँ पे। फिर इंसान सोचता था काश कि वहां पे भी ऐसा ही हो, तो हम कितना एक्सेल कर लेते।
1: चले, आपकी बात तो बाहर पहुंच गई।
0: जी,
1: एमेंडमेंट करनी है या आगे बढ़ना है, ये बाकी लोगों को सोचना है जो खेलों से वाबस्ता है। तो आपने कहा कि पहले मुझे जज किया जाता था अपने गांव में, फिर आपको वही लोग सामने आए कि हमारे रिश्तेदार हैं, जब आप आगे बढ़ी, अब आप बाकी बच्चों के लिए अपने इलाके में इंस्पिरेशन या कश्मीर में इंस्पिरेशन है। हर फील्ड में जो बंदा होता है, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, या किसी और फील्ड से, टीचर, क्रिकेटर, जो भी जिस खेल से वाबस्ता है, इंस्पिरेशन कोई होता है।
0: जी।
1: आपकी इंस्पिरेशन कौन है इस गेम में?
0: पहले मुझे लगता है कि मेरी इंस्पिरेशन मैं खुद ही हूँ, क्योंकि मैंने ऐसे स्ट्रगल्स अपनी लाइफ में देखे जो शायद ही किसी ने देखे। बट अगर गेम की बात करें, बहुत सारे लाइक रोशी बीना देवी है, वो आज वर्ल्ड में नंबर 1 पे आती है वुशु में। जी हाँ, और मुझे वो बहुत पसंद है उसका खेलना। और स्पेशल अगर जम्मू कश्मीर की बात करें, आयरा दीदी है, आयरा दीदी वो अभी साई में प्रैक्टिस करती है बचपन।

0: से भी, बट मुझे बहुत अच्छा लगता है उसको देख के, क्योंकि वो बहुत एक्सेल कर रही है, उसके घर वाले उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसका उसके वो साई में प्रैक्टिस करती है, मतलब दिन रात मेहनत करती है वो, दो बहनें आयरा अंसा, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे उनको देखते, वो भी मैं कहूँगी मेरे लिए इंस्पिरेशन ही है। एंड नाउरम रोशी बीना देवी, ऐसे बहुत सारे
1: किसी
0: प्लेयर्स हैं।
1: कोच का नाम तो नहीं लेना चाहोगी, क्योंकि
0: जी हाँ
1: हर
0: बिल्कुल,
1: एक कोच अपने खिलाड़ी पे बहुत मेहनत
0: जी
1: करता
0: हाँ
1: है, फिर
0: बिल्कुल,
1: उनका नाम लेना, अपने टीचर
0: जी
1: का
0: हाँ
1: नाम लेना जिन्होंने आपको
0: जी
1: सिखाया
0: बिल्कुल
1: आगे
0: बिल्कुल।
1: बढ़ाया, किसका नाम लेना
0: जब
1: चाहोगे
0: मैंने
1: जिसने आपको
0: पहले
1: एनकरेज किया
0: पहले जब
1: ज्यादा?
0: मैंने शुरुआत की तो मेरे थे एजाज सर कराटे के,
1: जी
0: उन्होंने ही मुझे मतलब अगर मुझे लगता बेसिक्स तो उन्होंने मुझे बेसिक्स सिखाया है। उसके बाद से दूसरे एजाज सर थे, लाइक कोच ही एजाज ही एजाज,
1: आपकी
0: दूसरे
1: इसमें आ
0: जी
1: गए
0: हाँ
1: जी।
0: दूसरे एजाज सर थे वुशु में, तो वो पुलिस में खुद वो नहीं आ पाते थे प्रैक्टिस के लिए, बट फिर भी मुझे एक स्टूडेंट था उनका, लाइक वहीं पे सीनियर हमारे राशिद शफी, उसने खुद कुछ टाइम पहले ही स्वीडन से गोल्ड मेडल लाया, वो मुझे
1: बहुत
0: प्रैक्टिस कराता था। और
1: जी
0: अभी जो मेरे करंट कोच है एजाज हसन सर, KIC हंदवाड़ा, उनका मैं मतलब बहुत शुक्रिया करती हूँ कि लाइक जब वो मेरे कोच, जब मैं उनकी अंडर ट्रेनिंग नहीं थी फिर भी वो मुझे हमेशा सपोर्ट करते थे चीज़ों को लेके, लाइक जहाँ भी खेलने जाती थी ही ऑलवेज यूज टू सपोर्ट मी अ लॉट, उनका भी मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं।
1: अच्छा, ये सालिका आपकी जो गेम है,
0: जी
1: राइटिंग है, या जितनी कॉन्फ्रेंसेस में आपने
0: जी
1: हिस्सा
0: जी
1: लिया, या स्पीकर बन के आप कितनी स्टेट्स में गई उनका आपने जिक्र किया,
0: जी जी
1: थोड़ा सा मैं एक गीत के बाद आपके घर के काम की तरफ जाऊंगी, आपके किचन की तरफ जाऊंगी, क्योंकि आप एक वर्सटाइल हैं,
0: जी
1: आप में
0: मैम,
1: इंथ्यूजियाज्म है, आप मोटिवेशन पावर आप में
0: जी
1: बहुत ज़्यादा है, आप
0: जी
1: में एनर्जी बहुत है, उस बारे में बात
0: ठीक
1: करेंगे
0: है
1: कि किचन में सालिका जाती हैं, क्योंकि यूजुअली कहा जाता है वहाँ क्या करें तो अच्छुस किशनी संभालू, उस किचन की हम बात करेंगे कि क्या वहाँ का दौरा आप जीती
0: ओके
1: हैं कि नहीं।
0: मैम,

0: जी दोस्तों, ये शो है आकाशवाणी श्रीनगर से पयाम सुबह। आपके साथ है आपकी मेज़बान सकीना, और मेरे साथ इस वक्त लाइव स्टूडियो में मेहमान है, गेस्ट है सालिका तारिक। ये राइटर है, पहले तो ये वूशो प्लेयर है, फिर राइटर है, स्पीकर है, बहुत कुछ इनमें पोटेंशियल है, जाते हैं कि हम वो बाहर लाएं। देखिए सालिका, यूजुअली जब प्लेयर होता है एक बात ज़रूर उठती है जब आप इसी मखसूस एज पे पहुंचते हैं, खासकर लड़की मुझे बुध खानदर कर स्पोर्ट्स या स्पोर्ट्स के अंदर सगान किशनस मज कम
1: जी।
0: आपसे मैं जानना चाहूंगी, आप चूंकि आप में इतनी खासियतें हैं बोलने की
1: जी,
0: अपने आप को प्रेजेंट करने की, मतलब वो मैं देख रही हूँ, खेल में भी महारत है आपकी, गोल्ड मेडल्स काफ़ी लाए हैं स्टेट को, नेशनल लेवल पे आपने किया, आप इंटरनेशनली आगे जाना चाहती है, आपका मतलब एक अचीव आप करना चाहती है, स्पीकर आप बहुत अच्छी हैं, किचन में कैसी हैं?
1: मैं, मुझे खाना बनाना भी आता है, मुझे सब कुछ आता है। लाइक पहले पहले जब मतलब मेरी बहन मुझसे छोटी है 4 साल, लेकिन वो मुझसे अच्छा बनाती थी, और मुझे पता नहीं लाड़ प्यार ज़्यादा ही था तो मुझे नहीं जाने देते किचन में, मुझे बोलते तुम्हारे हाथ खराब हो जाएंगे, पापा बोलते थे
0: जी।
1: अगर मैं किचन में जाती थी ऑमलेट बनाने भी, मुझे बोलते थे बहन को साथ ले जा, तुम गैस ऑन ही रखोगी। सच में उनका, क्योंकि उनका ऐसा लगता था, उनकी भी शायद यही मेंटालिटी कि स्पोर्ट्स में इसको क्या याद होगा। हाँ, बट मुझे सब कुछ आता, आज मैं बना लेती हूँ खाना घर में, कभी मम्मा नहीं होते तो मैं बना लेती हूँ, मैं और पापा मिलके बनाते, कभी कभी तो वो जल जाता है, जल जाता था पहले पहले, बट अभी मेरे से, मुझे लगता है मैं मम्मा से भी अच्छा बनाती हूँ।
0: अच्छी कुक बन गई।
1: जी हाँ, मुझे बहुत अच्छा खाना बनाना आता है, मुझे सब कुछ आता है, एंड कभी कभी जब मुझे खुद के लिए मन होता है मैं सब कुछ बनाती हूँ, फ्राइड राइस, बटर चिकन, मैं कुछ भी बना लेती हूँ।
0: यानी कि मैंने पहले ही कहा ना कि आप में जोश बहुत है,
1: आप
0: किसी काम में रुकना नहीं चाहती है।
1: जो जो चीजें मुझे नहीं आती वो मैं यूट्यूब से देखती हूँ, फिर मैं बेस्ट से बेस्ट ट्राई करती हूँ, और वो बेस्ट ही बनती है, सब अच्छे हाथ चाटते रह जाते हैं।
0: अच्छा, आपके बहन भाइयों का आपके लिए कैसा एक इस वक्त व्यवहार है? अब आप एक स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी है, राइटर है, किस तरह से आपको देखते हैं?
1: अगर आप कितना भी ऊपर चले जाओ, बहन भाई वैसे ही रहेंगे जैसे आप नॉर्मल एक दूसरे के बाल
0: लिखता रहेगा।
1: जी हाँ, मेरा भाई भी खेलता था, बट फिर अनफॉर्चुनेटली एक इवेंट के खेलने हम गए थे, तो वहां पे वो गिर गया, जिस वजह से उसका फीमर शॉफ्ट हो गया, उसकी सर्जरी हो गई, फीमर ब्रेक हो गया था
0: जी,
1: उसे छोड़ दिया। फिर अभी वो जिम वगैरह जाता है, बट क्या ही कर सकते, बहन भाई का रिश्ता कभी नहीं बदल सकता, चाहे आप कितने भी बड़े सेलिब्रिटी बन जाओ। जी हाँ, तो सिबलिंग फाइट होती रहती है हमारे बीच में। मेरी जो छोटी बहन है उसको लाइक शौक नहीं है ज्यादा खेलने वेलने का, घर मतलब क्रिकेट उसको अच्छा लगता है, तो वो रोज खेलते घर पे शाम को। बाकी मतलब उनके लिए भी मैं इंस्पिरेशन हूँ, कभी कभी तो वो गुस्सा हो जाता है कि तुम्हारी वजह से डांट पड़ती है, ये भी करो,
0: अच्छा,
1: ये भी करो,
0: ये भी करो।
1: हाँ।
0: अच्छा, माँ का रोल एक बेटी की जिंदगी में, या माँ बाप का रोल बेटी की जिंदगी में बहुत मायने रखता
1: जी जी बिल्कुल।
0: पापा का आपने काफी जिक्र किया, अभी तक माँ का आपने नाम,
1: अगर
0: उनके कंट्रीब्यूशन का या आपके लिए उनकी क्या,
1: जी हाँ बिल्कुल,
0: सपोर्ट सिस्टम जिसे कहते हैं।
1: अगर मुझे पापा ने लाइक बाहर की मतलब, अगर मुझे पापा ने कैसे सपोर्ट करना बोलूँ, अगर मुझे पापा ने फाइनेंशियली सपोर्ट किया है, इमोशनली सपोर्ट किया है, तो मेरी माँ वो है जिससे मुझे ऐसा सबक दिया जो शायद मैं कभी किताबों से भी नहीं सीखती। उसने मुझे दुनिया को जीना सिखाया है, दुनिया में कैसे जीना है एज मतलब एज ए वुमेन, क्योंकि खुद औरत है, औरत ही औरत को समझ सकती, तो उसे मुझे समझाया है कि एक समाज में होके कैसे तुम्हें रहना है और कैसे तुम दुनिया को जीत सकती हो आगे जाके। तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। अगर इसकी बात करें इसमें, तो मेरे पेरेंट्स दोनों ने मुझे हमेशा से सपोर्ट किया है। इवन जब कुछ टाइम पहले मेरी ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की ट्रायल्स थी, वो लोग मेरे साथ आए थे, दिन भर मेरे पीछे पीछे घूमे, उधर फाइट्स देखी। इवन आज भी मैं यहाँ हूँ, वो मेरे साथ आए हैं आज, वो उधर ही रुके मासी के वहाँ पे पीरबाग में, तो वो मेरे साथ आए आज भी। अब खुद देखिए उनके लेवल का सपोर्ट कितना है। सुबह मैं गाड़ी में चढ़ी, मेरी मामा वहाँ तक साथ आई थी, मुझे गाड़ी में चढ़ाया फिर मैं आई यहाँ पे। तो उनके बगैर, अगर शायद उनका सपोर्ट नहीं होता, तो शायद ही मैं आज, शायद क्या मतलब, मैं आज यहाँ पे होती ही नहीं।
0: उन पेरेंट्स के लिए सालिका, आखिर में आखिरी सवाल, उसके बाद एक गीत प्ले करेंगे, गीत के सहारे अपने दोस्तों को छोड़ेंगे, फिर लाहौता जो

0: करेंगे।
1: जी
0: मुझे ये बताइए, जो लड़कियां अपने शौक को मारती हैं जज की वजह से, पानों की वजह से, उनके पेरेंट्स को, उन लड़कियों को आखिर में क्या कहना चाहोगी?
1: फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग फॉर पेरेंट्स कि जो अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं करते या जो फर्क करते एक लड़के और लड़की के बीच में। अगर मेरे घर में, मैं अपनी बात करूंगी, मुझे नहीं बोला जाता है भाई के लिए चाय लाओ, मेरे भाई को बोला जाता है बहन के लिए चाय लाओ।
0: ये यूजुअली यहाँ पे ट्रेंड बना हुआ ना,
1: एग्जैक्टली लड़की, मैंने देखा है, मैंने देखा अपने ताऊ वगैरह, चाचा वगैरह के घर में कि अगर कोई लड़की भाई का बर्तन सामने, लड़की भी खाती थी, लड़का भी खाता था, लड़की को बोला जाता था भाई का भी उठाओ, तुम लड़की हो, विंतुला बॉय, तो वास्तव में बेनी विंतुला बॉय एग्जैक्टली। तो क्यों लड़के के पास भी दो हाथ, लड़की के पास भी, लड़के को तो ऑब्वियसली बोला जाता है ये बहुत मस्क्यूलर है, मैनली है, वो है, तो क्यों नहीं उठाएगा? तो अगर ये ट्रेंड खत्म होगा ना, तो आप समझ लीजिए आधी से ज्यादा प्रॉब्लम्स लड़की की लाइफ में खत्म हो जाएंगी, क्योंकि इससे भी इंसान डिमोटिवेट हो जाता है, खुद इंसान को लगता है कि मेरे घर वाले फर्क कर रहे हैं मुझे और भाई के बीच में। एग्जैक्टली, तो पेरेंट्स के लिए इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग जो अपनी बेटियों के लिए ऐसा करते हैं। आप खुद देखिए, मैं उनके सामने एग्जांपल खड़ी हूँ, जब मैं इतना कुछ कर सकती हूँ तो हर लड़की कर सकती है, मुझसे भी बेहतर कर सकती है, बट तब जब उनके घर वाले उनको सपोर्ट करें, जब उनके पीछे वो इमोशनल सपोर्ट हो, क्योंकि अक्सर लड़कियां क्यों हार जाती है, दुनिया तो हराने के पीछे पड़ी ही पड़ी है, लेकिन लड़की तब हार जाती है जब वो घर से हार जाती है। घर पर वो कैसे हार जाती है? जब उसके माँ बाप उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं कि ये चीज़ तुम्हारे लिए नहीं बनी है। अगर आप पहले की बात करें, एजुकेशन के लिए भी लड़कियों को ताने मिलते थे, उन्हें टोका जाता था, तो ये चीज़ पेरेंट्स को समझनी चाहिए कि लड़की क्या नहीं कर सकती लाइफ में। अगर पेरेंट्स का सपोर्ट होगा, लड़की कहां से कहां पहुंच सकती
0: है। सपोर्ट और मौका,
1: एग्जैक्टली,
0: बहुत जरूरी,
1: मौका तभी मिलेगा।
0: आपने सही बात
1: जी, हाँ, बिल्कुल,
0: घर से ही एक लड़की टूटती भी है, बनती भी
1: जी, और मौका भी तभी मिलेगा जब आपको घर का सपोर्ट हो पीछे से।
0: सालिका, आपका बहुत बहुत शुक्रिया,
1: थैंक यू सो मच।
0: मुझे अगर शाम तक आपसे बात करने का मौका मिलता, आप नहीं रुकती, मुझे लगता है शायद मैं रुकती, क्योंकि आप बोल ऐसे रही हो, आपका जोश बहुत है, आपके फ्यूचर के लिए, वो शो गेम के लिए आप बेस्ट विशेस देते हैं,
1: थैंक यू।
0: राइटर है आप, उसके लिए बेस्ट विशेस है, बाकी जो आप स्पीकर हैं, आप कहीं पे जाती है डिबेट्स में, उसमें भी आपको काफी तरक्की मिले, काफी बूस्ट मिले, जितनी भी लड़कियां हैं, लड़के हैं, सबको कामयाबी मिले, हमारी बेस्ट विशेस सभी के साथ है। फिलहाल दोस्तों से कहना चाहेंगे कि ये ट्रैक सुन लीजिए, इस ट्रैक के बाद आपको ज्वाइन करेंगी लाहौता।

समय आप समाप्त कर रहे थे लाइव मॉर्निंग शो पैम सुब ये जो आकाशवाणी उन श्रीनगर स्टेशन मीडियम वेव जहतर अठा शहरिया अठ मीटर ते एफएम जाखत्र शहरिया पांच मेगा हर्ट्ज़न पैट वलियो समय इन छक्कर तो रो बोजो ये जो कला में शमस फकीर सदाकार छे मुदस्सिर मकबूल तो तिहिंद हम नवा

Sabri matram tu isu bozan chakr turu yos kalame shamas fakir sarakar is mudassir maqbool tu hind hamnava ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है मीडियम वेव और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय दिन के 12 बजने वाले हैं। चंद ही लम्हों बाद आप आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी और अंग्रेजी में खबरें समाप्त करेंगे। जरा सा इंतजार फरमाएं।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता आज से लागू हो गया है। इस अवसर पर केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल करते हुए राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। विदेश व्यापार महानिदेशालय, रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद, सीमा शुल्क प्राधिकरण और अन्य हितधारकों के सहयोग से 15 जुलाई की दोपहर को कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन करेगा, जिसमें भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते की शुरुआत के उपलक्ष्य में निर्यात खेप ब्रिटेन को भेजी जाएगी। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज के दिन को भारत ब्रिटेन संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता और सामाजिक सुरक्षा समझौता लागू हो गए हैं, जिससे भारत के लगभग 99% निर्यात पर 0% शुल्क के साथ बाजार पहुंच प्राप्त होगी और द्विपक्षीय व्यापार मूल्य का लगभग 100% हिस्सा इसके अंतर्गत आएगा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि ज्ञान से बुद्धिमत्ता उत्पन्न होती है, कौशल विकास को गति देता है और स्वस्थ जीवन हर आकांक्षा को साकार करने की शक्ति प्रदान करता है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि आज के युवा इन गुणों को अपना रहे हैं और राष्ट्र
1: और मजबूत कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता के कामकाज की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने उन्हें भारतीय राजनीति के सबसे महान नेताओं में से एक बताया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि उनकी सेवा और राष्ट्र निर्माण की अमिट विरासत पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि के कामराज भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के एक मजबूत स्तंभ और एक असाधारण सार्वजनिक व्यक्तित्व थे। विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी युवा शक्ति है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री बिरला ने कहा कि युवाओं की ऊर्जा, प्रतिभा और नवाचार विकसित भारत के सपने को साकार करने की सबसे मजबूत नींव है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज जगन्नाथ राव जोशी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि कर्नाटक के श्री जगन्नाथ राव जोशी एक देशभक्त कर्मयोगी थे, जिन्होंने गोवा में परमिट राज को समाप्त करने के लिए अमानवीय अत्याचार सहे। उन्होंने कहा कि भाजपा के आदर्शों और संगठन को पूरे देश में फैलाने में जोशी जी की राजनीतिक सूझबूझ युवा नेताओं को प्रेरित करती रहेगी। भारत ने आगाह किया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार न होने और वैश्विक संघर्षों का प्रभावी समाधान न निकाल पाने से लोगों का संयुक्त राष्ट्र में विश्वास घट रहा है। संयुक्त राष्ट्र में भविष्य के लिए बहुपक्षवाद को उपयुक्त बनाने संबंधी विषय पर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि सुरक्षा परिषद चल रहे संघर्षों में सार्थक हस्तक्षेप करने में विफल रही है।
2: The Security Council has been ineffective.
3: सुरक्षा परिषद प्रभावित आबादी की तकलीफों को खत्म करने में नाकाम रही है, इसलिए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के मूल सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने पर ही सवाल उठने लगे हैं। सुरक्षा परिषद की इन कमियों की वजह साफ है। 1940 के दशक के हिसाब से बना 80 साल पुराना ढांचा आज की चुनौतियों से निपटने के लिए उपयुक्त नहीं है। संयुक्त राष्ट्र एक समूह के तौर पर सुरक्षा परिषद में सुधार लाने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठा पाया है।
2: ऑन रिफॉर्मिंग द सिक्योरिटी काउंसिल।
0: होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों पर ईरान के हालिया हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी फिर शुरू कर दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अन्य देशों के लिए होर्मुज का रास्ता खुला है, लेकिन ईरान के लिए ये रास्ता बंद रहेगा। भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय

समीन, आप वरुण ग्रोवर के लिखे अशआर समाअत कर रहे थे अनु मलिक की मौसीकी में। ये मीठी सी आवाज़ थी मोनाली ठाकुर की और फिल्म का नाम दम लगा के है शाह।

जी समीन, आपने मनोज मुंतशिर के लिखे अशार समाप्त किए, आतिफ असलम की आवाज़, फिल्म का नाम रुस्तम। दोस्तों आपको बता दें कि आप इस वक्त फिल्मी नगमे समाप्त कर रहे हैं आकाशवाणी श्रीनगर के प्राइमरी स्टेशन से मीडियम वेव और FM 103.5 MHz पर।

0: हम्टी शर्मा की दुल्हनिया। जी हाँ दोस्तों, आपने अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में ये नगमा समाप्त किया। सिमिन, आपको बता दें कि आप फिल्मी नगमे समाप्त कर रहे थे आकाशवाणी श्रीनगर के प्राइमरी स्टेशन से। हमारे स्टूडियोज की कड़ी में इस वक्त ठीक 12:30 हुआ चाहते हैं। आइए अब समाप्त करते हैं खबरें, पहले उर्दू, उसके फौरन बाद कश्मीरी में।
1: आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। 12:30 हुए हैं। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं एजाजा अख्तर। भारत और बरतानिया के माबेन तय पाया इक्तिसादी और तिजारती शराकत दारी माहदा आज से नाफिजुल अमल हो गया है। दोनों मुल्कों के दरमियान सोशल सिक्योरिटी माहदा भी आज से ही लागू हो गया है, जिससे बरतानिया में काम करने वाले भारतीय पेशेवर अफराद की नकल हमल में सहूलत और उनकी मुसाबिकती सलाहियत को मजीद तकवीत मिलेगी। इक्तिसादी और तिजारती मामलात की मदद से बरतानिया के बाजारों में भारतीय बरामदात की 99% टैरिफ लाइन्स पर 0 कस्टम ड्यूटी की सहूलत फराहम की गई है। इस सहूलत से भारतीय बरामदात को नुमाया फरोग मिलेगा। श्री अमरनाथ जी यात्रा के सिलसिले में 3,00,000 यात्रियों ने पवित्र गुफा में हाजिरी देकर शिवलिंगम के दर्शन किए हैं। आज भी हजारों की तादाद में यात्री पहलगाम और बालतल के रास्ते गुफा पर पहुंच रहे हैं। इस दौरान 6,251 यात्रियों पर मुश्तमिल 14वां जत्था आज श्रीनगर पहुंच गया है। दरियासना आज दोपहर 12 तक मजीद 15,350 यात्रियों ने शिवलिंगम के दर्शन किए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने यात्रियों की रिकॉर्ड तादाद में आमद और यात्रा के ऐसे इनाकात पर इत्मीनान का इजहार करते हुए मुंतजमीन की हौसला अफजाई की है। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने जरिए सेक्टर की तरक्की में हासिल की गई कामयाबियों की सराहना करते हुए इस शोबे को मजीद फरोग देने के लिए जामे मनसूबाबंदी की जरूरत पर जोर दिया है। वो कल इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के सुपरविजन मिशन के मेंबरान के साथ एक मीटिंग की सदारत कर रहे थे। मिशन के वफद की कयादत इसकी कंट्री कोऑर्डिनेटर मीरा मिश्रा कर रही थी। मिशन ने कल यानी 14 जुलाई को जम्मू कश्मीर का अपना 2 रोजा दौरा मुकम्मल किया। जम्मू कश्मीर में उम्र नौजवानों खेलकूद महकमे की वसादत से 570 खेल प्रोजेक्टों पर काम जारी है। इन प्रोजेक्टों पर मजमूई तौर 650 करोड़ रुपए लागत आने का अंदाजा है। महकमे के कमिश्नर सेक्रेटरी शाहिद इकबाल चौधरी ने एक मीटिंग के दौरान इन प्रोजेक्टों की पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने मजकूरा प्रोजेक्टों के काम में सूरत लाने और जम्मू कश्मीर में खेलो इंडिया मिशन को बड़े पैमाने पर वसत देने की हिदायत दी। जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली के स्पीकर अब्दुलरहीम रातन ने सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल चरार शरीफ, सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पखरपुरा और सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल क्रमशुरा के हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड कमेटियों की मीटिंग तलब करके माली साल 2026-27 के दौरान रुकूमात के तसरुफ के लिए तैयार किए गए मनसूबों का जायजा लिया। स्पीकर मौसूफ ने दस्तियाब रुकूमात का मुनसिफाना इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत दी। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने तमाम सरकारी और निजी तिबी इदारों को हिदायत दी है कि वो कोड की बीमारी की तशखीस से मुतलिक तमाम तफसीलात नामजद सेहत हुकाम की नोट्स में लाएं। इसका मकसद कोड के बीमारों के मुअसर इलाज को यकीनी बनाना है। तवक्कु है कि इस फैसले से भारत को कोड से मुकम्मल तौर निजात दिलाने के कौमी मिशन को तकवीत मिलेगी। डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर अक्षय लाबरू ने कल श्रीनगर में डॉक्टर अलीजान रोड की तजदीदकारी और इस सड़क को वसत देने पर जारी काम का बरसर मौका मुआयना किया। डिप्टी कमिश्नर ने मुख्तलिफ महकमों के माबेन करीबी तालमेल की जरूरत पर जोर देते हुए इस प्रोजेक्ट को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। काबिले जिक्र है कि यह सड़क शहर के बेशतर इलाकों को स्केम 16 से जोड़ती है और इस तनाजुर में इंतहाई अहमियत की हामिल है। डिप्टी कमिश्नर कुलगाम शहजाद आलम ने जिला अफसरान की एक मीटिंग तलब करके प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के दूसरे मरहले के तहत मौसूल हुई दरख्वास्तों पर जारी कार्रवाई का जायजा लिया। मीटिंग के दौरान जिला सतह की कमेटी ने 10 दरख्वास्तों को मंजूरी दी। डिप्टी कमिश्नर ने इस स्कीम के फवायद मुस्तहकीन तक पहुंचाने की हिदायत दी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT श्रीनगर ने इंडिया टुडे इंजीनियरिंग रैंकिंग्स 2026 में अपनी पोजीशन मजीद बेहतर बनाई है। इंस्टीट्यूट ने मुल्क में तमाम इंजीनियरिंग कॉलेजों के जुमरे में 31वां मकाम हासिल किया है। इदारे के डायरेक्टर प्रोफेसर विनोद कुमार कनौजिया ने इस हौसलियाबी के लिए फैकल्टी मेंबरान, दीगर अमले और तालब इल्मों को मुबारकबाद दी है। आज वर्ल्ड यूथ

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता और सामाजिक सुरक्षा समझौता भारत ब्रिटेन की साझेदारी में एक महत्वपूर्ण क्षण है। श्री मोदी ने केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की सोशल मीडिया पोस्ट साझा करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये समझौता भारत के किसानों, उद्यमियों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति प्रदान करेगा, साथ ही कई जीवंत क्षेत्रों को ब्रिटेन के बाजार तक मजबूत पहुंच प्राप्त करने में मदद करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे प्रौद्योगिकी, पेशेवर सेवाओं और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग भी मजबूत होगा। इसके साथ ही कुशल भारतीय प्रतिभाओं की आवाजाही को भी बढ़ावा मिलेगा। भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते के आज से लागू होने पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एक अंग्रेजी दैनिक में लिखे लेख में बताया कि मुक्त व्यापार समझौता कारोबार के लिए विशेष अवसर सृजित करेगा तथा विकसित भारत 2047 के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को और गति देगा। उन्होंने कहा कि महत्वाकांक्षी समझौता समाज के हर वर्ग को सशक्त बनाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि यह समझौता भारत की आर्थिक वृद्धि और वैश्विक साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री सिंह ने कहा कि यह निर्यात को भी बढ़ावा देगा। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि यह समझौता एक ऐतिहासिक कदम है जो देश के आर्थिक हितों को मजबूत और किसान तथा कृषि क्षेत्र को सुदृढ़ करेगा। उन्होंने कहा कि भारत और ब्रिटेन के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में यह समझौता एक परिवर्तनकारी कदम है। उद्योग जगत ने भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते को ऐतिहासिक मील का पत्थर बताया है। फिक्की के महासचिव अनंत स्वरूप ने कहा कि यह समझौता वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी बढ़ाने और नवाचार आधारित विकास को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
1: This agreement would open up new opportunities.
2: यह समझौता भारतीय उद्योग जगत के लिए सामान और सेवाओं दोनों ही क्षेत्रों में नए अवसर खोलेगा। नवाचार और प्रतिभा की आवाजाही में सहयोग से भारतीय उद्योग की प्रतिस्पर्धा क्षमता बढ़ेगी। यह समझौता भारत की मुक्त व्यापार यात्रा में एक अहम पड़ाव है और इससे वैश्विक मूल्य श्रृंखला में भारत की भागीदारी बढ़ेगी। साथ ही भारत और ब्रिटेन दोनों देशों में नवाचार आधारित विकास को बढ़ावा मिलेगा।
1: Both the countries, India and the United Kingdom.
0: वहीं एसोचैम के अध्यक्ष निर्मल कुमार मिंडा ने कहा कि यह समझौता भारत की मुक्त व्यापार समझौते यात्रा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है जो दुनिया के दो सबसे पुराने लोकतंत्रों को एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौते के माध्यम से जोड़ता है। ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मोहित सिंगला ने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते का क्रियान्वयन भारत की सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदारी में से एक है। भारत की 2026 की अध्यक्षता में हैदराबाद में 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री डॉ मनसुख मांडविया और राज्य मंत्री शोभा करंदलाजी की अध्यक्षता में हो रही इस उच्च स्तरीय चर्चा में सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देना, कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना, वैश्विक कौशल का आकलन करना और गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाना जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि सदन में हंगामे से नहीं बल्कि सार्थक बहस और तर्कपूर्ण चर्चा से जनप्रतिनिधि अपनी पहचान बनाते हैं। वे आज राजस्थान विधानसभा के 75वें स्थापना वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित अमृत महोत्सव के अंतर्गत विधायी गौरव यात्रा कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वो अगले सप्ताह तक वार्ता के लिए नहीं आता तो उसके खिलाफ सैन्य हमलों को और तेज कर दिया जाएगा। एक साक्षात्कार में श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के हमले आने वाले दिनों में जारी रहेंगे और अगले सप्ताह इनका दायरा बढ़ सकता है और ईरान के बिजली संयंत्रों और पुलों को भी निशाना बनाया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ईरान बातचीत के लिए तैयार नहीं होता है तो अमेरिका उसके प्रमुख ऊर्जा प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचाएगा। उन्होंने कहा कि सैन्य हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक उन्हें यह नहीं लगेगा कि अभियान के उद्देश्य पूरे हो गए हैं। खेलों में स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। अमेरिका के डल्स में कल पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराया। फाइनल में स्पेन का मुकाबला अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच आज एटलांटा में होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में लगभग आधे प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 372 अंक की वृद्धि के साथ 77,427 पर, जबकि निफ्टी 100 अंक बढ़कर 24,152 पर था। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani. The news read by Anuja Kumar. The India-United Kingdom Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA, has come into force from today. Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said the agreement will benefit women, farmers, youth, MSMEs, innovators, professionals and fisherfolk, creating various opportunities. In an article in an English daily, Mr. Goyal said that this ambitious agreement will empower every section of society, reflecting the capabilities and aspirations of the people of India. Mr. Goyal said that it will not only benefit just Indian exporters, but also white-collar service sector professionals across skill sets. He noted that under the agreement, nearly all of India's exports to the UK will enjoy duty-free access. The Commerce and Industry Minister mentioned that the agreement safeguards sensitive farm products such as dairy, vegetables, apples, edible oils, oats, millets, cooking oils, and others by placing them in the sensitive list, and added that no duty concessions have been granted to the UK on these items. The minister noted that these exclusions reflect the government's strategy of prioritizing food security, domestic price stability, and vulnerable farming communities. Prime Minister Narendra Modi has said that the Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA, and the Agreement on Social Security, which came into force today, is a significant moment in the partnership of India-United Kingdom. Mr. Modi made these remarks while sharing a social media post of Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal. Marking a milestone in bilateral economic relations, the first export consignment under the new Indo-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement was flagged off in Chennai today. The British Deputy High Commissioner to Chennai, Dr. Suttappa Chaudhary, joined the officials from the Directorate General of Foreign Trade to flag off the consignment. Industry bodies have described the India-UK Free Trade Agreement as a historic milestone in India's free trade agreement journey. Secretary General of the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry, Anand Swaroop, has said the agreement will go a long way in enhancing India's participation in global value chains. Mr. Swaroop congratulated Prime Minister Narendra Modi on the operationalization of the India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement.
1: This agreement would open up new opportunities for the Indian industry in both goods and services. The cooperation in innovation, technology and talent mobility will enhance Indian industry's competitiveness. The agreement is a major landmark in India's FTA journey and will go a long way in promoting India's participation in global value chains and encouraging innovation-led growth in both the countries, India and the United Kingdom.
3: President Draupadi Murmu has said that the central government has established Ayurveda and Yoga on the global stage with renewed energy. Addressing the inaugural function of Saushrutam 2026 in New Delhi today, the president expressed satisfaction that efforts are being made to establish the ancient tradition of Ayurvedic surgery on scientific standards. Vice President and Rajya Sabha Chairman C.P. Radhakrishnan today administered the oath to the newly elected members of the Upper House. The members included Mansoor Ali Khan from Karnataka and Rajneesh Kumar Agrawal from Madhya Pradesh. United States President Donald Trump has claimed the Strait of Hormuz remains open to international shipping but is closed to Iranian traffic. He said U.S. officials had recently conveyed a message to Tehran, urging it to reach a deal or face further consequences. In an interview, Trump has warned Iran of intensified military strikes next and returns to the negotiating table. The IMD has issued a red colour warning for heavy to very heavy rainfall with isolated extremely heavy rainfall over Odisha today. Heavy rainfall is also expected over parts of northeast India, Bihar, West Bengal and Uttarakhand till tomorrow. And in FIFA Cup football, Spain stormed into the final, stunning France 2-0 in the first semi-final clash at Dallas Stadium in Texas last night. In other semi-final, defending champions, Argentina will face England at Atlanta Stadium tonight at 12:30 a.m. Indian time. And that is the end of this news bulletin.

0: शब्दांग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ, जिसे हमें भेजा है लोहारा यवतमाल महाराष्ट्र से क्षितिज संदीप कोल्हे और अश्विन कोल्हे जी ने। बड़ा सुंदर विचार इन्होंने भेजा है, आइए सुनते हैं।
2: लिखते हैं, सपना वो नहीं है जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते।
3: बहुत ही सुंदर विचार, आप सबको हमारा धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
2: सुहाना चौक ग्राम जसवाड़ी से सूरज कुमार ढाकसे जी ने लिखा है,
3: अजीत जी और विमलेश जी आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार, आप कैसे हैं जी? आशा करता हूँ कि आप सकुशल होंगे। मैं सूरज कुमार ढाकसे दोनों आँखों से नेत्रहीन हूँ, प्रतिदिन आपका कार्यक्रम रेडियो पर सुनता हूँ। आपके इस कार्यक्रम में एक से एक बढ़कर कहानियाँ, कविताएं और ये भी जानिए मैं दुर्लभ जानकारियाँ सुनकर मुझे बहुत खुशी होती है। हमें दिनांक 22 जून 2026 का कार्यक्रम राग सिंदूरा बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद।
2: सूरज कुमार ढाकसे जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। अगला संदेश हमें मिला है रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू और शुभम सेजल साहू।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर संदेशों के लिए श्रोताओ। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करते हैं श्रृंखला ये भी जानिए में। श्रोताओ, जैसा कि आप जानते हैं कि उमंग एक शैक्षिक कार्यक्रम है,
2: इसलिए इसमें शिक्षा की बात तो होती ही है, लेकिन ये मनोरंजन से भी भरपूर होती है। इस कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं पुस्तकों के विकास की, और इस क्रम में हमने कल बात की थी मेसोपोटामिया की सभ्यता की मिट्टी की पटियाओं की, जिन्हें हम आज की पुस्तकों का आदि रूप कह सकते हैं।
3: जी, समय का पहिया चलता गया और मेसोपोटामिया की सभ्यता के लगभग 400 वर्षों के बाद एक और महान सभ्यता विकसित हुई। लेकिन वो कौन सी सभ्यता थी, ये विमलेश जी आपको बताना होगा, तो चलिए मैं आपको कुछ हिंट देता हूँ।
2: जी,
3: वो सभ्यता उस नदी के किनारे विकसित हुई थी जो विश्व की सबसे लंबी नदी है।
2: अजीत जी, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, और मिस्र को नील नदी का उपहार भी कहते हैं, कहीं ये मिस्र की सभ्यता तो नहीं?
3: बेशक, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। तो चलिए अब करते हैं बात पुस्तकों की और जानते हैं प्राचीन मिस्र में लेखन कला का विकास कैसे हुआ और वे कैसे लिखते थे।
2: प्राचीन मिस्र के लोगों ने नील नदी के तट पर प्रचुरता से मिलने वाले पेपिरस के पौधों से लिखने की सामग्री बनाई।
3: पेपिरस के पौधों से लिखने की सामग्री बनाई, लेकिन कैसे?
2: ये एक अद्भुत तकनीक थी। पहले वे पेपिरस के पौधों की कटाई करते थे, फिर इसकी मोटी लेकिन मुलायम डंडियों का छिलका हटाकर उन्हें पतली पतली पट्टियों में काटा जाता था, फिर पट्टियों को पहले एक दिशा में बिछा दिया जाता था।
3: जी, और उसके बाद दूसरी परत को उन पर आड़ा बिछाया जाता था, फिर उन्हें भारी समतल पत्थरों या लकड़ी की भारी तख्तियों से दबाया जाता था।
2: इसमें एक मजेदार बात यह है कि पेपिरस के पौधों का प्राकृतिक रस ही गोंद का काम करता था, जिससे वे आपस में चिपक जाती थी। उन्हें सुखाने पर वे कागज की तरह बन जाती थी, फिर उन पर लिखा जाता था।
3: लेकिन वो लिखते कैसे थे?
2: लिखने के लिए वे सरकंडे का उपयोग करते थे। पेपिरस के द्वारा मिस्रवासियों ने स्क्रॉल्स भी बनाए जिनमें राजाज्ञाएं लिखी होती थीं। इसी स्क्रॉल शब्द का प्रयोग आज मोबाइल या कंप्यूटर के पर्दे को ऊपर नीचे करने में इस्तेमाल होता है।
3: उनका स्याही बनाने का तरीका भी बहुत दिलचस्प था। वे घास और वनस्पतियों को जलाकर कालीख बनाते थे
2: जी,
3: और उसमें गोंद मिलाते थे तो बन जाती थी काली स्याही
2: जी।
3: वे लाल गेरू से लाल स्याही बनाते थे, ये प्राकृतिक लाल रंग की बेहद चिकनी मिट्टी होती है। बता दें

0: बताओ कि महत्वपूर्ण बातों को वे लाल रंग से लिखते थे और शेष बातों को काले रंग से। इससे दस्तावेज के महत्व का पता चलता था।
1: यही परंपरा आज भी चली आ रही है। पता है श्रोताओं, पेपिरस इतना उपयोगी था कि लगभग 2000 वर्षों तक मिस्र से भूमध्य सागर के आसपास के कई देशों को निर्यात करता था। इसी पेपिरस से पेपर शब्द निकला और पेपर को पेपिरस का वंशज कहा जा सकता है। पेपिरस के आने से पुस्तकों का वजन बहुत हल्का हो गया, जिससे उन्हें आसानी से लाया ले जाया जा सकता था।
0: विमलेश जी, तो ये बात हुई पेपिरस की।
1: जी,
0: अब ये जानना चाहिए कि मिस्र के लोगों ने पेपिरस पर क्या लिखा। क्या इससे मिस्र की सभ्यता के बारे में कोई जानकारी मिलती है?
1: जी अजीत जी, ये जानना बड़ा रोचक होगा। मिस्रवासियों ने पेपिरस पर धार्मिक ग्रंथ लिखे। पेपिरस पर राजाओं के वृत्तांत भी लिखे मिलते हैं
0: और फैरो राजाओं के आदेश भी। बता दें कि फैरो मिस्र के राजा हुआ करते थे।
1: जी,
0: पेपिरस पर प्राचीन मिस्र की चिकित्सा विधियां भी लिखी मिलती हैं, गणित, साहित्य और कथाएं भी मिलती हैं। एक बात और साझा करना चाहता हूं विमलेश जी, और वो ये कि प्राचीन मिस्र में लेखक बहुत सम्मानित समझे जाते थे और उन पर राजाओं की विशेष कृपा होती थी।
1: तो श्रोताओं, जिन दिनों में विश्व के अनेक देश पत्थरों और मिट्टियों की तख्तियों पर लिख रहे थे, उस समय मिस्र के लेखक पेपिरस के हल्के और लचीले पन्नों पर विज्ञान, चिकित्सा, व्यापार और साहित्य का विशाल ज्ञान संजो रहे थे।
0: तो श्रोताओं, ये थी जानकारी किताबों के उद्भव और विकास की। लेकिन अभी और भी मंजिलें हैं जिनकी चर्चा हम करेंगे अगले एपिसोड में।
1: जी,
0: अब सुनिए आज का प्रश्न। तो हमारा आज का प्रश्न है, पेपर शब्द किस वनस्पति के नाम से बना है और ये वनस्पति कहाँ पैदा होती थी? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: पेपर शब्द किस वनस्पति के नाम से बना है और ये वनस्पति कहाँ पैदा होती थी?
0: आप इस प्रश्न का उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं
1: और हमारे ईमेल का पता भी नोट कर लीजिए, audio@cit.nic.in है हमारे ईमेल का पता।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं। आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो श्रोताओं, हमारा आज का पहला कार्यक्रम है धरती का हरियाला उत्सव।
1: कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में मानसून के बारे में बताते हुए प्रकाश डाला गया है कि मानसून की परिभाषा क्या है और वर्षा लाने में इसकी क्या भूमिका है।
0: धरती का हरियाला उत्सव।
2: नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है आज के कार्यक्रम में। ऋतिक और रश्मि नाना नानी के घर गर्मी की छुट्टियों में गए हुए थे। नाना नानी दोनों ही शिक्षक रह चुके हैं। शाम को ऋतिक और रश्मि चौपाल जरूर जाते थे। बहुत गर्मी पड़ रही थी, सब गर्मी के प्रकोप से परेशान थे। देखते ही देखते चौपाल में चर्चा मानसून की होने लगी। ऋतिक और रश्मि जब घर पहुंचे तो उनके मन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, मानसून किसे कहते हैं? आइए सुनते हैं कि क्या बातें हो रही हैं ऋतिक, रश्मि और उनके नाना नानी के बीच।
3: नाना जी, नाना जी।
4: अरे ऋतिक, रश्मि भाई, आओ आओ आओ। कैसी रही चौपाल?
3: ठीक रही नाना जी। आज ना किसी ने गीत गाया और ना ही कोई नाटक दिखाया गया। आज तो बस यही बात हो रही थी कि
5: बहुत गर्मी पड़ रही है। कोई कह रहा था कि मानसून अब बस आने ही वाला है।
6: नाना जी, इतना तो मुझे भी पता है कि यह ग्रीष्म ऋतु के बाद आता है, लेकिन आप हमें और कुछ बताइए ना।
3: हाँ हाँ, बताइए ना। माँ बताती हैं कि आप बहुत अच्छा पढ़ाते थे। क्या पढ़ाते थे आप?
4: बेटा, मैं भूगोल पढ़ाता था।
5: ये लो, नानी जी भी आ गई।
7: अरे, यहाँ क्या बातें हो रही हैं?
4: अरे कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं। मैं तो बता रहा था इन्हें कि तुम बहुत अच्छा हिंदी पढ़ाती हो।
7: हाँ, वो तो है।
3: नानी, हम मानसून के बारे में जानना चाहते थे।
7: अच्छा, तो ये बात है। तो भाई चलो शुरुआत करते हैं तुम्हारे नाना जी से।
4: अच्छा चलो भाई, चलो मैं शुरू करता हूँ। देखो बच्चों, मानसून के बारे में जानने से पहले ये तो जान लें कि मानसून शब्द आया कहाँ से है।
3: कहाँ से आया है
4: भाई? शाब्दिक रूप से मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम शब्द से आया है। किस शब्द से?
3: अरबी भाषा के मौसम शब्द से।
4: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे भाई। मौसम शब्द का अर्थ होता है ऋतु। एक बात और बता दूं, कि इस

0: शब्द का प्रयोग पूरी दुनिया में नहीं होता।
1: पूरी दुनिया में नहीं होता तो फिर?
0: ये शब्द हिंद महासागर, अरब सागर, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिण एशिया सहित आसपास के क्षेत्रों में मौसमी पवनों के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है।
1: आपने कहा ये मौसमी पवन है, क्या मानसून पवन या हवा है?
0: बहुत सुंदर प्रश्न बेटी, बहुत सुंदर प्रश्न। नहीं बेटी, मानसून सामान्य हवा या पवन नहीं है। ये एक ऋतु है जो विशेष मौसमी हवाओं के कारण आती है, इसीलिए इसे मानसूनी हवा भी कहते हैं। इसी के कारण वर्षा ऋतु आती है।
1: नाना जी, मानसूनी पवन कैसे बनती है?
0: देखो बच्चों, अगर सरल शब्दों में कहें तो जैसे ही गर्मी का मौसम आता है, एशियाई भूभाग गर्म होने लगता है, वहाँ एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन जाता है।
1: अच्छा नाना जी।
0: चूँकि पवन ऊंचे दबाव वाले क्षेत्र से निम्न दबाव वाले क्षेत्र की ओर बहती है, इसलिए ये महासागर से निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर बहती है। ये समुद्री पवन नमी लेकर आती है।
1: अच्छा।
0: जो गर्म भूभाग पर संघनित होती है और फिर उससे भारी वर्षा होती है।
1: अब समझ में आया। नाना जी, मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा है कि भारत में मानसून आने ही वाला है, इसका क्या मतलब हुआ?
0: देखो भाई, यदि भारत की बात करें तो मानसून यानी मानसूनी हवाएं भारत के दक्षिणी हिस्से से प्रवेश करती हैं, कुछ सप्ताहों में उत्तर की तरफ बढ़ती हैं और जुलाई के महीने तक पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैल जाती हैं।
2: और बच्चों, भारत में मानसून सबसे पहले केरल में आता है।
0: हाँ।
2: जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा देश भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमारे देश की लगभग 60-70% खेती मानसून पर ही निर्भर करती है।
0: बिल्कुल।
2: और हाँ, हमारी भारतीय परंपरा में 6 ऋतुएं मानी जाती हैं, जिन्हें षड ऋतु कहा गया है।
1: अच्छा।
2: वर्षा ऋतु का प्रभाव सभी ऋतुओं पर पड़ता है। अच्छा मानसून यानी अच्छी फसल, और अच्छी फसल यानी
1: अच्छी अर्थव्यवस्था।
2: हाँ।
0: बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। तुम्हें पता है, वर्षा का हमारी भारतीय संस्कृति पर भी बहुत गहरा प्रभाव है। ये सिर्फ बारिश का मौसम ही नहीं है, हमारी कला, साहित्य, त्योहारों और संस्कृति का भी आधार है।
1: वो कैसे?
2: वो ऐसे कि महाकवि कालिदास की सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है मेघदूत। कहा जाता है कि इस महाकाव्य में बादलों और वर्षा ऋतु का सबसे सुंदर चित्रण है। अगर आधुनिक कविताएं कहें तो फिर सुमित्रानंदन पंत, निराला और महाकवि रविंद्रनाथ टैगोर ने भी मानसून यानी वर्षा ऋतु की सुंदरता के बारे में बहुत कुछ और बहुत सुंदर लिखा है।
0: भाई, इसे सावन और भादों का नाम भी दिया गया है। और हाँ, यदि संगीत की बात करें तो हमारे राग जैसे मेघ मल्हार, मिया मल्हार, गौड़ मल्हार और राग देश विशेष रूप से वर्षा ऋतु के लिए ही तो रचे गए हैं। समझ गए?
1: जी नाना जी। और हमें मानसून के बारे में जानकारी भी मिल गई।
3: हाँ हाँ, पूरी जानकारी मिल गई।
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम धरती का हरियाला उत्सव, और आइए अब सुनते हैं हमारा अंतिम कार्यक्रम। शीर्षक है स्वामी विवेकानंद।
5: इस कार्यक्रम में भारत के महान संत, तपस्वी, विचारक और चिंतक स्वामी विवेकानंद के जीवन और भारतीय दर्शन को पश्चिमी देशों में परिचित कराने की उनकी महत्वपूर्ण भूमिका का सविस्तार उल्लेख किया गया है।

0: भारतीय संस्कृति के गौरवशाली प्रतीक एवं महान व्याख्याता माने जाते हैं। उन्होंने देश विदेश की यात्राएं की और भारतीय परंपराओं को गौरवान्वित किया। विश्व कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर का कहना है, यदि आप भारत को समझना चाहते हैं तो स्वामी विवेकानंद का अध्ययन कीजिए। स्वामी विवेकानंद का जन्म कलकत्ता में 12 जनवरी 1863 को हुआ। इनके बचपन का नाम नरेंद्रनाथ था। नरेंद्रनाथ का पालन पोषण खुशहाली में हुआ। उनके पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाई कोर्ट में बड़े वकील थे। वे नए विचारों के व्यक्ति थे। नरेंद्रनाथ की माता जी पुराने विचारों की धार्मिक महिला थीं। उनका अधिकांश समय पूजा पाठ में व्यतीत होता। वे नरेंद्रनाथ को रामायण और महाभारत के किस्से कहानियां सुनाती। अतः नरेंद्रनाथ को अपने माता पिता से नए और पुराने विचारों का समन्वय मिला। नरेंद्र बचपन से ही बहुत नटखट थे। उनकी शरारतों के कारण सभी तंग रहते। एक दिन की बात है, नरेंद्र कोई शरारत करके भाग खड़े हुए। उनकी बहन उनको पकड़ने के लिए उनके पीछे दौड़ी। नरेंद्र ने तुरंत नाली में उतरकर अपने शरीर पर कीचड़ लपेट ली और बोले, अब पकड़ो मुझे। कीचड़ में लिपटे भाई को देखकर बहन अपना समूह लेकर लौट गई। नरेंद्र थे तो नटखट स्वभाव के, परंतु उनके हृदय में धर्म के प्रति आदर एवं श्रद्धा का भाव था। वे अपनी माँ के पास घंटों बैठे पुराणों की कथा बड़े चाव से सुनते और उन्हें याद रखते। एक दिन की बात है, नरेंद्र उस समय 8 वर्ष के थे। अपने कुछ साथियों के साथ शहर में लगा मेला देखने गए। वहां उन्होंने बहुत आकर्षक वस्तुएं देखी। उन्होंने उत्सुकता से मेले की सभी दुकानें देखीं। अंत में उन्होंने मिट्टी का एक शिवलिंग खरीदने का निश्चय किया। शिवलिंग खरीदने के बाद नरेंद्रनाथ के पास केवल 4 आने पैसे बचे। वे अभी सोच ही रहे थे कि इन पैसों का क्या खरीदा जाए कि तभी
1: अरे, ये तो किसी के रोने की आवाज है। कौन रो रहा है और क्यों रो रहा है? देखूं तो ये आवाज कहां से आ रही है? ओ, ये तो एक बच्चा है। पता नहीं क्यों रो रहा है। चलकर इसी से पूछता हूँ, तुम कौन हो और क्यों रो रहे हो?
2: मेरा नाम राजू है। मैं यहाँ मेला देखने आया था। मुझे माँ ने मेले में खर्चने के लिए 4 आने पैसे दिए थे। पता नहीं वो पैसे कहाँ खो गए। जब माँ को पता चलेगा तो वो मुझे बहुत मारेगी। मैं कहाँ से लाऊं वो पैसे?
1: चुप हो जाओ, रो नहीं, मैं तुम्हें 4 आने पैसे देता हूँ। ये लो 4 आने, इन्हें अब संभाल कर अपने पास रख लो। अब माँ नहीं मारेगी तुम्हें। जाओ, खुशी खुशी घर जाओ।
2: अच्छा।
0: और इस तरह नरेंद्र ने अपने बचे हुए पैसे उस बच्चे को दे दिए। बच्चा बहुत खुश हुआ। मेले से जुड़ी एक और घटना है जिससे हमें पता चलता है कि नरेंद्रनाथ दीन दुखियों की सहायता करना अपना कर्तव्य समझते हैं। मेले से खरीदा शिवलिंग हाथ में लिए नरेंद्रनाथ घर की ओर चल दिए। वे अभी मेले से बाहर निकले ही थे कि उन्होंने देखा एक छोटा बालक दौड़ता हुआ सड़क की ओर आ रहा है। यदि उसे तुरंत बचाया नहीं गया तो गाड़ी के नीचे आ सकता है। नरेंद्र ने तुरंत हाथ

0: में पकड़ी हुई शिवलिंग फेंकी और दौड़कर उस बच्चे को उठा लिया। तभी पास खड़े एक वृद्ध ने उससे कहा,
1: बेटा तुम्हारा शिवलिंग तो टूट गया, अब तुम किसकी पूजा करोगे?
2: महाशय कोई बात नहीं
1: है?
2: मुझे खुशी है कि मैंने इस बालक की जान बचाई। यही मेरा कर्तव्य है, मेरी सबसे बड़ी पूजा है।
0: नरेंद्र की माताजी को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने बेटे को गले से लगा लिया और कहा,
3: बेटे जीवन में सदैव ऐसे ही काम करना।
2: परंतु माँ एक अपराध हो गया।
3: क्या?
2: मुझसे शिवलिंग टूट गया, ये तो शिव जी का अपमान हुआ ना।
3: बेटा नरेंद्र तुमने ऐसा जानबूझकर तो किया नहीं।
2: नहीं।
3: और फिर मनुष्य और मनुष्यता की रक्षा ही सच्ची शिव भक्ति है। तुमने जो किया मेरे बच्चे बिल्कुल ठीक किया।
2: माँ
0: बाल्यकाल से ही नरेंद्र नाथ में महापुरुष के लक्षण स्पष्ट रूप से झलकने लगे। एक दिन की बात है, उनकी कक्षा में प्रधानाचार्य धर्म और दर्शन पर व्याख्यान दे रहे थे। उन्होंने देखा नरेंद्र नाथ अपनी आंखें बंद किए बैठे हैं। उन्होंने पूछा,
4: नरेंद्र नाथ तुम सो रहे हो?
5: जी नहीं प्रधानाचार्य जी, मैं कुछ सोच रहा था।
4: क्या सोच रहे हो तुम?
5: क्या आप मेरे प्रश्न का उत्तर देने का कष्ट करेंगे?
4: हाँ बोलो नरेंद्र, क्या प्रश्न है तुम्हारा?
5: श्रीमान जी, क्या आपने ईश्वर के दर्शन किए हैं?
4: नरेंद्रनाथ तुमने बहुत कठिन प्रश्न पूछा है। तुम इस प्रश्न के उत्तर की खोज में गंभीर भी हो, निराश ना हो। मैं तुम्हें ऐसे संत का नाम बताता हूं जो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर सही सही दे सकते हैं। यदि वास्तव में ईश्वर के दर्शन करना और सत्य की प्राप्ति ही तुम्हारा उद्देश्य है तो तुम दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण परमहंस के पास चले जाओ, वे ही तुम्हें ईश्वर के विषय में बता सकते हैं।
0: नरेंद्र नाथ को प्रधानाचार्य की बात जच गई और वे कुछ ही दिनों बाद दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंच गए। वहां पहुंचकर नरेंद्र नाथ ने अपना वही प्रश्न पूछा।
5: प्रणाम महात्मन।
6: जीते रहो पुत्र।
5: महात्मन मैं आपसे अपने एक प्रश्न का उत्तर जानने आया हूँ, क्या आप मेरे प्रश्न का उत्तर देंगे?
0: जब श्री रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र नाथ को देखा तो वे उन्हें एकटक देखते ही रहे, जैसे वे बहुत पहले से ही एक दूसरे से परिचित हों। फिर वे नरेंद्र से बोले,
6: पूछो पुत्र, तुम क्या पूछना चाहते हो?
5: क्या आपने ईश्वर को देखा है?
6: हाँ पुत्र, मैंने ईश्वर को देखा है, ठीक वैसे ही जैसे तुम्हें देख रहा हूँ, तुमसे बात ही कर रहा हूँ। यदि कोई सच्चे हृदय से ईश्वर की आराधना करे तो वो अवश्य भगवान को प्रत्यक्ष पा सकेगा। यदि तुम मेरे कहे अनुसार काम करो तो तुम्हें भी भगवान के दर्शन करा सकता हूँ।
0: श्री रामकृष्ण परमहंस की बातों का नरेंद्र नाथ पर गहरा प्रभाव पड़ा और वे उनकी ओर आकर्षित होने लगे। रामकृष्ण परमहंस को तो पहली दृष्टि में ही नरेंद्र के प्रति अपार स्नेह उत्पन्न हो गया और एक समय वो भी आया जब नरेंद्र श्री रामकृष्ण परमहंस के सच्चे शिष्य बन गए। उन्होंने उनके विचारों को अपनाया। श्री रामकृष्ण परमहंस की महासमाधि यानी उनके निधन के बाद नरेंद्र ही उनके उत्तराधिकारी बने। वे केवल नाम के ही उत्तराधिकारी नहीं बने, उनके काम के भी बने। अपने गुरु के नाम पर उन्होंने रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना की, गुरु के विचारों का प्रसार किया, देश के दीन दुखियों के लिए शिक्षा तथा अन्य कल्याणकारी योजनाएं चलाईं। अब वे स्वामी

0: विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हो गए और उन्होंने देश के अनेक भागों का भ्रमण किया। लोगों के असहनीय दुख दर्द को अपनी आंखों से देखा और उन्हें मिटाने का भरसक प्रयत्न किया। स्वामी विवेकानंद ने अपने एक पत्र में लिखा था,
1: मुझे ईश्वर में विश्वास है, मुझे मनुष्य में विश्वास है, मुझे दीन दुखियों की सहायता में विश्वास है और यही मेरा कर्तव्य भी है।
0: इसी दृढ़ निश्चय को लेकर उन्होंने दक्षिण भारत में कन्याकुमारी नामक स्थान पर समुद्र के बीच स्थित एक शिला पर 2 दिन और 2 रात अटूट समाधि लगाई।

0: इसी समाधि के दौरान उनकी आंखों के सामने अतीत और वर्तमान भारत के चित्र उभर आए। जिस शिला पर स्वामी विवेकानंद ने समाधि लगाई वो आज विवेकानंद स्मारक के रूप में प्रसिद्ध है। आज लाखों लोग कन्याकुमारी स्थित उस विवेकानंद स्मारक के दर्शन करने आते हैं। जन कल्याण की भावना विवेकानंद के रोम रोम में समा चुकी थी। इसी भावना को लेकर उन्होंने देश में पैदल भ्रमण किया। वो जहां भी जाते उनका आदर सत्कार होता और लोग उनके शिष्य बन जाते। इसी बीच अमरीकी शहर शिकागो में एक विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन हुआ। स्वामी जी ने इस सम्मेलन में जाने का फैसला किया। वे शिकागो पहुंचे। वहां उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इस शिकागो सम्मेलन में उन्हें अपने विचार प्रकट करने का विधिवत निमंत्रण नहीं मिला था। फिर भी अपने एक मित्र की सहायता से उन्हें सम्मेलन में केवल 5 मिनट बोलने का समय दिया गया, जिसमें वे अपने विचारों को सभा के सामने रख सकते थे। स्वामी जी ने अपने भाषण में कहा,
1: मेरे अमरीकी भाइयों और बहनों, मुझे अपने देश भारत पर, अपने देश की संस्कृति पर और अपने धर्म पर गर्व है। ये वही देश है जिसने संसार के पीड़ितों की, दुखियों की रक्षा की है। सभी भारतवासियों को सर्वधर्म संभाव की शिक्षा दी है। मुझे ऐसे राष्ट्र का नागरिक होने का गौरव प्राप्त है जिसने विश्व के सब धर्मों और राष्ट्रों के शरणार्थियों को शरण दी है। इस धरती पर समय समय पर अत्याचार होते रहे हैं, भिन्न भिन्न धर्मों के लोग पीड़ित किए गए हैं। धर्म का अर्थ है अशांति और द्वेष को पूरी तरह दूर करना। हमारा कर्तव्य है कि अपने धर्म की श्रेष्ठता सिद्ध करते हुए दूसरे धर्मों को नीचा न कहें। सभी धर्म एक समान है, सभी धर्मों का आदर करना हमारा कर्तव्य है।
0: स्वामी विवेकानंद का ये भाषण सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो गए और तालियों की गड़गड़ाहट से भवन गूंज उठा। उनके विचारों की सभी ने प्रशंसा की। इसके बाद पश्चिमी देशों में स्वामी जी के भाषणों का तांता लग गया। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। उनके भाषणों की चर्चा सारे विश्व में होने लगी। उन्होंने सुसंस्कृत भारत की जो छवि विश्व के सामने प्रस्तुत की उससे भारतवासियों के मस्तक गर्व से उठ गए। और जब वे विदेश से भारत लौटे तो भारत की जनता ने उनका भावभीना स्वागत किया। स्वामी विवेकानंद को भारतीय होने का गर्व था। वे चाहते थे कि उनके देशवासी भी ऐसे

0: देश के लिए जिए, देश के लिए मरे। स्वामी जी में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी। उनका सारा प्रेम भारत के प्रति था और भारत की सेवा में ही उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। आज भी उनके विचार उन्हें अमर बनाए हुए हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वामी विवेकानंद। इस कार्यक्रम के बाद हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को
2: उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
1: जगबंधु,
2: चेतना और मंजू कुमारी जी के साथ मुझे यानी विमलेश को आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
4: जी समीन, आप समाप्त कर रहे थे एनसीईआरटी का तैयार करता स्पॉन्सर्ड तालीमी प्रोग्राम उमंग।
5: चिनार की छांव तले किताबों का एक खूबसूरत जहां आपका इंतजार कर रहा है। आइए तीसरे चिनार बुक फेस्टिवल में, जहां मिलेंगी इंग्लिश, हिंदी, उर्दू और अन्य भारतीय भाषाओं के 200 से अधिक बुक स्टॉल्स, साथ ही क्रिएटिव वर्कशॉप्स बच्चों के लिए, लिटरेरी सेशंस, डिजिटल रीडिंग कॉर्नर और कल्चरल परफॉर्मेंसेस का लुत्फ उठाइए। 18 से 26 जुलाई, SKICC श्रीनगर, चिनार बुक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया इन कोलैबोरेशन विद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर। टुगेदर वी रीड, टुगेदर वी लीड।
4: समीन, हमारे प्रोग्रामों के हवाले से एक इतला समाप्त करें। प्रोग्राम हेलो रेडियो क्लिनिक के ताज़ा शुमारे की रिकॉर्डिंग आज दिन के 3 बजे से 4 बजे तक हो रही है। इस बार प्रोग्राम में जिस मौजू का इंतखाब किया गया है वो है कैंसर से लड़ रहे बीमारों का ख्याल कैसे रखा जाए। मौजू पर तफसीली मालूमात फराहम करने के लिए हमने मधु किया है नामवर मुअल्लिज डॉक्टर अबरार रसूल को। अगर आप हमारे मेहमान मुअल्लिज से मौजू की मुनासिबत से कोई भी सवाल पूछना चाहते हो तो राबिता करें फोन नंबर 01924 2480364 पर। समीन, फोन नंबर एक मरतबा फिर समाप्त फरमाएं 01942480364। रिकॉर्डिंग का वक्त रहेगा आज दिन के 3 बजे से 4 बजे तक। तो ये थी एक इतला हमारे प्रोग्रामों के हवाले से।

आइए दोस्तों अब तमाशा फिल्म से ये नगमा समाप्त करते हैं। इरशाद कामिल के अशआर हैं, ए आर रहमान की मौसीकी में आवाज़ें हैं अरिजीत सिंह और अलका याग्निक की।

जी समीन, फिल्मी नगमे आप समाप्त कर रहे थे आकाशवाणी श्रीनगर के प्राइमरी स्टेशन से। यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है, मीडियम वेव और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन के 1:50 हुआ चाहते हैं चंदीला मोबाद, आप आकाशवाणी दिल्ली से समाप्त करेंगे खबरें।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं नीतिका त्यागी। भारत और बरतानिया के दरमियान जामे इक्तिसादी तजारती समझौता आज से लागू हो गया है। वजीर आजम ने कहा है कि इस समझौते से भारत के सनतकारों, छोटे, बहुत छोटे और मुतवस्सित दर्जे के सनती इदारों और किसानों में एक नया जोश पैदा होगा। तिजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि खुरदनी तेल, सब्जियां और डेयरी जैसी अहम मसनूआत इस समझौते के तहत पूरी तरह महफूज हैं। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने और ज्यादा भलाई के लिए आयुर्वेद में जदीद तौर तरीकों की अहमियत पर जोर दिया है। भारत ने अक्वामे मुत्तहिदा में इस्लाहात की जरूरत पर जोर दिया है और ये भी कहा है कि कोई कदम न उठाने की वजह से इस इदारे पर से अवाम का भरोसा खत्म हो रहा है। आज ओडिशा के लिए मूसलाधार बारिश की पेशगोई की गई है और आलमी फीफा फुटबॉल कप के मुकाबले में आज रात अटलांटा स्टेडियम में दूसरे सेमीफाइनल में दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना का सामना इंग्लैंड से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि जामे इक्तिसादी और तिजारती समझौता CETA और सोशल सिक्योरिटी से मुतालिक समझौता जो आज से नाफिज हुआ है, भारत और बरतानिया के दरमियान साझेदारी में एक अहम पेशरफ्त है। जनाब मोदी ने ये बात कॉमर्स और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल की एक सोशल मीडिया पोस्ट को शेयर करते हुए कही। वजीर आजम ने मजीद कहा कि CETA से भारत के किसानों, कारोबारियों और MSMEs को काफी फायदा पहुंचेगा, साथ ही कई फाल शोबों को बरतानिया की मार्केट में ज्यादा रिसाई हासिल होगी। वजीर आजम ने कहा कि इससे टेक्नोलॉजी, पेशावराना खिदमात और जिद्दत तराजी में इश्तराक को वसत हासिल होगा और हुनर याफ्ता भारतीय अफराद की ज्यादा आमदोरफ्त में मदद मिलेगी। वजीर आजम ने इस बात को उजागर किया कि भारत और बरतानिया मुश्तरका खुशहाली के लिए एक साथ मिलकर काम करते रहेंगे। भारत और बरतानिया के दरमियान जामे इक्तिसादी और तजारती समझौता आज से लागू हो गया है। तजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि खुरदनी तेल, सब्जियां और डेयरी जैसी मसनूआत इस समझौते के तहत पूरी तरह महफूज हैं। भारत और बरतानिया के दरमियान ये समझौता नाफिज होने की खुशी में तजारत और सनत की वजारत मुल्क भर में प्रोग्राम मुनक़िद कर रही है, जिसके दायरे में सभी रियासतें और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके आएंगे। गैर मुल्की तजारत से मुतालिक डायरेक्टरेट जनरल हीरे जवाहरात की बरामद को फरोग देने से मुतालिक काउंसिल और कस्टम अथॉरिटी और दूसरे मुतालिका इदारों के इश्तराक से आज तीसरे पहर कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस बैनुल अक्वामी हवाई अड्डे पर एक प्रोग्राम की शुरुआत कर रही है, जहां से बरतानिया के लिए बरामदी सामान की खेप भेजी जाएगी। इस सिलसिले में तिजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने अंग्रेजी के एक रोजनामा में एक मजमून भी लिखा है। उन्होंने इस मजमून में लिखा है कि ये जामे इक्तिसादी और तजारती समझौता कारोबार के लिए मुनफरिद मौके फराहम करेगा और साल 2047 तक विकसित भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी के नस्बुल ऐन को पूरा करने की रफ्तार तेज करेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि इस समझौते से मुआशरे के हर तबके को बाइख्तियार बनाया जा सकेगा और भारत के अवाम की उमंगें और ख्वाहिशात पूरी हो सकेंगी। सनती इदारों ने भारत बरतानिया आज़ाद तजारती मुआहिदे को भारत के आज़ाद तजारत से मुतालिक सफर में एक तारीखी संग मील करार दिया है। फिक्की के सेक्रेटरी जनरल अनंत स्वरूप ने कहा कि मजकूरा मुआहिदा आलमी वैल्यू चेन्स में भारत की शराकत दारी और इख्तरा पर मबनी तरक्की को फरोग देने में कामयाब और मुआविन साबित होगा। जनाब स्वरूप ने भारत बरतानिया जामे इक्तिसादी और तजारती मुआहिदे के निफाज पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद पेश की। एसोचेम के सदर निर्मल कुमार मिंदा ने कहा कि मस्कूरा मुआहिदे के जरिए दुनिया की दो सबसे कदीम जमहूरियतें साथ आई हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि मरकजी सरकार एक नई तवानाई और जोशो खरोश के साथ योग और आयुर्वेद को आलमी मंजरनामे पर लाई है। उन्होंने ये बात आज नई दिल्ली में 2026 के सोश्रुतम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कही। सदर जमहूरिया ने इस बात पर इत्मीनान का इजहार किया कि आयुर्वेद की कदीम जर्राही को साइंसी मेयारात पर लाने की कोशिशें की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि और ज्यादा भलाई, नीस, बेहतरी के लिए आयुर्वेद में जदीद तौर तरीके अपनाने की जरूरत है।
1: मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि आयुष मंत्रालय WHO के माध्यम से उनके साथ मिलकर आयुर्वेदिक स्वास्थ्य सेवा के वैश्विक मानकीकरण को मजबूत करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। स्टैंडर्डाइज्ड

0: इम्प्लीमेंटेशन, डिजिटल हेल्थ इंटीग्रेशन और आधुनिक विज्ञान की अनुसंधान तकनीकों का सम्यक उपयोग करने से इस प्राणी की व्यापक वैश्विक स्वीकृति को बल मिलेगा।
1: सदर जमहूरिया ने कहा कि आयुष की वजारत आलमी सेहत तंजीम के साथ मिलकर काम कर रही है ताकि आयुर्वेद के तरीक़ाए इलाज को आलमी मेयार का बनाने के काम को मुस्तहकम किया जा सके। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। पंजाब के जालंधर में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के 17 जुलाई के दौरे के सिलसिले में तैयारियां जारी हैं। इस दौरे के दौरान जालंधर कंटोनमेंट रेलवे स्टेशन का इफ्तिताह किया जाएगा और मुल्क भर में अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत बेहतर बनाए गए दीगर 74 रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल तरीके से इफ्तिताह किया जाएगा। वजीर आजम संत रविदास एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर रवाना भी करेंगे। ये नई रेलगाड़ी अमृतसर को उत्तर प्रदेश के शहर वाराणसी से जोड़ेगी। ब्रिक्स मुल्कों के मेहनत और रोजगार के वजीरों की 12वीं

0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। पंजाब के जालंधर में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के 17 जुलाई के दौरे के सिलसिले में तैयारियां जारी हैं। इस दौरे के दौरान जालंधर कंटोनमेंट रेलवे स्टेशन का इफ्तिताह किया जाएगा और मुल्क भर में अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत बेहतर बनाए गए दीगर 74 रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल तरीके से इफ्तिताह किया जाएगा। वजीर आजम संत रविदास एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर रवाना भी करेंगे। ये नई रेलगाड़ी अमृतसर को उत्तर प्रदेश के शहर वाराणसी से जोड़ेगी। ब्रिक्स मुल्कों के मेहनत और रोजगार के वजीरों की 12वीं मीटिंग 2026 की भारत की सदारत के तहत हैदराबाद में शुरू हो गई है। वजीर मुमलिकत मोहतरमा शोभा के साथ मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया की जेर सदारत आला सतह की मीटिंग में सोशल सिक्योरिटी को फरोग देने, काम करने वाली खवातीन की शराकत दारी में इजाफा करने, आलमी हुनरमंदी को बरूए कार लाने और डिजिटल टेक्नोलॉजीज के बेहतर इस्तेमाल पर तवज्जो मरकूज की जा रही है। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कहा है कि कानून साजों को बामानी बहस व मुबाहिसे और तामीरी तबादलाए ख्याल के लिए इज्जत मिलती है, न कि ऐवान में रखना अंदाजी के लिए। विधायी गौरव यात्रा के इफ्तिताही इजलास से खिताब करते हुए जनाब बिरला ने कहा कि राजस्थान की जमहूरी मुजाकरात और तौर तरीकों की एक शानदार रिवायत है। इस यात्रा का एहतमाम राजस्थान कानून साज असेंबली के 75वें साल के मौके पर अमृत महोत्सव के एक हिस्से के तौर पर किया गया है। असेंबली को जमहूरियत का एक स्कूल करार देते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमतों को अवामी नुमाइंदों की नुकताचीनियों को तवज्जो के साथ सुनना चाहिए। अच्छे कामकाज की जरूरत पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि शफाफियत और जवाबदेही वक्त का तकाजा है।
1: लोकतंत्र के अंदर विधायी संस्थाएं जहां से आप बेहतर शासन चला सकते हो, मेरा मानना है कि समय परिवर्तनशील है और समय परिवर्तनशील के समय अभी एक उत्तरदायी जवाबदेही शासन भी होना चाहिए, उत्तरदायी जवाबदेह जनपति भी होना चाहिए। समय के साथ हमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है। आज जनता उत्तरदायी प्रतिनिधि मानता है, पारदर्शिता भी होनी चाहिए, जवाबदेही भी होनी चाहिए, वही जनपति सफल होगा और वही शासन सफल होगा।
0: भारत ने खबरदार किया है कि अक्वामे मुत्तहिदा सलामती काउंसिल में इस्लाहात न होने और आलमी तनाज़ात पर मुअस्सर तौर पर तवज्जो न देने के नतीजे में इस आलमी इदारे से अवाम का एतमाद उठ रहा है। ये बात अक्वामे मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे पी हरीश ने मुस्तकबिल के लिए कसीर पहलू वाली हिकमत अमली के मौजू पर वजीरों की गोलमेज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कही। भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे ने कहा कि सलामती काउंसिल मौजूदा तनाज़ात में बामानी तरीके पर मुदाखलत करने में नाकाम रही है, जिसकी वजह से बैनुल अक्वामी अमन और सलामती बरकरार रखने की उसकी अहलियत के बारे में सवालात उठाए जा रहे हैं। भारत के मौसमियात के महकमे ने आज ओडिशा में तेज से बहुत तेज बारिश होने की पेशगोई की है। शिमाल मशरकी भारत के बाज़ हिस्सों बिहार, मगरबी बंगाल और उत्तराखंड में भी मूसलाधार बारिश होने का अंदाजा लगाया गया है। फीफा आलमी फुटबॉल कप 2026 में स्पेन फ्रांस को हराकर फाइनल में पहुंच गया है। दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में आज रात अटलांटा स्टेडियम में दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 12:30 बजे शुरू होगा। और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। भारत और बरतानिया के दरमियान जामे इकतसादी तजारती समझौता आज से लागू हो गया है। वजीर आजम ने कहा है कि इस समझौते से भारत के सनतकारों, छोटे, बहुत छोटे और मुतवसित दर्जे के सनती इदारों और किसानों में एक नया जोश पैदा होगा। तजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि खुर्दनी तेल, सब्जियां और डेयरी जैसी अहम मसनूआत इस समझौते के तहत पूरी तरह महफूज हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने और ज्यादा भलाई के लिए आयुर्वेद में जदीद तौर तरीकों की अहमियत पर जोर दिया है। भारत ने अक्वामे मुत्तहिदा में इस्लाहात की जरूरत पर जोर दिया है और ये भी कहा है कि कोई कदम न उठाने की वजह से इस इदारे पर से अवाम का भरोसा खत्म हो रहा है। और आलमी फीफा फुटबॉल कप के मुकाबले में आज रात अटलांटा स्टेडियम में दूसरे सेमीफाइनल में अर्जेंटीना का सामना इंग्लैंड से होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
2: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी and I am Anuja Kumar with the midday news. The headlines. India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement comes into effect. Prime Minister Narendra

जी हाँ समीन, आपने फिल्म कोरा कागज से ये नगमा समाप्त किया। एम जी हशमत के अशार थे, कल्याण जानन जी की मौसीकी में ये आवाज थी किशोर कुमार की। ये आकाशवाणी होंद श्रीनगर स्टेशन मीडियम वजह तारा टेरिया 8 मीटर ते एफ एम जाक 3.5 मेगा हर्ट्ज़ पैट समीन दूचे 2:30 बजे बल्ले छक्कर तो रोपो सो इश्क कला में न्याम सब सदाकार मुदस्सर मकबूल तिहिंद हम नवा।

हम आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से आपसे मुखातिब है मीडियम वेव और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। जमीन सपेर के 3 बज चुके हैं। अब फौजी भाइयों के लिए पेश होता है फिल्मी नगमों का प्रोग्राम।

जय हिंद फौजी भाइयों। फौजी भाइयों, सपहर के 3 बज चुके हैं। आपका हमारा साथ सपहर 3:50 तक है। इस बीच हम आपको सुनवाएंगे फिल्मी नगमे और आपसे करेंगे चंद बातें। आइए दोस्तों, अपनी बातों को देते हैं ज़रा आराम और आपको सुनवाते हैं प्रोग्राम का पहला नगमा।

दोस्तों, आपने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की मौसी की मैं संतोष आनंद के अशार समात की, नितिन मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ें थी। फिल्म का नाम क्रांति। दोस्तों, कई बार आपने इस बात को मुशाहिदा किया होगा कि हम अक्सर ज़िंदगी में कुछ वक्त उन लोगों पर सर्फ करते हैं जिन्हें हम सिर्फ राज़ी करने की कोशिश करते हैं, और ये वक्त हम ज़ाया करते हैं क्योंकि आखिर में वो उन्हें हमसे राजी नहीं होना होता है और हासिल कुछ भी नहीं होता। मगर देखा जाए तो ये एहसास भी हमारे लिए कोई कम सुकून नहीं देता हमको कि जिन्हें हम राजी करना चाहते थे उन्हें हम सिर्फ ऊपर वाले की रजा के लिए करते थे, और चूंकि हम उनसे मोहब्बत करते हैं इसलिए उन्हें हम राजी करना चाहते हैं। ये एक बहुत ही सुकून बख्श बात है। दोस्तों, हम जिंदगी में बहुत सारी चीजों के लिए कश्मकश में जुटे होते हैं, कोई एक तरह तो कोई दूसरी तरह। गर्ज ये कि हर इंसान अपनी काविशों में लगा रहता है, लेकिन जो ही हम देखते हैं कि कोई हम में से अपनी कोशिश में कामयाब होकर उसने अपनी खुशियां बांटी, या खुशियां उसने वो क्या बोलते हैं उनको, अपनी खुशियों को उसने इजहार किया है, तो हम फौरन जिद और हसद की के दायरे में आ जाते हैं और उन लोगों की खुशियां हमें बर्दाश्त नहीं होती, जबकि हमने उस खुशी को, उनकी उस खुशी को हासिल करने के पीछे जो गम होता है उसे हमने नहीं देखा होता। इसलिए दोस्तों, दूसरों की खुशी में खुश रहा करें और दूसरों के गम में अपने आप को अफसरदा कर दें, क्योंकि ये खुशियाँ और गम हर एक इंसान के हिस्से में आती हैं।

हाजी भाई को आपने लता मंगेशकर को सुना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की मौसीकी में आपने साहिर के अशआर समाअत किए। दोस्तों, जिंदगी और मौत के दरमियान जितना सफर है ये सारा इम्तहान है। और ये जगह जी हाँ दोस्तों, जिसे दुनिया कहते हैं, ये इस इम्तहान की जगह है जहाँ हम बहुत सारे आजमाइशों से घिरे जाएंगे और हमारी नीयत का, हमारे ईमान का, हमारे इखलाक का यहाँ पर इम्तहान है। एक ऐसा मुशाहिदा है कि इस घड़ी जो अपने आप को पार कर चुका वो आगे भी पार लग जाएगा। सिर्फ हमें धीरज रखने की, सब्र करने की और अपने ईमान पर, अपने आप पर एतमाद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि खुद पर भरोसा है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। खुदशनासी में ही इंसान दुनिया पा लेता है। ये दुनिया जो है ये एक इम्तहान की जगह है।

लीजिए दोस्तों, आर डी बर्मन की मौसीकी में समाप्त कीजिए आनंद बख्शी के बोल। सन्नी फिल्म का नाम है सनी और ये आवाज़ है आशा भोसले की।

यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है, मीडियम वेव और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय 3:50 होने वाले हैं। आइए अब समाप्त करते हैं उर्दू में खबरें।

आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। सपहर के 3:50 हुए हैं। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं मुशाहिद हुसैन। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। भारत और बर्तानिया के दरमियान इक्तिसादी और शराकत दारी का मुआहिदा आज से नाफिजुल अमल। वजीर अजम ने पहल को खुशाइन दिया करार। राजौरी जिले की तारीखी बेराव यात्रा नेशनल इन्वेंट्री ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया में शामिल। एलजी मनोज सिन्हा ने यात्री निवास भगवती नगर जम्मू में यात्रियों के लिए सहूलियत का लिया जायजा। और वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे आज, स्किल इंडिया मिशन के 11 साल मुकम्मल। अब खबरें तफसील से। भारत और बर्तानिया के माबैन ताइपा इक्तिसादी व तिजारती शराकत दारी मुआहिदा आज से नाफिजुल अमल हो गया है। दोनों मुल्कों के दरमियान सोशल सिक्योरिटी मुआहिदा भी आज से ही लागू हो गया है, जिससे बर्तानिया में काम करने वाले भारतीय पेशेवर अफराद

शर्मा, जावेद अहमद डार, जावेद अहमद राना, असेंबली के स्पीकर अब्दुल रहीम राठिर, कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी, साबिक वजीर अला गुलाम नबी आजाद, पीडीपी सदर और साबिक वजीर अला महबूब मुफ्ती, साबिक मरकजी वजीर प्रोफेसर साहबुद्दीन सोज, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद कर्रा, अपनी पार्टी के सदर मोहम्मद अल्ताफ बुखारी, मेम्बरानी पार्लियामेंट मियां अल्ताफ अहमद, आगा सईद रुहुल्ला, चौधरी मोहम्मद रमजान शामिल हैं। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी समाप्त कर सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क में जारी मानसून के दौरान कैच द रेन मुहिम को तकवीत बख्शने की जरूरत पर जोर दिया है। एक पैगाम में उन्होंने पानी की अहमियत को उजागर करते हुए कहा है कि बारिशों के पानी को बचाने और इसको इस्तेमाल में लाने का मुअस्सर निजाम इख्तियार किया जाना चाहिए। इसके अलावा बोरवेल्स, कुओं और पानी के रिवायती जखीरों को बहाल किया जाना चाहिए ताकि मौसम की बदलती सूरत हाल के बीच लोगों को माकूल मिकदार में पानी

0: को बहाल किया जाना चाहिए ताकि मौसम की बदलती सूरत हाल के बीच लोगों को माकूल मिकदार में पानी मुहैया हो सके। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने समाज की बेहतरी के लिए आयुर्वेदा के जदीद तौर तरीकों को बरोकार लाने की जरूरत पर जोर दिया है। आज नई दिल्ली में सौ श्रोतम 2026 की इफ्ताही तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत ने शिद्दत के साथ आयुर्वेदा और योगा को आलमी सतह पर एक पहचान दी है।
1: मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि आयुष मंत्रालय WHO के माध्यम से उनके साथ मिलकर आयुर्वेदिक स्वास्थ्य सेवा के वैश्विक मानकीकरण को मजबूत करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। स्टैंडर्डाइज्ड डॉक्यूमेंटेशन, डिजिटल हेल्थ इंटीग्रेशन और आधुनिक विज्ञान की अनुसंधान तकनीकों का सम्यक उपयोग करने से इस प्राणी की व्यापक वैश्विक स्वीकृति को बल मिलेगा।
0: आज वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद नौजवानों में कारखानदारी और सन्नतकारी का रुझान पैदा करने की गर्ज से उन्हें मुख्तलिफ हुनरों की तरबियत फराहम करने की अहमियत को उजागर करना है। इस दिन की मुनासिबत से आज कई प्रोग्राम मुनक्किद हुए जिनमें नौजवान को बाइख्तर बनाने में हुनरों की अहमियत को उजागर किया गया। वाज़ह रहे कि स्किल इंडिया मिशन के आज 11 बरस मुकम्मल हुए हैं। ये मिशन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 2015 में शुरू किया था जिसका मकसद नौजवान को सन्नतों पर मबनी रोजगार और कारखानादारी के साथ जोड़ना है। स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मरकजी वजारत ने मुख्तलिफ स्कीमों के जरिए से 6 करोड़ से ज्यादा नौजवानों को बाइख्तियार बनाया है। स्किल इंडिया मिशन के तहत हर बरस 1 करोड़ नौजवानों को तरबियत दी जाती है। इसके अलावा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत अब तक 1,65,00,000 नौजवानों को तरबियत दी जा चुकी है। बावर किया जा रहा है कि यह मिशन विकसित भारत 2047 के ख्वाब को शर्मंदे ताबीर करने में अहम रोल अदा कर रहा है। जम्मू कश्मीर कानूनसा असेंबली के स्पीकर अब्दुलरहीम राथिर ने सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल चार शरीफ, सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पखरपोरा और सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल क्रेमशोरा के हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड कमेटियों की मीटिंग तलब करके माली साल 2026-27 के दौरान रुकूमात के तसरुफ के लिए तैयार किए गए मनसूबों का जायजा लिया। स्पीकर मौसूब ने दस्तियाब रुकूमात का मुनसिफाना इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत दी। जम्मू कश्मीर में उमूर नौजवान व खेलकूद महकमे की वसातत से 570 खेल प्रोजेक्टों पर काम जारी है। इन प्रोजेक्टों पर मजमू तौर 650 करोड़ रुपए लागत आने का अंदाजा है। महकमे के कमिश्नर सेक्रेटरी शाहिद इकबाल चौधरी ने एक मीटिंग के दौरान इन प्रोजेक्टों की पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने मजकूर प्रोजेक्टों के काम में सूरत लाने और जम्मू कश्मीर में खेलो इंडिया मिशन को बड़े पैमाने पर वसूल देने की हिदायत दी। चीफ सेक्रेटरी अटल डोलू ने जरिए सेक्टर की तरक्की में हासिल की गई कामयाबियों की सराहना करते हुए इस शोबे को मजीद फरोग देने के लिए जामिया मनसूबबंदी की जरूरत पर जोर दिया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। इजाजत दें, खुदा हाफिज।
2: हमारी आवाज अब तक पहुंच रही है आकाशवाणी श्रीनगर के प्राइमरी स्टेशन से। सपहर के ठीक 4 बज रहे हैं। समाप्त कीजिए आज का पहाड़ी प्रोग्राम एक मुख्तसर से वक्फे के बाद।
3: चिनार की छांव तले किताबों का एक खूबसूरत जहां आपका इंतजार कर रहा है। आइए तीसरे चिनार बुक फेस्टिवल में जहां मिलेंगी इंग्लिश, हिंदी, उर्दू और अन्य भारतीय भाषाओं के 200 से अधिक बुक स्टॉल्स, साथ ही क्रिएटिव वर्कशॉप्स बच्चों के लिए, लिटरेरी सेशंस, डिजिटल रीडिंग कॉर्नर और कल्चरल परफॉर्मेंसेस का लुत्फ उठाइए। 18-26 जुलाई SKICC श्रीनगर। चिनार बुक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज बाय नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया इन कोलैबोरेशन विद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर। टुगेदर वी रीड, टुगेदर वी लीड।

आकाशवाणी केंद्र श्रीनगर थी आई दा पहाड़ी प्रोग्राम कहन का मैं तुस्ता मेजबान शब्बीर अहमद शमस तुस्ती खिदमत बिच हाजिर और संसारियां को अदब ते ताजीम नाल अस्सलाम अलैकुम अर्ज कर और उम्मीद है जे तुसी सारे खैर खरीद नाल हो। सामीन इंसान मेहनत मुशक्कत नाल माल दौलत हासिल करदा है तां जो इसती फायदा चावे, पर असी अपने समाज को टटोला तो असा को दो किस्म दियां बुराइयां आम नजर आ सकदा। एक तो माल गैर जरूरी नमूदो नुमाइश ते दिखावे वास्ते खर्च किया गया, दुआ खास जरूर दवेले ता बुखल और कंजूसी है जिड़ी उसका मुजाहरा भी किया गया। जिस वेले इंसान की जिंदगी समाज बिच तवाजन नहीं रहिंदा और इंसान

इंडिया में शामिल एलजी मनोज सिन्हा सुन यात्री निवास भगवती नगर जम्मू विच यात्रियों वास्ते सहूलियतां दा कहदा जायजा और वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे अज स्किल इंडिया मिशन दे 11 साल पूरे और खबर पेशन तफसील नाल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सुन भारत और बरतानिया दरमियान आज तू लागू हुए जामिया इक्तसादी और तजारती माहदे CETA और समाजी सिक्योरिटी के बारे माहदे को दोई मुल्कों के दरमियान शराकतदारी बिच एक अहम पेशरफ्त करार दिता इन्हों गलों का इजहार वज़ीर-ए-आज़म सुन सनत व हरफत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल के एक सोशल मीडिया पोस्ट को शेयर करदे होया कीता वज़ीर-ए-आज़म सुन आख्या कि CETA भारत दे किसाना कारखानादारा और MSMES को दुआ बख्शे नाल नाल मुख्तलिफ सैक्टरों को बरतानिया के बाजारों तो उन्हें रसाई दिते विच कामयाब हो सी राजौरी जिले की तारीखी भैरव यात्रा को नेशनल इन्वेंट्री ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल भैरव हेरिटेज ऑफ इंडिया भी शामिल किते गया लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा सुन इस पेशरफ्त को राजौरी जिले वास्ते एक फख्र दा वेला करार दिता जिला इंतजामिया और जम्मू कश्मीर दे डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर को मुबारकबाद भी दिती एक बयान विच एलजी सुन आख्या कि कौमी सतह पर इस यात्रा को मकाम मिलने नाल ही राजौरी

0: Bruegar ande di zerurut të përzor të ta, aq në indi lipiq. Eftetaj të kribë kohadab kardihoja, unë në shrake ki merkezi hukomusun, shidët në nal, Ayurveda or yoga ku almi sata për ek pehçan diti.
1: मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि आयुष मंत्रालय डब्ल्यूएचओ के माध्यम से उनके साथ मिलकर आयुर्वेदिक स्वास्थ्य सेवा के वैश्विक मानकीकरण को मजबूत करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। स्टैंडर्डाइज्ड डॉक्यूमेंटेशन, डिजिटल हेल्थ इंटीग्रेशन और आधुनिक विज्ञान की अनुसंधान तकनीकों का सम्यक उपयोग करने से इस प्राणी की व्यापक वैश्विक स्वीकृति को बल मिलेगा।
0: आज वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे मनाया जुल रहा है। इस त्याड़े को मनाए का मकसद नौजवानों बिच कारखानादारी और सनतकारी का रुझान पैदा करने की गरज नाल इन्हों को मुख्तलिफ हुनरों की तरबियत फराहम करने की अहमियत को उजागर करना। इस त्याड़े की मुनासबत नाल आज कई प्रोग्राम हुए जिन्हों बिच नौजवानों को बाख्तियार बनाए वास्ते हुनर की अहमियत को उजागर किए गया। वाजह रहो है कि स्किल इंडिया मिशन के अज 11 साल पूरे हो गए। यह मिशन वजीर अजम नरेंद्र मोदी सन 2015 में शुरू किया था, जिसका मकसद नौजवानों को सनत पर मबनी रोजगार और कारखानादारी नाल जोड़ना। स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की मरकजी वजारत सन मुख्तलिफ स्कीमों के जरिए 6 करोड़ कोलों ज्यादा नौजवानों को बाख्तियार बढ़ाया। स्किल इंडिया मिशन के तहत हर साल 1 करोड़ नौजवानों को तरबियत दी जाती है। इसके अलावा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत उन्होंने तुणी 1.65 करोड़ नौजवानों को तरबियत दी गई। बावर किया गया कि यह मिशन विकसित भारत 2047 के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने में अहम रोल अदा कर रहा। जम्मू कश्मीर में उमूरी नौजवान व खेड कूद महकमे की वसादत नाल 570 खेड प्रोजेक्टों पर काम जारी है। इन प्रोजेक्टों पर मजमूई तौर 650 करोड़ रुपए लागत आए का अंदाजा महकमे के कमिश्नर सैकटरी शाहिद इकबाल चौधरी सुन एक मीटिंग के दौरान इन प्रोजेक्टों की पेशरफ का जायजा किया। उन्होंने मजकूरा प्रोजेक्टों के काम में तेजी आंदे और जम्मू कश्मीर में खेलो इंडिया मिशन को बड़े पैमाने तवसत दिते की हिदायत दी। चीफ सैकटरी अटल डुल्लू सुन जरी सैक्टर की तरक्की हासिल की गई कामयाबिया की तारीफ करद हो इस शोबे को मजीद फरोग दते वास्ते जामिया मनसूबाबंदी की जरूरत पर जोर दिता। डिप्टी कमिश्नर कुलगाम शहजाद आलम सुन जिला अफसर की एक मीटिंग सादका प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के दुए मरहले के तहत मौसूल हो दरखास्तों पर जारी कार्रवाई का जायजा कहते हैं। मीटिंग के दौरान जिला सतह की कमेटी सुन 10 दरखास्तों को मंजूरी दी। ऐसियां होना तुणी दिया खबरां असंको दियो इजाजत। खुदा हाफिज।
2: इशु आकाशवाणी श्रीनगर मीडियम वेव 78.8 मीटर ते एफएम 73.5 मेगाहर्ट्ज़ पेट समय ने मोहतरम 4:30 बजे वलिव छक्कर तो रोह बोजो इशु कला में रहीम सब गुलोकार छे मुदसर मकबूल तो तिहन सी।

نفس دیت هی اوری مینت گذشته چینت کریزن فوت دام دیو هکس

बरोए जमी अस्त, हम ही अस्तो, हम ही अस्तो, हम ही अस्त। सामीन, श्रीनगर, गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग, दूधपथरी, यूसमर्ग, गुरेज वैली, बंगस वैली, लोलाब वैली और जड़ा इतका मजहबी मकाम आते हैं जिसमें श्री अमरनाथ जी यात्रा हो गयो या खीर भवानी मेला या और हमें इन सारा मौका के ऊपर हर साल लखा सैलानी इन जगह में तशरीफ ले आए। गल अगे इस हवाला ना होर भी वेगी, अगे पेश है यू नगमों।

खनाली महाराज का प्रोग्राम का वक्त मुकरना आया। प्रोग्राम का प्रोड्यूसर वसीम फारुकवानी, अपना मेज़बान शबीर अहमद गुसवाल ने दो इजाजत। अच्छा जी, रब राखो।

0: समय ना आप गोजरी प्रोग्राम समाप्त कर रहे थे। आज का प्रोग्राम आपके लिए पेश कर रहे थे शबीर अहमद पासवाल, माविन शायस्ता यतु, पेशकश वसीम फारूक वानी। ये आकाशवाणी श्रीनगर है। शाम के 5:50 हो रहे हैं। आइए गोजरी में खबरें सुनते हैं।
1: आदाब, जो आकाशवाणी श्रीनगर है, खबरों को बुलेटिन लेकर हम हाजिर। पहला अहम खबरों की सुर्खी। भारत और बरतानिया के बीच इक्तिसादी और तजारती माहिदों आई तो नाफजुल अमल, माहिदा के तहत जम्मू कश्मीर तो कंसाइनमेंट रवा। राजौरी जिला की तारीखी भैरव यात्रा नेशनल इन्वेंट्री ऑफ इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया में शामिल। एलजी मनोज सिन्हा ने यात्री निवास भगवती नगर जम्मू में यात्री वस्ता सहूलियात को लियो जायजो। तय वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे आज, स्किल इंडिया मिशन का 11 साल मुकम्मल। उन पेश है खबर की तफसील। भारत और बरतानिया के बीच तय किया गया इक्तिसादी तथा तजारती शराकत दारी माहिदो आज तो नाफज हो गया है। दोनों मुल्कों के बीच सोशल सिक्योरिटी माहिदो भी आज तो ही लागू हो गया है, जिस नाल बरतानिया में काम करने वाला भारतीय पेशावर बंदा की आवाजाही में सहूलियत और इनकी सलाहियत में मजीद तकवीद मिलेगी। इकतसादी तथा तजारती मामला की रोह तो बरतानिया का बाजारों में भारतीय बरामदाद की 99% टैरिफ लाइनस पर 0 कस्टम ड्यूटी की सहूलियत फराहम की गई है। सहूलियत ना भारतीय बरामदात ना नुमाया बढ़ावा मिलेगा। इसी दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भारत और बरतानिया के बीच आज तो नाफिज होया जामिया इक्तिसादी और तजारती माहिदा CETA और समाजी सिक्योरिटी तो मुतलिक माहिदा ना रवा मुल्क माहिदा ना दोहा मुल्कों का बिचकार शराकत दारी में एक अहम पेशरफ्त करार दित है। इन गलों को इजहार वजीर आजम ने सनत हरफत का मरकजी वजीर पीयूष गोयल का एक सोशल मीडिया पोस्ट ना शेयर करता हुआ की हो। वजीर आजम ने कहो कि CETA भारत का किसाना कारखानादारा और MSMEs ना बढ़ावा देन के नाल नाल मुख्तलिफ सेक्टर ना बरतानिया का बाजारा तक रसाई देन में कामयाब होगा। नायब सदर जमहूरिया CP राधा कृष्णन ने भारत और बरतानिया के बिचकार जामिया इक्तिसादी तजारती माहिदा की अमल आवरी ना दोनों मुल्कों के बिचकार शराकत दारी ना बरावन देन वास्ते कलीदी अहमियत को हामिल करार दे। तो एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि इस फैसला नाल मुख्तलिफ सेक्टर में मौजूद वसायल ना बुराईकार आनन में मदद मिलेगी। वजीर दाखिला अमित शाह ने भी इस माहिदा को खैर मकदम किया है। इसी दौरान भारत और बरतानिया के बीच तय किया गया CETA के तहत आज DGFT जम्मू का असिस्टेंट डायरेक्टर विवेक

महबूबा मुफ्ती, साबिक मरकजी वजीर प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदर तारिक हमीद करा, अपनी पार्टी का सदर मोहम्मद अल्ताफ बुखारी, मेम्बरान पार्लियामेंट मियाँ अल्ताफ अहमद, आगा सईदुल्लाह चौधरी, मोहम्मद रमजान शामिल हैं। इस दौरान आज भी कई सियासी, समाजी, मजहबी और अवामी हलका का वफूद ने डॉक्टर शेख मुस्तफा कमाल की रिहायशगाह पर जाकर उद नेशनल कॉन्फ्रेंस का सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, नायब सदर और वजीर आला उमर अब्दुल्ला और दीगर सोगवार का नाम ताजियत की। वाजिया रहा कि मरहूम की इज्तिमाई फातिया खुवानी जुमाना 10 बजे इनका मकबरा वाका गुपकार रोड सोनावार के नजदीक कश्मीर नर्सिंग होम में अंजाम दी जाएगी। कश्मीर वैली फ्रूट ग्रोवर्स कम डीलर यूनियन ने भी मरहूम का इंतकाल पर गहरा दुख को इजहार किया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने समाज की बेहतरी वास्ते आयुर्वेदिया का नुआ तौर तरीका अपनाने की जरूरत पर जोर देते हुए आज नई दिल्ली में सोशर्तुम 2026 की इफ्तिताही तकरीब न खिताब करता हुआ उन्हें मजीद किया जी मरकजी हुकूमत ने शिदत के नाल आयुर्वेदिया और योगा न आलमी सतह पर एक पहचान दी है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 और वाराणसी रिंग रोड के बीच 46 किलोमीटर से अधिक लंबे 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर को स्वीकृति दी। इसे हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल के अंतर्गत बनाया जाएगा। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि इस परियोजना की कुल लागत 14,400 करोड़ रुपए से अधिक है।
1: पहला है वरुणा नदी के किनारे किनारे कंप्लीट 6 लेन और 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर, 43 किलोमीटर इसकी लेंथ है। 10,998 करोड़ रुपीज की इसकी इन्वेस्टमेंट आएगा और करीब करीब 4 साल में कंप्लीट होगा। दूसरा है गंगा जी के साथ साथ कंप्लीट 6 लेन का एलिवेटेड कॉरिडोर, 46 किलोमीटर का ये होगा, 14,448 करोड़ रुपीज का बनेगा।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने भारत के सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को भी मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने 62,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ मोबाइल फोन विनिर्माण योजना को भी स्वीकृति दी है।
1: मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग, इसमें 62,500 करोड़ रुपीस का लेआउट हुआ। इन 10 वर्षों में एक मैसिव चेंज आया इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में, 7 गुना मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी, प्रोडक्शन बढ़ा और 11 गुना एक्सपोर्ट बढ़ा 2014 के कम्पेरिजन में। और भारत जो मोबाइल फोन इम्पोर्टर था आज नेट एक्सपोर्टर बन गया है और सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बन गया।
0: मंत्रिमंडल ने ओडिशा और झारखंड के 4 जिलों में 2 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं में ओडिशा में पारादीप हरिदासपुर डबलिंग और झारखंड में राजखरसवां डांगो आपूसी चौथी लाइन का काम शामिल है। लगभग 3,907 करोड़ रुपए की कुल अनुमानित लागत वाली इन परियोजनाओं के 2030 से 2031 तक पूरा होने की संभावना है। मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत के लिए राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति NIPU 2026 को भी मंजूरी दी। NIP 2012 के तुलना में NIPU 2026 के अंतर्गत लगाए गए हर संयंत्र से 250 करोड़ रुपए से अधिक की बचत होने का अनुमान है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक व्यापार और आर्थिक समझौता आज से लागू हो गया है। इस ऐतिहासिक

0: एक समझौते से भारत की 99% निर्यातित वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजारों में कोई शुल्क नहीं लगेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर कहा कि ये व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता तथा सामाजिक सुरक्षा समझौता भारत ब्रिटेन की साझेदारी में एक महत्वपूर्ण क्षण है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, गृहमंत्री अमित शाह और उद्योग जगत ने भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते के प्रभावी होने की सराहना की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज के दिन को भारत ब्रिटेन संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता भारत के वस्त्र, चमड़ा, रत्न और आभूषण, इंजीनियरिंग उत्पाद, समुद्री उत्पाद, रसायन, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, उद्यम, किसानों और निर्माताओं के लिए अभूतपूर्व अवसर पैदा करेगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज बेल्जियम के ब्रुसेल्स में यूरोपीय संघ की स्टार्टअप अनुसंधान और नवाचार आयुक्त एकातेरिना जहारिएवा से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने बताया कि इस दौरान स्वच्छ और हरित ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान के अवसरों पर चर्चा हुई। डॉ जयशंकर ने बेल्जियम की 2 दिन की यात्रा के दौरान ब्रुसेल्स में उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मैक्सिम प्रीवोट के साथ भारत बेल्जियम रणनीतिक संवाद के उद्घाटन सत्र की सह अध्यक्षता भी की। अमरीका ने होर्मुज जलनबरू मध्य से गुजरने की कोशिश कर रहे जहाजों पर हमलों के जवाब में ईरान पर फिर समुद्री नाकेबंदी लागू कर दी है। अमरीका ने आज हवाई हमले तेज कर दिए हैं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वह अगले सप्ताह तक वार्ता के लिए तैयार नहीं होता है तो उसके खिलाफ सैन्य हमलों को और तेज कर दिया जाएगा। इंडोनेशिया के जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में महिला वर्ग में आज 3 भारतीय मुक्केबाजों ने स्वर्ण पदक और 10 मुक्केबाजों ने रजत पदक अपने नाम किए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: یہ آکاشوانی سری نگر سمن محترم شب وجت 5 منٹ سپد پیش خدمت پروگرام گیمی بائن ہند خطرہ

شکرہ پر ناس قربا لگ

دربار عظمت قربان لگ ہاس عرش کھسی

قرشی لکی باس حاشمی نسل

0: काउंटर से पहले से एक्टिवेटेड सिम कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। सफर के दौरान सिर्फ निर्धारित रूट का ही उपयोग करें और रास्ते में दिए गए सभी सिग्नल एडवाइजरीज और सुरक्षा निर्देशों का पालन अवश्य करें। किसी भी शॉर्टकट या डेंजर जोन की तरफ बढ़ना जोखिम भरा हो सकता है।
1: पहाड़ी यात्रा के दौरान शरीर को हाइड्रेटेड रखना बेहद जरूरी है, इसीलिए समय समय पर पानी पीते रहें और बीच बीच में विश्राम भी करते रहें। अगर किसी यात्री को सांस लेने में दिक्कत या अधिक थकान महसूस हो तो तुरंत नजदीकी मेडिकल कैंप या सुरक्षा बल से सहायता लें।
0: आइए मिलकर इस पवित्र यात्रा को सुरक्षित, स्वच्छ और मंगलमयी बनाएं। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।
2: चिनार की छांव तले किताबों का एक खूबसूरत जहां आपका इंतजार कर रहा है। आइए तीसरे चिनार बुक फेस्टिवल में, जहां मिलेंगी इंग्लिश, हिंदी, उर्दू और अन्य भारतीय भाषाओं के 200 से अधिक बुक स्टॉल्स, साथ ही क्रिएटिव वर्कशॉप्स बच्चों के लिए, लिटरेरी सेशंस, डिजिटल रीडिंग कॉर्नर और कल्चरल परफॉर्मेंसेस का लुत्फ उठाइए।
3: 18 से 26 जुलाई SKICC श्रीनगर।
2: चिनार बुक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज बाय नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया इन कोलैबोरेशन विद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर। टुगेदर वी रीड, टुगेदर वी लीड।
4: शेरबीन अब आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव 268.81 मीटर, FM 2 103.5 मेगाहर्ट्ज़ के अलावा आकाशवाणी कुप्पड़ और भद्रवाह के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर एक साथ सुन रहे हैं। समी जम्मू कश्मीर में अगले चंद रोज में मौसम में बड़े पैमाने पर तब्दीली के इम्कान नजर आ रहे हैं और चंद रोज बाद पूरे जम्मू कश्मीर में दरमियाने से भारी सतह की बारिश की पेशगोई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक 18 और 19 जुलाई को बाज इलाकों में हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश की गुंजाइश है। महकमे के डायरेक्टर बराए श्रीनगर डॉक्टर मुख्तार अहमद ने शेरबीन को कहा कि इस महीने की 20 तारीख से पूरे जम्मू कश्मीर में भारी सतह की बारिश का इम्कान है। मगरबी हवाओं का सबसे ज्यादा असर डोडा, रामबन, राजौरी, पुंछ अजला में देखा जाएगा, जहां तेज बारिश के बाद सैलाबी रेलों, मिट्टी के तूदे गिराने का कभी इम्कान है। वादी कश्मीर के बेशतर इलाकों में भी 20 से 23 जुलाई तक भारी बारिश का इम्कान नजर आ रहा है और इस वजह से मुगल रोड, कौमी शाहरा समेत दीगर सड़कों पर ट्रैफिक की नकल हमल मुतासिर होने का भी इम्कान है।
5: मौसम जैसे एक्सपेक्टेड था, थोड़ा सा ड्राई रह रहा है पिछले कई दिनों से और 17 फिलहाल हॉट एंड ह्यूमिड वेदर रहने के चांसेस हैं। ब्रीफ शावर कुछ जगहों पे होने के इम्कान हैं और 18-19 के दरमियान जो एक वेट स्पेल के चांसेस हैं, जिसमें बारिशें होंगी काफी जगहों पे। यहाँ वैली के अंदर भी काफी डिस्ट्रिक्टों के अंदर हल्की बारिशें हो सकती है और इसी तरह जम्मू डिवीजन के अंदर थोड़ा मॉडरेट टू हैवी शावर्स के भी चांस हैं कुछ एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और उसके साथ साथ फिर 20 ऑनवर्ड एक मेजर वेट स्पेल के चांसेस हैं, जिसमें वाइड स्प्रेड बारिशें होंगी अलॉन्ग विथ थंडर स्टॉर्म, लाइटनिंग, गस्टी विंड्स और कुछ एक डिस्ट्रिक्ट खासकर जम्मू डिवीजन के पीर पंचाल रेंज और एडजॉइनिंग जो चिनाब वैली है, इसी तरह साउथ कश्मीर के कुछ एक डिस्ट्रिक्ट और इसके साथ साथ यहाँ सेंट्रल कश्मीर के भी कुछ एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर थोड़ा सा मॉडरेट टू हैवी शावर या बारिशों के चांसेस हैं और कुछ एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर बिल्कुल ब्रीफ इंटेंस हैवी शावर्स की भी पॉसिबिलिटी है, जिसके कारण फ्लैश फ्लड्स, क्लाउड बर्स्ट लाइक इंसिडेंट्स और उसके साथ साथ लैंडस्लाइड, मडस्लाइड के भी काफी ज्यादा चांसेस हैं और नदी नालों के अंदर भी जो है थोड़ा वाटर लेवल राइज होने के इम्कान है और उसके साथ साथ कुछ एक लो लाइंग एरियाज के अंदर भी जो है टेम्पररी वाटर लॉगिंग कंडीशन बन सकते हैं। तो 23 तक ये एक्टिविटी रहेगा इंटरमीडियंटली और उसके बाद जो है फिर मौसम में बेहतरी देखी जाएगी फ्रॉम 24th ऑनवर्ड्स।
6: किन डिस्ट्रिक्ट्स में ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है जहां आपको लगता है कि गस्टी विंड्स से लैंडस्लाइडिंग हो सकती है?
5: इसमें बारिशें भी काफी वाइड स्प्रेड स्केल पे होंगी और कुछ एक डिस्ट्रिक्ट में जैसे हैवी बारिशों के इम्कान है, स्पेशली रियासी, उधमपुर, साथ साथ में एडजॉइनिंग जो चिनाब वैली के डिस्ट्रिक्ट हैं और उसके साथ साथ यहाँ पुंछ, राजौरी और यहाँ वैली के अंदर भी स्पेशली शुपियन, कुलगाम और साथ साथ में जो अप टू कुपवारा जो पूरा पीर पंचाल रेंज का जो एरिया, इन जगहों पे फ्लैश फ्लड, क्लाउड बर्स्ट के चांसेस काफी ज्यादा हैं। तो बिल्कुल थोड़ा सा एहतियात करने की जरूरत है और सतह लद्दाख के अंदर भी खासकर जो नॉर्दर्न पार्ट्स हैं, द्रास, करगिल, इन सारे एरियाज में जो है हल्की बारिशों के चांसेस हैं कुछ एक जगहों पे, यहाँ पे भी फ्लैश फ्लड की पॉसिबिलिटी बनती है।
6: क्या आपको नजर आ रहा है कि कौमी शाहरा या मुगल रोड, इस पे ट्रैफिक असरअंदाज हो सकता है इस बीच में?
5: बिल्कुल चांसेस काफी ज्यादा हैं क्योंकि लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है ये सारा और उसके बगैर भी बहुत सारे ऐसे हिली डिस्ट्रिक्ट हैं, हिली डिस्ट्रिक्ट खासकर यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर जो हाईली वल्नरेबल टू लैंडस्लाइड्स हैं बिकॉज ऑफ रेनफॉल या हैवी रेनफॉल, तो चांसेस काफी ज्यादा हैं। तो ऐसे में जो अपना ट्रैवल प्लान है या बाकी टूरिस्ट हो, ट्रांसपोर्टर्स हो, जनरल पब्लिक है, वो बिल्कुल उसी हिसाब से जो अपना ट्रैवल प्लान जो है बनाए।
4: 20 से 23 जुलाई के दरमियान मौसम में भारी तब्दीली का इम्कान, बात कर रहे थे महकमा मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद। اب ایک اور موضوع. وزیر اعلیٰ اور نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ اگر جنتر منتر پر احتجاج کی اجازت نہیں ملتی ہے تو بھی پارٹی 19 جولائی کو نئی دلی کے لیے روانہ ہوگی. سری نگر میں نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے عمر

0: लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि सिर्फ 12 दिनों के अंदर ही मुकद्दस यात्रा में शामिल होने वाले यात्रियों की तादाद 3 लाख को तजावुज कर गई है, इसलिए जायरीन को महफूज सहूलियात फराहम करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने बाबा बर्फानी के तमाम अकीदतमंदों के लिए रजिस्ट्रेशन, क्याम और सफर के इंतजाम को हर लिहाज से बेहतर बनाने पर जोर दिया। उन्होंने जम्मू की सियाहत, सकाफती और शिनाख्त को नुमाया रखने और अहम मजहबी और सियाहती मुकामात, मुकामी दस्तकारी को फरोग दिए जाने पर भी जोर दिया, ताकि जायरीन सियाहत और यहाँ की दस्तकारी और खुशगवार यादें अपने साथ ले जा सके। उन्होंने ट्रांजिट कैंप्स में दस्तियाब सहूलियात, रजिस्ट्रेशन, ट्रांसपोर्ट और सिक्योरिटी इंतजाम का भी जायजा लिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जहां महकमे मौसमियात की पेशनगोईयों पर अमल करने की हिदायत दी, वहीं अकीदतमंदों की बढ़ती तादाद के पेश नजर मुलाजमों की तैनाती को मौसर बनाने के भी अहकाम दिए। उन्होंने इंतजाम को बगैर किसी रुकावट के जारी रखने का हुक्म भी दिया। इस मौके पर डिविजनल कमिश्नर जम्मू, पुलिस के बड़े अफसरान, IGP जम्मू, CRPF, डिप्टी कमिश्नर जम्मू और मुख्तलिफ महकमों के अफसरान भी मौजूद रहे। याद रहे कि जम्मू शहर श्री अमरनाथ जी यात्रा के पहले पड़ाव के तौर पर अपनी खूब पहचान बना रहा है, जहां यात्रा के अकीदतमंदों को श्री अमरनाथ जी यात्रा की तमाम सहूलियात के साथ साथ यात्रा की ट्रेनिंग भी दी जाती है। वहीं इंतजाम को हर रोज बेहतर बनाए जाने की कोशिशें भी जारी है। वहीं जम्मू शहर में सियाहती और मजहबी मकामात से भी अकीदतमंदों को रूबरू किया जा रहा है, ताकि अकीदतमंद जम्मू कश्मीर से अच्छी यादें लेकर वापस जाएं।
1: आपने जावेद मेहराब की रिपोर्ट सुनी। शहरबीन जारी है, आप हमारे साथ रहिएगा।
2: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर, हर गली, हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
3: मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का सर्रा सर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट दिल से बना।
4: जय बाबा बर्फानी के पवित्र जयकारों के साथ श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 में शामिल होने आए सभी श्रद्धालुओं का जम्मू कश्मीर प्रशासन हार्दिक स्वागत करता है।
5: ये सफर सिर्फ पहाड़ों की चढ़ाई नहीं, बल्कि श्रद्धा, संयम और भक्ति का एक अद्भुत अनुभव है।
4: यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखें। यात्रा पर निकलते समय अपना RFID कार्ड अवश्य साथ रखें, क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन अनुमति संभव नहीं है। सफर के दौरान भीड़ से अलग न हों और अधिकृत रूट का ही उपयोग करें। मौसम को देखते हुए गर्म और आरामदायक कपड़े पहनें। पर्यावरण की पवित्रता बनाए रखना भी हम सबकी जिम्मेदारी है, इसीलिए कचरा इधर उधर ना फेंकें। अपनी सेहत का खास ध्यान रखें और जरूरत पड़ने पर तुरंत मेडिकल सहायता लें।
5: जम्मू कश्मीर सरकार आपकी हर कदम पर सेवा और सुरक्षा के लिए तत्पर है। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।
6: चिनार की छांव तले किताबों का एक खूबसूरत जहां आपका इंतजार कर रहा है। आइए तीसरे चिनार बुक फेस्टिवल में, जहां मिलेंगी इंग्लिश, हिंदी, उर्दू और अन्य भारतीय भाषाओं के 200 से अधिक बुक स्टॉल्स, साथ ही क्रिएटिव वर्कशॉप्स बच्चों के लिए, लिटरेरी सेशंस, डिजिटल रीडिंग कॉर्नर और कल्चरल परफॉर्मेंसेस का लुत्फ उठाइए। 18 से 26 जुलाई SKICC श्रीनगर। चिनार बुक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया इन कोलैबोरेशन विद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर। टुगेदर वी रीड, टुगेदर वी लीड।
1: शेरबीन में आपका फिर एक बार खैर मकदम। सामीन, श्रीनगर का जिलेडल आलूदगी की लपेट में आ चुका है। झील के मुख्तलिफ किनारों पर ठहरा हुआ पानी, प्लास्टिक, पॉलिथीन और दीगर कचरे के ढेर देखे जा रहे हैं। सयाहों ने जिलेडल में बढ़ती आलूदगी और सफाई के नाकाफी इंतजाम पर तशवीश का इजहार करते हुए इसे जिलेडल की खूबसूरती और दिलकशी मुतासिर होने का अंदेशा जाहिर किया है। उन्हें हुकाम से झील की सफाई और तहफ़ के लिए मौसर इकदाम की अपील की है। कश्मीरी जबान के मारूफ शायर और सागर कल्चर फोरम चुकरपट्टन के सीनियर रुकन गुलाम नबी लोलो कस्तूर मुख्तसर इलालत के बाद आज अपने गांव रांगर चाडूरा में इंतकाल कर गए। उनके इंतकाल पर सागर कल्चर फोरम के सदर बशीर जोगियारी, सरपरस्त सागर नजीर और दीगर अराकीन ने रंज का इजहार किया और लवाकीन से ताज़ियत की। अब एक और मौसम। सामी, न सिर्फ मुल्क बल्कि पूरी दुनिया इस वक्त महंगाई के सख्तरीन

0: ये बनाई गई थी आधी अधूरी रह गई है, जबकि मकामी लोगों का इसरार है कि इस अहम सड़क को आम गाड़ियों की आमदोरफ्त के काबिल बनाया जाए ताकि मजहबी सियाहत को फरोग के साथ साथ फजलाबाद गांव के इलाका बैर के मकीनों को भी आमदोरफ्त की सहूलियात से असर आ सके। इसी तरह शहर भीन को बताया गया कि कंडियारा से डींगला गांव तक 4 किलोमीटर रोड PMGSY के तहत बनानी मकसूद थी, जिसकी मंजूरी दस्तियाब हुए 3 बरस हो चुके हैं। टेंडर भी हुआ, काम भी शुरू हुआ, लेकिन ठेकेदार काम अधूरा छोड़कर और रकम निकलवा के चला गया और ये सड़क मुकम्मल ना हो सकी, क्योंकि ये गांव पहाड़ी ढिलवान पर वाकया है, जिसकी वजह से सड़क के साथ साथ दंगे भी न बने और पानी की निकासी की नालियां भी न बनाई गईं, जिसके बायस बारिश का पानी सड़क पर बहने लगता है और अब सड़क का एक हिस्सा खत्म हो चुका है और आमदोरफ्त भी बंद है। अवाम की मांग है कि कंडियारा से डींगला टॉप तक इस 4 किलोमीटर रोड को आमदोरफ्त के काबिल बनाया जाए ताकि गांव की 800 के करीब आबादी को फायदा पहुंच सके।
1: आपने पुंछ से केडी मेनी की रिपोर्ट सुनी। समीन हजरत सैयद मोहम्मद सिकंदर अंदराबी का सालाना उर्स त्रिचल पुलवामा में अकीदत और एहतराम के साथ इख्ताम पजीर हुआ। इस मौके पर तके सिकंदरिया में एक रूहानी मजलिस मुनक्कद हुई, जिसमें तिलावत कुरान, खत्मात मौजूमात, दुरूद अज़कार और इज्तिमाई दुआओं का एहतमाम किया गया, जबकि रिवायती लंगर भी तकसीम किया गया। हक्कानी मेमोरियल ट्रस्ट जम्मू कश्मीर के सरपरस्त आला सईद हमीदुल्ला हक्कानी, सदर मजलिस सईद मोहम्मद जाहिद हक्कानी, जनरल सेक्रेटरी बशीर अहमद डार और दीगर मुकर्ररीन ने हजरत सईद मोहम्मद सिकंदर अंदराबी की दीनी, रूहानी और आवामी खिदमात को खराज अकीदत पेश किया। इस सिलसिले में फतेह कदल श्रीनगर में भी हजरत मीर सईद कासिम शाह हक्कानी के आस्थान आला पर महान रूहानी मजलिस मुनक्कद हुई। क्रोन कल्चरल फोरम के सरपरस्त आला सईद सैदुद्दीन सैदी ने आज गोबल करीरी जाकर मुमताज गोबली के साथ ताजियत की। वजरे उनके बरादर शबीर अहमद डार, जो कि पेशे से एक लेक्चरर थे, का हाल ही में इंतकाल हुआ है। इस मौके पर उन्होंने क्रोन कल्चर फोरम और अदबी मरकज कमराल की जानिब से मरहूम के साथ ताजियत की। यूनुस पैरी की इतला के मुताबिक बीरवा डिवीजन के माछहामा और दीगर इलाकों में लोगों को पिछले एक हफ्ते से पीने का पानी नहीं मिला है और इस वजह से लोग सख्त परेशान है। मकामी लोगों ने महकमे जल शक्ति की नाकिस और गैर तसल्ली बख्श कारकर्दगी पर अफसोस का इजहार करते हुए हुकाम से इस मामले में फौरी मुदाखलत की अपील की है। इसके साथ ही शहरबीन के आज के मौजूदात मुकम्मल हुआ चाहते हैं। अपने मेजबान और शहरबीन के एडिटर मोहम्मद हुसैन जफर शहरबीन की निगला समीना शाह को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।
2: शहरबीन आप तक पहुँचाने में हमारे साथ ताबुन कर रहे थे खैबर सीमेंट, मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट। अपने तामीरात दिल से बनाइए।
3: आप बिजनेस की तरक्की को लेकर हैं फिक्रमंद? अरे रेडियो पे दे इश्तिहार और बढ़ाएं अपना कारोबार। अब फिक्र की क्या बात जब है कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का साथ। जी हाँ, अपने कारोबार की उड़ान को दीजिए एक नई पहचान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, फोन नंबर 9419000255।
4: मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियां बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पायेदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग।
5: घर का AC हो या गीजर, वोल्टेज का हीरो सिर्फ एक BS वॉइस स्टेबलाइजर्स। पावर फ्लक्चुएशन सॉर्टेड, लॉन्ग लाइफ फॉर योर अप्लायंसेस गारंटीड। BS वॉइस, दैट्स बेस्ट सर्विस। कॉल नाउ 9419001960।
6: अरे ये सेवाराम की दुकान बंद क्यों है?
7: बंद नहीं, मिलावट करता था, किसी ग्राहक ने माल की जांच करवा दी।
8: जी हाँ, नए खाद्य कानून के तहत हर एक को अधिकार है मिलावटी खानपान वस्तुओं की लेबोरेटरी से टेस्ट करवाने का। पकड़े जाने पर मिलावटखोरों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
9: याद रखें, सुरक्षित आहार स्वास्थ्य का आधार। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.fssai.gov.in पर।
10: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द कमिश्नर फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन J&K।
11: मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का सर्रा सर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ।
12: केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर पवित्र श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 में पधारे सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत करता है। यात्रा को सुरक्षित और सुखद बनाने के लिए कृपया कुछ महत्वपूर्ण

0: बातों का ध्यान रखें।
1: जम्मू कश्मीर के बाहर के प्रीपेड सिम कार्ड यहाँ काम नहीं करते। यात्री बालटाल, लुनवान तथा अन्य बेस कैंप पर उपलब्ध विशेष काउंटर से पहले से एक्टिवेट किए गए सिम कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। यात्रा मार्ग पर लगाए गए साइन बोर्ड, एडवाइजरीज और सुरक्षा निर्देशों का पालन अवश्य करें। किसी भी प्रकार का शॉर्टकट न अपनाएं और डेंजर जोन से दूर रहें। अगर सांस लेने में दिक्कत महसूस हो तो तुरंत नजदीकी हेल्थ सेंटर से संपर्क करें। पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें और शरीर को हाइड्रेटेड रखें। अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार ही यात्रा करें और समय समय पर आराम जरूर करें। किसी भी सहायता या आपातकालीन स्थिति में नजदीकी पुलिस या सुरक्षा बल से संपर्क करें।
0: आपकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। इन निर्देशों का पालन करते हुए बाबा बर्फानी के दर्शनों का आनंद लें।
1: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय डायरेक्टोरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। चिनार की छांव तले किताबों का एक खूबसूरत जहां आपका इंतजार कर रहा है। आइए तीसरे चिनार बुक फेस्टिवल में, जहां मिलेंगी इंग्लिश, हिंदी, उर्दू और अन्य भारतीय भाषाओं के 200 से अधिक बुक स्टॉल, साथ ही क्रिएटिव वर्कशॉप बच्चों के लिए, लिटरेरी सेशन, डिजिटल रीडिंग कॉर्नर और कल्चरल परफॉर्मेंसेज का लुत्फ उठाइए। 18 से 26 जुलाई SKICC श्रीनगर। चिनार बुक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज बाय नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया इन कोलैबोरेशन विद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर। टुगेदर वी रीड, टुगेदर वी लीड।

0: सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 34.7 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 25.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर में कल तुलुए आफ्ताब सुबह 5:31 और गुरुबे आफ्ताब शाम 7:43 पर होगा। आखिर में अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर। भारत और बरतानिया के दरमियान जामे इक्तिसादी और तिजारती मुहिदे पर अमल दरामद शुरू। मुहिदे के तहत जम्मू कश्मीर से कंसाइनमेंट रवाना। राजौरी जिले की तारीखी भैरव यात्रा नेशनल इन्वेंट्री ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया में शामिल। एलजी मनोज सिन्हा ने श्री अमरनाथ यात्रा के दौरान मकामी दस्तकारी को फरोग देने पर दिया जोर। और वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे आज। स्किल इंडिया मिशन के भी 11 साल मुकम्मल। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खुदा हाफिज।
1: आदाब। आज का तबसरा लेकर हम हाजिर। इस हकीकत से कोई भी जी हो शख्स इनकारी नहीं हो सकता कि कुदरत ने इंसान को बेशुमार नियमतों से नवाजा है, लेकिन इन नियमतों में पानी को वो मकाम हासिल है जिसके बगैर जिंदगी का तसव्वुर भी मुमकिन नहीं। यही वजह है कि दुनिया भर में पानी के तहफ्फुज को 21वीं सदी का सबसे बड़ा चैलेंज करार दिया जा रहा है। मौसमियाती तब्दीली और बेहंगम शहरी तौसी ने इस कीमती वसीले को खतरे से दोचार कर दिया है। ऐसे हालात में कैच रेन एक इज्तिमाई सोच, एक कौमी जिम्मेदारी और आने वाली नस्लों के महफूज मुस्तकबिल की जमानत बनकर सामने आती है। इसका बुनियादी पैगाम सादा मगर निहायत गहरा है कि जहां जब बारिश हो वहां बारिश के पानी को महफूज किया जाए। अगर इस एक उसूल को अमली जिंदगी का हिस्सा बना लिया जाए तो पानी के बहरान पर बड़ी हद तक काबू पाया जा सकता है। हमारा मुआशरा एक ऐसे दौर से गुजर रहा है कि जहां एक तरफ शदीद बारिशें, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के वाकयात बढ़ रहे हैं तो दूसरी जानिब गर्मियों के मौसम में पीने के साफ पानी की किल्लत भी शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। लाखों लीटर बारिश का पानी हर साल बगैर इस्तेमाल के दरियाओं में बह जाता है, जबकि यही पानी अगर जखीरा किया जाए तो ये पूरे साल इंसान, ज़राअत और माहौल के लिए एक मजबूत सहारा साबित हो सकता है। जम्मू कश्मीर के तनाजुर में इस मुहिम की अहमियत कई गुना बढ़ जाती है। ये खत्ता अपने कुदरती आबी जखायर की वजह से हमेशा पानी की जमीन समझा जाता रहा है, लेकिन गुज़िश्ता चंद बरसों में बदलते मौसमी हालात ने इस तसव्वुर को भी चैलेंज कर दिया है। बर्फबारी के अंदाज में तब्दीली और बढ़ती हुई इंसानी सरगर्मियों ने आबी वसाइल पर दबाव में इजाफा किया है। तुर्रा ये कि ज़ेर ज़मीन पानी की सतह नीचे जा रही है और गर्मियों में पानी की किल्लत आम होती जा रही है। ऐसे हालात में कैच द रेन जम्मू कश्मीर की माहौलियात और इंसानी जिंदगी के तहफ्फुज की नागुजीर जरूरत है। ये मुहिम आबी वसाइल के बेहतर इंतजाम और ज़ेर ज़मीन पानी की सतह बुलंद करने की एक जामिया हिकमत अमली पेश करती है। अगर देहात में रिवायती तालाबों की बहाली पर संजीदगी से अमल किया जाए तो न सिर्फ पानी की दस्तियाबी बेहतर होगी बल्कि सैलाब के खतरात में भी नुमाया कमी आएगी। ये इकदामात माहौल को मुतवाजन रखने और कुदरती वसाइल की पायदारी में भी अहम किरदार अदा करेंगे। ये भी एक हकीकत है कि जम्मू कश्मीर की मईशत का बड़ा इन्हिसार ज़राअत, बागबानी और मवेशी परवरी पर है। अगर बारिश के पानी को महफूज करके ज़राई मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाए तो किसानों की आपाश पर आने वाली लागत कम होगी और दीही मईशत को इस्तेहकाम मिलेगा। इसी तरह पहाड़ी और दूर उफ्तादा इलाकों में बारिश के पानी का जखीरा मकामी आबादी के लिए पीने के पानी का काबिल एतमाद जरिया भी बन सकता है। इस मुहिम का एक निहायत अहम पहलू अवामी शऊर की बेदारी है। पानी का तहफ्फुज सिर्फ सरकारी इदारों की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हर शहरी का अखलाकी और समाजी फर्ज भी है। अगर हर घर में छत पर बारिश के पानी को महफूज करने का इंतजाम किया जाए, अगर हर तालीमी इदारा अपने तलबा में पानी की अहमियत का शऊर पैदा करे, अगर लोग खुद भी इलाके के आबी जखायर की हिफाजत को अपनी तरजीह बनाएं तो एक खामोश मगर मुअस्सर आबी इनकलाब बरपा हो सकता है। माहौलियाती एतबार से भी कैच द रेन एक दूर अंदेश सोच की अकासी करता है। बारिश का पानी जमीन में जज्ब होने से जेर जमीन आबी जखायर मजबूत होते हैं और कुदरती माहौलियाती निजाम मुतवाजन रहता है। यही वो इकदामात हैं जो मौसमियाती तब्दीली के बढ़ते हुए असरात से निमटने में मददगार साबित हो सकते हैं। आज दुनिया भर में पायदार तरक्की की जो बात की जा रही है, इसका बुनियादी सुतून भी कुदरती वसाइल का दानिशमंदाना استعمال ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پانی ایک قدرتی وسیلہ ہونے کے باوجود تہذیبی اور سماجی استحکام کی بنیاد ہے۔

वादी की आवाज़ लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर, तमाम सुनने वालों तक हमारा प्यार और खलूस पर आदाब पहुँचे। सामीन, प्रोग्राम की शुरुआत में आज बात करेंगे पाकिस्तान की। सामीन, पाकिस्तान ने रोज़ अव्वल से ही भारत दुश्मनी की पॉलिसी पर अमल करके खत्ते में कशीदगी को जन्म दिया और बरसगीर हिंद पाक में गैर यकीनी हालात पैदा करने का जिम्मेदार बन गया। अगरचे भारत हमेशा से अपने हमसाया ममालिक के साथ दोस्ताना माहौल कायम रखने और अपने मुल्क के साथ साथ पाकिस्तान समेत तमाम हमसाया ममालिक की तरक्की का भी मुतमनी रहा, मगर पाकिस्तान ने कभी भी भारत दुश्मनी नहीं छोड़ी और भारत की तरफ से बढ़ाए गए दोस्ती के हाथ को ठुकरा कर दो मुल्कों के दरमियान कशीदगी में इजाफा किया। नतीजे में आपसी ताल्लुकात खराब से खराब होते गए, जिसका खमियाजा पाकिस्तानी आवाम को आज भी उठाना पड़ रहा है। जब कभी भी भारत ने पाकिस्तान की तरफ सच्चे दिल से दोस्ती का हाथ बढ़ाया, पाकिस्तान ने हर उस वक्त अपनी नापाक चालें चली और भारत में बड़े बड़े दहशतगर्दाना हमले करवाए, जिस वजह से हमेशा आपसी बातचीत तातुल का शिकार रही और अब भारत किसी भी हाल में पाकिस्तान पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा भारत को धोखा दिया और बातचीत की आड़ में हमेशा भारत को जख्म दिए हैं। भारत की माजी की मरकजी सरकारों ने बारह पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करने और तमाम मामलात बातचीत से हल करने की कोशिश की, मगर हर बार पाकिस्तान ने अपनी भारत दुश्मन पॉलिसियों के जरिए अमन मुजाकरात को पटरी से उतारने का ही काम किया और कभी दहशतगर्दाना हमला करके और कभी धमकियां देकर भारत को डराने की नाकाम कोशिशें की, जिस वजह से भारत ने अब साफ कर दिया है कि गोली और बोली एक साथ नहीं चल सकती और जब तक न पाकिस्तान दहशतगर्दी की अपनी पॉलिसी तरक करके पुरअमन फिजा कायम करने की पहल करता है, तब तक उसके साथ न कोई बातचीत होगी और न ही कोई नरमी बरती जाएगी। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद जब भारत ने पाकिस्तान में कायम दहशतगर्दाना ठिकानों को ख़त्म करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर के तहत कार्रवाई की, तो उस वक्त भी पाकिस्तान ने उन दहशतगर्दों को बचाने के लिए भारत पर वापस ड्रोन हमले किए। हालांकि भारत ने पाकिस्तान पर वाजिया किया था कि भारत पाकिस्तानी फौजी ठिकानों पर नहीं बल्कि सिर्फ दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बना रहा है, मगर पाकिस्तान ने दहशतगर्दों के बचाव में आखिर खित्ते में जंगी सूरत हाल पैदा की। इस बार भी 1965, 1971 और 1999 की तरह पाकिस्तान को शिकस्त खानी पड़ी और उसने मजबूर होकर जंगबंदी की दरख्वास्त की और भारत ने अमन पसंदी का सबूत देते हुए जंगबंदी तस्लीम करके पाकिस्तान पर फिर एक बार वाजिया कर दिया कि वो दहशतगर्दी को तर्क कर दे। इस बार भारत ने सदियों पुराने सिन तास मुआहदे को इल्तवा में डालकर साफ कर दिया कि जब तक न पाकिस्तान दहशतगर्दी को बंद करता है तब तक ये ट्रीटी बहाल नहीं होगी, क्योंकि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। इसके बावजूद भी पाकिस्तान अपनी नापाक हरकत से बाज नहीं आ रहा है और सिन तास मुआहदे की मनसूखी पर दुनिया में

रो रहा है और भारत को मिटाने की धमकियां दे रहा है। हालांकि वो ये भी जानता है कि भारत उसकी इन धमकियों से डरने वाला नहीं। अगर पाकिस्तान अमन चाहता है तो उसे दहशतगर्दी बंद करनी होगी और तभी भारत उसके साथ तमाम मामलात को गुफ्त शनीद के साथ हल करने के लिए तैयार होगा। इसी दौरान पाकिस्तान में ये भी आवाजें उठने लगी हैं कि भारत की तरफ से कई बार दोस्ती का हाथ बढ़ाने के बावजूद पाकिस्तान ने मौके गंवाए और इसमें पाकिस्तान का ही नुकसान हुआ है। पाकिस्तानी हुकूमत में शामिल कई लीडरान अब इस बात का बरमला इजहार कर रहे हैं कि वो भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाने के लिए तरस रहे हैं। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ के सलाहकार राना सनाउल्लाह खान ने भारत के साथ रिश्तों पर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने भारत के साथ कशीदा ताल्लुकात के लिए खुद अपने मुल्क पाकिस्तान को ही जिम्मेदार ठहराया है। पाकिस्तान की एक टीवी चैनल पर एक प्रोग्राम के दौरान उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को भारत के साथ दोस्ती करने का एक बहुत बड़ा मौका उस वक्त भी था जब भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने साल 2015 में अचानक पाकिस्तान आकर इसकी शुरुआत की कोशिश की थी। उन्होंने कहा, मोदी के खिलाफ रहने के चक्कर में पाकिस्तान ने ये सुनहरी मौका भी गंवा दिया। उन्होंने कहा कि आज वक्त ये आया है कि नरेंद्र मोदी उनका फोन तक नहीं उठाते और उसके जिम्मेदार हम खुद हैं। उन्होंने ये बात भी तस्लीम की कि अब पाकिस्तान हमेशा इस परेशानी में रहता है कि मोदी उस पर हमला न करे। राना सनाउल्लाह ने साफ कहा कि भारत पाक कशीदगी से सिर्फ पाकिस्तान को ही नुकसान है और भारत का कुछ नहीं जाता। उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर करते तो मुल्क में महंगाई नहीं होती, गुर्बत नहीं होती और पाकिस्तान को IMF और बाकी ममालिक से भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसी ही राय पाकिस्तान के कई सियासतदान भी रखते हैं, मगर फौज के दबाव में खुले तौर पर कुछ कहने की समत नहीं रखते। ये अब पाकिस्तानी आवाम की जिम्मेदारी है कि वो अपने हुक्मरानों पर यह बात बाविर करें कि दहशतगर्दी किसी मसले का हल नहीं बल्कि बातचीत और अमन के कयाम से ही मुल्क को आगे लिया जा सकता है। सामिन, पाकिस्तान के हवाले से प्रोग्राम में और भी बात करेंगे, पहले आप और हम सुनते हैं ये खूबसूरत सा फिल्मी नगमा।

वादी की आवाज़ आप समाप्त कर रहे हैं आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के हवाले से। सामिन, पाकिस्तान इस वक्त तारीख के सबसे बड़ी हिफाजती सूरत हाल से जूझ रहा है। मुल्क में बढ़ती दहशतगर्दी और अवामी गुस्से ने पाकिस्तान के हुक्मरानों की नींदें हराम कर रखी हैं। चाहे बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, सिंध हो या फिर मकबूजा कश्मीर, हर खित्ते में आए रोज दर्जनों सिक्योरिटी एहलकार हलाक हो रहे हैं और अवाम खुद को गैर महफूज महसूस कर रहे हैं। पहले से ही इक्तिसादी तौर बदहाल पाकिस्तान ऐसे हालात की वजह से माली तौर पर मजीद कमजोर होता जा रहा है और लोगों की जिंदगी अजीरन बन रही है। गुर्बत, महंगाई और इंसानी हकूक की पामाली अरूज पर पहुंच चुकी है। इतना ही नहीं बल्कि ये हालात पाकिस्तान की तिजारत पर बराह रास्त असरअंदाज हो रहे हैं और मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकार परेशान हैं। कई कंपनियां अपना सामान गोल कर रही हैं और सरमायाकार मजीद सरमाया लगाने से डर रहे हैं। खासकर गैर मुल्की सरमायाकार डरे सहमे हुए हैं और वो कई कंपनियों को बंद कर चुके हैं। ओवरसीज इन्वेस्टर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के ताज़ा सिक्योरिटी सर्वे 2026 में बताया गया है कि बदतर सिक्योरिटी हालात की वजह से 71% कंपनियां परेशान हैं और सरमायाकार पाकिस्तान में मजीद सरमायाकारी करने के लिए तैयार नहीं। 42% सरमायाकारों का कहना है कि कराची में सूरतेहाल मजीद बदतर हुई है, जबकि 81% का कहना है कि क्वेटा में भी हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। 86% सरमायाकारों और तिजारती बरादरी के लोगों का कहना है कि बलूचिस्तान के हालात काफ़ी ख़राब हो रहे हैं, जिस वजह से मुल्क में तिजारत को वसत देना मुश्किल हो रहा है। इसके अलावा समाजी जराइम में भी बेतहाशा इजाफे की वजह से लोग डरे सहमे हुए हैं। सरमायाकारों का कहना है कि खराब हिफाजती सूरतेहाल और समाजी जराइम की वजह से तिजारत बुरी तरह मुतासर हो रहा है और हिफाजती अमला इस सूरतेहाल पर काबू पाने में नाकाम हो रहा है, जिस वजह से आम लोगों में तश्वीश पैदा हो गई है। इधर मकबूजा कश्मीर के हालात में लगातार आने वाली खराबी की वजह से भी अवाम परेशान है। मकबूजा कश्मीर में फौज ने बर्बरियत के तमाम हद पार करते हुए अब तक दर्जनों मासूम कश्मीरियों को मौत के घाट उतार दिया है और सियासी कयादत को गिरफ्तार करके उन्हें नामालूम मकामात पर मुस्तकिल करके उन्हें तशद्दुद का शिकार बनाया जा रहा है। ऐसे हालात में यूरोपीय यूनियन ने भी पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनाते हुए वार्निंग दी है कि वो पाकिस्तान खासकर मकबूजा कश्मीर में जारी इंसानी हकूक की पामालियां बंद कर दे, वरना पाकिस्तान के साथ रिश्ते तोड़कर उसके साथ कोई भी तिजारत नहीं होगी। सामिन, मकबूजा कश्मीर के लोगों ने अब ये तय कर रखा है कि जब तक न पाकिस्तानी फौज इलाके से निकल जाए तब तक वो चैन से नहीं बैठेंगे, क्योंकि अब पाकिस्तान ने उनके खिलाफ जुल्म की हर हद पार कर दी है और उनका राशन पानी भी बंद कर रखा है। ऐसे में पाकिस्तान आने वाले वक्त में मजीद बुरे हालात का शिकार

0: वादी की आवाज आप समाप्त कर रहे हैं आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से। सामिन, वादी कश्मीर में इन दिनों सयाहों का काफी रश देखने को मिल रहा है। वादी के मुख्तलिफ सयाहती मुकामात का लुत्फ उठाने के लिए हर रोज हजारों सयाह वारदे कश्मीर हो रहे हैं। मौसमी गर्मा शुरू होने से अब तक 7 लाख के करीब सयाहों ने वादी की सैर की और ये तादाद गुजरते दिन के साथ बढ़ रही है। ये तभी मुमकिन हो पाया है जब वादी में दिहाइयों के नामसाइद हालात के बाद अमन लौट आया है और यहाँ आने वाले सयाह खुद को महफूज महसूस करने लगे हैं। अगरचे गुज़श्ता साल के पहलगाम के दहशतगर्दाना हमले के बाद सयाहों की वादी आमद में कदर कमी देखने में मिली थी, ताहम सरकार की तरफ से उठाए गए हिफाजती इंतजामात की बदौलत बहुत जल्द लोगों में उस हमले का खौफ खत्म हुआ और फिर से सयाहों ने वादी का रुख करना शुरू किया। मौसमी सरमा के दौरान भी रिकॉर्ड तादाद में सयाह वारदे कश्मीर हुए और अब बाहर के मौसम की शुरुआत से ही सयाहों की तादाद बढ़ती गई। वादी के सयाहती मुकामात पर इन दिनों सभी होटल बुक हैं और सयाह कई कई महीनों पहले अपनी बुकिंग करा चुके हैं। सयाहों की बढ़ती तादाद की बदौलत इस सेक्टर से जुड़े लोगों की आमदन में इजाफा हो रहा है। होटल मालिकान, टैक्सी वालों, घोड़े वालों और दुकानदारों के चेहरों पर एक बार फिर खुशी नजर आ रही है और वो सयाहों की खिदमत करने में मसरूफ हैं। पहलगाम, गुलमर्ग, यूसमर्ग, सोनमर्ग, डल लेक और दीगर मशहूर सयाहती मुकामात खचाखच भरे पड़े हैं और इंतजामिया सयाहों को हर मुमकिन सहूलत बहम रखने में मसरूफ है। अगरचे 1990 से शुरू होने वाले नामसाइद हालात की वजह से वादी का सयाहती सेक्टर बुरी तरह से मुतासिर हुआ था और इस सेक्टर से जुड़े लोगों की इक्तिसादी हालत खराबी की ओर बढ़ रही थी, ताहम साल 2019 के बाद मरकजी सरकार की तरफ से उठाए गए तारीखी इकदामात की बदौलत सिक्योरिटी सूरतहाल में नुमाया बेहतरी आई और सयाह वादी कश्मीर को एक महफूज जगह महसूस करने लगे, जिसकी बदौलत इन 6 बरसों के दौरान न सिर्फ मुल्की बल्कि गैर मुल्की सयाहों की वादी में आमद में लगातार इजाफा होता गया और आज वादी में जश्न का समा देखने को मिल रहा है। न सिर्फ सरकारी कोशिशों बल्कि यहाँ के गयूर अवाम के अमन बहाली के तायुन मुकम्मल इरादे की वजह से भी ये सब कुछ मुमकिन हो पाया है। सिर्फ सयाह ही नहीं बल्कि इन दिनों सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा भी जारी है और हर रोज हजारों की तादाद में यात्री पवित्र गुफा के दर्शन के लिए आ रहे हैं और कश्मीरी लोग यात्रियों का वालेहाना इस्तकबाल करके इस बात का सबूत दे रहे हैं कि कश्मीरी मेहमान नवाज होने के साथ अमन की बरकरारी का मुतमनी है और यहाँ के महजब समाज में तशद्दुद के लिए अब कोई जगह नहीं। पाकिस्तान की लाख कोशिशों के बावजूद भी कश्मीरी अवाम की अमन बहाली की कोशिशों को सबोटाज नहीं किया जा सका। ऐसे में वादी के खिरमने अमन में रखना डालने वाले पाकिस्तान और उनके मुकामी एजेंटों को अपनी मजमूम हरकतों से बाज आकर कश्मीरी अवाम को तरक्की और खुशहाली की राह पर चलने देना चाहिए। सामिन, और अब आइए प्रोग्राम के आखिर पर आप और हम सुनते हैं एक और खूबसूरत सा फिल्मी नगमा।
1: तेरे

0: राकेश नमस्ते, ये लव लेटर आपने मेरे नाम लिखा है?
1: लाइए ना।
0: ये अब सीधे अंकल के पास ही मिलेगा। हाँ।

0: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर हर गली हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना तहत सब 60 करोड़ लूक 5 लक्षन तमाम मुफ्त इलाज हकदार वनुक तम बहन करोड़न इलाज सपुद यम सत गरीब गरन इलाज पे सपदन वाली खर्च किन 2 लक्षन करोड़न हज बचत सपुद अस करू आयुष्मान ऐप डाउनलोड तो बनयू आयुष्मान का जानकारी बापत करू 1-4-5-5-5 फोन नंबर पे रबित कई
1: चिनार की छांव तले किताबों का एक खूबसूरत जहां आपका इंतजार कर रहा है। आइए तीसरे चिनार बुक फेस्टिवल में जहां मिलेंगी इंग्लिश हिंदी उर्दू और अन्य भारतीय भाषाओं के 200 से अधिक बुक स्टॉल्स साथ ही क्रिएटिव वर्कशॉप्स बच्चों के लिए लिटरेरी सेशंस डिजिटल रीडिंग कॉर्नर और कल्चरल परफॉर्मेंसेस का लुत्फ उठाइए 18 से 26 जुलाई SKICC श्रीनगर चिनार बुक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज बाय नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया इन कोलैबोरेशन विद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर टुगेदर वी रीड टुगेदर वी लीड
2: मीडियम वेव 268.81 मीटर और FM 103.5 MHz पर हमारी आवाज़ अब तक आकाशवाणी श्रीनगर से पहुंच रही है। रात के 8:30 हुए हैं। समाप्त करें शोबे खबर की पेशकश जिलनामा।
3: डिस्ट्रिक्ट न्यूज लेटर मुख्तलिफ अजला में जारी तरक्याती मनसूबों से मुतलिक जामिया रिपोर्ट्स पर मबनी आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर की पेशकश डिस्ट्रिक्ट न्यूज लेटर।
4: जिलानामा का ताज़ा शुमारा लेकर आपका मेजबान शेख तजम्मुल हाजिर है। आज के जिलानामा में हम जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिले में माही पालन खासतौर से कुकरनाग में कायम एशिया के सबसे बड़े ट्राउट फार्म से मुतलिक बात करेंगे। समीन ट्राउट मछली हमारे यहाँ गुज़श्ता चंद बरसों के दौरान सैकड़ों कुंभों के लिए आमदनी का एक बेहतरीन वसीला बन गई है क्योंकि इस मछली की तलब और पैदावार हुकूमती कोशिशों की बदौलत पिछले चंद बरसों के दौरान लगातार बढ़ रही है। मरकजी सरकार की माही पालन से मुतलिक स्कीमों और फिर यूटी सतह की स्कीम HADP यानी हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम की बदौलत ज़राअत और इससे मुंसलिक शोबजात में काफ़ी पेशरफ्त दर्ज की गई है। अनंतनाग जिले के मारूफ सियाहती मकाम कुकरनाग में कायम एशिया का सबसे बड़ा ट्राउट फिश प्रोजेक्ट न सिर्फ सर्द पानी में पलने वाली इस मछली की सप्लाई का एक अहम मरकज बनकर उभरा है बल्कि यह प्रोजेक्ट निजी सतह के ट्राउट फार्मर्स के लिए भी सप्लाई का एक बेहतरीन वसीला बन गया है। इस मरकज में हो रहे कामकाज के ताल्लुक से जब हमारे नुमाइंदे तसद्दुक रशीद ने महकमे फिशरीज के डिप्टी डायरेक्टर सज्जाद हुसैन डार से इस्तफसार किया तो वो तफसीलात देते हुए यूं गोया हुए।
5: हमका प्रोजेक्ट जो है ये वन ऑफ द एशियाज लार्जेस्ट प्रोजेक्ट है यहाँ पे और यहाँ पे जो काम करना है वो बहुत अच्छा खासा इसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए अच्छी तरीके से इसमें काम होना चाहिए। पिछले 2-3 सालों में जो है हमारे पास स्कीम आई RKPS TMSY और HADP के तहत और यहाँ पर उस और दो स्कीमों के तहत यहाँ पर बहुत कुछ काम हुआ है और जिससे कि जो है ये रेयरिंग कैपेसिटी जो है इस फार्म की जो है उसमें बहुत तौसी हुई है और यहाँ तक कि आज की डेट में जो अगर हम देखेंगे कि प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है यहाँ पर 100 टन के करीब पहुँच गई है और जहाँ तक सीड प्रोडक्शन की बात है जैसा कि आपको शायद मालूम ही होगा क्योंकि यहाँ पर सीड प्रोडक्शन जो है एक हैचरी हमारे पास है जिसमें हम 60 से लेकर 70 लाख तक अंडे जो है प्लांट करते हैं जिसमें हमें एनुअली जो है फिंगरलिंग जिसको हम कहते हैं जो हम प्राइवेट फार्मर्स को देते हैं उसकी तादाद जो है कम से कम 20 लाख तक जो है यहाँ से फिंगरलिंग तैयार होती है जो हम प्राइवेट फार्मर्स को देते हैं जिनसे प्राइवेट फार्मिंग में जो है अच्छा खासा प्राइवेट फार्मर्स को मुनाफा मिल रहा है।
6: ये बताया कि सजाद साहब कितना डिफिकल्ट है इतने मुलाजमीन को हैंडल करना फिर चाहे विंटर हो समर हो इस प्रोजेक्ट में काम करना और अपने डिजायर्ड रिजल्ट जो मुख्तलिफ स्कीमें हैं उनके तहत आपके रिजल्ट हासिल करना।
5: देखिए सर ये मतलब यहाँ जो है काम करना ये तो विद इन दिस प्रोजेक्ट लिमिट्स जो काम करना होता है यहाँ सिर्फ एक चीज की जरूरत है दैट इज डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क। जब डेडिकेशन होगी तो ये कोई बड़ा मसला नहीं है यहाँ पर जो है काम करना। बेशक जो है जो आपने वजह फरमाया कि विंटर्स में जो है मुलाजमीन के लिए काम करना थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन जब डेडिकेशन होती है हार्ड वर्क होते हैं तो हमें जो और एक्सपीरियंस होती है तो उनको कोई परेशानी नहीं होती है यहाँ पर न मुलाजमीन को हैंडल करने में न मुलाजमों को काम करने में कोई दिक्कत पेश आ रही है।
6: ये बताइए प्रोडक्शन कितनी

0: इंक्रीज हो गई है और जो इस वक्त मुख्तलिफ सिटी में है, हमने ये भी सुना है कि अब इसका जो एरिया है वो वसीतर हो रहा है, कोकर्रा के एरिया में एक एक्वा पार्क भी बन रही है, इसके बारे में रोशनी डालिए।
1: देखिए सर, जो एक्वा जहां तक एक्वा पार्क का ताल्लुक है, जो एक्वा पार्क बनने जा रही है वो तो उसके दो फेजेस हैं, एक फेज हो गया कल्चर पार्ट और दूसरा फेज हो गया रिक्रिएशनल पार्ट। यहाँ जो है कोकरनाथ प्रोजेक्ट जो है उसमें कल्चर पार्ट करीबन करीबन उसमें अभी तो फाइनल डिसीजन लेना अभी बाकी है, वो 100 करोड़ का प्रोजेक्ट तो है। यहाँ पर करीबन 50% जो है उसका इन्वेस्ट होगा और 50% जो है रिक्रिएशनल जो एक्टिविटी होगी वो दंडीपोरा जो कि इसके मलिक है उसमें वहाँ पर होगी। वो
0: ये बताए कि मरकजी सरकार और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की सरकार से कितना माली तावन आपको मिल रहा है?
1: देखिए सर, माली तावन जो है आपको खूब ही अंदाजा लगा होगा इससे कि जो मैंने बता दिया पिछले 2-3 सालों में जो है जो ये स्कीमें आई है मरकज की स्कीम है, वहाँ से ही हमें इसकी फंडिंग होती है और इसमें तभी जाके तावसी हो गई।
0: नौजवानों के लिए कोई खास पैगाम, अगर वो कोकर्रा प्रोजेक्ट में आपसे महारत हासिल करने की कोशिश करेंगे उनको क्या करना चाहे, या कोई अपना यूनिट डालना चाहेगा उसको क्या करना चाहेगा?
1: देखिए सर, जो जहाँ तक पढ़े लिखे नौजवानों का या मान लीजिए बेरोजगार नौजवान जो पढ़े लिखे नहीं भी है, तो जहाँ तक उनका ताल्लुक है उनके लिए ये सुनहरी चांस है। अगर ये बाकी सरकारी नौकरियों को छोड़ के अगर हम अपनी लैंड का या अपने इस कारोबार को फरोग देना चाहते हैं तो उनको मुख्तलिफ स्कीमें हैं, या एग्रीकल्चर एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बहुत सारी स्कीमें हैं जिसको पानी की अच्छी तरह से सुविधा अवेलेबल है, तो उसको चाहिए कि उसको यूटिलाइज करके फिश फार्मिंग में उसका अच्छा खासा मुनाफा मिल रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है उसको अच्छी तरीके से उसकी माली मानत में ताउन दे रही है। जो भी गवर्नमेंट है, जो भी गवर्नमेंट की स्कीमें हैं उनसे वो फायदा ले सकता है। और यहाँ जो है आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो भी यहाँ पर फार्मर आता है या स्कूल के बच्चे आते हैं जो अभी अंडर स्टडी में है, उनको भी यहाँ से जो है जानकारी हम देते हैं कि फिश फार्मिंग कैसे की जाती है, सीड प्रोडक्शन क्या है, इसमें कौन कौन से फायदे हैं, और जो भी फार्मर यहाँ आना चाहता है हमसे कोई जानकारी उनको चाहिए, ही इज मोस्ट वेलकम, उसको हम वेलकम करते हैं और जो भी जानकारी उसको चाहे वो यहाँ से मिलेगी। और जहाँ तक प्राइवेट फार्मिंग का ताल्लुक है, सीड का जो या जो उनको चाहे वो तो यहाँ से ही हम उनको सीड प्रोवाइड करते हैं, चाहे जम्मू प्रोविंस ले लीजिए या कश्मीर प्रोविंस या इवन लद्दाख जो है वो भी यहाँ से आयडोवा, यहाँ से लद्दाख या और किसी स्टेट में चाहे वो यहाँ से तमिलनाडु में भी पिछले साल हमने दिया है और तो यहाँ से उनको मिल रहा है।
0: तो जब भी कोई ऑफिसर किसी प्रोजेक्ट पे जाता है ये बताइए उसके फ्यूचर प्लान्स भी होते हैं सर, कहाँ पे वक्त करीब में आप फ्यूचर प्लान्स के हवाले से इस कोकर्रा प्रोजेक्ट को देखना चाहेंगे?
1: फ्यूचर प्लान्स में जो इंशाल्लाह खुदा के फजल करम से जो है ये एक मॉडल बनेगा यहाँ पर इंशाल्लाह, ये जो है ये प्रोजेक्ट जो है ये एक मॉडल बनेगा यहाँ पर रास टेक्नोलॉजी जो जैसा कि आपने बता दिया है, ये आपको मालूम है कि ये एक्वा पार्क जो है उसमें रिस्ट्रिक्ट क्रिएटिव एक्वा कल्चर सिस्टम एक जो नया नया ही इंट्रोड्यूस हुआ है उसको 2-3 साल हो गए, तो प्राइवेट सेक्टर में अभी किसी किसी का चल रहा है, वो भी यहाँ अवेलेबल होगा, जो उसका जो है अंडरग्राउंड वाटर जो है वही इस्तेमाल होगा, उसको इस नेचुरल वाटर से जो है उसका ज्यादा लेना देना नहीं है, वो अंडरग्राउंड वाटर के पर ही मुनसिब होगा और उसका टेम्परेचर या बाकी चीजें जो है वो तो उसी तरीके से मेंटेन की जा रही है।
0: कोई खास पैगाम जो जनूबी कश्मीर खासकर तवारीखी जिला अनंतनाग के शोहरत याफ्ता सियाहती मकाम कोकर्रा के लोगों तक आप पहुंचाना चाहेंगे?
1: देखिए सर, कोकर्रा के लोगों को, कोकर्रा के लोग वैसे भी यहाँ पर उनका आना जाना रहता है, उनको यही मैसेज है अगर वो फिश फार्मिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, उनके पास जमीन है, बाकी पानी की सुविधा है, वो फिश फार्मिंग में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और उनका रोजगार भी चलेगा और बाकी लोग जो है जो उनके आसपास पड़ोस में है उनको ताजी फिश मुहैया हो सकती है।
2: इसके साथ ही जिलानामा का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर हुआ। निगरानी आला अशफाक अहमद शाह, तरतीब व तहजीब कौशिकी कश्यप, रिकॉर्डिंग व एडिटिंग नूरुलैन इशरत, तहरीर शेख तजम्मुल, पेशकश रीजनल न्यूज यूनिट आकाशवाणी श्रीनगर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। सरकार ने देश में विनिर्माण पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए 1,27,000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी। घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए मोबाइल फोन विनिर्माण योजना को भी मंजूरी। केंद्र ने सड़क संपर्क बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 2 एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजनाओं को स्वीकृति दी। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता तथा सामाजिक सुरक्षा समझौता पूरी तरह से लागू। पहले ही दिन ब्रिटेन को $14 करोड़ का भारतीय सामान निर्यात किया गया। ईरान पर अमरीकी हमलों और नौसैनिक नाकाबंदी लागू करने से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में भारतीय महिला मुक्केबाजों ने 3 स्वर्ण और 10 रजत पदक जीते और फीफा विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज रात अमेरिका के एटलांटा में अर्जेंटीना का सामना इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज देश के सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि सेमीकॉन मिशन के दूसरे चरण के तहत 4,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद है।
1: सेमीकॉन 2.0 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमीकॉन 2.0 आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमीकॉन 2.0 में 6 पिलर्स है। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स, सेकंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स, तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड और ATMP ओसेट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में उद्योग को शुरू करने और स्थापित करने पर ध्यान दिया गया था। दूसरे चरण के अंतर्गत सभी रणनीतिक आवश्यकताओं के लिए जरूरी चिप भारत में डिजाइन की जाएंगी। मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 और वाराणसी रिंग रोड के बीच 46 किलोमीटर से अधिक लंबे 6 लेन वाले ग्रीन फील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर को भी स्वीकृति दी। इसे हाइब्रिड एनुइटी मॉडल के अंतर्गत बनाया जाएगा। श्री वैष्णव ने बताया कि इस परियोजना की कुल लागत 14,400 करोड़ रुपए से अधिक है।
1: पहला है वरुणा नदी के किनारे किनारे कम्प्लीट 6 लेन और 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर, 43 किलोमीटर इसकी लेंथ है, 10,998 करोड़ रुपीस की इसकी इन्वेस्टमेंट आएगा और करीब करीब 4 साल में कंप्लीट होगा। दूसरा है गंगा जी के साथ साथ कंप्लीट 6 लेन का एलिवेटेड कॉरिडोर, 46 किलोमीटर का ये होगा, 14,448 करोड़ रुपीस का बनेगा।
0: मंत्रिमंडल ने 62,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ मोबाइल फोन विनिर्माण योजना को भी स्वीकृति दी। श्री वैष्णव ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत देश में मोबाइल फोन बनाने के लिए पात्र बिक्री पर 2.25% से 5% तक की प्रोत्साहन सहायता दी जाएगी।
1: मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग, इसमें 62,500 करोड़ रुपीस का लेआउट हुआ। इन 10 वर्षों में एक मैसिव चेंज आया इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में, 7 गुना मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी, प्रोडक्शन बढ़ा और 11 गुना एक्सपोर्ट बढ़ा 2014 के कंपैरिजन में। और भारत जो मोबाइल फोन इम्पोर्टर था आज नेट एक्सपोर्टर बन गया है और सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बन गया है।

0: मंत्रिमंडल ने ओडिशा और झारखंड के चार जिलों में दो मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। लगभग 3,907 करोड़ रुपए की कुल अनुमानित लागत वाली इन परियोजनाओं के 2030-31 तक पूरा होने की संभावना है। श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत के लिए राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति NIPU 2026 को भी मंजूरी दी है।
1: यूरिया का रिक्वायरमेंट लगातार बढ़ रहा है, करीब 5% पर एनम रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है। तो आज की जो स्कीम अप्रूव हुई है उसमें करीब 8 से 9 नए यूरिया के मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट्स लगेंगे। पिछले एक दशक में 6 नए प्लांट ऐड किए गए। 6 नए प्लांट ऐड करने से बहुत हमारा इम्पोर्ट का डिपेंडेंस कम हुआ है, आत्मनिर्भर भारत हुआ है। और ये 8 और प्लांट ऐड करने से जितनी भी भारत की रिक्वायरमेंट है यूरिया की वो देश में ही बनेगी और भारत यूरिया में आत्मनिर्भर हो जाएगा। बहुत बड़ा मिशन है ये, क्योंकि देश को विकसित भारत पे ले जाने के लिए आत्मनिर्भर भारत बनाना एकदम आवश्यक है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज से लागू हो गया है। इसके साथ ही भारत ब्रिटेन सामाजिक सुरक्षा समझौता भी लागू हो गया है। सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में अस्थायी रूप से काम कर रहे भारतीय पेशेवरों को अमूल्य सहायता प्रदान करेगा और भारतीय उद्यमों की प्रतिस्पर्धा क्षमता को मजबूती देगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि ये समझौता भारत के किसानों, उद्यमियों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति प्रदान करेगा। साथ कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को ब्रिटेन के बाजार तक मजबूत पहुंच प्रदान करने में मदद करेगा। एक रिपोर्ट।
2: भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के पहले ही दिन भारत से ब्रिटेन को 14 करोड़ डॉलर मूल्य का सामान निर्यात किया गया। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि यह भारत के सबसे बड़े और महत्वाकांक्षी व्यापार समझौतों में से एक है। भारत में ब्रिटेन की उच्चायुक्त लिंडी कैमरून ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा,
3: आज 15 जुलाई को यहां आकर बहुत अच्छा लग रहा है। हम उस समझौते के लागू होने का उत्सव मना रहे हैं जिससे ब्रिटेन और भारत के बीच व्यापार करना तेज, सस्ता और आसान हो जाएगा। दोनों पक्षों ने बहुत मेहनत की है और इसका पूरा श्रेय यहाँ के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय को जाता है जिन्होंने शानदार काम किया है। मेरी टीम ने भी बहुत बढ़िया काम किया है। यह दोनों पक्षों के लिए बेहतरीन समझौता है। हमारी अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे की पूरक हैं।
2: कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के तरुण बजाज ने आकाशवाणी समाचार से कहा,
4: ये जो एग्रीमेंट हुआ है ये सच में बहुत ही ऐतिहासिक है, क्योंकि इससे जो है हमारे किसानों को बहुत फायदा मिलने वाला है, इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, हमारे प्रोसेस फूड सेक्टर को बहुत फायदा मिलने वाला है और हमें उम्मीद है कि ये एग्रीमेंट से हमारा ट्रेड बहुत अधिक बढ़ने वाला है।
2: इस समझौते से ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा विनिर्माण क्षेत्र के लिए नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की भागीदारी और मजबूत होगी। दीपेंद्र कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा उद्योग जगत ने भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते के लागू होने की सराहना की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज के दिन को भारत ब्रिटेन संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता भारत के वस्त्र, चमड़ा, रत्न और आभूषण, इंजीनियरिंग उत्पाद, समुद्री उत्पाद, रसायन, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, किसानों और निर्माताओं के लिए अभूतपूर्व अवसर पैदा करेगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज स्टार्टअप, कौशल विकास और कृषि प्रौद्योगिकी के माध्यम से कृषि को मजबूत करने के लिए कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR के समर्थन का आह्वान किया। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि उद्योग जगत की ये जिम्मेदारी है कि वे CSR के माध्यम से कृषि और ग्रामीण विकास में निवेश करके राष्ट्र निर्माण में भागीदार बने।
5: जो CSR है हमारी इसी भाव का प्रतीक है। एक तरफ हमारी जवाबदारी का एहसास है, क्योंकि हम जो कुछ अपनी कंपनी हो, अपना व्यवसाय हो, अपना उद्योग हो, हम जो अर्जित करते हैं वो अकेले अपने दम पे अर्जित नहीं करते, उसमें सरकार का, समाज का बड़ा योगदान होता है। ये धरती भगवान ने सबके लिए बनाई, ये धरती, ये खनिज, ये संसाधन, ये पानी, ये हवा सबकी है, लेकिन सारे संसाधन सबके पास नहीं है। तो जिनके पास है वो उससे धन कमाए, लेकिन उस धन का एक हिस्सा वो समाज के हित में समर्पित कर दें।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को

0: हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। श्री मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। प्रधानमंत्री दोपहर को चंडीगढ़ में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना सहित 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री जालंधर में यात्रियों की सुविधा में सुधार और क्षेत्र में आर्थिक विकास को गति देने के लिए 5,740 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। निर्वाचन आयोग ने पंजाब में निर्धारित विशेष गहन पुनरीक्षण की समय सीमा को 11 दिन तक बढ़ा दिया है। इस बदलाव के साथ अंतिम मतदाता सूची अब 1 अक्टूबर के बजाय 12 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। पंजाब की मुख्य चुनाव अधिकारी आनंदिता मित्रा ने बताया कि घर घर जाकर गिनती की प्रक्रिया 3 अगस्त तक जारी रहेगी। पहले इस चरण को 24 जुलाई तक पूरा किया जाना था। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR का गणना चरण सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। प्रारूप निर्वाचक नामावली 21 जुलाई को प्रकाशित की जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रेरणा पुरी ने आज चंडीगढ़ में पत्रकार वार्ता में कहा कि गणना चरण 15 जून से 14 जुलाई तक संचालित किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में आज नई दिल्ली में दिल्ली नगर निगम MCD और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसका उद्देश्य दिल्ली में मवेशियों के गोबर का वैज्ञानिक तरीके से इस्तेमाल करके कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र लगाना है। सरकार ने सोशल मीडिया पोस्ट का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि वित्त मंत्रालय ने रिजर्व बैंक और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को क्रिप्टो को विनियमित करने पर विचार करने के लिए कहा है। पत्र सूचना कार्यालय PIB की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि ये दावा फर्जी है और वित्त मंत्रालय ने ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया है। भारत क्रिप्टो को परिसंपत्ति के रूप में मान्यता नहीं देता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे NewsOnAIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अमरीका ने होर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने की कोशिश कर रहे जहाजों पर हमलों के जवाब में ईरान पर फिर समुद्री नाकाबंदी लागू कर दी है। अमरीका ने आज हवाई हमलों का अभियान तेज कर दिया। ईरान के अधिकारियों ने बताया है कि सेना की बैरक पर अमरीकी हमले में 7 सैनिक मारे गए। अमरीकी हमलों से देश भर में 260 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ईरानी सरकार की प्रवक्ता फातेमेह मोहजारियानी ने कहा कि हाल के दिनों में अमरीकी हमलों में 30 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। नाकाबंदी फिर लागू होने के साथ ही अमरीका और ईरान ने हमले शुरू कर दिए हैं। पश्चिम एशिया में अमरीका और ईरान के बीच कई दिनों से जारी हमलों के बाद अंतरिम शांति समझौता खत्म कर दिया गया है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वह अगले सप्ताह तक वार्ता के लिए नहीं आता है तो उसके खिलाफ सैन्य हमलों को और तेज कर दिया जाएगा। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान के बिजली संयंत्रों और पुलों को भी निशाना बनाया जा सकता है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज बेल्जियम के ब्रसेल्स में यूरोपीय संघ की स्टार्टअप अनुसंधान और नवाचार आयुक्त एकातेरिना जहारिएवा से मुलाकात की। डॉ. जयशंकर ने कहा कि इस दौरान स्वच्छ और हरित ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान के अवसरों पर चर्चा हुई। डॉ. जयशंकर ने बेल्जियम की 2 दिन की यात्रा के दौरान ब्रसेल्स में उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मैक्सिम प्रीवोट के साथ भारत बेल्जियम रणनीतिक संवाद के उद्घाटन सत्र की सह अध्यक्षता भी की। इंडोनेशिया के जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में आज भारतीय महिला मुक्केबाजों ने 3 स्वर्ण और 10 रजत पदक अपने नाम किए। अंडर 19 में चंद्रिका पुजारी ने 51 किलोग्राम वर्ग और प्राची ने 57 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता, जबकि अंडर 23 में निशा ने 54 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज रात 12:30 बजे अटलांटा में अर्जेंटीना का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। इस मैच के विजेता का मुकाबला फाइनल में स्पेन से होगा। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है प्राची प्रिया।
1: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 130 अंक यानी 0.2% बढ़कर 77,185 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 26 अंक यानी 0.1% बढ़कर 24,079 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में

0: छह पैसे कमजोर होकर 96 रुपए और 26 पैसे के स्तर पर बंद हुआ।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने देश में विनिर्माण पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए 1,27,000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी। घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए मोबाइल फोन विनिर्माण योजना को भी मंजूरी। केंद्र ने सड़क संपर्क बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 2 एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजनाओं को स्वीकृति दी। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता तथा सामाजिक सुरक्षा समझौता पूरी तरह से लागू। पहले ही दिन ब्रिटेन को 14 करोड़ डॉलर का भारतीय सामान निर्यात किया गया। ईरान पर अमरीकी हमलों और नौसैनिक नाकाबंदी लागू करने से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। और एशियाई U19 और U23 चैंपियनशिप में भारतीय महिला मुक्केबाजों ने 3 स्वर्ण और 10 रजत पदक अपने नाम किए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: बढ़ा और एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में भारतीय महिला मुक्केबाजों ने 3 स्वर्ण और 10 रजत पदक अपने नाम किए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी श्रीनगर समय मोहतरम रात 9 बजे वेल्यू कशर मौसीकी बोजो दस्तलो कलामी महबूबा मस्तूर सत गुलकार इजाज राह।

0: से इसकी मुद्दत के दौरान मजमुई तौर पर अंदाजन 39 लाख करोड़ रुपए के मोबाइल फोन तैयार किए जाने का इम्कान है, जबकि मजमुई बरामदात के 7.5 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 15 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाने की उम्मीद है।
1: मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग इसमें 62,500 करोड़ रुपीज का लेआउट हुआ। इन 10 वर्षों में एक मैसिव चेंज आया इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में, 7 गुना मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी, प्रोडक्शन बढ़ा और 11 गुना एक्सपोर्ट बढ़ा 2014 के कंपैरिजन में। और भारत जो मोबाइल फोन इम्पोर्टर था आज नेट एक्सपोर्टर बन गया है और सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बन गया।
0: मरकजी काबीना ने आत्मनिर्भर भारत के लिए यूरिया 2026 की खातिर कौमी सरमायाकारी पॉलिसी को भी मंजूरी दी है। जनाब वैष्णव ने कहा कि इस पॉलिसी का मकसद मुल्क में गैस पर मबनी यूरिया तैयार करने वाले यूनिटों के कयाम के लिए यूरिया के शोबे में नई सरमायाकारी की हौसला अफजाई करना है, ताकि खुद कफालत के हदफ को हासिल किया जा सके।
1: यूरिया का रिक्वायरमेंट लगातार बढ़ रहा है, करीब 5% पर एनम रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है। तो आज की जो स्कीम अप्रूव हुई है उसमें करीब 8 से 9 नए यूरिया के मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट्स लगेंगे। पिछले एक दशक में 6 नए प्लांट ऐड किए गए। 6 नए प्लांट ऐड करने से बहुत हमारा इम्पोर्ट का डिपेंडेंस कम हुआ है, आत्मनिर्भर भारत हुआ है। और ये 8 और प्लांट ऐड करने से जितनी भी भारत की रिक्वायरमेंट है यूरिया की वो देश में ही बनेगी और भारत यूरिया में आत्मनिर्भर हो जाएगा। बहुत बड़ा मिशन है ये, क्योंकि देश को विकसित भारत पे ले जाने के लिए आत्मनिर्भर भारत बनाना एकदम आवश्यक है।
0: भारत और बरतानिया के दरमियान जामे इक्तिसादी और तिजारती मुआहिदा CETA नाफिज हो गया है। इसके साथ ही समाजी सिक्योरिटी से मुतालिक मुआहिदा, जिसे डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन भी कहा जाता है, भी नाफिजुल अमल हो गया है। इससे बरतानिया में काम करने वाले भारतीय पेशेवर अफराद की आमदोरफ्त और मुसाबकती सलाहियत को मजीद तकवीत मिलेगी। इस तारीखी मुआहिदे के तहत बरतानिया के बाजार में भारतीय बरामदात के 99% हिस्से को 0 महसूल के साथ रसाई हासिल होगी। इसमें टेक्सटाइल, चमड़ा, इंजीनियरिंग, खुराक की डिब्बाबंदी, दवासाजी और MSME जैसे शोबे शामिल हैं। इस मुआहिदे पर अमल दरामद भारत को आलमी सतह पर एक मजबूत, मुसाबकती और पायदार मईशत बनाने की समत में एक अहम कदम है। ये मुआहिदा भारत और बरतानिया के दरमियान इक्तिसादी सिफारतकारी के एक नए दौर का आगाज भी है। मुआहिदे के निफाज के पहले ही दिन भारत से बरतानिया को 14 करोड़ अमरीकी डॉलर मालियत की अशिया बरामद की गई। तिजारत के सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल ने कहा कि ये मुआहिदा वजीर आजम नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन के ऐन मुताबिक है। उन्होंने कहा कि ये एक निहायत अहम और बड़े तिजारती मुआहिदों में से एक है, जो दोनों मुल्कों को तिजारत और सरमायाकारी के नए मौके फराहम करेगा। बरतानिया की हाई कमिश्नर लिंडी कैमरॉन ने कहा कि ये मुआहिदा दोनों ममालिक के लिए निहायत सूदमंद साबित होगा। मलबूसात की बरामदात को फरोग देने से मुतालिक कौंसिल AEPC के चेयरमैन डॉक्टर ए सक्थीवल ने कहा कि इस मुआहिदे के नतीजे में 1.5 साल के अंदर बरामदात दोगुनी होने की उम्मीद है। नायब सदर CP राधाकृष्णन ने कहा कि जामे इक्तिसादी और तिजारती मुआहिदा CETA और समाजी सिक्योरिटी से मुतालिक मुआहिदा भारत और बरतानिया के दहरीना ताल्लुकात में एक अहम संग मील है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि जामे इक्तिसादी और तिजारती मुआहिदा CETA से भारत के किसानों, कारोबारी अफराद और MSMEs को काफी फायदा होगा, जबकि मुख्तलिफ शोबों को बरतानिया के बाजार तक बेहतर रसाई हासिल होगी। इससे टेक्नोलॉजी, पेशेवराना खिदमात और इख्तरा के शोबों में भारतीय बाहमी तआवुन बढ़ेगा और हुनरमंद भारतीय अफराद की आमदोरफ्त आसान होगी। उन्होंने मजीद कहा कि डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन के तहत बरतानिया में आर्जी तौर पर काम करने वाले भारतीय पेशेवर अफराद को बड़ा फायदा पहुंचेगा और भारतीय कंपनियों की मुसाबकती सलाहियत में इजाफा होगा। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। आबनाए हुर्मुज में बहरी जहाजों पर हमले के बाद अमेरिका और ईरान के दरमियान एक दूसरे पर फिर हमलों के तनाजुर में अमेरिका की जानिब से ईरान पर बहरी नाकाबंदी दोबारा नाफिज किए जाने के बाद मगरबी एशिया में कशीदगी में इजाफा हो गया है। अमेरिका की फौजी सेंट्रल कमान ने कहा है कि एक बार फिर किए गए हमलों का मकसद आबनाए हुर्मुज में कमर्शियल जहाजों को निशाना बनाने की ईरान की सलाहियत को कम करना है, जो तवानाई की आलमी सप्लाई का एक अहम

0: ऐसा है। ईरानी अहलकारों ने कहा कि अमरीकी हमलों में फौजी बैरक्स को निशाना बनाया गया, जिसमें कम से कम 7 फौजी अहलकार हलाक हो गए। ईरान की सरकारी मीडिया ने खबर दी है कि अमरीकी हमलों में जनूबी बंदरगाही शहर बुशहर को भी निशाना बनाया गया, जहां मुल्क की सिविल न्यूक्लियाई तंसीबात मौजूद हैं। ईरानी हुकूमत के तर्जुमान फातिमे मोहाजिरानी ने कहा कि एक दूसरे पर जारी हमलों के दौरान हालिया दिनों में 30 से ज्यादा अफराद हलाक हुए हैं। इस दौरान ईरान के सिपाही पासदारन इंकलाब इस्लामी ने दावा किया है कि उसने बहरीन और उर्दून में अमरीकी फौजी अड्डों पर जवाबी हमले किए हैं, जिसमें कमांड सेंटर, तैयारों के शेल्टर और दीगर अहम मकामात को निशाना बनाया गया है। उसने कहा है कि ये हमले बुहरे हिंद में अमरीका की जानिब से बहरी अफवाज तैनात करने और आबनाए हुर्मुज पर कंट्रोल के बहाने बहरी रास्तों की नाकाबंदी के जवाब में किए गए हैं। उसने इस नाकाबंदी पर मगरबी एशिया से तवानाई की सभी बरामदात को रोक देने की भी धमकी दी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी जुमे के रोज हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। वजीर आजम हरियाणा में जिंद रेलवे स्टेशन पर जिंद और सोनीपत के दरमियान भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। वो जिंद के एकलव्य स्टेडियम में तकरीबन 14,700 करोड़ रुपए मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। ज़राअत और किसानों की फलाह और बहबूद के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने आज कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सपोर्ट CSR पर जोर दिया, ताकि स्टार्टअप्स महारत की तरक्की और एग्रीटेक के जरिए ज़राअत को मजबूत बनाया जा सके। वजीरे मौसूफ ने नई दिल्ली में कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्क्लेव 2026 के लिए ICAR टेक्नोलॉजी पोर्टफोलियो से खिताब करते हुए ये बात कही। उन्होंने कॉरपोरेट सेक्टर पर जोर दिया कि वो ट्रस्टीशिप के भारतीय अखलाक को अपनाएं और अपनी कमाई का एक हिस्सा किसानों, जरई तहकीक और देही बिरादरियों के फलाह बहबूद के लिए वक्फ करें।
1: निश्चित तौर पर जो समझौते हुए हैं देश में कृषि के लिए भी और बाकी सेक्टर्स के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये समझौते न केवल हमारे एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे, जिसका लाभ खेती को भी मिलेगा, बल्कि इन समझौतों से भारत में हमारे उद्योग, व्यापार जगत, उनको एक नई ताकत मिलेगी।
0: चुनाव कमीशन ने आज पंजाब, कर्नाटक, तेलंगाना और दिल्ली में वोटर फहरिस्तों की खसूसी जामे नजरसानी SIR मुहिम की हतमी तारीख में 11 दिन की तौसी कर दी है। दिल्ली में इब्तदाई वोटर फहरिस्त अब 5 अगस्त के बजाय 17 अगस्त को शाये की जाएगी। इस तरह घर घर जाकर वोटरों की तस्दीक का अमल, जो 28 जुलाई तक जारी रहना था, अब 8 अगस्त तक जारी रहेगा। हतमी वोटर फहरिस्त 19 अक्टूबर को शाये की जाएगी। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज स्टार्टअप, तहकीक और इख्तरा के लिए बेल्जियम के ब्रसल्स में यूरोपीय यूनियन की कमिश्नर एकाटेरिना जहरीवा से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि मीटिंग के दौरान उन्होंने तहकीक के लिए साफ सुथरी और माहौलियात के लिए साजगार टेक्नोलॉजीज के लिए उभरते हुए मौके पर तबादला ख्याल किया। 19 साल और 23 साल तक की उम्र की एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप्स में आज जकार्ता में 3 भारतीय खवातीन मुक्केबाजों ने सोने के तमगे जीते हैं, वहीं दीगर 10 ने चांदी के तमगे जीते। 19 साल तक की उम्र के जुमरे में चंद्रिका पुजारी ने 51 किलोग्राम जुमरे में सोने का तमगा जीता, वहीं प्राची ने 57 किलोग्राम जुमरे में सोने का तमगा जीता है। फीफा आलमी कप फुटबॉल के दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में आज रात अमेरिका के एटलांटा में दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 12:30 बजे होगा। इससे पहले कल रात टेक्सास में मुकाबले के पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 0 के मुकाबले 2 गोल से हराकर फाइनल में जगह बना ली थी। बरतानिया की हुकूमत ने आज 16 और 17 साल के नौ उम्र जवानों के लिए आधी रात के बाद सोशल मीडिया इस्तेमाल करने पर पाबंदी आयद करने के मंसूबे का ऐलान किया है। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। हुकूमत ने मुल्क में सेमीकंडक्टर इको निज़ाम को मुस्तहकम करने की खातिर 1,27,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के अखराजात के साथ सेमीकॉन 2.0 को मंजूरी दे दी है। उसने घरेलू पैदावार बढ़ाने के लिए मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को भी मंजूरी दी है। मरकज ने सड़क कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने और ट्रैफिक की भीड़ भाड़ को कम करने के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी में सतह जमीन से ऊपर 2 कॉरिडोर प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है। भारत बरतानिया जामे इक्तिसादी और तिजारती मुआहिदा और इससे मुंसलिक समाजी तहफ़ का मुआहिदा मुकम्मल तौर पर नाफिज हो गया है। पहले दिन $14 करोड़ मालियत का भारतीय सामान बरतानिया बरामद किया गया। इसके साथ

0: इस आइडिया को उन्होंने शुरुआत की और जब उन्हें इस एक्सपेंशन मोड में लेकर आना था तब उन्हें जरूरत पड़ी कि हमें किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाना चाहिए जो इसे एक बिजनेस ग्रोथ दे सके और साथ में इस अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ऑर्गेनाइज करने में उनकी मदद कर सके। तो हम तीनों मिले और तीनों ने मिल करके 2016 से शुरुआत की और इंदौर जो कि स्वच्छतम शहर है आज देश का, उसके भी हालात बड़े खराब थे उन दिनों में और बड़ा गंदा शहर हुआ करता था। तो वहां पर नगर निगम इंदौर के साथ हमें सबसे पहले मौका मिला कि किस तरीके से हम एक ऐसी मशीन इजाद करें जो कि कचरे को एक रिसोर्स में बदल सके। और हमने खाने के कचरे से खाद बनाने की एक पहली मोबाइल मशीन, जिसे हम मोबाइल वेस्ट प्रोसेसिंग व्हीकल कहते हैं, का इजाद किया, जिसे अभी काफी सारे नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। वहां से हमने शुरुआत की और जब हमने ये विचार ज्वलंत और रोहित के मन में आया और उन्होंने अपने घर पे बताया, तो स्वाभाविक सी बात है कि IIT करने के बाद कोई व्यक्ति अगर कचरे के काम में घुसे तो एक बेसिक सा विरोध होता ही है और पेरेंट्स का भी एक बड़ी चिंता का विषय बन जाता है। लेकिन इन बच्चों की एक बोल सकते हैं कि इनका एक बहुत बड़ा रुचि थी इसके अंदर और साथ में उन्होंने देश के प्रति कुछ करना का एक ठानी थी अपने मन में, तो उसको लेकर के उन्होंने विदेश जाने के ख्याल को त्यागा और देश को कुछ ऐसा कॉन्ट्रीब्यूट करने के विषय में देने की सोची जिसमें न सिर्फ एक अच्छा काम हो और साथ में बिजनेस भी हो। और इस तरीके से कचरे को एक रिसोर्स के रूप में देखने का उनका विजन था, जिसको कि हमने स्वाहा के रूप में, एक बीज के रूप में डाला और आज ये देश के 11 राज्यों में काम कर रहा है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि एक विजन लेना होता है, आपको अपने सोसाइटी के प्रति कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे दे पाए ये सोच होनी पड़ती है, और तीसरी बात यह कि किस तरीके से आप देश में रहकर के देश की उन्नति में योगदान दे सकते हैं और हाँ साथ में बिजनेस में भी आगे बढ़ सकते हैं। तो ये एक कॉम्बिनेशन और एक अलग सोच थी इन दो बच्चों की, जिनके साथ मिलकर के फिर हम तीनों ने इसको आगे बढ़ाया और आज हम देश के सबसे तेज गति से बढ़ने वाले स्टार्टअप हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और सस्टेनेबिलिटी के क्षेत्र में।
1: डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे, स्वाहा ये नाम जो है ये हिंदुइज्म से बहुत ही जुड़ा हुआ नाम है, लेकिन क्या सोच के ये नाम आपने लिया था और ये सोच जो आपने इस स्वाहा को दी वो बताइए, उसके बारे में कुछ बताइए।
0: स्वाहा ऋग्वेद में इसका शब्द का उल्लेख मिलता है और आपने सुना होगा कि हिंदू प्रैक्टिसेस में जब यज्ञ या हवन होते हैं तो आहुति देने के बाद सभी लोग स्वाहा बोलते हैं। स्वाहा का अर्थ होता है कि हमने जो भी कुछ किया है उसे वैज्ञानिक और सही रीति से पूरा किया। तो स्वाहा का अर्थ है किसी भी प्रोसेस को सही रीति से संपूर्ण करना। तो ये ऋग्वेद से लिया गया था और इसका अर्थ ये था कि अब हम कचरे को, जो हम अभी तक अवैज्ञानिक तरीके से लैंडफिल में फेंकते थे, जला देते थे, ये सारे अवैज्ञानिक तरीके थे, तो उसको किस तरीके से वैज्ञानिक तरीके से निष्पादन किया जाए, इसलिए इसका नाम स्वाहा रखा गया। और चूंकि ये भारत का स्टार्टअप है तो हमने सोचा क्यों अंग्रेजी नाम रखा जाए, क्यों ना हम अपने लोकल लैंग्वेज में इसका नाम रखें ताकि हम अपने इस भाषा को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले जा सके। तो इन सोच की वजह से ये नाम रखा गया।
1: और आज जब आपका हम लोगो देखते हैं तो उसमें स्वच्छ और हरा का ये कॉम्बिनेशन आप बताते हैं और कलर भी आपने इसमें जो लिए हैं वो हरे लिए हैं। स्वच्छ और हरा स्वाहा कश्मीर कब पहुंचा और कैसे पहुंचा है, इसकी पीछे क्या कहानी है?
0: ये एक बड़ी रोचक कहानी है और स्वच्छ और हरा जैसा आपने बताया और हरे कलर को इसमें हमने प्राथमिकता दी है। हरा कलर प्रकृति का कलर है और हरा कलर प्रोग्रेस का कलर है, हरे कलर से खुशी मिलती है और ये भगवान के प्रिय रंगों में से एक है। तो जब हम इसको आगे बढ़ा रहे थे और अपने कामों को आगे अंजाम दे रहे थे जिसमें स्वच्छता शामिल है और इंदौर में हमने सबसे पहले जीरो वेस्ट इवेंट की एक परिकल्पना प्रस्तुत की, जहां पर हम शादियों को जीरो वेस्ट इवेंट बनाते थे, बर्थडे पार्टीज को, कॉन्फ्रेंसेस को, इन्वेस्टर समिट को, धीरे धीरे लोगों ने जीरो वेस्ट इवेंट्स के महत्व को समझना शुरू किया। तभी हमें 2022 में डिपार्टमेंट ऑफ रूरल सैनिटेशन जम्मू एंड कश्मीर, उस वक्त इसकी जो चीफ कमिश्नर सेक्रेटरी हुआ करती थी IAS मनदीप कौर मैडम, उनके ऑफिस से एक कॉल आया कि श्री अमरनाथ जी यात्रा 2022 होने जा रहा है और पिछले कई सालों से सरकार ये सोच रही है कि हमें उसे स्वच्छ बनाना है। हमारे हिमालय जम्मू कश्मीर के एरिया में बड़ी गंदगी हो जाती है और स्वच्छ भारत मिशन के तहत हम इसे एक नए मुकाम पर ले जाना चाहते हैं। तो उन्होंने हमसे इसके लिए एक मॉडल मांगा, एक कंसेप्ट नोट मांगा और कंसेप्ट नोट उन्हें इतना भाया कि उन्होंने कहा कि अगर आप चाहें तो आप हमारे इस कार्यक्रम में टेंडर में हिस्सा लीजिए, अगर आप चुने जाते हैं तो डेफिनेटली

0: हमें आपको यहाँ पर बुला के बड़ी खुशी होगी और ईश्वर की कृपा रही कि हमने उस टेंडर में हिस्सा लिया, हमने उसे जीता और 2022 में पहली बार, पूरे इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि श्री अमरनाथ जी यात्रा जो कि 13,300 फीट तक की ऊंचाइयों पर होती है, ये विश्व का सबसे ऊंचा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इवेंट बना और हम तब से लेकर अभी तक इसमें हजारों टन कचरा उठा चुके हैं, साफ कर चुके हैं और उसको इकट्ठा करके प्रोसेस कर चुके हैं, जिससे कि ये एक मॉडल बन चुका है और पूरे देश के जितने भी बड़ी धार्मिक मान्यता वाले इवेंट्स होते हैं, यात्राएं होती हैं, उसमें अब श्री अमरनाथ जी यात्रा एक मॉडल के रूप में बात की जाती है, प्रस्तुत होती है और इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बड़ी मान्यता मिल चुकी है। इस तरीके से हमारा कश्मीर में आगमन हुआ और उसी वजह से अब हम कश्मीर में यात्रा के अलावा भी कई सारे कार्य कर पा रहे हैं।
1: बहुत ही खूब। डॉक्टर साहब, जब बात करें अमरनाथ यात्रा की, तो अमरनाथ यात्रा में लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं और जाहिर सी बात है जब इतनी बड़ी तादाद आती है लोगों की, तो कचरा भी बहुत सारा निकलता है और बहुत सारी किस्मों का निकलता है। कचरा आप उठाते हैं, उसके बाद उस कचरे का करते क्या है आप?
0: देखिए, कचरा सबसे पहले समझने की बात है कि कचरा जो भी व्यक्ति उत्पन्न करता है, जनरेट करता है, ये उसकी नैतिक या मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उस कचरे का निष्पादन करे। पृथ्वी पे हमें ईश्वर ने भेजा है बिना कचरे के। कचरा हम बनाते हैं और उसे फिर प्रकृति में फेंकते हैं, तो ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि हमें इसका निष्पादन करते आना चाहिए। तो स्वच्छ भारत मिशन 2016 में जब शुरू हुआ, उसके बाद से लगातार भारत की सरकार पूरे देश को जन जागरण से ये बताती है कि जब कोई कचरा उत्पन्न होता है तो कैसे उसे हम सबसे पहले तो सही डिब्बे में डालें, उसका कलेक्शन ठीक हो, फिर उसका सेग्रीगेशन ठीक हो, क्योंकि अगर ये दो चीज हम ठीक से कर पाते हैं तभी जाके उस कचरे को हम रिसोर्स के रूप में प्रोसेस कर सकते हैं। तो गीले कचरा जो भी होता है उससे हम खाद और साथ में देखा जाए तो बायोफ्यूल और गैसेस बनाते हैं, जैसे जिसका नाम है CBG, कंप्रेस बायोगैस या बायोगैस। और अगर आप देखें कि जैसे क्षेत्र जहां पर बायोगैस के प्लांट्स नहीं है, वहां पर इससे बड़ी अच्छी पोषक खाद बनाई जाती है जो कि खेतों में यूज होती है, और आजकल तो खाद वैसे भी बड़ी कमी हो रही है किसानों को, तो ये कचरे से हम खाद भी बनाते हैं, गैस बनाते हैं। जो सूखा कचरा होता है वो सूखे कचरे को हम रिसाइकलेबल कचरा बोलते हैं, यानी कि हम उसे पुनः रिसाइकल कर सकते हैं। अगर प्लास्टिक की बॉटल हमारे पास आती है तो उससे पुनः प्लास्टिक की बॉटल बनाई जा सकती है। तो इस तरीके से रिसाइकलेबल कचरे से हम उसे पुनर्चक्रण में भेज देते हैं, रिसाइकलिंग प्रोसेस में भेज देते हैं। इसके अलावा भी कई सारे कचरे होते हैं, जैसे ई वेस्ट हुआ, रबर है, मेटल है, ग्लास है, तो इन सब के लिए भी रिसाइकलिंग की पूरी प्रोसेस होती है। तो एक तरीके से देखा जाए तो कचरा जो है अब एक गंदी चीज ना होकर के एक रिसोर्स बन चुकी है। इसकी इंडस्ट्रीज अब आज की तारीख में ऑर्गेनाइज सेक्टर में बदल चुकी है। हमारे देश में बड़े बड़े बायो CBG प्लांट्स, खाद के प्लांट्स, प्लास्टिक रिसाइकलिंग फैक्ट्रीज, हमारे पास ई वेस्ट रिसाइकलिंग फैक्ट्रीज हो चुकी हैं, जिनमें ये सारा कचरा जो है यूज होता है और हम उनसे नए प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो अब रिसाइकल की जगह नया शब्द आ गया है अपसाइकल, और वेस्ट टू प्रोडक्ट के इस नए सर्कल में हम घुस चुके हैं, और इसी को भारत सरकार ने नाम दिया है सर्कुलर इकोनॉमी। यानी जब कचरा घर से निकलता है तो आप मान के चलिए किसी न किसी रूप में वो वापस घर में आता है एक बेहतर रूप में, इसे हम सर्कुलर इकोनॉमी का रूप कहते हैं। तो कचरे का कलेक्शन, सेग्रीगेशन और अच्छे से प्रोसेस कर हम उसे प्रोडक्ट में बदलते हैं, हम उसे अपसाइकल करते हैं और वो पुनः हमारे काम आता है।
1: पिछले तकरीबन 5 साल से आप जम्मू कश्मीर आ रहे हैं और पिछले 5 साल से लगातार आप जम्मू कश्मीर में काम कर रहे हैं और खासतौर पर कश्मीर में। श्री अमरनाथ जी यात्रा की अगर हम बात करें, ये बड़ा ही फ्रेजाइल जोन में यह यात्रा होती है, बड़ा ही टफ टेरेन है जहां पर ये यात्रा होती है, तो इस टफ टेरेन में किस तरह से आप अपने कचरे को वहां से उठा के लाते हैं, और क्या कुछ ऐसा नहीं होता कि इस टेरेन में कचरा ही ना जाए और उसे पहले ही रोक लिया जाए? कुछ ऐसा नहीं करते कि, या फिर वही रस्में हैं कि कचरा जाएगा वो गिराया जाएगा और हमें उठा के लाना है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए?
0: नहीं, आपने ये बहुत ही मौजू सवाल किया है कि क्या होता है इस कचरे का और साथ में क्या हम इसे रोक नहीं सकते। तो मैं आपको ये बोलूंगा कि हम बहुत सारा काम श्री अमरनाथ जी यात्रा के इस जीरो वेस्ट टू लैंडफिल प्रोग्राम के तहत करते हैं, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ रूरल सैनिटेशन शामिल है, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट शामिल है, साथ में यहाँ की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट शामिल है, हॉर्टिकल्चर फ्लोरिकल्चर शामिल है, सरकार का बड़ा सहयोग है, पंचायती राज डिपार्टमेंट इसमें शामिल है, ग्रामीण विकास विभाग शामिल है। हम सब लोगों की यहाँ पर दो तरीके की कवायदें हो रही हैं। पहला तो हो रहा है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करना, यानी कि कचरा प्रबंधन, कचरा जो उत्पन्न हो रहा है। दूसरा एक महत्वपूर्ण चीज जो कि सरकार की तरफ से बड़ा जोर है और जिसपे हम बड़ा काम कर रहे हैं, जिसे हम कह सकते हैं जन जागरण, यानी IEC एक्टिविटी, इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। कैसे हम हमारी जनता

0: को, तीर्थयात्रियों को, पर्यटकों को ये समझाएं कि आप अपने दैनिक जीवन को सस्टेनेबल लाइफस्टाइल में बदलें और कैसे कचरा जो आप पर कैपिटा उत्पन्न करते हैं उस पर कैपिटा वेस्ट को हम कम कर दें ताकि हमारा वेस्ट जनरेशन कम हो, और कम वेस्ट जनरेशन होगा तो हमारे को कम खर्च लगेगा वेस्ट मैनेजमेंट में। एक तो ये तरीका है। जहां तक यात्रा के संदर्भ की बात करें तो यात्रा में आईसी एक्टिविटी के माध्यम से हम ये कोशिश करते हैं कि सिंगल यूज प्लास्टिक, जो कि सबसे बड़ा कचरे का एक माध्यम है या डायमेंशन है, उसे सबसे तेजी से कम करना है क्योंकि प्रकृति के लिए वो सबसे ज्यादा नुकसानदायक है। तो आईसी गतिविधियों के माध्यम से हम लोगों को शिक्षित करते हैं कि जब वो किसी भी यात्रा पे निकले, वो चाहे तीर्थ यात्रा हो या पर्यटन वाली यात्रा हो, टूरिज्म हो, पिलग्रिमेज हो, तो वो अपने साथ में कुछ सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की ऐसी चीजें लेकर के चलें जिससे कि वो एक जीरो वेस्ट यात्री बने। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि जब हम किसी घर से निकलते हैं और किसी दूसरे डेस्टिनेशन पे जाते हैं तो रास्ते में हम पानी पीते हैं, चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं, खाना खाते हैं, कुछ चीजें खरीदते हैं। आप इन सब चीजों को अगर ध्यान से देखेंगे तो चाय जब आप पीते हैं तो डिस्पोजेबल कप्स या ग्लास का यूज होता है, खाना खाते हैं तो आजकल लोग डिस्पोजेबल थालियों का यूज करते हैं, कुछ पैक करवा लेते हैं जोमेटो स्विगी जैसे बड़ी कंपनीज आजकल जो कि डोर टू डोर डिलीवरी करती हैं, तो उन्होंने जो आपको साथ में डिस्पोजेबल चीजें दे दी वो कचरे में जाली जाती हैं, फल खरीदते हैं तो उसे एक पॉलिथिन की थैली में लेते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो आपका हर एक खाने पीने की जो गतिविधि है सबसे बड़ी, उसमें पैकेजिंग वेस्ट, ट्रांसपोर्टेशन वेस्ट, कंज्यूमेबल वेस्ट, कटलरी वेस्ट इतना ज्यादा आता है कि हर एक आदमी दिन में कम से कम 5 से लेकर 10 सिंगल यूज प्लास्टिक या डिस्पोजेबल आइटम्स को यूज करता है। तो जब इस आंकड़े को हमने ठीक से एनालाइज किया तो हमने ये सोचा कि क्यों ना हम यात्रियों को ये समझाएं कि अगर वो घर से एक थाली, एक ग्लास, एक पानी की बोतल रीयूजेबल साथ में लेकर चलें तो वो इनमें से कोई भी कचरा रास्ते में उत्पादन नहीं करेंगे और साथ में उनकी यात्रा हो जाएगी जीरो वेस्ट और साथ में वो बन जाएंगे एक रिस्पॉन्सिबल टूरिस्ट या रिस्पॉन्सिबल पिलग्रिम। तो ये जन जागरण की बात को जन जन तक पहुंचाने के लिए हम लोग ग्राफिक्स, सोशल मीडिया, मल्टीमीडिया वीडियोस, शॉर्ट मूवीज, एंथम, रेडियो जिंगल्स और न जाने कितने सारे टॉक शोज, सिंपोजियम, कॉन्फ्रेंसेज और वर्कशॉप के माध्यम से कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें हम ये बताएं कि आप एक रिस्पॉन्सिबल ट्रैवलर बने, एक रिस्पॉन्सिबल टूरिस्ट बने, तभी जाकर के ये कचरा कम होगा। यात्रा की अगर बात करें तो हम इसके अलावा वहां पर कई सारे प्लास्टिक डिपॉजिट सेंटर्स बनाए हैं 15 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटीज के साथ में, जहां पर हम उन्हें प्लास्टिक डिपॉजिट करने के लिए आग्रह करते हैं और साथ में उसका अल्टरनेटिव कपड़े का थैला निशुल्क देते हैं। तो इससे फायदा यह होता है कि एक तो उन्हें जन जागृति आती है और दूसरा कोई भी व्यक्ति जब तक उसे कोई अल्टरनेटिव नहीं मिलेगा कोई चीज को मानता नहीं है। तो हमने जब ये अल्टरनेटिव दिया तब जाकर के लोगों ने प्लास्टिक को त्यागना शुरू किया और ये एक बहुत बड़ी सफलता थी। इस बार अमरनाथ यात्रा में हम लोग 1.5 लाख से ज्यादा कपड़े के थैले निशुल्क वितरित कर रहे हैं, जिससे आप मान के चलिए कि कम से कम 1.5 लाख यात्री नीचे से प्लास्टिक केव तक नहीं ले जाएंगे और ये बहुत बड़ा नंबर होता है। हमने सिंगल यूज प्लास्टिक को खत्म करने के लिए वाटर एटीएम्स लगाए हैं। हमारा एक वाटर एटीएम 1 घंटे में 500 लीटर पानी को डिस्पेंस करता है। तो दिन भर में अगर हम देखें और 12 घंटे की भी अगर मैं वर्किंग मानूं, हालांकि वो 24 घंटे चलते हैं, लेकिन अगर हम उसे 12 घंटे में भी कैलकुलेट करें तो एक वाटर एटीएम दिन भर में 6000 बोतलों के बराबर का पानी डिस्पेंस करता है और 6000 प्लास्टिक की नई बोतलों को उस रास्ते में, उस अमरनाथ यात्रा के पथ में आने से रोकता है। ये एक दिन का है और अगर मैं 2 महीने की यात्रा की बात करूं तो लगभग 2 लाख वाटर बॉटल्स एक वाटर एटीएम बचा लेता है। हमने इस तरीके के 8 वाटर एटीएम वहां लगाए हैं, यानी कि आप मान के चलिए कि 1 महीने में 16 लाख और 2 महीने में 32 लाख 3.2 मिलियन वाटर बॉटल की क्लाइमेट इंपैक्ट ये वाटर एटीएम से है। एक छोटी सी चीज है कि आपको एक रीयूजेबल बोतल उठाना है, तो आप समझ सकते हैं कि आप देश की और पर्यावरण की कितनी बड़ी सेवा करेंगे और बाबा बर्फानी को अपना एक तोहफा देंगे स्वच्छता का। तो इस तरीके के हम बहुत सारे इनिशिएटिव वहां कर रहे हैं जिससे कचरा कम हो और हमें बड़ी उम्मीद है कि जो पिछले सालों का रिकॉर्ड है, जब हम 5 लाख यात्रियों को वहां पर होस्ट करते हैं तो लगभग 400 से 500 टन के बीच का कचरा निकलता है, इस बार हमारी उम्मीद है कि हम इसको 20 से 30% कम करने की पूरी कोशिश करेंगे।
1: डॉक्टर साहब, हर साल आप कुछ ना कुछ नया लेकर आते हैं यात्रा में, जब भी ये टेंडर आउट होता है तो हर बार कंपनी से कुछ ना कुछ नया मांगा जाता है, हर बार आप कुछ नया देते हैं, अब की बार इस यात्रा में क्या नया दे रहे हैं आप?
0: देखिए, जहां तक इनोवेशन की बात है, इनोवेशन इसलिए करना जरूरी होता है कि लोगों की जो एक मोनोटोनस उनका बिहेवियर हो जाता है, वो भी नारे सुन के थक जाते हैं कि प्लास्टिक यूज मत करो।

0: तो जब आप बार बार ये बोलते हैं तो थोड़ी देरों के बाद उन्हें ये आवाज़ें सुनना बंद हो जाती हैं, और एक ये ह्यूमन नेचर है। तो उसी को केटर करने के लिए, ताकि वो हमारी बात को सुने, साथ में वो अपने बिहेवियर में बदलाव लेकर के आए, हम लोग हर बार कुछ नवाचार करते हैं। इस बार आप मान के चलिए लगभग 10 से ज्यादा ऐसे इनोवेटिव कंसेप्ट्स को हमने इस यात्रा में पेश किया है, जो यात्रियों को बड़े रोचक, मनोरंजक और इनोवेटिव तरीके से सिंगल यूज प्लास्टिक से दूरी बनाते हैं, कचरा कम करने के लिए प्रेरित करते हैं, और साथ में सफाई करने के लिए उनके योगदान को हमारे प्रोग्राम में एक हिस्सा लेने के लिए मजबूर कर देते हैं। मैं आपको कुछ एक उदाहरण बताता हूं। जैसे मैंने आपको बताया, वाटर एटीएम हमारे इनोवेटिव एक कंसेप्ट है, कपड़े का थैला हमारा कंसेप्ट है। इस बार हमने एक और नया कंसेप्ट यहां पर लेकर आए हैं। हमने बालताल बेस कैंप पे एक वेस्ट पेपर को रिसाइकल करके उससे पेपर ब्रिकेट्स बनाने की एक छोटी प्लांट डेमोन्स्ट्रेट की है, वहां एग्जिबिट की है, जिसमें यात्री आके देख सकते हैं कि जो वो पेपर का कचरा निकालते हैं, कार्डबोर्ड का कचरा निकलता है, उन सबको हम कैसे वहां पर लाइव पल्प में बदलते हैं, और पल्प से हम कैसे उसकी ब्रिकेट बनाते हैं, और कैसे वो ब्रिकेट एज अ फ्यूल इंडस्ट्री में यूज होती है। एक ये नवाचार हमने वहां किया है। साथ में हम लोगों ने पपेट शो किया है। उस पपेट शो के माध्यम से एक वेंट्रिलोकिज्म करके एक आर्ट होता है, जिसे हमने विशेष तौर पे उत्तर प्रदेश से बुलवाया है, और उसका एक कैरेक्टर है जिसका नाम है त्रिलोकी, और वो लोगों से बड़े मनोरंजक तरीकों से बात करता है और उनको हंसा करके अपने साथ बुला लेता है और उनसे प्रण करवाता है और प्लेज दिलवाता है कि आप कचरा नहीं करेंगे। हमने इस बार बायोगैस, यानी कि जो हमारे कचरे से गैस कैसे बना सकते हैं और उस गैस को कैसे यूज कर सके, उसके लिए हमने एक स्वच्छता ज्योत, एक प्रतीकात्मक टॉर्च वहां पर जलाई है एग्जीबिशन स्थल बालताल पे। जितना भी घोड़ों का लीद आता है, घोड़ों का गोबर आता है, उस सबको इकट्ठा करते हैं और उसको हम बायोगैस में डाल करके प्रोसेस करते हैं, और उससे जो फ्यूल बनता है उससे ये लौ जलती है स्वच्छता की। उसका ये आधार है कि किस तरीके से आप इस कचरे से भी गैस बना सकते हैं और उसे ईंधन के रूप में भविष्य में लंगर में या अपने किचन में यूज कर सकते हैं। ये एक नवाचार है। हमारे पास एक और नवाचार जो हमने वहां पर किया है वो है कि किस तरीके से हम अपनी जो भी वेस्ट है उसको इकट्ठा करके अगर लेकर के आते हैं तो उस वेस्ट को करेंसी के रूप में अमरनाथ सेवा कैफे में यूज कर सकते हैं। और जो भी कचरा आप पूरे यात्रा ट्रैक से नीचे लेकर आए और अगर हमारे अमरनाथ सेवा कैफे पर लेकर आते हैं तो आप उसके बदले में वहां पर नाश्ता कर सकते हैं, वहां पर चाय और कॉफी का लुत्फ उठा सकते हैं। ये एक नवाचार हमने वहां किया है, और एक बहुत अच्छा नवाचार जिससे कि हम वाकई में कचरे में तो कमी ला सकते हैं, साथ में एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर की प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो है हमारा अमरनाथ बर्तन बैंक। तो तबे साहब, इसमें दोनों एक्सेस पे, चाहे वो पहलगाम हो या बालतल हो, हमने हमारा अमरनाथ बर्तन बैंक बनाया है, जिसमें यात्री आते हैं अपना डिटेल दे करके एक 100 रुपए का रिफंडेबल फीस, क्योंकि निःशुल्क है, रिफंडेबल फीस जमा करते हैं, तो उन्हें एक थाली, कटोरी, चम्मच और एक ग्लास कपड़े के थैले में मिलता है। वो उस यात्रा में पूरा बिना डिस्पोजेबल आइटम्स को यूज किए हुए यात्रा करने के लिए दिया जाता है, जिसमें वो जाते हैं, केव से दर्शन करके लौटते हैं, वापस जमा करते हैं और अपना 100 रुपया ले जाते हैं। तो इससे उनको समझ में आता है कि कितना आसान तरीका है प्लास्टिक को बाय बाय करने का, किस तरीके से उनका जीवन जो है प्लास्टिक रहित हो सकता है, और कैसे ये प्लास्टिक नदियों में नहीं जाएगा, ग्लेशियर्स को पिघलने से रोकेगा। क्योंकि आप विश्वास नहीं करेंगे, एक बड़ा ही दुखद फैक्ट मैं बताना चाहता हूं जो जम्मू कश्मीर के साथ हुआ है। हमारे यहाँ की 45% झीलें और नदियां पिछले 35 सालों में गायब हो गई हैं, 45%, जो कि लगभग आधा होता है। और इसी गति से अगर ये चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब कश्मीर नदियों और पानी और पहाड़ों के लिए नहीं जाना जाएगा, बल्कि प्लास्टिक और गंदगी के लिए जाना जाएगा। तो ये सारे नवाचार जो हमने इस बार किए हैं, ये नवाचार सिर्फ अमरनाथ तीर्थयात्रियों के लिए नहीं, कश्मीर में आने वाले हर टूरिस्ट के लिए है, यहाँ की जनता के लिए है और यहाँ के पूरे सिस्टम के लिए है।
1: डॉक्टर साहब, पिछले कई सालों से आप कश्मीर आ रहे हैं, अब तकरीबन 5 साल हो गए आपको लगातार आते। यात्रा के अलावा जब आप कश्मीर के बाकी हिस्सों में घूमते हैं, जम्मू कश्मीर के बाकी हिस्सों में घूमते हैं, क्या लगता है आपको कहाँ हम पिछड़े हुए हैं और क्या प्रॉब्लम्स हैं हमारी जिनको रेक्टिफाई करने की जरूरत है?
0: हमारी सबसे बड़ी समस्या है हमारे जो 1,000, 1,500 या 5,000 स्क्वायर फीट का घर होता है, सिर्फ घर उसी को मानते हैं। ये एक सबसे बड़ी दिक्कत है। बहाई शिक्षा का एक कोट आपके सामने बोलूंगा, जिसमें कहा गया है कि ये पृथ्वी एक देश है और हम इसके नागरिक हैं। यदि हमने इस पूरी प्लैनेट को अपना घर मान लिया तो ये मान के चलिए आपको ऐसा लगेगा कि मैंने कचरा मेरे घर के बाहर नहीं, एक कमरे से दूसरे कमरे में रखा है। तो जब ये सोच आपके दिमाग में आ जाएगी, जहन में आ जाएगी, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी कश्मीरी कोई भी जम्मू का आदमी

0: या कोई भी हिंदुस्तान का आदमी अपना कचरा सिर्फ घर के बाहर फेंक करके उसकी इतिश्री कर लेगा। तो ये हमारा एक एटीट्यूड है जिस वजह से हमारा कचरा जो है हम फेंक देते हैं इररिस्पॉन्सिबल वे में, पहला। दूसरा, हम यदि ये मान लें कि कचरा हमने उत्पन्न किया है तो ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है, तो मैं उसे कम से कम सेग्रीगेट करके कचरे की जो सफाई करने के लिए आते हैं नगर निगम के लोग या नगर पालिका के लोग, उन्हें दे दें। तो मेरे ख्याल से इतना ही अगर आप कर लेते हैं तो ये आपका पूरा कर्तव्य हो जाता है कि आपने अपना काम पूरा किया। इसके बाद जिम्मेदारी उस नगर निगम की है कि वो इसे कैसे प्रोसेस करता है। तो मुझे लगता है जम्मू कश्मीर में इसकी बहुत बड़ी जरूरत है और हम कोशिश करें कि हम अपना कचरा कम करें और जितना भी कचरा उत्पन्न हो उसे हम सही तरीके से सेग्रीगेट करके, जैसे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026 में अब 4 बिन्स में सेग्रीगेट करना होता है, नीला, हरा, काला और लाल, वैसे हम अगर सेग्रीगेट कर दें तो मुझे नहीं लगता जम्मू कश्मीर को स्वच्छतम प्रदेश बनने से कोई रोक सकता है। तो ये टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी वाला स्टेट है जिसमें इसकी जन जागरण बहुत जरूरी है और वो ही इस पूरे स्टेट को क्लीनेस्ट बना सकता है।
1: बहुत खूब, आपने यहाँ इकोनॉमी की बात की, तो आप यात्रा के लिए जब आते हैं तो यहाँ क्या एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो पाता है कुछ, या फिर आपको मैन पावर वहीं से अपने इंदौर से लेके आना पड़ता है?
0: जब हम इसकी बात करते हैं तो अमरनाथ यात्रा के प्रोजेक्ट की जब हम बात करते हैं तो एक ये बहुत ही अद्भुत प्रोजेक्ट है। इसमें मुझे दो इम्पैक्ट साफ नजर आते हैं, पहला है वो इम्पैक्ट जो कि इकोनॉमी पे है और दूसरा है एक सोशल इम्पैक्ट है। मैंने यहाँ पर ये देखा है कि जब हम 2022 से कर रहे हैं तब से हमने यहाँ के लोगों को ही प्राथमिकता दी है। हमारा पूरा स्टाफ जो कि सैनिटेशन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहता है उसका 95% हिस्सा लोकल्स का होता है, युवाओं का होता है। और आप बिलीव नहीं करेंगे, 2022 से लेकर अब तक हर वर्ष लगभग 800 कश्मीरी युवा इस कार्य में संलग्न हैं, वो यहाँ से ट्रेनिंग ले चुके हैं और हर बार अमरनाथ यात्रा में अपना योगदान देते हैं। यहाँ से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की ट्रेनिंग लेकर वो बहुत सारे जॉब्स कर रहे हैं, बायोगैस से रिलेटेड, कचरे से रिलेटेड, रिसाइकलिंग से रिलेटेड, सस्टेनेबिलिटी, सोलर, बहुत सारे। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक इसका इम्पैक्ट पड़ा है, लोगों की नौकरियां लगी हैं, जॉब्स क्रिएट हुए हैं, लोगों ने स्टार्टअप शुरू किए हैं। दूसरा, सोशल इम्पैक्ट की मैं अगर बात करूं तो ये एक बहुत ही अच्छा सोशल फैब्रिक बनाता है और कम्युनल हार्मनी का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। आपको ऐसा अद्भुत मिश्रण पूरे देश में कहीं नहीं मिलेगा जहां यात्री तो 100% हिंदू हैं लेकिन जो यहाँ के वर्कर्स हैं, पौनी वाला हैं, शॉपकीपर्स हैं, सैनिटेशन कर्मचारी हैं, वो लगभग 90% से ज्यादा मुस्लिम्स हैं। तो ये जो हिंदू मुसलमानों की एकता, उनका आपस में सामंजस्य और उनका एक दूसरे के प्रति कोऑपरेटिवनेस हिंदुस्तान क्या इस पूरे विश्व में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि अमरनाथ यात्रा न सिर्फ यहाँ जम्मू कश्मीर को एक इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ देती है यहाँ के समाज को, बल्कि हमारे देश के सामने एक बहुत बड़ा, जिसको बोलते हैं धार्मिक एकता का, एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है। और मुझे लगता है सरकार इसको भविष्य में यूज कर सकती है कि कैसे हम लोग मिलजुल करके हमारे धार्मिक आयोजनों को भी एकता का स्वरूप दे सकते हैं।
1: वक्त थोड़ा मुख्तसर सा रहता है हमारे प्रोग्राम का, तो आपसे आखिर पर बस एक मैसेज चाहेंगे कि सुनने वालों के लिए क्या कहना चाहेंगे?
0: मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि स्वच्छता हमारा एक बहुत बड़ा धर्म है, स्वच्छता हमारी ड्यूटी है। ये न सिर्फ हमारे घर, अगली जनरेशन, राष्ट्र, बल्कि इस दुनिया के प्रति हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। तो हम एटलीस्ट स्वयं कचरा प्रबंधन अपना करें, कचरे को कम से कम उत्पन्न करें और जो कचरा उत्पन्न करते हैं उसे सेग्रीगेट करके हमें नगरीय निकायों को दे देना चाहिए ताकि हम देश की प्रगति में अपना योगदान दे सके।
1: डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस स्पेशल इंटरेक्शन को अपना वक्त देने का, और हमें पूरी उम्मीद है कि जो आपने बात कही है ये लोग हमारे जो सुनने वाले अभी हैं लिसनर्स, तो वो इसे समझेंगे और इसे अपनाएंगे ताकि हम भी ये फख्र से कह पाएं कि जम्मू कश्मीर भी स्वच्छतम शहरों में गिना जाता है। आज आप हमारे स्टूडियो आए उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: तो दोस्तों, ये थे डॉक्टर समीर शर्मा, CEO एंड फाउंडर स्वाहा रिसोर्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड इंदौर, जिनसे आज हमने बात की और हमें पूरी उम्मीद है कि उनकी कही हुई हर एक बात पर आप अमल करेंगे और इस जम्मू कश्मीर की धरती को स्वच्छ बनाने में अपना योगदान जरूर देंगे। तो आज के इस स्पेशल इंटरेक्शन में बस इतना ही, बहुत जल्द एक और ऐसी ही स्पेशल इंटरेक्शन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए बस आपसे इतनी सी गुजारिश, तो बाबा भोलेनाथ की इस धरती को स्वच्छ बनाए रखने में आपका योगदान बहुत ही जरूरी है, तो अपना योगदान देने में पीछे ना हटें, योगदान दें और इस धरती को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखना हमारा फर्ज है, उसे बनाए रखें। तो दें इजाजत आप सबका, और हमारा बस यही है कर्तव्य कि ये धरती स्वच्छ बनी रहे, ये धरती सुंदर बनी रहे। धन्यवाद।

0: नई उड़ान। रेडियो से इश्तेहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
1: चिनार की छांव तले किताबों का एक खूबसूरत जहां आपका इंतजार कर रहा है। आइए तीसरे चिनार बुक फेस्टिवल में, जहां मिलेंगी इंग्लिश, हिंदी, उर्दू और अन्य भारतीय भाषाओं के 200 से अधिक बुक स्टॉल्स, साथ ही क्रिएटिव वर्कशॉप्स बच्चों के लिए, लिटरेरी सेशंस, डिजिटल रीडिंग कॉर्नर और कल्चरल परफॉर्मेंसेस का लुत्फ उठाइए। 18 से 26 जुलाई, SKICC श्रीनगर। चिनार बुक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया इन कोलैबोरेशन विद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर। टुगेदर वी रीड, टुगेदर वी लीड।
2: महफिल गजल,
3: गजलों का फरमाइशी फोन इन प्रोग्राम।
4: होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है।
3: महफिल गजल सजा करती है बुधवार रात 10 बजे से 11 बजे।
5: अस्सलाम वालेकुम। हेलो, महफिल गजल प्रोग्राम लेकर हम हाजिरे खिदमत हैं। मैं हूँ आपकी मेजबान फरजाना। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बखैर वाफियत से होंगे और आप सबकी नेक दुआओं से हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा टेलीफोन नंबर है 2480364। दोस्तों, रात का ये पहर, खामोश फजा और दिल में किसी की यादों की हलचल, ऐसे में अगर एक बेहतरीन गजल का साथ मिल जाए तो जिंदगी थोड़ी और खूबसूरत लगने लगती है। सुना है रात उसे चांद तकता रहता है, सितारे जिसके लिए आसमान से गिरते हैं।

0: प्रोग्राम की पहली कॉल सुनते हैं। हेलो महफिल गजल।
1: अस्सलाम वालेकुम मैम।
0: वालेकुम अस्सलाम
1: मैम, आप ठीक हो?
0: अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं कौन है और कहां से बात कर रहे हैं?
1: मैं औरनहाल आनंदनाग से एजाज सूफी बात कर रहा हूँ।
0: जी एजाज साहब, कैसे हैं आप?
1: बस अल्लाह के फजल से ठीक है।
0: तो गजलें सुनते हैं आप?
1: हाँ।
0: क्या मसरूफियात रहती हैं आपकी?
1: बस अपने काम में मसरूफ रहते हैं मैम।
0: जी, तो कौन सी गजल आप आज सुनना चाहेंगे?
1: गुलाम अली, एक हमें तो अब भी वो गुजरा जमाना याद आता है, तुम्हें भी क्या कोई दीवाना याद आता है।
0: जी, हम आपके लिए जरूर ये गजल पेश करेंगे। आपका कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: चंद साथी भी हैं मैं मेरे।
0: जी जी बताइए।
1: पहले है औरनहाल बनगाम से फहीम उल हक
0: जी,
1: टेलर बशीर अहमद खांडे, गुरी बिजबारा से फारूक अहमद इतू
0: जी,
1: और है मेरा बेटा सूफी इमाद और है मेरी सूफी आलम।
0: जी बिल्कुल, आपके लिए और आपके साथियों के लिए हम ये गजल जरूर पेश करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम।

0: हेलो महफिल गजल।
1: हेलो महफिल गजल, अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं और कहां से?
1: जी तू छो ठीक?
0: अहन हज अल्हम्दुलिल्लाह।
1: बस बख्शी बला बांडी पोरा पे मोहम्मद अलदार दार जना।
0: जी बिल्कुल, वनवज कुस गजल छु यसान तू आज बोजिन?
1: जगजीत सिंह की चित्रा सिंह की आवाज में कहां जरूरी ना।
0: जगजीत सिंह तो चित्रा सिंह ने आवाज में बिल्कुल, हम आपके लिए जरूर ये गजल जो है पेश करेंगे। आपका कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम।

0: हेलो महफिल गजल।
1: सलाम अलैकुम मैम।
0: वालेकुम अस्सलाम। कमर्स शो
1: शफात कर
0: जी। शफात साहब, आपकी क्या क्या मसरूफियात रहती हैं?
1: हम पश्मीने के साथ करते हैं मैम।
0: जी जी बिल्कुल। तो आप गजलों के शौकीन हैं?
1: हाँ बिल्कुल मैम
0: जी। तो कौन सी गजल आज आप सुनना चाहेंगे?
1: मुझे सुनना है ये गाई है गजल गई है गुलाम अली ने
0: जी,
1: इतना टूटा हुआ कि छूने से बिखर जाऊंगा।
0: जी बिल्कुल, आपके लिए हम ये गजल जरूर पेश करेंगे। आपका कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।

0: हेलो महफिल गजल।
1: अस्सलाम वालेकुम दीदी।
0: वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप?
1: शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इम्तियाज अहमद मलिक बेगम बड़गाम से फोन कर रहा हूँ। मैंने बहुत साल बाद आज फोन किया, 3 साल के बाद
0: जी
1: प्रोग्राम में।
0: जी तो आपका हम खैर मकदम करते हैं इस प्रोग्राम में और उम्मीद करते हैं कि आपकी कॉल अब हमें आती रहेंगी। तो आज आप किस गजल की फरमाइश करना चाहते हैं?
1: गुलाम अली साहब की आवाज़ में एक गजल है
0: जी,
1: ये कौन आ गई दिल रुबा महकी महकी।
0: जी बिल्कुल, हम आपके लिए ये गजल जरूर पेश करेंगे।
1: मेरे दोस्त है मेरे साथ
0: जी, बताएं।
1: मेरा नन्ना सा बेटा अनस इम्तियाज
0: जी
1: और मेरा मोहम्मद इकबाल मलिक।
0: जी जी, आपके लिए और आपके साथियों के लिए गजल जरूर पेश करेंगे। आपका कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया
1: जी। आपका भी शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम।

0: जी गजल की फरमाई, ये जो गजल की बोली, ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है।
1: बिल्कुल, हम आपके लिए ये गजल जरूर पेश करेंगे। आपके साथ आपके कोई साथी हैं?
0: सबसे पहले आप ही सुनेंगे हमारे साथ, और मेरा भाई रियाज अमन मलिक, दो सिस्टर तो बरानी तबसुम, और दिल के साथ जान भी सुनेंगे हमारे साथ, और नौ पर चाड़ो रहे उसका नाम खाल रहे जी, मुझे भी सुनेंगे और मिलजुल कर आकाशवाणी से हमारे साथ इस गीत को एंजॉय करेंगे।
1: जरूर हम आपके लिए आपकी पसंद की ये गजल पेश करेंगे, आप सुनिए। और आपका कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।

0: हेलो महफिल गजल।
1: अस्सलाम वालेकुम मैम जी।
0: वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से?
1: लाल हुसैन गोजर पाल पंजर से बोल रहा हूँ
0: जी। कैसे हैं आप
1: जी? आप ठीक हो?
0: अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं?
1: शुक्र खुदा का। आप ठीक हो?
0: बिल्कुल बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताइए, क्या मसरूफियात रहती है आपकी?
1: बस मैं यही काम में बिजी हूँ।
0: ठीक है, तो बताइए आज आप कौन सी गजल सुनना चाहेंगे?
1: आज मुझे सुनना है ना बेवफा मुस्कुराना, याद आने के काबिल नहीं। साथियों का नाम बताना है?
0: जी जी बिल्कुल, आप बताएं कौन से साथी आपके साथ हैं?
1: जलालुद्दीन गोजर, रियाज अहमद गोजर, नजीर अहमद गोजर और मंजूर अहमद गोजर।
0: बिल्कुल, हम आप सबके लिए ये गजल जरूर पेश करेंगे। आप सुनिए आपकी पसंदीदा गजल।
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम।

तो दोस्तों, इस गजल के साथ ही अब आज के इस प्रोग्राम का वक्त भी मुकम्मल हुआ चाहता है। इसी महफिल में अगली बार आपके साथ फिर से मुलाकात होंगी। जब तक के लिए आपका, हमारा, हम सब

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज देश की सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण परिस्थिति को मजबूत करने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के

0: बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि सेमिकॉन मिशन के दूसरे चरण के तहत 4,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद है।
1: सेमिकॉन 2.0 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमिकॉन 2.0 आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमिकॉन 2.0 में 6 पिलर्स है। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स, सेकंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स, तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड और ATMP ओसेट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में उद्योग को शुरू करने और स्थापित करने पर ध्यान दिया गया था, दूसरे चरण

0: बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड और एटीएमपी ओसेट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में उद्योग को शुरू करने और स्थापित करने पर ध्यान दिया गया था। दूसरे चरण के अंतर्गत हमारी सभी रणनीतिक आवश्यकताओं के लिए जरूरी चिप भारत में डिजाइन की जाएंगी। मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 और वाराणसी रिंग रोड के बीच 46 किलोमीटर से अधिक लंबे 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर को स्वीकृति दी। मंत्रिमंडल ने ओडिशा और झारखंड के 4 जिलों में 2 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत के लिए राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति NIPU 2026 को मंजूरी दी है। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज से लागू हो गया है। इसके साथ ही भारत ब्रिटेन सामाजिक सुरक्षा समझौता भी लागू हो गया। सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में अस्थायी रूप से काम कर रहे भारतीय पेशेवरों को अमूल्य सहायता प्रदान करेगा और भारतीय उद्यमों की प्रतिस्पर्धा क्षमता को मजबूती देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह समझौता भारत के किसानों, उद्यमियों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति प्रदान करेगा, साथ ही कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को ब्रिटेन के बाजार तक मजबूत पहुंच प्राप्त करने में मदद करेगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उद्योग जगत ने भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते के लागू होने की सराहना की है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि मताधिकार का प्रयोग करके लोग लोकतंत्र में अपनी आस्था का प्रमाण देते हैं। उन्होंने निर्वाचित प्रतिनिधियों से ईमानदारी, निष्ठा और समर्पण के साथ सेवा करके इस विश्वास को कायम रखने का आह्वान किया। राजस्थान विधानसभा की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर जयपुर में एक सम्मेलन में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि राज्य विधानसभाएं भारतीय लोकतंत्र की धड़कन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को हरियाणा के जिंद रेलवे स्टेशन पर जिंद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। श्री मोदी जिंद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री दोपहर को चंडीगढ़ में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना सहित 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में आज नई दिल्ली में दिल्ली नगर निगम MCD और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसका उद्देश्य दिल्ली में मवेशियों के गोबर का वैज्ञानिक तरीके से इस्तेमाल करके कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र लगाना है। इस पहल का उद्देश्य शहर की डेयरियों से निकलने वाले कचरे को यमुना नदी में बहने से रोकना है। इसकी बजाय इस कचरे को बायोगैस और खाद में बदला जाएगा। NDDB मॉडल के तहत डेयरियों और गौशालाओं से गोबर को सीधे गैस और खाद संयंत्र तक पहुंचाया जाएगा। डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के अंतर्गत डिजिटल इंडिया भाषिणी डिवीजन DIBD और पंजाब नेशनल बैंक PNB ने समावेशी बैंकिंग तथा नागरिक केंद्रित वित्तीय सेवाओं के लिए बहुभाषीय AI समाधानों को बढ़ावा देने के लिए सहयोग करने के वास्ते एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। इंडोनेशिया के जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में आज भारतीय महिला मुक्केबाजों ने 3 स्वर्ण और 10 रजत पदक अपने नाम किए। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज रात 12:30 बजे अटलांटा में अर्जेंटीना का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। इस मैच के विजेता का मुकाबला फाइनल में स्पेन से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Abhineet Shukla. The Union Cabinet today approved the Semicon 2.0 with a budgetary outlay of 1,27,500 crore rupees to strengthen India's semiconductor design and manufacturing ecosystem. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw announced about the cabinet decisions while briefing media in New Delhi today. Mr. Vaishnaw said, building on the momentum of Semicon 1.0, the scheme aims to further the government's commitment to putting India on the global semiconductor map.
3: Semicon 2 is built around 6 key pillars. The first pillar focuses on chip design. The second places major emphasis on semiconductor machinery and materials. The third aims to establish many new semiconductor

0: National Stock Exchange Mid-Cap 100 gained nearly 0.3% and the Small-Cap 100 Index jumped almost 0.7%. Earlier markets opened on a positive note and traded higher during the first half of the session. However, both indices gave up their early gains in the latter half amid profit booking. Although the indices slipped briefly into negative territory, they soon recovered and traded in a choppy range for the remainder of the session.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 17 कंपनियों के शेयरों में बढ़त दर्ज की गई. सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयरों में एटर्नल 3% से अधिक, अल्ट्राटेक सीमेंट 2.8% और एसबीआई के शेयरों में 1.5% की बढ़ोतरी हुई. वहीं खराब प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयरों में पावर ग्रिड और लार्सन एंड टूब्रो में लगभग 1.7% और अधिक तथा टाटा स्टील के शेयरों में 1.5% से अधिक की गिरावट आई.
0: In sectoral indices on the BSE, 19 out of 25 sectors ended in the positive zone. Among the top gainers, capital goods jumped 1.3%, PSU banks rose over 0.9%, and hospitals as well as consumer durables added more than 0.7%. In contrast, utilities dropped nearly 1.3%, metal fell 1%, and IT lost over 0.6%. The overall market breadth at the BSE was positive as shares of 2,207 advanced, 2,081 companies declined and 154 remained unchanged.
1: और अब जान लेते हैं श्रोताओं रुपए का हाल. अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज एक डॉलर की तुलना में 6 पैसे कमजोर होकर 96 रुपए और 26 पैसे पर बंद हुआ. उधर दुनिया की 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में अमरीकी डॉलर की मजबूती को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक अंतर दिवसीय कारोबार में 101.97 पर कारोबार कर रहा था. उदयन, कल हमने देखा कि बाजार में गिरावट आई और आज हमने देखा

0: to a massive $100 billion in the next few years. So what's in it for India? Exports of Indian textiles, garments, footwear, cars and seafood gets a boost from tariff cuts by the UK government. Plus, a new tax rule ensures that Indian professionals working temporarily in the UK won't get double taxed on the social security. On the other side, Indian consumers can look forward to cheaper prices on British industrial goods, silver, luxury cars.
1: While speaking to our news correspondent, Executive Director of Indian Chamber of Food and Agriculture, Sanjay Sethi, said that this agreement will give a boost to the agriculture sector.
2: इससे एग्रीकल्चर को बहुत विशेष लाभ है क्योंकि ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं जैसे कि राइस चाय स्पाइसेस मैरिन प्रोडक्ट इसके अलावा फ्रूट्स वेजिटेबल्स और जो प्रोसेस्ड फूड्स हैं इन सब उद्योगों पे इसका डायरेक्ट इंपैक्ट होने वाला है इसके साथ-साथ जो ग्रोथ है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में इसमें बहुत जबरदस्त ग्रोथ आने वाली है क्योंकि यूके में प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट किया जाता है बड़ी भारी तादाद में और इंडिया में सब तरह के प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स बन सकते हैं और इंडिया में फूड प्रोसेसिंग सेक्टर्स को अब अपनी कमर कसनी होगी एफएसएसएआई ने फूड की सेफ्टी के लिए बड़े अच्छे कदम उठा रहे हैं और उसका इंपैक्ट एक्सपोर्ट से तुरंत देखने को मिलेगा इस एग्रीमेंट की सक्सेस अल्टीमेटली इस बात पर डिपेंड करेगी कि हमारे सब स्टेक होल्डर्स चाहे वो फार्मर्स हैं चाहे वो मंडियों के व्यापारी हैं या फूड प्रोसेसिंग कंपनीज हैं ये सब मिलके इस अपॉर्चुनिटी को एक नई लंबे समय तक ग्रो होने वाली अपॉर्चुनिटी में तब्दील करें जिससे कि रूरल प्रोस्पेरिटी एक सस्टेनेबल लंबे समय तक ग्रोथ हमको मिले
1: Talking to Akashvani News, Executive Director of the Gem and Jewellery Export Promotion Council, Sabyasachi Ray, said that the gems and jewellery sector will be immensely benefited by this agreement.
3: See, gem and jewellery sector is a very large sector from India. We are employing more than 5 million people across the country. Though our exports is $30 billion, but it reaches every corner of the country. All types of jewellery manufacture, whether you talk about Western jewellery, ethnic kind of jewellery, handmade jewellery. And we are one of the largest exporter of diamonds in the world. Like 14 out of 15 diamond setting jewellery anywhere across the world is manufactured in India. And also emerald, we are again the largest manufacturer of emeralds in the world. Tanzanite, we are the sole manufacturer of cut and polish tanzanite across the world. So we are having more than 200 clusters of manufacturing. All these will be benefited with this agreement.
4: और अन्य खबरों में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज भारत के सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ सेमीकॉन 2.0 को भी मंजूरी दी है नई दिल्ली में हुए एक प्रेस वार्ता में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सेमीकॉन 1.0 की सफलता को आगे बढ़ाते हुए इस योजना का उद्देश्य भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर मानचित्र पर लाने की सरकार की प्रतिबद्धता को और आगे बढ़ाना है उन्होंने बताया कि यह योजना आर्थिक विकास में मदद करेगी आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करेगी और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में तकनीकी नेतृत्व स्थापित करेगी मंत्रिमंडल ने मोबाइल फोन विनिर्माण योजना को भी स्वीकृति दी है श्री वैष्णव ने कहा कि ये योजना अगले 5 वर्षों के लिए लागू की जाएगी उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत देश में मोबाइल फोन बनाने के लिए पात्र बिक्री पर 2.25% से 5% तक की प्रोत्साहन सहायता दी जाएगी
5: आज जो कैबिनेट ने अप्रूव किया है मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम उसका आउटले 62,500 करोड़ रुपीज का है 5 ईयर्स का ड्यूरेशन है इंसेंटिव्स रखे गए क्योंकि अब इकोसिस्टम बन गया है अब बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जो भारत से एक्सपोर्ट होने लगे हैं ऑलरेडी इसमें करीब 39 लाख करोड़ रुपीस का क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन होगा और 60,000 डायरेक्ट जॉब्स नए क्रिएट होंगे
4: मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत के लिए यूरिया 2026 यानी NIPU 2026 के लिए राष्ट्रीय निवेश नीति को भी मंजूरी दी इस नीति का उद्देश्य देश में गैस आधारित यूरिया बनाने वाली इकाइयां लगाने के लिए यूरिया क्षेत्र में नए निवेश को बढ़ावा देना है ताकि आत्मनिर्भरता का लक्ष्य हासिल किया जा सके नई नीति में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए स्थिर और परिवर्तनशील लागत को अलग अलग करने के साथ कई और महत्वपूर्ण बदलाव शामिल हैं उद्यन सेमीकॉन 2.0 उद्देश्य जो लेकर के भारत सरकार चल रही है वो वैश्विक सेमीकंडक्टर को मानचित्र पर लाने की एक परिकल्पना है ये किस तरीके से फलीभूत होते हुए आप देखते हैं
6: देखिए अब जो सेमीकंडक्टर्स हैं वो जो चिप्स हैं वो हम हर चीज तकरीबन हर चीज

0: में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसमें जो हमारी जो कैपेबिलिटी है, जो सक्षमता है, वो सबसे ज्यादा एडवांस चिप्स बनाने में आप सीधा तो नहीं जा सकते हैं, तो आपको धीरे धीरे वो जो गैप है कटिंग एज और आपके बीच में, उसको कम करना है। तो आपने देखा होगा कि इन सरकार ने और दूसरे उद्योगों ने कंपनियों ने एक प्लान बना रखा है कि कैसे वो गैप को धीरे धीरे करके कम करना है। तो ये उसका ही हिस्सा है जिसमें वो आप आगे बढ़ रहे हैं और आप वहां तक पहुंचना चाहते हैं, सबसे ज्यादा सूक्ष्म जो चिप्स है वहां तक आप पहुंचना चाहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है कि जो ये हमारे जो कटिंग एज और हमारे बीच में इतना बड़ा फासला जो है वो कम हो जाए, क्योंकि हर चीज़ के लिए आपको वेरी एडवांस चिप्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। कई जगह में रेगुलर यूज़ के जो हैं वहाँ पे आप उसके लिए भी चाहिए होता है, उसके लिए भी आप अगर इंपोर्ट करें वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन हो जाए। तो जो सप्लाई चेन रेजिलियंस के बारे में बात हो रही है, तो वो आप देश में ही बने और वो आप विश्व के लिए बनाएं, तो उसी का ही एक हिस्सा है, वो इसी स्ट्रेटेजी का एक हिस्सा ही है।
1: जी, आगे बढ़ते हैं श्रोताओं। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस दावे का खंडन किया है जिसमें कहा गया था कि वित्त मंत्रालय ने भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड से क्रिप्टो को विनियमित करने पर विचार करने को कहा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को पूरी तरह फर्जी बताया है। यूनिट ने स्पष्ट किया कि भारत में क्रिप्टो को परिसंपत्ति के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है और वित्त मंत्रालय की ओर से ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है। पीआईबी ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी जानकारी की पुष्टि के लिए केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें।
2: Global crude oil prices extended gains today amid escalating tension in West Asia. Brent crude was trading over 0.3% up at $85.03 per barrel. West Texas Intermediate crude was trading 0.4% up at $79.66 per barrel when reports last came in. Brief comment, Udayan, on the rate of rise of oil.
0: Obviously, we don't like this. We import most of our oil from abroad. But I think from the market's point of view, the figure is 90. As long as it remains below 90, I think the markets and the general sentiment will be able to handle it. But the every time it's going to increase, you're going to see the first place, you're going to see an impact would be on the value of the rupee. That's where it starts. Then it will start. It impacts your equity and other forex inflows. Mm-hmm. So, what we need to, if there is somebody who's watching this, what we need to hope for is that it doesn't cross the figure of 90, because it's got fiscal implications and other implications as well. So we would want it to be, lower it gets, the better it is. But we don't stay in an ideal world, which we have realized. So, we hope it doesn't go up too
2: much. Right. Fingers crossed, yeah, absolutely. Yeah, yeah. In the Indian bullion market, 24-carat gold was trading 0.3% down at 1,42,560 rupees per 10 grams, while silver was trading over 0.6% down at 2,22,200 rupees per kilogram a short while ago.
1: Multi-commodity exchange mein agast anubandh wala sona mamuli badhat ke saath 1,42,328 rupees prati 10 gram par karobar kar raha tha, jabki sitambar anubandh wali chandi 0.3% ludhak kar 2,22,488 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। समय की बाध्यता है, इसलिए एक संक्षिप्त टिप्पणी में सोने और चांदी के भाव पर चाहूंगी।
0: देखिए, ये सोने की पॉपुलैरिटी बरकरार ही रहेगी जब तक आपके ये दो जो संघर्ष चल रहे हैं उसका एक इम्पैक्ट आपके स्टॉक फाइनेंशियल एसेट्स पे होता रहता है। तो वो बट ये ख्याल रहे कि आप उसमें एक्सेस ना जाए, अगर 100 रुपए निवेश करें 10 रुपए से ज्यादा ना सोने में हो और वहीं पे बरकरार रखें। तो अगर, और ये नहीं कि आपको फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं, बाकी ETFs वगैरह में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद उदयन कार्यक्रम में आने के लिए और हमारे तमाम सवालों के तमाम जवाब देने के लिए।
0: धन्यवाद।
2: Once again, thank you, Udayan. And now, quick look at the headlines once again. Benchmark domestic indices end on positive note. Sensex gains 130 points. Nifty settles at 24,079. India-UK comprehensive economic and trade agreement comes into effect. And cabinet approves Semicon 2.0 to strengthen India's semiconductor design and manufacturing ecosystem also gives nod to national

0: policy for Urea 2026. That's all for today. Namaskar.
1: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सिर्फ और सिर्फ 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। एक बार फिर मैं रितिका आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत मेरे मनमीत।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

1958 में आई फिल्म हावड़ा ब्रिज से आपने ये गीत सुना, ओपी नैयर का संगीत, कमर जलालाबादी का लिखा ये गीत। और आवाज आशा भोसले की।

तो दोस्तों राखी आ चुकी है निशिकंधा लेकर स्टूडियो में, छोड़े जाती हूँ आप सभी को उन्हीं के साथ। अपनी दोस्त रितिका को दीजिए इजाजत। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सिर्फ और सिर्फ 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण परिस्थिति को मजबूत करने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि सेमिकॉन मिशन के दूसरे चरण के तहत 4,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद है।
1: सेमिकॉन 2.0 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमिकॉन 2.0 आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमिकॉन 2.0 में 6 पिलर्स है। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स, सेकंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स, तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स।

0: डिस्प्ले कंपाउंड और एटीएम की ओसेट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है अभी 10 यूनिट लग चुके हैं उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में उद्योग को शुरू करने और स्थापित करने पर ध्यान दिया गया। दूसरे चरण के अंतर्गत हमारी सभी रणनीतिक आवश्यकताओं के लिए जरूरी चिप भारत में डिजाइन की जाएंगी। मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 और वाराणसी रिंग रोड के बीच 46 किलोमीटर से अधिक लंबे 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर को स्वीकृति दी। श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत के लिए राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति NIPU 2026 को मंजूरी दे दी है। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू हो गया। इसके साथ ही भारत ब्रिटेन सामाजिक सुरक्षा समझौता भी लागू हो गया। सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में अस्थायी रूप से काम कर रहे भारतीय पेशेवरों को अमूल्य सहायता प्रदान करेगा और भारतीय उद्यमों की प्रतिस्पर्धा

0: भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू हो गया। इसके साथ ही भारत ब्रिटेन सामाजिक सुरक्षा समझौता भी लागू हो गया। सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में अस्थायी रूप से काम कर रहे भारतीय पेशेवरों को अमूल्य सहायता प्रदान करेगा और भारतीय उद्यमों की प्रतिस्पर्धा क्षमता को मजबूती देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये समझौता भारत के किसानों, उद्यमियों और सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों को नई गति प्रदान करेगा। साथ ही कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को ब्रिटेन के बाजार तक मजबूत पहुंच प्राप्त करने में मदद करेगा। भारत टेक्स 2026 के दूसरे दिन राज्यों के नेतृत्व वाली वृद्धि, निवेश के अवसरों और वैश्विक बाजारों के साथ भारत की बढ़ती वस्त्र व्यापार साझेदारी पर बल दिया गया। इस सत्र में निर्माताओं, उद्योग प्रतिनिधियों और व्यापार विशेषज्ञों को एक साथ लाया गया ताकि विनिर्माण को मजबूत करने, निवेश आकर्षित करने और देश के वस्त्र तथा परिधान क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धा क्षमता में सुधार लाने के उपायों पर चर्चा की जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। श्री मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित दिल्ली में दिल्ली नगर निगम एमसीडी और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसका उद्देश्य दिल्ली में मवेशियों के गोबर का वैज्ञानिक तरीके से इस्तेमाल करके कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र लगाना है। एनडीडीबी मॉडल के तहत डेयरियों और गौशालाओं से गोबर को सीधे गैस और खाद संयंत्र तक पहुंचाया जाएगा। डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के अंतर्गत डिजिटल इंडिया भाषिनी डिवीजन डीआईबीडी और पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी ने समावेशी बैंकिंग तथा नागरिक केंद्रित वित्तीय सेवाओं के लिए बहुभाषी एआई समाधानों को बढ़ावा देने के लिए सहयोग करने के वास्ते एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र देश में औद्योगिक रोजगार के सबसे तेजी से बढ़ते स्रोतों में से एक बनकर उभरा है। इस क्षेत्र ने लगभग 25 लाख रोजगार सृजित किए हैं, जो विनिर्माण आधारित आर्थिक विकास और आजीविका सृजन में इसके बढ़ते योगदान को दर्शाता है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नई दिल्ली में विधायी विभाग के विधि साहित्य प्रकाशन के ईवीएसवी पोर्टल का शुभारंभ किया। श्री मेघवाल ने कानूनी क्षेत्र में सरल, सुगम और नागरिक अनुकूल हिंदी के प्रयोग की आवश्यकता पर बल दिया। इंडोनेशिया के जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय महिला मुक्केबाजों ने 3 स्वर्ण और 10 रजत पदक अपने नाम किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Abhineet Shukla. Union Cabinet has approved the Semicon 2.0 with a budgetary outlay of 1,27,000 to strengthen India's semiconductor design and manufacturing ecosystem. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw announced the cabinet decisions while briefing the media in New Delhi yesterday. Mr. Vaishnaw said, building on the momentum of Semicon 1.0, the scheme aims to further the government's commitment to putting India on the global semiconductor map.
2: Semicon 2.0.
3: Semicon 2 is built around 6 key pillars. The first pillar focuses on chip design. The second places major emphasis on semiconductor machinery and materials. The third aims to establish many new semiconductor fabrication units. The scheme also includes provisions to further strengthen the ATMP and OSAT industry, which has already gained momentum in India with 10 units already established.
2: Us industry ko aur aage badhane ke
1: The minister said the cabinet also cleared the mobile phone manufacturing scheme with a budgetary outlay of 62,500 crore rupees. The government also approved 2 elevated corridor projects at Varanasi in Uttar Pradesh to improve road connectivity and reduce congestion and travel time. The projects include a 6-lane greenfield elevated corridor covering over 46 kilometers between National Highway 19 and Varanasi Ring Road in Uttar Pradesh on the hybrid annuity model, improving urban mobility. External Affairs Minister

वक्त हुआ है 12:10 और ठीक 59 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर निशिगंधा, मैं हूं राखी आपके साथ।

मधुमती फिल्म का गाना आपने सुना मुकेश की आवाज में। शैलेंद्र ने इसे लिखा और संगीत दिया सलिल चौधरी ने। हिंदी फिल्मी गीत हमारे हर पल के सच्चे साथी हैं। खुशी का मौका हो तो ये मुस्कान बन जाते हैं और उदासी के लम्हों में दिल का सहारा। कभी बीते हुए दिनों की याद दिलाते हैं तो कभी आने वाले कल की उम्मीद जगाते हैं। हर एहसास, हर मौसम और हर रिश्ते के लिए जैसे कोई ना कोई गीत पहले से ही लिखा हुआ मिलता है। शायद यही वजह है कि हिंदी फिल्मी गीत सिर्फ सुने नहीं जाते बल्कि जिए जाते हैं।

आपकी कसम फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया आरडी बर्मन ने। कई बार जिंदगी की भागदौड़ में कहीं घूमने फिरने का समय ही नहीं मिल पाता, ऐसे में हिंदी फिल्मी गीत ही हमें अपनी धुनों के सहारे हरी भरी वादियों, बर्फ से ढके पहाड़ों, बहती नदियों और सुहाने सफर की सैर करा लाते हैं। कुछ पल के लिए ऐसा लगता है मानो हम भी उन खूबसूरत नजारों का हिस्सा बन गए हों। यही तो फिल्मी गीतों का जादू है, बिना कहीं जाए हमें दूर दूर की दुनिया की सैर करा देते हैं।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

वक्त हुआ है 12:31 और ठीक 15 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर इस वक्त आप सुन रहे हैं निशिगंधा। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

कश्मीर की कली फिल्म का गाना आपने सुना रफी की आवाज में। एसएच बिहारी ने इसे लिखा और संगीत दिया ओपी नैयर ने। जिसे सच्चा प्रेम मिल गया और जो पूरे दिल से किसी का हो गया, उसके लिए यही दुनिया सबसे खूबसूरत हो जाती है। उसे दौलत, शोहरत या दुनिया की चकाचौंध से ज्यादा अपने प्रिय का साथ अनमोल लगता है। प्रेम जीवन को एक नया अर्थ, नहीं नई खुशी और अपनापन दे देता है। मानो पूरी दुनिया उसी की हो गई हो।

तेरे मेरे सपने अब एक रंग हैं। इस एक पंक्ति में ही प्रेम की गहराई समाई हुई है। जब दो लोग सचमुच एक दूसरे के हो जाते हैं तो उनकी खुशियां, उनके सपने, उनकी मंजिलें और उनकी उम्मीदें अलग नहीं रह जाती। सब कुछ एक ही रंग में रंग जाता है। यही कारण है कि ये गीत आज भी सुनने वालों के दिल को उसी आत्मीयता से छू जाता है जैसे इसने पहली बार छुआ होगा। गाइड फिल्म का गाना आपने सुना रफी की आवाज में। शैलेंद्र ने इसे लिखा और संगीत दिया एसडी बर्मन ने।

आराधना फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया एसडी बर्मन ने।

वक्त हुआ है 12:54 और ठीक 24 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 1 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 1:10 पर गीत सुहाने मेरे साथ। फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत दीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि सेमीकॉन मिशन के दूसरे चरण के तहत 4,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद है।
1: सेमीकॉन 2.0 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमीकॉन 2.0 आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमीकॉन 2.0 में 6 पिलर्स है। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स, सेकंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स, तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड और ATMP ओसेट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
0: मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 और वाराणसी रिंग रोड के बीच 46 किलोमीटर से अधिक लंबे 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर को स्वीकृति दी। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू हो गया। इसके साथ ही भारत ब्रिटेन सामाजिक सुरक्षा समझौता भी लागू हो गया। सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में अस्थायी रूप से काम कर रहे भारतीय पेशेवरों को अमूल्य सहायता प्रदान करेगा और भारतीय उद्यमों की प्रतिस्पर्धा क्षमता को मजबूती देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली

हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। श्री मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना सहित 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में नई दिल्ली में दिल्ली नगर निगम एमसीडी और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसका उद्देश्य दिल्ली में मवेशियों के गोबर का वैज्ञानिक तरीके से इस्तेमाल करके कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र लगाना है।

0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में नई दिल्ली में दिल्ली नगर निगम एमसीडी और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसका उद्देश्य दिल्ली में मवेशियों के गोबर का वैज्ञानिक तरीके से इस्तेमाल करके कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र लगाना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र देश में औद्योगिक रोजगार के सबसे तेजी से बढ़ते स्रोतों में से एक बनकर उभरा है। इस क्षेत्र ने लगभग 25 लाख रोजगार सृजित किए हैं, जो विनिर्माण आधारित आर्थिक विकास और आजीविका सृजन में इसके बढ़ते योगदान को दर्शाता है। मध्य प्रदेश में कल से पहली अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा शुरू की गई। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर से संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के लिए पहली सीधी उड़ान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का हमेशा से यही मानना रहा है कि आम आदमी भी हवाई यात्रा कर सके। राज्य की विमानन नीति इसी विचार पर आधारित है। निर्वाचन आयोग ने पंजाब में निर्धारित विशेष गहन पुनरीक्षण समय सीमा को 11 दिन तक बढ़ा दिया है। इस बदलाव के साथ अंतिम मतदाता सूची अब 12 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। पंजाब की मुख्य चुनाव अधिकारी अनिंदिता मिश्रा ने बताया कि घर घर जाकर गिनती की प्रक्रिया 3 अगस्त 2026 तक जारी रहेगी। मसौदा मतदाता सूची अब 13 अगस्त को प्रकाशित की जाएगी। अमेरिका ने होर्मुज जलडुब्रू मध्य से गुजरने की कोशिश कर रहे जहाजों पर हमलों के जवाब में ईरान पर फिर समुद्री नाकेबंदी शुरू कर दी है। अमेरिका ने हवाई हमलों का अभियान तेज कर दिया। ईरान के अधिकारियों ने बताया कि सेना की बैरक पर अमेरिकी हमले में 7 सैनिक मारे गए। अमेरिकी हमलों से देशभर में 260 से ज्यादा लोग घायल हुए। ईरानी सरकार की प्रवक्ता फातेमेह मोहजरानी ने कहा कि हाल के दिनों में अमेरिकी हमलों में 30 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। इंडोनेशिया के जकार्ता में एशिया ई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय महिला मुक्केबाजों ने 3 स्वर्ण और 10 रजत पदक अपने नाम किए। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर भारत, बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आज तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। कल तक अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में बिजली कड़कने के साथ आंधी तूफान का अनुमान व्यक्त किया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय महवश फातिमा। Union Cabinet has approved the Semicon 2.0 with a budgetary outlay of 1,27,500 crore rupees to strengthen India's semiconductor design and manufacturing ecosystem. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw announced the cabinet decisions while briefing the media in New Delhi yesterday. Mr. Vaishnaw said, building on the momentum of Semicon 1.0, this commitment to putting India on the global semiconductor map. The minister said the cabinet also cleared the mobile phone manufacturing scheme with a budgetary outlay of 62,500 crore rupees.
2: आज जो कैबिनेट ने अप्रूव किया है मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम।
3: टुडे कैबिनेट अप्रूव्ड द मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम विद एन टोटल आउटले ऑफ 62,500 करोड़ रुपीस ओवर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स। द स्कीम प्रोवाइड्स अ वाइड रेंज ऑफ इंसेंटिव्स टू प्रमोट डोमेस्टिक सोर्सिंग एज इंडिया हैज नाउ डेवलप्ड अ स्ट्रांग मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम एंड मेनी मोबाइल फोन कंपोनेंट्स आर बीइंग एक्सपोर्टेड फ्रॉम द कंट्री। अंडर द स्कीम क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन वर्थ अराउंड 39 लाख करोड़ रुपीस इज एक्सपेक्टेड एंड अराउंड 60,000 न्यू डायरेक्ट jobs will be created.
2: 60,000 direct jobs may create on.
1: The government also approved two elevated corridor projects at Varanasi in Uttar Pradesh to improve road connectivity and reduce congestion and travel time. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has expressed confidence that the India-EU Trade and Technology Council meeting will take forward the strong momentum of the partnership enabled by the India-EU FTA, Security and Defence Partnership and the Mobility Framework. Talking to media yesterday, after the third India-EU Trade and Technology Council meeting in Brussels, Dr. Jaishankar said India and the EU have a natural affinity. He added that India and the European Union have developed this trust with each other.

वक्त हुआ है 1:10 और ठीक 59 सेकेंड आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। गीत सुहाने, मैं हूँ राखी आपके साथ।

पुनर्मिलन फिल्म का गाना आपने सुना रफी की आवाज में। इंदीवर ने इसे लिखा और संगीत दिया सी अर्जुन ने। कितने सुहाने हैं ये गीत, कभी चेहरे पर मुस्कान बिखेर देते हैं तो कभी अनकही यादों को धीरे से जगा देते हैं। कुछ गीत दिल को सुकून देते हैं, कुछ बीते लम्हों की खुशबू बनकर साथ चलते हैं। समय बदलता रहता है लेकिन अच्छे गीतों की मिठास कभी कम नहीं होती।

बड़ा आदमी फिल्म का गाना आपने सुना रफी की आवाज में। प्रेम धवन ने इसे लिखा और संगीत दिया चित्रगुप्त ने। प्रेम इंसान को जितनी खुशियां देता है उतना ही संवेदनशील भी बना देता है। जब दिल किसी से जुड़ जाता है तो दुनिया की बेरुखी, ताने और ठोकरें पहले से कहीं ज्यादा महसूस होती हैं। शायद अगर दिल ने कभी मोहब्बत का रास्ता चुना ही ना होता तो जिंदगी इतनी कठिन भी ना लगती। लेकिन सच तो ये है कि दर्द का ये एहसास भी उसी दिल को नसीब होता है जिसने कभी सच्चे मन से किसी को चाहा हो।

बाबर फिल्म का गाना आपने सुना रफी की आवाज में। साहिर ने इसे लिखा और संगीत दिया रोशन ने। सच्चा प्रेम शब्दों से नहीं, समय, धैर्य और हर परिस्थिति में साथ निभाने से साबित होता है। इम्तिहान इसलिए नहीं कि किसी को मुश्किल में डाला जाए, बल्कि इसलिए कि रिश्ते की गहराई और दिल की सच्चाई सामने आ सके। मोहब्बत जब हर कसौटी पर खरी उतरती है, तभी वो उम्र भर का विश्वास बन जाती है।

0: बरसात की रात फिल्म का गाना आपने सुना रफी की आवाज में। साहिर ने इसे लिखा और संगीत दिया रोशन ने।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

वक्त हुआ है 1:29 और ठीक 28 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। इस वक्त आप सुन रहे हैं गीत सुहाने। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

दिल ही तो है फिल्म का गाना आपने सुना मुकेश की आवाज में। साहिर ने इसे लिखा और संगीत दिया रोशन ने। गीतों की यही तो सबसे बड़ी खूबसूरती है, वो दिल की सबसे छोटी से छोटी और सबसे गहरी से गहरी बात भी कितनी सहजता से कह जाते हैं। जिन भावनाओं को हम कभी शब्दों में नहीं ढाल पाते, उन्हें कोई गीत कुछ ही पंक्तियों में बयान कर देता है। कभी मुस्कान बनकर, कभी याद बनकर, तो कभी अनकहे दर्द की आवाज बनकर।

रूह ने इसे लिखा और संगीत दिया मदन मोहन ने। गीत हमारी भावनाओं को ऐसा स्वर दे देते हैं कि लगता है जैसे वो हमारे ही दिल की कहानी सुना रहे हों।

भरोसा फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। राजेंद्र कृष्ण ने इसे लिखा और संगीत दिया रवि ने। कुछ रिश्ते समय के साथ पीछे छूट जाते हैं, लेकिन उनकी यादें दिल में इतनी गहराई से बसी होती हैं कि उन्हें मिटाने के लिए शायद एक नया दिल चाहिए। यही तो मोहब्बत की सबसे बड़ी विडंबना है। इंसान बदल जाता है, हालात बदल जाते हैं, मगर कुछ यादें उम्र भर दिल का हिस्सा बनी रहती हैं।

अनोखी अदा फिल्म का गाना आपने सुना मुकेश की आवाज में। शकील बदायूनी ने इसे लिखा और संगीत दिया नौशाद ने।

वक्त हुआ है 1:46 और ठीक 23 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर इस वक्त आप सुन रहे हैं गीत सुहाने। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

बैजू बाबरा फिल्म से आपने गाना सुना रफी और लता मंगेशकर की आवाज में। शकील बदायूनी ने इसे लिखा और संगीत दिया नौशाद ने। रहेगा मिलन हमारा तुम्हारा, जब तक धड़कनों में एहसास बाकी हैं तब तक इस साथ की खुशबू भी हमेशा बाकी रहेगी।

जाने। अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 2:10 पर सुनिए समाचार। समाचारों के बाद माफ कीजिएगा, ठीक 2 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 2:10 पर रात सुरमई मेरे साथ। फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए से अधिक के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि सेमिकॉन मिशन के दूसरे चरण के तहत 4,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद है।
1: सेमिकॉन 2.0 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमिकॉन 2.0 आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमिकॉन 2.0 में 6 पिलर्स हैं। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स, सेकंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स, तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड और ATMP ओसेट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
0: मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 और वाराणसी रिंग रोड के बीच 46 किलोमीटर से अधिक लंबे 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर को स्वीकृति दी। भारत और ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू हो गया। इसके साथ ही भारत ब्रिटेन सामाजिक सुरक्षा समझौता भी लागू हो गया। सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में अस्थायी रूप से काम कर रहे भारतीय पेशेवरों को अमूल्य सहायता प्रदान करेगा और भारतीय उद्यमों की प्रतिस्पर्धा क्षमता को मजबूती देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। श्री मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना सहित 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण

और शिलान्यास करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में नई दिल्ली में दिल्ली नगर निगम MCD और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसका उद्देश्य दिल्ली में मवेशियों के गोबर का वैज्ञानिक तरीके से इस्तेमाल करके कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र लगाना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र देश में औद्योगिक रोजगार के सबसे तेजी से बढ़ते स्रोतों में से एक बनकर उभरा है। इस क्षेत्र ने लगभग 25 लाख रोजगार सृजित किए हैं, जो विनिर्माण आधारित आर्थिक विकास और आजीविका सृजन में इसके बढ़ते योगदान को दर्शाता है। निर्वाचन आयोग ने पंजाब में निर्धारित विशेष गहन पुनरीक्षण समय सीमा को 11 दिनों तक बढ़ा दिया है। इस बदलाव के साथ अंतिम मतदाता सूची अब 12 अक्टूबर। पंजाब की मुख्य चुनाव अधिकारी अनिंदिता मित्रा ने बताया कि घर घर जाकर गिनती की प्रक्रिया 3 अगस्त 2026 तक जारी रहेगी। मसौदा मतदाता सूची अब 13

0: 11 दिनों तक बढ़ा दिया है। इस बदलाव के साथ अंतिम मतदाता सूची अब 12 अक्टूबर। पंजाब की मुख्य चुनाव अधिकारी अनिंदिता मित्रा ने बताया कि घर घर जाकर गिनती की प्रक्रिया 3 अगस्त 2026 तक जारी रहेगी। मसौदा मतदाता सूची अब 13 अगस्त को प्रकाशित की जाएगी। अमेरिका ने होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने की कोशिश करने वाले जहाजों पर हमलों के जवाब में ईरान पर फिर समुद्री नाकेबंदी लागू कर दी है। अमेरिका ने हवाई हमलों का अभियान तेज कर दिया। ईरान के अधिकारियों ने बताया कि सेना की बैरक पर अमेरिकी हमले में 7 सैनिक मारे गए। अमेरिकी हमलों से देश भर में 260 से ज्यादा लोग घायल हुए। ईरानी सरकार की प्रवक्ता फातेमेह मोहाजेरानी ने कहा कि हाल के दिनों में अमेरिकी हमलों में 30 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। फीफा विश्व कप में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच दूसरा सेमीफाइनल मैच अमेरिका के अटलांटा स्टेडियम में चल रहा है। ताज़ा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने अर्जेंटीना पर 1-0 की बढ़त बनाई हुई है। इस रोमांचक मुकाबले में विश्व कप के इतिहास में समृद्ध दो देश आमने सामने हैं, जो 19 जुलाई को फाइनल में स्पेन के खिलाफ जगह बनाने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज शाम 5:30 बजे कार्डिफ के सोफिया गार्डन्स में खेला जाएगा। इससे पहले भारत ने बर्मिंघम के एडजस्टमेंट में खेले गए पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में मेजबान इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया था। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर भारत, बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी आज तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, रायलसीमा और उत्तर प्रदेश में आज मौसम गर्म और उमस भरा रहने की आशंका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Mehwash Fatima. Union Cabinet has approved Semicon 2O with 1,27,500 crore rupees to strengthen India's semiconductor design and manufacturing ecosystem. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav announced the cabinet decisions while briefing the media in New Delhi yesterday. He said, building on the momentum of Semicon 1O, the scheme reflects the government's commitment to establishing India as a global semiconductor hub. Mr. Vaishnav said, the cabinet has also approved the mobile phone manufacturing scheme with a budgetary outlay of 62,500 crore rupees.
2: Today, Cabinet approved the mobile phone manufacturing scheme with a total outlay of 62,500 crore rupees over a period of 5 years. The scheme provides a wide range of incentives to promote domestic sourcing, as India has now developed a strong manufacturing ecosystem and many mobile phone components are being exported from the country. Production worth around 39 lakh crore rupees is expected, and around 60,000 new direct jobs will be created.
3: 60,000 direct jobs may create.
1: The cabinet has also approved 2 elevated corridor projects in Varanasi, Uttar Pradesh, to improve road connectivity, ease traffic congestion, and reduce travel time.
4: Semicon 2
2: is built around 6 key pillars. The first pillar focuses on chip design. The second places major emphasis on semiconductor machinery and materials. The third aims to establish many new semiconductor fabrication units. The scheme also includes provisions to further strengthen the ATMP and OSAT industry, which has already gained momentum in India with 10 units already established.
1: Comprehensive Economic and Trade Agreement CETA between India and the United Kingdom came into effect yesterday. Simultaneously, the agreement on social security known as the Double Contribution Convention also became operational, strengthening the mobility and competitiveness of Indian professionals in the United Kingdom. The landmark agreement provides zero duty access to 99% of the Indian exports in the UK market, including textiles, leather, engineering goods, food processing products, pharmaceuticals and MSME sectors. On the first day of CETA implementation, Indian goods worth $140 million were exported to the United Kingdom. India and Belgium have agreed to

वक्त हुआ है 2:10 और ठीक 57 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई मैं हूं राखी आपके साथ।

चित चोर फिल्म का गाना आपने सुना यशुदास और हेमलता की आवाज में। रविंद्र जैन ने इस गीत को लिखा और संगीत भी दिया रविंद्र जैन ने। रात सुहानी आपके सिरहाने बैठी है, जैसे कोई अपना चुपचाप आपके मन को सहला रहा हो। उसकी ठंडी हवाएं दिन भर की थकान समेटकर सुकून की चादर ओढ़ा रही है। इस शांत पल में बस अपने दिल की धड़कनों को सुनिए, क्योंकि कभी कभी खामोश रातें भी सबसे खूबसूरत बातें कह जाती हैं।

स्वामी फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। अमित खन्ना ने इसे लिखा और संगीत दिया राजेश रोशन ने। चांदनी की कोमल छुअन, ठंडी हवाओं की सरगोशियां और तारों की मध्यम चमक मिलकर एक ऐसा संसार रच देती हैं जहां दिन भर की सारी थकान और उलझने धीरे धीरे कहीं खो जाती हैं। ऐसे पलों में पुराने फिल्मी गीत अनायास ही याद आने लगते हैं, मानो हर धुन रात की खामोशी में खुलकर

0: मंजिल फिल्म का गाना आपने सुना, किशोर कुमार की आवाज में। योगेश ने इसे लिखा और संगीत दिया आरडी बर्मन ने।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर, आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन

वक्त हुआ है 2:28 और ठीक 16 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर रात सुरमई। मैं हूं राखी आपके साथ। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

उमराव जान फिल्म से आपने ये गजल सुनी आशा भोसले की आवाज में। शहरयार ने इसे लिखा और संगीत दिया खयाम ने। जिसकी जस्तजू में उम्र की राहें बिता दी, उसे तो हम पा ना सके, मगर उसकी तलाश ने हमें इतना जरूर सिखा दिया कि हर ख्वाहिश का मुकम्मल होना ही जिंदगी नहीं होता, कुछ अधूरी आरजुएं भी दिल को उम्र भर जिंदा रखती हैं।

वक्त हुआ है 2:46 और ठीक 4 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई, मैं हूं राखी आपके साथ। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

रजनीगंधा फिल्म का गाना आपने सुना मुकेश की आवाज में। योगेश ने इसे लिखा और संगीत दिया सलिल चौधरी ने। कई बार देखा है जब मन की सीमाएं टूटने लगती हैं तब शब्द खामोश हो जाते हैं और आंखें दिल की सारी कहानी कह देती हैं।

क्रांति फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाज में। संतोष आनंद ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। वक्त हुआ है 2:57 और ठीक 20 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 3 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 3:10 पर हमराही फिरोज आलम के साथ। तो इसी के साथ अब राखी को इजाजत दीजिए।

0: देशवासियों रेट।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि सेमीकॉन मिशन के दूसरे चरण के तहत 4,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद है।
2: सेमीकॉन 2.0 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमीकॉन 2.0 आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमीकॉन 2.0 में 6 पिलर्स हैं। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स, सेकंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स, तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड और ATMP ओसेट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
1: मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 और वाराणसी रिंग रोड के बीच 46 किलोमीटर से अधिक लंबे 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर को भी स्वीकृति दी। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू हो गया है। इसके साथ ही भारत ब्रिटेन सामाजिक सुरक्षा समझौता भी लागू हो गया। सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में अस्थायी रूप से काम कर रहे भारतीय पेशेवरों को अमूल्य सहायता प्रदान करेगा और भारतीय उद्यमों की प्रतिस्पर्धा क्षमता को मजबूती देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। श्री मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना सहित 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में नई दिल्ली में दिल्ली नगर निगम MCD और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इनका उद्देश्य दिल्ली में मवेशियों के गोबर का वैज्ञानिक तरीके से इस्तेमाल करके कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र लगाना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र देश में औद्योगिक रोजगार के सबसे तेजी से बढ़ते स्रोतों में से एक बनकर उभरा है। इस क्षेत्र ने लगभग 25 लाख रोजगार सृजित किए हैं, जो विनिर्माण आधारित आर्थिक विकास और आजीविका सृजन में इसके बढ़ते योगदान को दर्शाते हैं। निर्वाचन आयोग ने पंजाब में निर्धारित विशेष गहन पुनरीक्षण समय सीमा

को 11 दिन तक बढ़ा दिया है। इस बदलाव के साथ अंतिम मतदाता सूची अब 12 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। अमेरिका ने होर्मुस जल डमरू मथे से गुजर जहाजों पर हमलों के जवाब में ईरान पर फिर समुद्री नाकेबंदी लागू कर दी है। अमेरिका ने हवाई हमलों का अभियान तेज कर दिया। ईरान के अधिकारियों ने बताया कि सेना की बैरक पर अमेरिकी हमले में 7 सैनिक मारे गए। अमेरिकी हमलों से देश भर में 260 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ईरानी सरकार की प्रवक्ता फातिमेह मोहजरानी ने कहा कि हाल के दिनों में अमेरिकी हमलों में 30 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। फीफा विश्व कप में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को 2-1 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। अब उसका मुकाबला 19 जुलाई को स्पेन से होगा। अमेरिका के अटलांटा स्टेडियम में खेले गए दूसरे सेमीफाइनल में पहला हाफ गोल रहित समाप्त हुआ, लेकिन एंथनी गार्डन ने 55वें मिनट में इंग्लैंड के लिए पहला गोल दागा। अर्जेंटीना के एंजो फर्नांडीज ने 85वें मिनट में बराबरी का गोल किया और लोटेरो मार्टिनेज ने 90वें मिनट के बाद मिले अतिरिक्त

0: सात सैनिक मारे गए। अमेरिकी हमलों से देश भर में 260 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ईरानी सरकार की प्रवक्ता फातिमेह मोहज ईरानी ने कहा कि हाल के दिनों में अमेरिकी हमलों में 30 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। फीफा विश्व कप में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को 2-1 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। अब उसका मुकाबला 19 जुलाई को स्पेन से होगा। अमेरिका के अटलांटा स्टेडियम में खेले गए दूसरे सेमीफाइनल में पहला हाफ गोल रहित समाप्त हुआ, लेकिन एंथनी गार्डन ने 55वें मिनट में इंग्लैंड के लिए पहला गोल दागा। अर्जेंटीना के एंजो फर्नांडीज ने 85वें मिनट में बराबरी का गोल किया और लोटेरो मार्टिनेज ने 90वें मिनट के बाद मिले अतिरिक्त समय के दूसरे मिनट में एक और गोल करके अर्जेंटीना को 2-1 से रोमांचक जीत दिलाई। इंडोनेशिया के जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय महिला मुक्केबाजों ने 3 स्वर्ण और 10 रजत पदक अपने नाम किए। अंडर 19 में चंद्रिका पुजारी ने 51 किलोग्राम वर्ग और प्राची ने 57 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता, जबकि अंडर 23 में निशा ने 54 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर भारत, बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। कल तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में बिजली कड़कने के साथ आंधी तूफान का अनुमान व्यक्त किया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय महबश फातिमा। Union Cabinet has approved Semicon 2O with a budgetary outlay of 1,27,500 crore rupees to strengthen India's semiconductor design and manufacturing ecosystem. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw announced the cabinet decisions while briefing the media in New Delhi yesterday. He said, building on the momentum of Semicon 1O, the scheme reflects the government's commitment to establishing India as a global semiconductor hub.
2: Semicon 2.0.
3: Semicon 2 is built around six key pillars. The first pillar focuses on chip design. The second places major emphasis on semiconductor machinery and materials. The third aims to establish many new semiconductor fabrication units. The scheme also includes provisions to further strengthen the ATMP and OSAT industry, which has already gained momentum in India with 10 units already established.
2: Us industry ko aur aage badhane ke
1: Mr. Vaishnaw said the cabinet has also approved the mobile phone manufacturing scheme with a budgetary outlay of 62,500 crore rupees. The cabinet has also approved two elevated corridor projects in Varanasi, Uttar Pradesh to improve road connectivity, ease traffic congestion and reduce travel time. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has expressed confidence that the India-European Union Trade and Technology Council meeting will carry forward the strong momentum of the partnership enabled by the India-EU Free Trade Agreement, Security and Defence Partnership and the Mobility Framework. Speaking to media yesterday after the third India-EU Trade and Technology Council meeting in Brussels, Dr. Jaishankar said India and the European Union share a natural affinity.
4: As open societies and as market economies, India and the EU have a natural affinity. The rule of law and the sanctity of contracts are central to our thinking. When it comes to sensitive technologies, this is all the more important. The fact is that emerging technologies literally hold the potential to shape our lifestyle and future. India and the European Union have developed this trust with each other and now strive to take that into the business and technology domains.
1: Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal described the India-EU Free Trade Agreement as fair, equitable and balanced, saying it is a win-win agreement for all sectors in both nations. Union Law and Justice Minister Arjun Ram Meghwal has launched the EVSP portal of Vidhi Sahitya Prakashan of the Legislative Department in New Delhi. The portal aims to expand digital access to legal knowledge by making important judgments of the Supreme Court and High Court's legal journals, reference books and other legal literature in Hindi available online. Vice President C.P. Radhakrishnan has

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर वक्त हो चुका है ठीक 3:01 और 3:11 और 12 सेकेंड और यह वक्त है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम हमराही का और हमराही की इस बहुत ही खूबसूरत महफिल को लेकर हाजिर हूँ मैं यानी आपका अपना दोस्त फेरोज। तो आप तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार पुरखलूस आदाब। दोस्तों कहते हैं कि कभी कभी मोहब्बत किसी शोर से नहीं बल्कि एक खामोशी से शुरू होती है, एक मुस्कान, एक नजर और फिर दिल धीरे धीरे किसी का आशियाना बन जाता है। आज की महफिल उसी बेपनाह एहसास के नाम, जब दिल बिना किसी शर्त के बस इतना कह उठता है ओ सनम तेरे हो गए हम। यह सिर्फ एक जुमला नहीं बल्कि उस इश्क की गवाही है जहां अपना वजूद भी किसी और की मुस्कान में नजर आने लगता है। तो आइए अपने दिल के दरवाजे को खोलिए, पुरानी यादों को हल्के से दस्तक देने की दीजिए और इस खूबसूरत नगमे के साथ मोहब्बत की उस रौनक को फिर से महसूस कीजिए। फिल्म आई मिलन की बेला से आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर मोहम्मद रफी साहब और लता जी की बहुत ही खूबसूरत आवाजों में ये नगमा आपके लिए।

ओ सनम तेरे हो गए हम, बेहद खूबसूरत ये नगमा फिल्म आई मिलन की बेला से आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। और 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर महफिल है आपकी अपनी पसंदीदा हमराही की, जिसे लेकर हाजिर हूं मैं यानी आपका दोस्त। और अब हम आगे बढ़ेंगे एक और बेहद खूबसूरत नगमे की इस तरफ, जो आज का नगमा बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा है, और यह हमें उस दौर में लेकर चल रहा है जब मोहब्बत लफ्जों से कम और नजरों से ज्यादा बयां होती थी, जब एक फूल और एक बुलबुल की कहानी दिलों में इश्क की खुशबू बिखेर जाया करती थी। साल था 1965 का और पर्दे पर आई एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म जब जब फूल खिले। इस फिल्म में अपनी मासूम अदाओं से दिल जीत लिया नंदा ने, और उनके साथ नजर आए थे सदाबहार अभिनेता शशि कपूर साहब। इस फिल्म का एक बेहद प्यारा गीत, जिसे अपनी रूहानी आवाज से अमर बनाया मोहम्मद रफी साहब ने, आज भी हर दिल को उसी शिद्दत से छू जाता है। तो आइए यादों की इस महफिल में शामिल होते हैं और सुनहरे दौर के उन बेहद खूबसूरत नगमे को हम आपको सुनवाते हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस गीत को लिखा है बहुत ही खूबसूरत गीतकार, बहुत ही प्यारे गीतकार आनंद बख्शी साहब ने, और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा है कल्याण जी आनंद जी भाई ने। आवाजें हैं मोहम्मद रफी साहब और नंदा की।

मोहम्मद रफ़ी साहब और लता जी की बेहद खूबसूरत आवाज़ों में यह नगमा था फिल्म जब जब फूल किले से। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर हमराही की इस दिलकश महफिल में मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त फेरोज। और हमराही में आज आप और हम मिलकर चल रहे हैं एक बेहद खूबसूरत सफर पर, जिसमें गोल्डन एरा के उन रोमांटिक और बेहद खूबसूरत नगमों के साथ हम हाजिर में। आकाशवाणी दिल्ली का ये एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, जिसमें हम अब आगे बढ़ेंगे एक और बहुत ही खूबसूरत नगमे की तरफ, जिसने सिर्फ पर्दे पर कहानी नहीं सुनाई बल्कि बदलते वक्त और इंसानी रिश्तों की कश्मकश को भी बड़ी ही खूबसूरती से पेश किया। ये वो दौर था जब मोहब्बत, इमोशन और सामाजिक रिश्तों की बातें जब होती थी तो ऐसे लगता था कि जैसे फिल्मकार ने अपना दिल निकाल कर रख दिया है। ऐसी ही एक फिल्म थी नया दौर, और साल था 1957 का, यानी एक नया युग। नया दौर का मतलब नया युग की शुरुआत हो रही थी। महान फिल्मकार बी आर चोपड़ा के निर्देशन और निर्माण में बनी इस सामाजिक नाटक फिल्म की कहानी अख्तर मिर्जा ने लिखी थी। फिल्म में दिलीप कुमार और वैजयंती माला की जोड़ी ने अपनी शानदार अदाकारी से दर्शकों का दिल जीत लिया। उनके साथ थे अजीत, जीवन, जॉनी वॉकर, चांद उस्मानी, नाजिर हुसैन, मनमोहन, कृष्ण, लीला चटनीस, प्रतिमा देवी, डेजी ईरानी और राधा किशन जैसे उम्दा कलाकारों ने भी अपनी अदाकारी की गहरी छाप छोड़ी थी। इस फिल्म की कहानी बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी थी, और उसके नगमे भी इतने ही प्यारे थे। और उन्हीं नगमों में से एक बहुत ही खूबसूरत नगमा हम आपके लिए लेकर आए हैं, मोहम्मद रफ़ी साहब और आशा जी की बहुत ही प्यारी आवाज़ों में। फिल्म नया दौर से आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। तो आइए सुनते हैं वही नगमा, साहिर लुधियानवी साहब ने लिखा है और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा है ओपी नैयर साहब ने।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 11 बजे मन की बात।

लता जी और मुकेश साहब की बहुत ही प्यारी आवाज़ों में यह नगमा था फिल्म अनाड़ी से, आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर महफिल सजी है आपके अपनी पसंदीदा हमराही की, जिसमें गोल्डन एरा के उन रोमांटिक और बेहद खूबसूरत नगमों के साथ हम हाजिर हैं और हम भी और आप भी मिलकर चल रहे हैं हमराही की इस बहुत ही खूबसूरत सफर पर आपकी हमराही के साथ, जहाँ हर गीत अपने साथ यादों की महफिल, मोहब्बत की दास्तान, दौर की खुशबू लेकर आता है। कुछ गीत सिर्फ सुने नहीं जाते बल्कि एहसास बनकर दिल में उतर जाते हैं। उनकी मिठास, उनके अल्फाज और उनकी धुन बरसों बाद भी वैसे ही ताजगी का एहसास दिलाती हैं। आज का यह अगला नगमा भी कुछ ऐसा ही है। ये गीत है 1957 में आई एक बहुत ही मशहूर फिल्म प्यासा से, जिसने हिंदी सिनेमा को संवेदनशील कहानी और बेमिसाल संगीत का एक नया मुकाम दिया। इस खूबसूरत गीत को अपनी दिलकश आवाजों से सजाया है गीता दत्त और मोहम्मद रफ़ी साहब ने। दोनों की गायकी में ऐसी नज़ाकत और रवानगी है कि हर मिसरा सीधे दिल तक पहुंच जाता है। और जब बात संगीत की हो तो सचिन देव बर्मन यानी SD बर्मन का जिक्र कैसे छूट सकता है। सचिन देव बर्मन एक ऐसी शख्सियत जिसने धुनों को जिया है। उनकी धुनों में सादगी भी है, रूहानियत भी, और ऐसा जादू भी जो हर दौर में ताज़ा महसूस होता है। तो आइए कुछ पल के लिए रोज़मर्रा की भाग दौड़ के ज़रा फुर्सत चुराते हैं और इस खूबसूरत नगमे के साथ मोहब्बत की इस दुनिया में खो जाते हैं, जहाँ आँखों ही आँखों में दिल की ज़बान कुछ अलग ही कह उठती है। हालांकि ये वक्त बहुत ही सुकून वाला है, रात की इस तन्हाई में बेहद खूबसूरत गीतों के साथ, बेहद खूबसूरत नगमों के साथ हम हाजिर हैं आपके लिए, खास तौर से इस नगमे को लेकर।

मोहम्मद रफ़ी साहब और गीता दत्त की आवाज़ों में यह नगमा था फिल्म प्यासा से। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर महफिल है हमराही की, जहां हर गीत अपने साथ यादों की एक महफिल, सुरों की रौनक और जज्बात की एक खूबसूरत दास्तान लेकर आता है। कहते हैं मोहब्बत जितनी नाजुक होती है उसे संभालना भी उतना ही ज़रूरी होता है। रिश्तों की पाकिजगी, भरोसे की खुशबू और दिल की मासूमियत, इन्हीं एहसासात को बेहद खूबसूरती से बयां करता है हमारा अगला ये बहुत ही प्यारा नगमा। ये गीत है 1970 में रिलीज हुई एक यादगार फिल्म, जो एक बहुत ही खूबसूरत भी थी, सच्ची कहानियां कहती थी और हमारे जज्बात को भी झकझोर दी थी, और वो फिल्म थी मेरा नाम जोकर। इस फिल्म ने जिंदगी, मुस्कुराहट और दर्द को एक ही कैनवस पर बेहद संजीदगी से उकेरा है। गीत के दिलकश बोल लिखे हैं मशहूर शायर गीतकार हसरत जयपुरी साहब ने, और इस नगमे को अपने सदाबहार संगीत से सजाया है हिंदी सिनेमा की महान संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन साहब की, जिनकी धुनें आज भी दिलों में उसी रवानी के साथ गूंजती है। और जब इन गीतों को, इन अल्फाज को आवाज़ मिली मुकेश साहब और आशा जी की, तो फिर क्या कहने। ये गीत एक ऐसे ही नगमा निगारी का एक बहुत ही खूबसूरत नमूना है, जिसे सुनकर आज भी सुनने वाले मुकेश साहब की आवाज़ को याद करने लगते हैं, उनको याद करने लगते हैं, उनकी शख्सियत को याद करने लगते हैं। तो आइए सुनते हैं एक ऐसा ही बेहद खूबसूरत नगमा, जिसमें प्यार की मासूमियत भी है, अपनापन भी, और रिश्तों की हिफाजत का बहुत ही प्यारा एहसास भी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि सेमीकॉन मिशन के दूसरे चरण के तहत 4,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद है।
1: सेमीकॉन 2.0 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमीकॉन 2.0 आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमीकॉन 2.0 में 6 पिलर्स हैं। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स, सेकंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स, तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड और ATMP ओसेट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
0: मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 और वाराणसी रिंग रोड के बीच 46 किलोमीटर से अधिक लंबे 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर को भी स्वीकृति दी। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू हो गया। इसके साथ ही भारत ब्रिटेन सामाजिक सुरक्षा समझौता भी लागू हो गया। सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में अस्थायी रूप से काम कर रहे भारतीय पेशेवरों को अमूल्य सहायता प्रदान करेगा और भारतीय उद्यमों की प्रतिस्पर्धा क्षमता को मजबूती प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। श्री मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना सहित 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में नई दिल्ली में दिल्ली नगर निगम MCD और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसका उद्देश्य दिल्ली में मवेशियों के गोबर का वैज्ञानिक तरीके से इस्तेमाल करके कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र लगाना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र देश में औद्योगिक रोजगार के सबसे तेजी से बढ़ते स्रोतों में से एक बनकर उभरा है। इस क्षेत्र ने लगभग 25 लाख रोजगार सृजित किए हैं, जो विनिर्माण आधारित आर्थिक विकास और आजीविका सृजन में इसके बढ़ते योगदान को दर्शाता है। दिल्ली स्थित लाल किला परिसर 15 जुलाई से 15 अगस्त तक 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह तक आम जनता के लिए बंद रहेगा। लाल किला परिसर में स्वतंत्रता दिवस समारोह की चल रही तैयारियों के मद्देनजर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा ये आदेश जारी किया गया है। विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस से पहले हर साल ऐसे आदेश जारी किए जाते हैं। 15 अगस्त को केवल सरकार द्वारा

जारी पास धारकों को ही लाल किले परिसर में प्रवेश करने और समारोह में शामिल होने की अनुमति होगी। निर्वाचन आयोग ने पंजाब में निर्धारित विशेष गहन पुनरीक्षण की समय सीमा को 11 दिनों तक बढ़ा दिया है। इस बदलाव के साथ अंतिम मतदाता सूची अब 12 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। अमरीकी सेना ने ईरान पर फिर से हमले शुरू करने की घोषणा की है। सेना के केंद्रीय कमान ने बताया कि उसने दर्जनों ठिकानों को निशाना बनाते हुए रात भर लगातार हमले किए और फिर दिन के उजाले में भी हमले जारी रहे। फीफा विश्व कप में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को 2-1 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। अब फाइनल में 19 जुलाई रविवार को उसका सामना स्पेन से होगा। अमेरिका के अटलांटा स्टेडियम में खेले गए दूसरे सेमीफाइनल में पहला हाफ गोल रहित समाप्त हुआ, लेकिन एंथनी गार्डन ने 55वें मिनट में इंग्लैंड के लिए पहला गोल दागा। अर्जेंटीना के एंजो फर्नांडिस ने 85वें मिनट में बराबरी का गोल किया और लोटारो मार्टिनेज ने 90वें मिनट के बाद मिले अतिरिक्त समय के दूसरे मिनट में एक और गोल करके अर्जेंटीना को

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर वक्त हो चुका है ठीक 4:11 और 5 सेकंड और यह वक्त है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम अरुणिमा का और अरुणिमा की इस बेहद खूबसूरत महफिल को लेकर हाजिर हूँ मैं यानी आपका दोस्त फेरोज। तो आप तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और अरुणिमा की इस बहुत ही खूबसूरत महफिल में हम बात करेंगे जिंदगी के उन लम्हों की, उन यादों की और उन खूबसूरत पलों की जो हमारे लिए बहुत ही अहमियत रखता है, बहुत ही मायने रखता है। अगर वो पल, अगर वो यादें ना हों तो हमारी ज़िंदगी बिल्कुल अधूरी लगेगी। और इस अरुणिमा की इस बहुत ही खूबसूरत महफिल में हम बात करते हैं ऐसे लम्हों की जहां हर गीत सिर्फ सुरों का सफ़र नहीं बल्कि ज़िंदगी को समझने का एक खूबसूरत पैगाम भी होता है। ज़िंदगी भी कितनी दिलचस्प है ना, कभी धूप कभी छांव, कभी आरजू तो कभी इंतज़ार, लेकिन हर सुबह हमें एक नया मौका देती है मुस्कुराने का, सीखने का और आगे बढ़ने का। और रिश्ते भी कुछ ऐसे ही होते हैं, उन्हें सिर्फ निभाया नहीं जाता बल्कि भरोसे, अपनापन और मोहब्बत से सींचा जाता है। जब दो दिल एक दूसरे की खुशियों में अपनी खुशी, तब जिंदगी और भी खूबसूरत बन जाती है। और आज का हमारा अगला नगमा भी कुछ ऐसा ही है। मिलन सिर्फ दो लोगों का नहीं बल्कि उम्मीदों का, विश्वास का और दिलों का होता है, यही तो जिंदगी की असली खूबसूरती है। हमें कुछ नया सिखा जाती है। इस अनमोल नगमे को अपनी जादुई आवाज से अमर बनाया है किशोर कुमार साहब और लता जी की बहुत ही प्यारी आवाजों ने। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर अरुणिमा की इस महफिल में आपके अभिमान फिल्म का ये बहुत ही खूब

अभिमान फिल्म का ये नगमा था किशोर कुमार साहब और लता जी की बहुत ही प्यारी आवाजों में। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम अरुणिमा, जहां हर गीत सिर्फ कानों तक नहीं बल्कि दिल की गहराइयों तक उतर जाता है। दोस्तों, जिंदगी में कभी कभी ऐसा वक्त भी आता है जब लगता है कि सब कुछ खामोश हो गया है, लेकिन यकीन मानिए हर खामोशी के बाद एक नई सदा जरूर सुनाई देती है। बस जरूरत है उम्मीद का दामन थामे रखने की। इंसान की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वो हर मुश्किल के बाद फिर से मुस्कुराना सीख लेता है। रिश्ते अपना

अपनापन और एक दूसरे का साथ, यही तो हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत है। कभी किसी अपने को पुकारने में देर मत कीजिए, और अगर कोई आपको पुकारे तो उस आवाज में छिपे एहसास को जरूर समझिएगा। आज का हमारा अगला ये नगमा बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत, जो दिलों को जोड़ने की एक ऐसी ही प्यारी दास्तान कहता है। इस गीत को अपनी दिलकश आवाज से अमर बनाया है मोहम्मद रफी साहब और लता जी ने। गीत की खूबसूरत बोल लिखे हसरत जयपुरी साहब ने, जिनके अल्फाज सादगी में भी गहरी मोहब्बत का एहसास जगा देते हैं, और पर्दे पर इस गीत को जीवंत किया शमी कपूर साहब और कल्पना ने, जिनकी मासूम अदाकारी आज भी दिलों को छू जाती है। तो आइए आज अपने इस दिल के दरवाजे उम्मीद के लिए खोले रखें, और किसी अपने को एक मुस्कान दीजिए, किसी मायूस चेहरे को हौसला दीजिए, क्योंकि कभी कभी एक सच्ची आवाज ही किसी की जिंदगी में एक नई रोशनी ले आती है। तो आइए इसी बेहद खूबसूरत नगमे के साथ हम भी आगे बढ़ते हैं मोहम्मद रफी साहब और लता जी की आवाजों में फिल्म प्रोफेसर से।

और लता जी की बहुत ही प्यारी आवाजों में आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोस्तों, कहते हैं कि जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत यही है कि हर शाम के बाद एक नई सुबह जरूर आती है। कभी रास्ते आसान होते हैं, कभी मुश्किलें बड़ी होती हैं, लेकिन जो इंसान उम्मीद का दिया जलाए रखता है उसकी मंजिल उससे ज़्यादा दूर नहीं होती। कभी कभी हम अपने सपनों को बहुत दूर समझ बैठते हैं, मगर असल में फासले बाहर नहीं, हमारे ख्यालों में होते हैं, हमारे अंदर होते हैं। जब दिल में उम्मीद, नज़रों में भरोसा और कदमों में हौसला हो तो हर सफ़र खूबसूरत बन जाता है। और आज का हम प्यारा नगमा भी कुछ ऐसे ही एहसासात को छूता है। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, ये गीत 1971 की बहुत ही खूबसूरत फिल्म आनंद से है। गीत के संवेदनशील बोल लिखे हैं योगेश साहब ने और इसको दिल को छू लेने वाले संगीत से सजाया है सलील चौधरी साहब ने। और जब इस नगमे को अपनी दर्द भरी लेकिन उम्मीद से भरी आवाज दी मुकेश ने, तो ये गीत हर उस दिल की आवाज बन गया जिसने कभी किसी बेहतर कल का ख्वाब देखा हो। तो आइए आज एक छोटा सा अहद करें, बीती बातों की मायूसी को पीछे छोड़ें, आज की मुस्कान को अपनाएं और अपने आने वाले कल का इस्तकबाल करें। यकीन के साथ करें, क्योंकि ज़िंदगी की असली खूबसूरती मंजिल में नहीं बल्कि मुस्कुराते हुए सफ़र को तय करने में है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर एक छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर मैं फेरोज आप तमाम सुनने वालों का शानदार इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं आपकी अपनी पसंदीदा महफिल अरुणिमा में। वक्त हो चुका है हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक ठीक 4:33 और 45 सेकेंड और अरुणिमा की इस महफिल में बातें जिंदगी से जुड़ी हुई बातें, आपके प्यार आपकी मोहब्बत की। दोस्तों कहते हैं कि जिंदगी एक लंबा सफर है, इस सफर में कुछ लोग मिलते हैं, कुछ बिछड़ जाते हैं, कुछ लम्हे मुस्कान दे जाते हैं तो कुछ हमें

मजबूत बनना सिखा जाते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, हर गुजरता हुआ पल हमें आगे बढ़ने की वजह देता है, आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, पीछे रुकने की नहीं। अक्सर हम बीती हुई बातों को लेकर अफसोस करते रहते हैं, मगर जिंदगी का असली फलसफा यही है कि जो बीत गया उससे सीखिए और जो आगे आने वाला है उसका इस्तकबाल पूरे यकीन और मुस्कान के साथ कीजिए, क्योंकि उम्मीद से ही दुनिया भरी पड़ी है और उम्मीद से ही सब कुछ आप हासिल कर सकते हैं। जिंदगी की किताब में एक नया और खूबसूरत सफ़ा ज़रूर जोड़ा करें, प्यार का, मोहब्बत का, खूबसूरती का। इन्हीं जज्बात को बेहद खूबसूरती से बयां करता है हमारा अगला ये बहुत ही प्यारा नगमा, जिसके बोल हैं, जिंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं जो मकाम वो फिर नहीं आते। ये गीत फिल्म आपकी कसम का है, इसे बहुत ही खूबसूरती के साथ लिखा है आनंद बख्शी साहब ने और बहुत ही सुंदर संगीत से संवारा है राहुल देव बर्मन साहब ने। आवाज़ है किशोर कुमार साहब की।

जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते। बेहद खूबसूरत ये नगमा था किशोर कुमार साहब की बहुत ही प्यारी आवाज में, फिल्म आपकी कसम से। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अरुणिमा की इस बहुत ही खूबसूरत महफिल में, और इस महफिल को लेकर हाजिर हूं मैं, यानी आपका दोस्त फेरोज। जिंदगी कभी इम्तिहान लेती है तो कभी मुस्कुराने की वजह भी देती है। हर मुश्किल अपने साथ एक नई सीख और हर आजमाइश एक नई ताकत लेकर आती है। आज का हमारा अगला ये नगमा हमें यही सिखाने की कोशिश कर रहा है कि जिंदगी में शिकवा नहीं बल्कि उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हर मोड़ पर कोई ना कोई हिकमत जरूर छुपी होती है। फिल्म मासूम का ये बेहद खूबसूरत नगमा तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, जिसे लिखा है गुलजार साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा है आर डी बर्मन साहब ने। उनका संगीत दिल को छू लेने वाला संगीत और अनूप बहुत ही प्यारी आवाजों में यह नगमा, तो आइए बीती बातों को मुस्कुराकर स्वीकार करें, आज को दिल से जिएं और आने वाले कल का इस्तकबाल हंसते हुए मुस्कुराते हुए करें इस नगमे की तरह।

तुझ से नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं। बेहद खूबसूरत नगमा मासूम फिल्म से आवाज़ थी अनूप घोषाल की। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। जी हाँ, आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। वक्त हो चुका है ठीक 4:49 और 49 सेकेंड। महफिल सजी है आपकी अपनी पसंदीदा अरुणिमा की, जिसमें हम बातें कर रहे हैं जिंदगी से जुड़ी हुई। और जिंदगी में उन तमाम मुश्किलात के बाद आप अपनी जिंदगी को किस तरीके से आगे बढ़ाते हैं उसकी। कहते हैं वक्त चेहरों को बदल सकता है, लेकिन इंसान को नहीं, इंसान की खूबसूरती को नहीं। इंसान की रूह की खूबसूरती उसके अच्छे कर्म और मुस्कुराहट से पहचानी जाती है। जिंदगी में गुजरा हुआ कल लौट कर नहीं आता, मगर हर नया दिन हमें खुद को बेहतर बनाने का एक नया मौका जरूर देता है। इसलिए अफसोस में नहीं, बल्कि उम्मीद और हौसले के साथ आगे बढ़ने, इन्हीं गहरे एहसासात को बयां करता हुआ अगला एक बहुत ही प्यारा नगमा है, एक बहुत ही प्यारा कलाम है डैडी फिल्म का, जो सीधे दिल को छू लेता है। आईना मुझसे मेरी पहली सी सूरत मांगे, गुजरा हुआ दौर जैसे कि मैंने पहले कहा कि कभी लौट कर नहीं आता, लेकिन उससे सीख कर जिंदगी को आगे जरूर बढ़ाई जा सकती है। इसके खूबसूरत बोल लिखे हैं सूरज सनीम ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा है राजेश रोशन साहब ने, और अपनी मखमली आवाज से इसे अमर बनाया है हम सबके प्यारे, हम सबके तलत अजीज साहब ने। तो आइए, आईने में सिर्फ चेहरा नहीं, अपने जज्बे और अपने सपनों को भी देखिए, क्योंकि असली खूबसूरती वही है जो दिल में बसती है, और आईना कभी झूठ नहीं बोलता।

आईना मुझसे मेरी पहली सी सूरत मांगे। बेहद खूबसूरत और बहुत ही जज्बाती ये नगमा था फिल्म डैडी से। आवाज थी तलत अजीज साहब की। तो दोस्तों, आपको ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है हमें ज़रूर बताइएगा, अपने पैगामात के ज़रिए, अपने संदेशों के ज़रिए। तरीका बहुत ही आसान है, आपको हमें मेल करना है और मेल करने के लिए हमारा ईमेल आईडी है fmgoldeirdaily@gmail.com fmgoldeirdaily@gmail.com। तो हमें आपके पैगामात, आपके संदेश, आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। नगमे के साथ मुझे यानी फेरोज को अब दीजिए इजाजत। आज की अरुणिमा को यहीं पर समाप्त। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार, और समाचारों के बाद एक बार फिर मैं आपके साथ रहूंगा लेकर बेहद खूबसूरत

खूबसूरत प्रोग्राम भोर सुहानी ठीक 5:10 पर। तब तक के लिए मुझे अब इजाजत दे, फिर होगी मुलाकात अगले प्रोग्राम में, और सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल।